0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे, वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK-1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK-2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवी वेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्सेस फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है। उसमें होता बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
0: AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ASA रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम ASA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है। पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेन पार्ट रहा है और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो हैं वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMCA में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से एमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्र टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल्स हैं वो भी लग सकती हैं, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनामिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना, जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिनकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर के हैं, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत तक जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार करने का, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
2: स्ट्रेट अवे ये देखें कि दुनिया में किसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो US उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टूडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन्स हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रों की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाती। Is evolving. That evolution is powered by those who know how to merge technology with effective instruction. A master's degree in education technology and instructional design at WGU equips you with the skills you need to turn innovative thinking into real-world impact so you can shape learning in academic or corporate settings. Learn more at wgu.edu.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
4: वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: आपके कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
7: It's your boy,
6: just
7: Jay-Z.
6: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
9: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
8: Big 12 Radio.
10: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
8: and
10: down.
8: Talk sports.
11: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
8: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
12: How are you?
13: I'm fine.
12: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
14: Diplomacy mein Melody Yug ka aagaaz. Dilchasp hai Meloni ki kamyabi ka raaz. संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र. नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा. बंदे में है दम. श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर.
2: इसके ऊपर गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

स्त्री का सिंगार केस है, पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया। सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा, सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्दी से लेके आओ, थोड़े से चावल मिले। लेके आए पर उतने में चलेगा क्या, शाम का भोजन कैसे होगा। तो पत्नी ने कहा, एक उपाय है, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो। पर तुम कैसे रहोगी? मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी, पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। चीरधर की आंखों में आंसू आ गए, पत्नी के चरणों को पकड़कर बोले, तू धन्य है, बड़ी धन्य है, मैंने बहुत देखे, पर तू मेरी अर्धांगिनी धन्य है, धन्य है। चीरधर जी रो पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकाल कर सेठ को बेचे, पूरे कपड़े निकाल कर सेठ को बेच दिए और लाए चावल। चावल लेकर के आए, इधर चीरधर की पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई, क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे। चावल बनाया तो चावल बनाकर पीपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए। तो पीपाजी ने कहा कि भक्तराज, तुम्हारी कुछ देर पहले पत्नी दिख रही थी, अब तुम उसको भी बुला लो, वो भी साथ में प्रसाद पाले में भोजन कर ले। तो चीरधर जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, वो बाद में पालेगी, आप पाओ वो पालेगी। नहीं नहीं नहीं, हमारी आदत है, हम सब बैठ कर भोजन करते हैं, तुम बुलाओ उसको। चीरधर कहते, भगवान वो नहीं आ पाएगी। पीपा जी ने डांट के हुए अपनी पत्नी को कहा कि जाओ तुम ले आओ। चीरधर गली में खड़ा हो गया, मत जाओ अंदर, एक तरफ हो, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी साथ में नहीं बैठेगी। क्या हुआ, आवाज भी नहीं आ रही, कहां गई? जब पीपा जी की पत्नी अंदर गई तो कोने में लुकी छिपी रो रही थी, पाए पकड़ी, क्या बात है, ये तुम्हारे कपड़े कहाँ गए, कपड़े कौन ले गया? चीरधर की पत्नी कहती है, बहन हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं था, आपका भोजन कैसे कराएं, तो हमने अपने कपड़े ही बेच डाले। पिपाजी महाराज की पत्नी सीता सहचरी की आंख फट गई, धार कर रो पड़ी, धन्य है तू, धन्य है, जो कौपीन जो वस्त्र पहन रखा था वो आधा कपड़ा शरीर को लपेट दिया, प्रणाम करके चीरधर को कहा, हमने बहुत साधु से भी देखे और तुम्हारे जैसा नहीं देखा, भगवान आपको बताएं, ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार शरीर हमारा ठिकाने नहीं रहा। बाद में चीरधर को भी ठाकुर के दर्शन हुए और पीपा जी को भी गोविंद के दर्शन हुए। जब संतों की जमात बैठी भोजन पाने, चार पांच और महात्मा आ गए, रोज की आदत थी भंडारे की, और जहां भोजन पाने महात्मा बैठे और प्रसाद लगाया, उन्हीं बीच में चतुर्भुज लूप लेकर के नारायण खड़े हो गए, चीरधर बुलाओ अपनी पत्नी को, आज का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया हूं। गोविंद भी कहते कि मैं धन्य हो गया हूं। साधु ने कहा, ना गुरु कृपा जिस पर हो जाए, गोविंद को वो फक्करपन में भी पा सकता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में संपत्ति या पदार्थ हो, ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में पदार्थ हो तो गोविंद मिलेंगे। तुम्हारे पास जो है वो भगवान को समर्पित करो, भगवान उसमें भी तुमको दर्शन देंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी हम लोगों ने ली गुरु कृपा के ऊपर। हम तो क्या बताएं अब आपको, हमने तो जो भी पाया ना, सच बताएं, जो भी हमने पाया वो गुरु कृपा से ही पाया है। लोग हमारे पास आते हैं कि आपके पास में है क्या चमत्कार, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आपके पास सिद्धि क्या है, आप ये ऐसे चमत्कार क्यों कर देते हैं। सच बताएं ना, हम तो इन संतों के कारण ही कर देते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, कोई तपस्या नहीं हमारी, पढ़े लिखे भी नहीं, भजन बल भी नहीं कि माला हो, हमारे पास तो एक ही है, इनका हाथ है। जब भी दरबार में बैठते हैं तो इन लोगों को याद कर लेते हैं, महात्माओं को, कि हम बैठ रहे हैं, नाक हमारी नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नाक आप लोगों की कटनी बचा ले। इन महात्माओं का तपोबल
हमको बचा लेता है। आपसे भी हम कहेंगे, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कोई काम करना हो, गुरु को याद करके कह दिया करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, और गुरु जो आज्ञा दे उसको सर्वोपरि मान करके अगर चलोगे, तुमको भी भगवान की प्राप्ति होगी, इसी युग में इसी समय आपको प्राप्ति होगी, इसमें किंचित मात्र

पात्र हैं, एक अंगद का और एक जटायु का। रामायण के दो पात्र, एक अंगद का पात्र, एक जटायु का पात्र। जटायु का पात्र रावण से हार गया और अंगद जी उसी की लंका में उसी के सामने पैर जमा कर जीत गए। रावण की जवान लंका में उसी के राज्य में जटायु का जटायु भारत में हार गए, पर लंका में अंगद का पैर जीत गया। दोनों के पात्रों का अगर बारीकी से आप परिचय लोगे तो जटायु अपने बल पर लड़ा इसलिए हार गया, पुरुषार्थ के बल पर जटायु लड़ा इसलिए हार गया, अंगद जी प्रसाद के बल पर पैर रखते हैं तो अंगद जीत गए। अगर तुम अपने बल पर जियोगे तो तुम हारोगे ही हारोगे, जीत नहीं सकते, नेवर नो। और अगर तुम गुरु के बल पर जियोगे तो तुम जीतोगे ही जीतोगे, हार नहीं सकते हो। लाखों ताकतें तुम्हें हाराने लग जाएं, हमारे पीछे लाखों ताकतें लगी हैं और लगी रहेंगी, पर गुरु बलवान है तो

0: आपके कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
3: You're listening to CNBC.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
5: Keep it on smooth jazz.
6: This is Roots Reggae
7: exclusively on TuneIn.
8: This is classic hip-hop
9: exclusively on TuneIn.
2: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good topic.
2: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a tank. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now. Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
4: La Que Buena.
3: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
3: get The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
9: देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और उल्लास के साथ जारी चारधाम यात्रा। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20,76,000 के पार। शनिवार को करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ। कपाट खुलने के पहले ही दिन 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका पत्थर। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक। वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग श्रृंखला में उमड़ी भारी भीड़। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से बचाव करने की अनोखी तस्वीर। जमशेदपुर के चिड़ियाघर में जंगल के राजा के लिए लगाए गए कूलर। ठंडे पानी से दिन में 2 कराया जा रहा है स्नान। IPL के 68वें मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेटों से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 51 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए। प्लेऑफ की रेस में पंजाब की उम्मीद कायम। IPL में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 मुंबई और राजस्थान के बीच होगा मैच। शाम 7:30 ईडन गार्डन्स में कोलकाता और दिल्ली के बीच पड़ा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
9: आस्था और उल्लास के साथ जारी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20,76,000 के पार। शनिवार को करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने चारों धाम में दर्शन किए। चारों धामों में दर्शन करने के लिए लग रही है श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। शनिवार को बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा 32,000 तीर्थयात्री पहुंचे। अब तक का 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ में शनिवार को 29,700 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक करीब 8,12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। गंगोत्री धाम में शनिवार को करीब 18,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे। यमुनोत्री धाम में शनिवार को 16,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 3,56,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के खुल गए कपाट। पहले दिन 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। फूलों से किया गया गुरुद्वारे का श्रृंगार। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। दो धूमधाम से गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया हेमकुंड दरबार। शबद कीर्तन के बाद पढ़ी गई पहली अरदास। कपाट खुलने के दौरान भारतीय सेना और पंजाब बैंड की धुन पर गूंजा हेमकुंड साहिब। 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई वाली यात्रा करके श्रद्धालु पहुंच रहे हेमकुंड साहिब दरबार। विदेशों से भी आते हैं श्रद्धालु। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों की ओर बड़ी तादाद में पहुंच रहे पर्यटक। बड़ी वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग श्रृंखला में उमड़ी भारी भीड़। बीते दिनों रोहतांग पास श्रृंखला और दूसरे हिल स्टेशन पर बर्फबारी ने बदल दिया नजारा। गर्मी के सीजन में शानदार बर्फबारी का आनंद लेने के लिए गाड़ियों से पहुंच रहे हैं सैलानी। रोहतांग में अभी भी कई इलाकों में 10 से 15 फीट तक जमी हुई बर्फ। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से केवल 1300 वाहनों को ही दी गई है इजाजत। वीकेंड पर बड़ी तादाद में हिमाचल पहुंचकर मौसम का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए कुल्लू मनाली में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। गाड़ियों की लंबी कतारें। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से बचाव करने के लिए हर स्तर पर किए जा रहे इंतजाम। जमशेदपुर के चिड़ियाघर में जंगली जानवरों के लिए विशेष सुविधाओं की सौगात। जमशेदपुर के टाटा जू में हर जानवर के लिए अलग अलग व्यवस्था। शेर के पिंजरे में लगाए गए हैं कूलर। जमशेदपुर में करीब 45 डिग्री के पास पहुंच गया है तापमान। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए 2 बार नहलाया जा रहा है। टाटा जू में गर्मी से बचाव करने के लिए छोटे बड़े जानवरों के लिए बाड़े में रखा जा रहा है ठंडा पानी। खाने पीने में भी किया गया बदलाव। करीब 60 एकड़ में फैला जमशेदपुर का टाटा जू जंगली जानवरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं लोग। भीषण गर्मी से बचाव करने के लिए राहत भरी खबर। देश में मानसून समय से पहले देगा दस्तक। जल्द केरलम में एंट्री ले सकता है मानसून। अलनीनो के प्रभाव के बावजूद मानसून की एंट्री समय से पहले। मौसम विभाग का अनुमान 26 मई को केरलम पहुंच सकता है मानसून। 4 दिन पहले या बाद में भी जताई गई आशंका। मौसम विभाग ने जानकारी दी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है माहौल। केरलम के दक्षिणी हिस्सों में भी भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने 6 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान तेज से। अत्याधुनिक मेड इन इंडिया एयर प्योरिफिकेशन तकनीकों का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। दिल्ली में 21 जगहों पर लगाए गए हैं एयर प्योरिफायर। हर घंटे करीब 3 लाख लीटर हवा को साफ करने में सक्षम। मैदानी इलाकों में गर्मी के चलते पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर देखा आस्था का मेला। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पुलिस को मिली बड़ी तकनीकी मजबूती। हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक वैन की शुरुआत। हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक वैन सीधे घटनास्थल पर शुरुआती फॉरेंसिक जांच करने में होगी सक्षम। करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है वैन की कीमत। शिरडी पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साईं दरबार में टेका मत्था। साई दरबार में राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। विधि विधान के साथ आराधना की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पदयात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। शोपियां में लोगों ने गुलाब का फूल देकर किया उपराज्यपाल का स्वागत। पदयात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जबलपुर में किसान संकल्प परिहार का कमाल। जापान में उगने वाला दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी आम जबलपुर में हो रहा तैयार। आईपीएल के 68वें मैच में पंजाब किंग्स की शानदार जीत। लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेटों से हरा दिया। प्लेऑफ की रेस में पंजाब की उम्मीद कायम। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ की टीम ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम ने 18 ओवर में 3 विकेट पर 200 रन बनाकर जीत हासिल की। पंजाब के कप्तान श्रेयस ने शानदार शतकीय पारी के लिए 51 गेंदों में 101 रन। लखनऊ की ओर से जोश इंग्लिश ने सबसे ज्यादा 72 रन की पारी खेली। पंजाब की ओर से मार्को यानसन और युजवेंद्र चहल 2-2 विकेट छटके। आईपीएल में आज 69वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे। आईपीएल प्ले ऑफ में जगह पक्की करने के लिए राजस्थान के लिए अहम मुकाबला, प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है मुंबई। राजस्थान की ओर से बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी की शानदार प्रदर्शन, इस सीजन में अब तक 579 रन बनाए। आईपीएल में आज 70वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे। प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में मैच जीतना जरूरी है। और वर्ल्ड टूर में अपने गीतों से दुनिया भर में जलवा बिखेरने के लिए सिंगर दिलजीत दोसांझ तैयार, अटलांटा में शानदार प्रस्तुति। तरसेम जस्सर की पंजाबी फिल्म दस्तार का टीजर हुआ आउट। पंजाबी फिल्म चढ़ती कला का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, बिमल कौर और खालसा के जीवन पर बनी है फिल्म। इश्कनामा से सामने आया शहनाज गिल, जय रंधावा का फर्स्ट लुक। कमल हसन के ने किया प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा बचाने की अपील का समर्थन, ईंधन से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर बातचीत। ऐ जवानी तो इश्क होना है में दो हसीनाओं के बीच फंसे वरुण धवन, फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आउट, 5 जून को होगी रिलीज। माधुरी दीक्षित ने मां बहन के ट्रेलर लॉन्च की शेयर की तस्वीरें। रस्मों से हुई एक्ट्रेस रश्मिका करिश्मा तन्ना की गोद भराई, सुनहरी साड़ी के साथ भव्य 16 श्रृंगार। मुंबई में प्रसिद्ध गायिका और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने सुरों का चला उनके जादू, भक्ति संगीत कॉन्सर्ट में शानदार गीतों से बांधा समा। फीफा वर्ल्ड कप एंथम में दिखेंगी शकीरा, डायराय गाने से टूटेगा 16 साल पुराना रिकॉर्ड। कान के रेड कार्पेट पर बेटी आराध्या संग एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की एंट्री, 3.5 लाख की ड्रेस में लूटी लाइमलाइट। ऐश्वर्या आराध्या के लुक ने खींचा सबका ध्यान, ब्लश पिंक गाउन में नजर आए। लाइट ऑन विमेंस वर्थ गाला के लिए फ्लोई गाउन पहना बेटी आराध्या, लाल गाउन और मैचिंग कैप में बहुत खूबसूरत नजर आई ऐश्वर्या के साथ ग्रैंड एंट्री। ऐश्वर्या राय ने गुलाबी क्लैम में सबको चौंका दिया, सोशल मीडिया पर फैंस ऐश्वर्या आराध्या के लुक की कर रहे हैं तारीफ। स्थापना के 3 साल पूरे करने जा रही भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम 26 मई को कर्नाटक में होगा मेगा एयर शो। सूर्यकिरण टीम अपनी सटीक और रोमांचक हवाई कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध, कम ऊंचाई पर बहुत करीब फॉर्मेशन में उड़ान भरने में सबसे ज्यादा खासियत। वायुसेना का राजदूत भी मानी जाती है सूर्यकिरण की टीम। 30 सालों में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एयर शो कर चुकी है सूर्यकिरण की टीम, 800 से ज्यादा एयर डिस्प्ले में दिखा चुकी है शौर्य। सूर्यकिरण टीम ने चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी को दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम बड़ी उपलब्धि, सिर्फ 22 दिनों में यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार। जम्मू श्रीनगर के बीच 2 मई से शुरू हुई थी वंदे भारत, घाटी के लोगों को मिल रही है बहुत बेहतर कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीषण गर्मी से राहत का इंतजाम, चौराहों पर ग्रीन नेट और मिस्ट। उत्तर प्रदेश के औरैया में गर्मी से पक्षियों को बचाने के लिए सराहनीय पहल, पेड़ों पर दाना और पानी की व्यवस्था। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, नीट अभ्यर्थियों को 20 और 21 जून को मिलेगी मुफ्त रोडवेज बस सेवा। सहारनपुर में भीषण गर्मी से बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत देने की पहल, जवानों को दिए गए 50 हाईटेक एसी हेलमेट। लिथियम बैटरी से चलता है एसी हेलमेट, करता है कूल। उत्तर प्रदेश में मौसम आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत होगी चेतावनी प्रणाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन केंद्रित मौसम अलर्ट में निर्देश दिए।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
11: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
4: La Que Buena.
11: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet.
11: The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
11: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
13: तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे कि शनिदेव की कृपा से आपको धन का लाभ कैसे हो सकता है और शनि आपको धनी कैसे बना सकते हैं। देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन की मुश्किल है, धन की समस्या है, तो शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की पूजा करके आप अपनी धन संबंधी मुश्किल को कैसे दूर कर सकते हैं। शनि का धन के मामलों से क्या संबंध है? देखिए, शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का कारक है और आपके कर्मों का फल देने वाला ग्रह है। आपके कर्म के अनुसार आप धनवान होंगे या आप दरिद्र होंगे, ये निर्धारण जीवन में शनि देव ही करते हैं। और शनि की विशेष स्थितियों से धन की प्राप्ति सरल भी हो सकती है और कठिन भी हो सकती है। शनि अगर कुंडली में फेवरेबल है तो धन आसानी से मिलेगा और अगर निगेटिव स्थान पर है, नकारात्मक सिचुएशन में है, तो धन पाना आपके लिए कठिन होगा। देखिए, शनि की जो महादशा होती है वो लगभग चलती है 19 साल तक। तो अगर शनि निगेटिव है कुंडली में तो 19 साल तक धन के लिए कष्ट होगा, लंबे समय तक आपको तकलीफ भोगनी पड़ेगी, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर शनि नकारात्मक है, निगेटिव है कुंडली में, तो जब आपकी 7.5 चलेगी या जब आपकी ढैया चलेगी तो उस समय में आपकी दरिद्रता बढ़ेगी, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि कुंडली में योग बड़े अच्छे हैं, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद आपके कर्म शुभ नहीं हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो शनि जीवन में धन की बहुत हानि करवाता है। यानी धन होगा या नहीं होगा ये प्रारब्ध तो है ही, उसके अलावा आपके अपने कर्म भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आप जीवन में धनवान होंगे या दरिद्र होंगे। देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं या आपके बहुत सारे कर्म ऐसे हो सकते हैं जब आपको धन की मुश्किल हो, धन की कठिनाई आपको परेशान करे। अगर शनि कुंडली के अशुभ भाव में बैठा है, शनि कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है, तो ये धन की मुश्किल पैदा करेगा। अगर शनि नीच राशि में बैठा है और उसका नीचत्व भंग नहीं हुआ है, या सूर्य के साथ बैठा है और शनि की स्थिति ज्यादा निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में भी शनि आपके लिए धन की हानि करवाएगा। अगर कुंडली में प्रतिकूल शनि है, शनि की स्थिति खराब है और शनि की 7.5 चले या ढैया चले, तो धन को लेकर के, पैसे रुपए के मामले को लेकर के जीवन में दिक्कतें होंगी। अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, अपने मन से आपने शनि का रत्न नीलम पहन लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी धन का बड़ा नुकसान हो सकता है, धन की बड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध ना हो, उसकी आदतें अच्छी ना हो, उसका खान पान, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर करता हो, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता हो, तो ऐसी स्थिति में भी धन की कठिनाई, धन की मुश्किल आपको परेशान करेगी। देखिए, शनि की बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब शनि आपको धनवान बना देता है, जीवन में धन देता है। कब ऐसा होता है? अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो, तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठा हो और फेवरेबल सिचुएशन में हो, तो व्यक्ति को शनि की वजह से जीवन में धन मिलता है। अगर कुंडली में शनि उच्च राशि में बैठ जाए, फेवरेबल हो जाए, अनुकूल हो जाए, या अपने घर में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन अवश्य मिलता है। अगर कुंडली में शनि बहुत बढ़िया हो, विशेष अनुकूल हो, शनि की महादशा चले, शनि की साढ़े साती चले, शनि की ढैया चले, अगर ऐसा हो जाए तो शनि की महादशा में, साढ़े साती में, ढैया में व्यक्ति को अपूर्व धन मिलता है, व्यक्ति के धन के भंडार भर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, अच्छा आचरण हो और उसका आहार सात्विक हो, पवित्र भोजन पवित्र आहार हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन बहुत मिलता है। अगर किसी व्यक्ति पर उसके माता पिता का या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो शनि की कृपा होगी और आप कष्ट से बचे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव या भगवान कृष्ण का भक्त है, या कुछ स्थिति में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का भी भक्त है, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या हनुमान जी, अगर कोई व्यक्ति इनका भक्त है, इनकी पूजा करता है, तो शनि के नकारात्मक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, व्यक्ति को धन और सम्मान दोनों वैसे भी मिल जाते हैं। देखिए, नौकरी का सीधा मतलब होता है शनि। आप कोई भी रोजगार करें, कोई भी नौकरी करते हो, बिना शनि कृपा के नौकरी संभव नहीं है। तो आप ऐसा क्या उपाय नियमित रूप से करें कि नौकरी में समय पे इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो, आपको सफलता मिले, क्या उपाय करेंगे? अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो शनिवार को पहले हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा और परिक्रमा के बाद कम से कम 108 बार शनि देव के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। और जब मंत्र जप कर लें तो किसी निर्धन व्यक्ति को क्वाइंस या सिक्कों का दान करिएगा। 20 का सिक्का हो, 50 का हो, वो मटेरियल नहीं है, कोई भी क्वाइन हो, आप 1 चाहें 2 चाहें 10 चाहें जितने भी क्वाइन चाहें आप दान कर सकते हैं। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं और ये उपाय आप लंबे समय तक करते हैं तो नौकरी पाना आपके लिए सरल होगा। अगर आप धन संबंधी समस्या तुरंत दूर करना चाहते हैं, तुरंत हटाना चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। रोज सवेरे उठ करके सूर्योदय के पहले अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें निरंतर, तो इससे आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व कमजोर है, दूसरे को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद 108 बार और अगर छोटी उम्र के हैं तो कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। रविवार के दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप रविवार को ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और उल्लास के साथ जारी है चारधाम यात्रा। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20,76,000 के पार। शनिवार को करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ। कपाट खुलने के पहले ही दिन 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टीका मत्था। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक। वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग शिंकुला में उमड़ी भारी भीड़। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से बचाव करने की अनोखी तस्वीर। जमशेदपुर के चिड़ियाघर में जंगल के राजा के लिए लगाए गए कूलर। ठंडे पानी से 2 दिन में 2 बार कराया जा रहा है विस्तार। आईपीएल के 68वें मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेटों से हरा दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 51 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए। प्लेऑफ की रेस में पंजाब की उम्मीद कायम। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे मुंबई और राजस्थान के बीच होगा मैच। शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में कोलकाता और दिल्ली के बीच भिड़ंत।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर।

0: आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: शनि एक ऐसा ग्रह है जिससे सबको सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन जो शनि ग्रह है वो कर्मों का फल देता है। देखिए, जो शनि ग्रह है ना, वो रंग को राजा बना सकता है, लेकिन अगर ये कमजोर है आपकी कुंडली में तो ये आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि शनि की कृपा से, उनकी उपासना से किस तरीके से दूर होंगे धन संबंधित समस्याएं। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप धन संबंधी समस्या तुरंत दूर करना चाहते हैं, तुरंत हटाना चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। रोज सवेरे उठ करके सूर्योदय के पहले अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें निरंतर, तो इससे आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी।
0: तो ये बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 24 मई 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 24 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से समझते हैं कि शनि ग्रह का धन की प्राप्ति से और धन संबंधित योग से आखिरकार क्या संबंध है, और किस तरीके से पंडित जी शनि देव की उपासना करके धन संबंधित बाधाएं अगर जीवन में आ रही हैं उससे छुटकारा मिल सकता है।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन की मुश्किल है, धन की समस्या है, तो शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की पूजा करके आप अपनी धन संबंधी मुश्किल को कैसे दूर कर सकते हैं। शनि का धन के मामलों से क्या संबंध है? देखिए, शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का कारक है और आपके कर्मों का फल देने वाला ग्रह है। आपके कर्म के अनुसार आप धनवान होंगे या आप दरिद्र होंगे, ये निर्धारण जीवन में शनि देव ही करते हैं। और शनि की विशेष स्थितियों से धन की प्राप्ति सरल भी हो सकती है और कठिन भी हो सकती है। शनि अगर कुंडली में फेवरेबल है तो धन आसानी से मिलेगा, और अगर निगेटिव स्थान पर है, नकारात्मक सिचुएशन में है, तो धन पाना आपके लिए कठिन होगा। देखिए, शनि की जो महादशा होती है वो लगभग चलती है 19 साल तक। तो अगर शनि निगेटिव है कुंडली में तो 19 साल तक धन के लिए कष्ट होगा, लंबे समय तक आपको तकलीफ भोगनी पड़ेगी, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर शनि नकारात्मक है, निगेटिव है कुंडली में, तो जब आपकी 7:30 चलेगी या जब आपकी 2:30 चलेगी तो उस समय में आपकी दरिद्रता बढ़ेगी, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि कुंडली में योग बड़े अच्छे हैं, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद आपके कर्म शुभ नहीं हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो शनि जीवन में धन की बहुत हानि करवाता है। यानी धन होगा या नहीं होगा ये प्रारब्ध तो है ही, उसके अलावा आपके अपने कर्म भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आप जीवन में धनवान होंगे या दरिद्र होंगे।
0: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग

0: जुलाई के महीने से आएगा, जुलाई 2026 से नवंबर 2026 के बीच में आप नौकरी में बदलाव कर पाएंगे और नौकरी में बदलाव के साथ साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। तो आने वाले समय में आपका करियर भी ठीक दिख रहा है और बदलाव से आपको लाभ भी होगा। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहनने से आपको लाभ होगा।
1: देखिए, शनि नेगेटिव होता है तो व्यक्ति को जीवन में धन संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन देखिए शनि जो है वो कर्म फल देवता होता है। ऐसे में शनि व्यक्ति को अपार धन की स्थिति में देता है, यानी शनि कब बना देता है रंक को राजा, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, शनि की बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब शनि आपको धनवान बना देता है, जीवन में धन देता है। कब ऐसा होता है? अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो, तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठा हो और फेवरेबल सिचुएशन में हो, तो व्यक्ति को शनि की वजह से जीवन में धन मिलता है। अगर कुंडली में शनि उच्च राशि में बैठ जाए, फेवरेबल हो जाए, अनुकूल हो जाए या अपने घर में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन अवश्य मिलता है। अगर कुंडली में शनि बहुत बढ़िया हो, विशेष अनुकूल हो, शनि की महादशा चले, शनि की 7.5 चले, शनि की ढैया चले, अगर ऐसा हो जाए तो शनि की महादशा में, 7.5 में, ढैया में व्यक्ति को अपूर्व धन मिलता है, व्यक्ति के धन के भंडार भर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, अच्छा आचरण हो और उसका आहार सात्विक हो, पवित्र भोजन, पवित्र आहार हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन बहुत मिलता है। अगर किसी व्यक्ति पर उसके माता पिता का या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो शनि की कृपा होगी और आप कष्ट से बचे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव या भगवान कृष्ण का भक्त है, या कुछ स्थिति में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का भी भक्त है, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या हनुमान जी, अगर कोई व्यक्ति इनका भक्त है, इनकी पूजा करता है, तो शनि के नकारात्मक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, व्यक्ति को धन और सम्मान दोनों वैसे भी मिल जाते हैं।
1: चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक को धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, इस समय आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन

0: कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अगर आप कामकाजी व्यक्ति हैं, नौकरी करते हैं, तो ऐसे में धन प्राप्ति के लिए शनि देव को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी उपासना कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, नौकरी का सीधा मतलब होता है शनि। आप कोई भी रोजगार करें, कोई भी नौकरी करते हो, बिना शनि कृपा के नौकरी संभव नहीं है। तो आप ऐसा क्या उपाय नियमित रूप से करें कि नौकरी में समय पे इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो, आपको सफलता मिले, क्या उपाय करेंगे? अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो शनिवार को पहले हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा और परिक्रमा के बाद कम से कम 108 बार शनि देव के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। और जब मंत्र जप कर लें तो किसी निर्धन व्यक्ति को क्वाइंस या सिक्कों का दान करिएगा। 20 का सिक्का हो, 50 का हो, वो मटेरियल नहीं है, कोई भी क्वाइन हो, आप 1 चाहें 2 चाहें 10 चाहें जितने भी क्वाइन चाहें आप दान कर सकते हैं। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं और ये उपाय आप लंबे समय तक करते हैं तो नौकरी पाना आपके लिए सरल होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि व्यवसाय यानी बिजनेस में धन प्राप्ति के लिए शनि देव को किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है।
0: देखिए, व्यवसाय का शनि देव से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि रोजगार ये भी एक तरीके का है और रोजगार का मतलब होता है शनि, तो अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि आप व्यापार में धन कमा सकें, व्यापार में धन के हालात बेहतर हो सके, तो शनिदेव को कैसे प्रसन्न करेंगे? हर शनिवार को प्रातः काल अपने घर से 1 लोटा भरकर पीपल के वृक्ष के पास जाइए और उसमें जल डालिए सूर्योदय के पहले, और शाम को उसी पेड़ के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा एक मुखी दीपक लोहे की कटोरी में जलाइएगा और दीपक जलाकर वहीं पर खड़े होकर या बैठकर 1 बार शनि चालीसा का पाठ करिएगा। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाइएगा या भोजन का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, इस दिन सात्विक रहते हैं, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करते, पवित्र भाव से पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके व्यापार के हालात में सुधार होगा।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखें, कोई बड़ा निर्णय अभी ना लें, रिश्तों की समस्या से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको लाभ होगा वो है फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना

0: बदलाव के योग हैं, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न अभय ने हमें लिखा है और अभय हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1990। जन्म का समय दोपहर में 3:45। जन्म स्थान है जयपुर। अभय कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अब है आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी छोड़ करके बिल्कुल व्यापार में जा सकते हैं और उसका उपयुक्त समय अभी चल रहा है। आप बिल्कुल व्यापार में जाइए, आप सफल होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। आपको करना बस इतना है कि इस ईमेल आईडी पर अपने प्रश्न लिख करके हमें भेज देने हैं। तो चलिए अब बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न श्री कृष्ण जी ने हमें लिखा है और श्री कृष्ण जी हमें मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 21 मई 1965। दोपहर 2 बजे। जन्म स्थान है जामनगर। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है तो कर्ज से मुझे छुटकारा कब तक मिलेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए कर्ज कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप कर्ज से जल्दी मुक्ति पा जाएंगे। 2027 के मध्य तक आते आते आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा और भविष्य आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में शनि की ये 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, बहुत मुसीबत का ये समय है, लगातार फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कौन सा सरल उपाय है जिसे कर करके जीवन से जो छोटी छोटी समस्या है इसका समाधान हासिल हो सकता है।
0: जी देखिए, अगर शनिदेव की 7.5 है या शनिदेव की ढैया चल रही है और शनि गोचर में अनुकूल नहीं है, कुंडली में उसके पॉइंट्स अच्छे नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि आपको साढ़े साती या ढैया में कष्ट होगा और ज्यादातर कष्ट आपको धन का ही होगा। तो ऐसी स्थिति में एक स्तुति है शनिदेव की, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसको आप रोज शाम को 108 बार पढ़िए, या अगर आप 3 बार भी पढ़ लेंगे रोज शाम को तो बहुत अच्छा है, 3 बार संध्या को, या फिर और अच्छा चाहते हैं तो 1 बार सुबह 1 बार शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़िए। शनिवार की शाम को खाने पीने की चीज का दान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि की साढ़े साती की वजह से या ढैया की वजह से धन का नुकसान आपको नहीं होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन 24 मई को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

0: दिन 24 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है, पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन कुल मिला के धन की स्थिति अच्छी रहेगी। अक्टूबर के महीने के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज के कार्यक्रम की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या नकारात्मक सोच से, निगेटिव सोचने से भी बीमारियां पैदा होती हैं? देखिए, कोई भी बीमारी पहले मन में आती है, फिर वो शरीर में दिखाई देती है, अभिव्यक्त होती है। ज्यादातर बीमारियों का चिंतन करने से या बीमारियों के बारे में ज्यादा सोचने से कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ती है और बीमारी होती जरूर है। सकारात्मक आप चिंतन करें, आप कितने भी बीमार हों, अगर आप पॉजिटिव सोचें और मन में ये सोचें कि मैं इस बीमारी से बाहर निकल आऊंगा, तो निश्चित रूप से आप बाहर आ जाएंगे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 24 मई 2026 यानी कि दिन रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 24 मई 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 24 मई रविवार, इस दिन शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में अगर आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की भाग्यशाली यानी आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को जीवन की बेहतरी के लिए क्या जरूर करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मेष। जीवन को अच्छा करना चाहते हैं और मेष राशि है आपकी, तो आप रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़िए, इसी से आपका जीवन बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी, अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व कमजोर है, दूसरे को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, इसके बाद 108 बार और अगर छोटी उम्र के हैं तो कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। रविवार के दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप रविवार को ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा।
1: पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
3: How are you?
4: Good boy.
3: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
2: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कौन सी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं? शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Your Saturday nights will never be the same.
4: The biggest hits back to back in the mix.
5: Get ready for the biggest mix show on the planet.
6: The Tailgate Block Party.
3: The Tailgate Block Party.
5: 6 hours nonstop. Nonstop.
6: The best DJs from around the world.
3: The Tailgate Block Party.
5: Saturday night.
3: 8 p.m. Eastern.
6: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
5: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली झलक सामने आ गई है। करीब 7 फीट ऊंचे बर्फ के शिवलिंग ने आकार ले लिया है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। पूरी यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा।

0: बाबा अमरनाथ की ये तस्वीर भोलेनाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर शिव भक्तों को आस्था के रंग में सराबोर कर रही है। ये तस्वीर सामने आते ही महादेव के भक्तों में अमरनाथ यात्रा का उत्साह और बढ़ गया है। यात्रा की शुरुआत में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन से पहले ही ये तस्वीर ही श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंग रही है। बाबा अमरनाथ की इस पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बर्फ से बना करीब 7 फीट का शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। अमरनाथ गुफा के आसपास अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान इस बर्फ को हटाकर पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। इस रास्ते को साफ करने वाले जवानों को ही भगवान के पहले दर्शन का सौभाग्य मिला है। यात्रा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी बर्फ 10 से 12 फीट तक हो चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान इस मार्ग को साफ करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यात्रा रूट के ज्यादातर हिस्से को साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी बर्फ से ढका दिख रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक पूरा यात्रा मार्ग साफ कर लिया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा 2 रूट से पूरी होगी। पहला रूट बालटाल सोनमर्ग से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दूसरा रूट नुनवा पहलगाम से होकर जाएगा। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। इस साल यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है, उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव का नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरे से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो बनाइए, कैमरा उठाइए और एक ब्लॉग बनाइए। हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। सिनेमा के इस महाकुंभ में इस साल दुनिया भर के मशहूर सितारों की महफिल सजी हुई है। बॉलीवुड के कई मशहूर स्टार्स ने भी इस फेस्टिवल में खूब सुर्खियां बटोरी। फेस्टिवल के आखिरी दिनों में ऐश्वर्या राय के ग्लैमरस लुक की खूब चर्चा हुई।

0: बेहिसाब ग्लैमर, बेशुमार चकाचौंध, बेमिसाल फैशन और फिल्मी सितारों से सजी खूबसूरत महफिल, कांस फिल्म फेस्टिवल। फ्रांस के खूबसूरत शहर कान में पिछले 12 दिनों से सजा सिनेमा का सबसे बड़ा मेला आज अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया। दुनिया भर के फिल्म मेकर्स, हॉलीवुड के दिग्गज और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों से सजी महफिल का आज आखिरी दिन है। 79वें कान फेस्टिवल का आगाज जितना शानदार था, इसका समापन भी उतना ही लाजवाब हो रहा है। इस बार के कान फिल्म फेस्टिवल में शुरू से लेकर अंत तक हिंदुस्तान का जलवा दिखा। कान की परमानेंट क्वीन कही जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या के साथ रेड कार्पेट की शान बढ़ाई। कान में ऐश्वर्या का लुक हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इस बार तो पिंक ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उनके इस पिंक गाउन को पिंक लीटर्स चार चांद लगा रहे थे। उनका ये लुक बेहद एलिगेंट और मॉडर्न लग रहा था। ऐश्वर्या के पिंक गाउन के साथ आराध्या की रेड ड्रेस ने भी कान्स फिल्म फेस्टिवल में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कान्स फेस्टिवल में इससे पहले ऐश्वर्या मिडनाइट ब्लू गाउन में बेहद खूबसूरत लगी। फैब्स को स्माइल और हैंड वेव करते हुए मरमेड गाउन में ऐश का स्टनिंग लुक फैंस को बेहद पसंद आया। पहले से स्लिम लग रही ऐश्वर्या ने अपने सिग्नेचर पोज में फोटोज क्लिक कराई। कांस के रेड कार्पेट पर फैब्स और फैंस को फ्लाइंग किस करते हुए और मुस्कुराते हुए हार्ट इमोजी बनाते हुए नजर आई। एक्ट्रेस ने गाउन को सेम कलर के दुपट्टे के साथ टीम अप किया। साथ ही साइड पार्टेड कर्ली हेयर्स और डायमंड इयररिंग्स के साथ ऐश्वर्या ने अपने लुक को शानदार बनाया। ऐश्वर्या कांस में साल 2002 से नजर आ रही हैं। तब से लेकर आज तक वो स्टनिंग ही लगी हैं। उन्होंने कांस के रेड कार्पेट पर अपने लुक्स को फ्लॉन्ट कर इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया है। वो हर साल अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं और फैंस ने भी उनके हर लुक पर अपना प्यार लुटाया है। ऐश्वर्या के साथ साथ इस बार आलिया भट्ट, जैकलिन फर्नांडिस और मौनी रॉय का लुक भी खासा चर्चा में रहा। बॉलीवुड की इन खूबसूरत हसीनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मों की दुनिया में हिंदुस्तान की दावेदारी को और मजबूत कर दिया। कांस फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जिसकी पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार करती है। ये फेस्टिवल इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा की कोई सरहद नहीं होती, कला, काबिलियत और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। कांस फिल्म फेस्टिवल सिनेमा से जुड़े दुनिया भर के सितारों का वो मेला है जो हर साल सिनेमा और फैशन को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फ्रेंच रिवेरा में सजे कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार एक छोटे रेस्क्यू डॉग यूरी ने सबका दिल जीत लिया। चिली की फिल्म ला पेरा में शानदार अभिनय के लिए यूरी को प्रतिष्ठित पाम डॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिल्म में यूरी एक अकेली महिला की सूनी जिंदगी में खुशियां और अपनापन लौटाता हुआ नजर आता है। बिना किसी बनावटी हरकत के उसकी मासूम मौजूदगी ने दर्शकों को भावुक कर दिया। सम्मान समारोह में निर्देशक डोमिंगा कैस्टिलो ने यूरी के साथ मंच साझा किया।
2: फ्रेंच रिवेरा का जश्न, लाल कालीन पर बेजुबान, कैमरों की लगातार चमक, दुनिया भर के बड़े कलाकारों की मौजूदगी। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में चर्चा सिर्फ बड़े सितारे की ही नहीं हुई, बल्कि एक छोटे से रेस्क्यू डॉग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस डॉग का नाम है यूरी, एक ऐसा मासूम साथी जिसने बिना बोले हर किसी का दिल छू लिया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में गिने जाने वाले कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार यूरी को पाम डॉग के खास सम्मान से नवाजा गया। ये अवार्ड उन खास डॉग्स को मिलता है जिनकी मौजूदगी फिल्म में नई जान डाल देती है। जैसे ही यूरी के नाम का ऐलान हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों ने मुस्कुराकर स्वागत किया। यूरी को ये सम्मान चिली की फिल्म ला पेरा में उनके शानदार अभिनय के लिए मिला। ये फिल्म डायरेक्टर्स फोर्थ नाइट सेक्शन में दिखाई गई, जहां नई सोच और अलग कहानियों को जगह दी जाती है। निर्णायक मंडल ने कहा कि यूरी का अभिनय पूरी तरह स्वाभाविक लगा। यही सच्चाई दर्शकों के दिल तक पहुंच गई है। सम्मान समारोह के दौरान निर्देशक डोमिंगा सोतो मायोर कैस्टिलो मंच पर पहुंची। यूरी को लाल रंग का खास कॉलर पहनाया, जिस पर सुनहरे अक्षरों में पाम डॉग लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Typical children's vitamins are basically candy in disguise. Some are filled with 2 teaspoons of sugar, unhealthy chemicals, and other gummy additives that growing kids should never eat. That's why Hiya created the Kids Daily Multivitamin, a chewable vitamin with 15-plus essential vitamins and minerals. Some kids' vitamins are filled with 5 grams of sugar, and sugar is known to contribute to a variety of health issues. Hiya is made with zero sugar and zero gummy additives, yet it tastes great and is perfect for picky eaters. Hiya is made with a blend of 12 organic fruits and veggies and helps support kids' immune systems, energy, brain function, mood, concentration, and more. It's also non-GMO, vegan, dairy-free, allergy-free, gelatin-free, and nut-free. Hiya is designed for kids 2 and up and sent straight to your door, so parents have one less thing to worry about. To receive 50% off your first order, go to hiyahealth.com/no-sugar. Go to hiyahealth.com/no-sugar and get your kids the full body nourishment they need to grow into healthy adults.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: हम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में फिट संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम के 75वें संस्करण का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, आरएसी की 12वीं बटालियन के जवान भी शामिल हुए। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और उल्लास के साथ जारी है चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20,76,000 के पार। शनिवार को करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ, कपाट खुलने के पहले ही दिन 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक। वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग श्रृंखला में उमड़ी भारी भीड़। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले, वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 मुंबई और राजस्थान के बीच होगा मैच, शाम 7:30 ईडन गार्डन्स में कोलकाता और दिल्ली के बीच भिड़ंत। कान की क्लोजिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय का जलवा, व्हाइट आउटफिट में लगी बला की खूबसूरत, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने की जमकर तारीफ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ने।
1: दिल्ली में सुबह सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर दौड़ लगाते नजर आए बड़ी संख्या में लोग, सुबह में सुहाने मौसम को उठाया लुत्फ। राजधानी में आज फिट संडे ऑन साइकिल्स प्रोग्राम के 75वें संस्करण का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। साइकिल रैली से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर कसरत की, आरएससी की 12वीं बटालियन के जवान भी शामिल हुए। गानों की धुनों पर कसरत करते नजर आए लोग का, फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश।

फिट संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी नजर आए, कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। अहमदाबाद में भी हुआ संडे ऑन साइकिल्स इवेंट, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और राज्य के मंत्री हर्ष सांग भी शामिल हुए। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर हुआ संडे ऑन साइकिल्स इवेंट, एक्टर आयुष्मान खुराना ने बढ़ाया लोगों का जोश। संडे ऑन साइकिल्स इवेंट में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं भी शामिल हुई, फिटनेस और सेहत के प्रति जागरूकता का संदेश। विजयवाड़ा में स्वच्छ आंध्र अभियान के तहत चलाया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप, राज्य के मंत्री अधिकारी और आम लोग शामिल हुए। एक महीने तक चलेगा आंध्र में ऑपरेशन क्लीन स्वीप, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गंगा दशहरा से पहले महाकालेश्वर मंदिर में उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लोगों ने पूजा पाठ किया। तेज गर्मी के बावजूद अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, जय श्री राम की जयकारे। हर दिन करीब 1 से 2 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं श्री राम मंदिर में दर्शन, गर्मी की छुट्टियों के अलावा गंगा दशहरा मनाने रामनगरी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था, सीआरपीएफ और दूसरी सुरक्षा बल तैनात। आस्था उल्लास के साथ जारी है चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20,76,000 के पार। चारों धामों में दर्शन करने के लिए लग रही है श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें, शनिवार को बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा 32,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। केदारनाथ में शनिवार को 29,700 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया, अब तक करीब 8,12,000 से ज्यादा दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में शनिवार को करीब 18,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे। यमुनोत्री धाम में शनिवार को 16,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, अब तक 3,56,000 का आंकड़ा पार। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पहले खुल गए कपाट, पहले ही दिन 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फूलों से किया गया गुरुद्वारे का श्रृंगार, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में पवित्र डुबकी लगाई। धूमधाम से गुरु ग्रंथ साहिब को हेमकुंड दरबार लाया गया, शब्द कीर्तन के बाद पढ़ी गई पहली अरदास। कपाट खुलने के दौरान भारतीय सेना और पंजाब बैंड की धुन पर गुंजायमान हुआ हेमकुंड साहिब। 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई वाली यात्रा करके श्रद्धालु पहुंच रहे हेमकुंड साहिब दरबार, विदेशों से भी आते हैं श्रद्धालु। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों की ओर बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग श्रृंखला में उमड़ रही है भीड़। बीते दिनों रोहतांग पास श्रृंखला और दूसरे हिल स्टेशन पर बर्फबारी से बदल गया नजारा। रोहतांग में अभी भी कई इलाकों में 10 से 15 फीट तक जमी हुई बर्फ, पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद। वीकेंड पर बड़ी तादाद में हिमाचल पहुंचकर मौसम का लुत्फ ले रहे हैं पर्यटक, कई इलाकों में बारिश बर्फबारी। भीषण गर्मी से बचने के लिए कुल्लू मनाली का भी रुख कर रहे हैं बड़ी संख्या में सैलानी, गाड़ियों की लंबी कतारें। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से बचाव करने के लिए हर स्तर पर किए जा रहे इंतजाम, जमशेदपुर के चिड़ियाघर में जंगली जानवरों के लिए विशेष सुविधाएं। जमशेदपुर के टाटा जू में हर जानवर के लिए अलग अलग व्यवस्था, शेर के पिंजरे में लगाए गए हैं कूलर। जमशेदपुर में करीब 45 डिग्री के पास पहुंच गया तापमान, जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए 2 बार नहलाया जा रहा है। टाटा जू में गर्मी से बचाव करने के लिए छोटे बड़े जानवरों के लिए बाड़े में रखा जा रहा है ठंडा ठंडा पानी, खाने पीने की भी चीजों में बदलाव हुआ। करीब 60 एकड़ में फैला है जमशेदपुर का टाटा जू, जंगली जानवरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं लोग। कुपवाड़ा में ऐतिहासिक टिथवाल वॉर मेमोरियल पर मनाया गया टिथवाल डे 2026। टिथवाल डे 2026 के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह ने पेश की उद्यमिता की मिसाल,
मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर कर रहे हैं कमाई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत लगाई गई मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट, लोगों को मिल रहा है रोजगार। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में जलीय परिंदों की बहार, सैलानियों के लिए माहौल हुआ शानदार। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, देश में मानसून समय से पहले दस्तक दे रहा है। जल्द केरलम में एंट्री ले सकता है मानसून, अल नीनो के प्रभाव के बावजूद मानसून की एंट्री समय से पहले। मौसम विभाग का अनुमान, 26 मई को केरलम पहुंच सकता है मानसून, चार दिन पहले या बाद में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जानकारी दी, मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है माहौल। केरलम के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने 6 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान तेज, अत्याधुनिक मेड इन इंडिया एयर प्यूरिफिकेशन तकनीकों का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। दिल्ली में कई जगहों पर लगाए गए हैं एयर प्यूरिफायर, हर घंटे करीब 3 लाख लीटर हवा को साफ करेंगे। मैदानी इलाकों में गर्मी के चलते पहाड़ों पर रुक रहे हैं सैलानी, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर दिखा आस्था का मेला। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पुलिस को मिली बड़ी तकनीकी मजबूती, हाईटेक का मोबाइल फोरेंसिक वैन की शुरुआत। हाईटेक मोबाइल फोरेंसिक वैन सीधे घटनास्थल पर ही शुरुआती फोरेंसिक जांच करने में सक्षम है, करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। ओरा वर्ल्ड टूर में अपने गीतों से दुनिया भर में जलवा बिखेरने के लिए सिंगर दिलजीत दोसांझ तैयार। तस्सीम जस्तर की पंजाबी फिल्म दस्तार का टीजर हुआ आउट, 1980 के दशक की सच्ची घटनाओं पर आधारित। पंजाबी फिल्म चढ़ती कला का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ, विमल ऑफ कौर और खालसा पर जीवन पर आधारित। इश्कनामा से सामने आया शहनाज गिल जय रंधावा का फर्स्ट लुक। कमल हसन ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचाने की अपील का समर्थन, ईंधन से जुड़े मौजूदा मुद्दों की बातचीत की सरकार को सुझाव भी दिए।

है जवानी तो इश्क होना है में दो हसीनाओं के बीच फंसे वरुण धवन। माधुरी दीक्षित ने मां बहन के ट्रेलर लॉन्च की शेयर तस्वीरें, येलो प्रिंटेड साड़ी में नजर आई खूबसूरत। टुल्लू रस्मों से हुई एक्ट्रेस रश्मिका तन्ना की खुद भराई, सुनहरी साड़ी में नजर आई। मुंबई में प्रसिद्ध गायिका और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के सुरों का चला जादू, भक्ति संगीत कॉन्सर्ट में शानदार गीतों ने बांधा सा। फीफा वर्ल्ड कप एंथम में दिखेंगी शकीरा, डाय डाय गाने से टूटेगा 16 साल पुराना रिकॉर्ड। कान के रेड कार्पेट पर बेटी आराध्या संग एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की एंट्री, 3.5 लाख की ड्रेस में लूटी लाइमलाइट। ऐश्वर्या और आराध्या के लुक में खींचा सभी का ध्यान, ब्लश पिंक गाउन में नजर आए। लाइट ऑन विमेंस वर्थ गाला के लिए फ्लोई गाउन में नजर आई ऐश्वर्या। बेटी आराध्या लाल गाउन और मैचिंग कैप में बहुत खूबसूरत नजर आई, ऐश्वर्या के साथ ग्रैंड एंट्री। ऐश्वर्या राय ने गुलाबी ग्लैम में सब कुछ चौंका दिया, सोशल मीडिया पर हुई वायरल। आईपीएल के 68वें मैच में पंजाब किंग्स की शानदार जीत, लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेटों से हरा दिया। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ की टीम ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 196 रन बनाए, जवाब में पंजाब की टीम 18वें ओवर में जीत गई। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार शतकीय पारी के लिए 51 गेंदों में 101 रन। लखनऊ की ओर से जोश गिस्सा ने सबसे ज्यादा 72 रन की पारी खेली, आयुष ने 18 गेंदों में 43 रन बनाए। पंजाब की ओर से मार्को यांसन और युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट भी चटके। आईपीएल में आज 69वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे लाइव। आईपीएल प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए राजस्थान के लिए अहम है ये मुकाबला, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है मुंबई। राजस्थान की ओर से बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन, इस सीजन में अब तक बना चुके हैं 589 रन। आईपीएल में आज 70वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने जा रहा है, 7:30 बजे लाइव। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में मैच जीतना हो गया जरूरी, पॉइंट्स टेबल में 13 पॉइंट्स के साथ छठे पायदान पर। स्थापना के 30 साल पूरे करने जा रही है भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यग्रहण एरोबेटिक टीम, 26 मई को कर्नाटक में होगा एयर शो। सूर्यग्रहण टीम अपनी सटीक और रोमांचक हवाई कलाबाजी के लिए प्रसिद्ध है, कम ऊंचाई पर बहुत करीबी में फॉर्मेशन उड़ान भरने में सक्षम। वायुसेना का राजदूत भी मानी जाती है सूर्यग्रहण की टीम। 27 मई 1996 को कर्नाटक के बेदर एयरफोर्स स्टेशन पर की गई थी स्थापना। पिछले 30 वर्षों में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एयर शो कर चुकी है सूर्यग्रहण की टीम, 800 से ज्यादा एयर डिस्प्ले दिखा चुकी है शौर्य। सूर्यग्रहण टीम ने चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी को दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, सिर्फ 22 दिनों के भीतर यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार। जम्मू श्रीनगर के बीच 2 मई से शुरू हुई थी वंदे भारत, घाटी के लोगों को मिल रही है बेहतर कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीषण गर्मी से राहत का इंतजाम, चौराहों पर लगाए गए हैं ग्रीन नेट और मिस्ट स्प्रे। उत्तर प्रदेश को रैया में गर्मी से पक्षियों को बचाने के लिए सराहनीय पहल, पेड़ों पर दाना और पानी की व्यवस्था। शिरडी पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साईं दरबार में दर्शन। साईं दरबार में राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पदयात्रा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। शोपियां में लोगों ने

0: यूनिट्स और ड्रोन निर्माता कंपनियों ने लिया हिस्सा। मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चीन तैयार, मिशन ज़ियुक्वान सैटेलाइट सेंटर से होगा लॉन्च। बांग्लादेश में ईद से पहले दुर्लभ सफेद भैंसा बना लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र, सुनहरे बालों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप दिया गया नाम। ढाका की एक फार्म में पाला गया दुर्लभ भैंसा, करीब 700 किलो के भैंसे के माथे पर लटकते सुनहरे बाल की वजह से नाम रखा गया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: देखिए, मौसम में बदलाव का रुख पहाड़ों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कश्मीर से हिमाचल तक इन दिनों पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसके कारण पारा लगातार गिर रहा है और सैलानियों के लिए ये मई में ही सैर सपाटे का शानदार मौका मिल गया है। हालांकि जोजिला और रोहतांग के इलाकों में सैर के लिए पहुंच रहे लोगों को सावधानी बरतने की भी हिदायत दी जा रही है। रिपोर्ट देखिए।

0: हर तरफ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी है, सड़कों से लेकर मैदानों और आशियानों तक हर तरफ बर्फ ही दिख रही है। इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है जैसे आप अंटार्कटिका में आ गए हों, लेकिन हकीकत में ये तस्वीरें कश्मीर की है। नॉर्थ कश्मीर में गुरेज की तुलैल वैली में इन दिनों ऐसा ही माहौल है। यहाँ बांदीपुरा को गुरेज घाटी से जोड़ने वाले राजदान टॉप इलाके में ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा क्षेत्र सफेद हो गया। इसके कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट आई है और पूरा इलाका जैसे विंटर लैंड बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण कश्मीर में इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है। मई के महीने में यहाँ आमतौर पर बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज अलग है। मौसम का ऐसा रुख जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहे बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। इस बीच चोजिंगला इलाके में भी भारी बर्फबारी हुई। रात के वक्त गिरते बर्फ के फाहे इलाके में बेहद मनमोहक माहौल पेश कर रहे थे। मौसम विभाग ने कश्मीर और लद्दाख में गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। इसके कारण हर तरफ माहौल भीगा भीगा नजर आया। इसके साथ ही धूप में मुरझा रहे पेड़ पौधों में भी हरियाली की रौनक वापस आ गई है। ऐसे माहौल में श्रीनगर आ रहे सैलानी डल झील में शिकारे पर सैर का मजा ले रहे हैं।
1: वेदर है, अच्छा है और एकदम ठंडा मौसम है, बारिश भी हो रही है। ऐसा अभी देखो विंटर के कपड़े लोगों ने पहने तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का सर।
2: एकदम बढ़िया है, क्लाइमेट यहाँ का एकदम बढ़िया आ रहा है, एकदम ठंडा मौसम है यहाँ पे।
0: कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी मौसम के बदले मिजाज की शानदार तस्वीर दिख रही है। शिमला में बीते दिनों तापमान लगातार 30 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा था, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। अब यहाँ बारिश हुई है तो तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। हल्की फुल्की ठंडक और सुहावने मौसम के बीच सैलानी यहाँ पर खूबसूरत माहौल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला ही नहीं बल्कि हिमाचल के दूसरे इलाकों में भी मौसम में बदलाव के कारण पारा गिरा है।
3: आज जो है दोपहर के जो हमारे टेम्परेचर्स हैं हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में 6 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है, जिनमें प्रमुख रूप से हमारा हमीरपुर में 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरा है, कालपा में भी -11 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हुई है, शिमला में लगभग 9 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं पर ताबो और बिलासपुर में भी 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट दर्ज की गई है।
0: हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास सहित आसपास के इलाकों में हिमपात के बाद यहां की वादियां सफेद बर्फ की चादर से ढक गई हैं और पूरा इलाका जैसे जन्नत में बदल गया है। रोहतांग की ठंडी फिजाओं और गिरती बर्फ ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। बर्फ से ढकी चोटियां और सर्द हवाएं पर्यटकों को रोमांच का अलग ही अनुभव दे रही है।
4: आज सुबह से रोहतांग दर्रे सहित जो आसपास के इलाके हैं वहां बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू मनाली के अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा।

0: के बाद यहाँ आए पर्यटक वो अब काफी खुश हैं क्योंकि इस तरह का मौसम के लिए वो यहाँ पे पहुंचे थे। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय ये कुल्लू का इलाका है, तो लोग जो हैं पर्यटक जो है वो खासकर जो नदी किनारे जो इस पूरे मौसम का जो लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों की बात करूं तो पहाड़ों पे अभी भी हल्की धुंध और हल्के अभी भी बादल जो है पूरे इलाके में छाए हैं।
1: यहाँ के कई इलाकों में हुई बारिश से स्थानीय लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं।
2: नौतपा आने से पहले ही बहुत गर्मी हो गई थी, अभी बारिश का मौसम रिमझिम बारिश हो रही है, इससे फसल में भी किसानों को फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा, घूमने फिरने का सैलानी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे।
3: सुबह से बारिश हो रही कुल्लू में और मौसम अच्छा है जी, जो कि लोगों ने फसल बीजी है, बीज रहे हैं कई, उसमें अच्छी राह मिलेगी। गर्मी भी बहुत अच्छी है, जाना उतनी गर्मी नहीं रही है जितनी की मतलब थी, उतनी नहीं है।
1: बहरहाल कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी को देखते हुए सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा, शिमला से विकास शर्मा और श्रीनगर से अष्टवाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक आज सुबह मौसम में बदलाव देखने को मिला। अचानक तेज हवा और बारिश से मौसम सुहाना हो गया, वहीं गुजरात में भी मौसम ने करवट ली तो लोगों को गर्मी से राहत मिली। रिपोर्ट देखिए।
5: आसमान में छाए बादल, तेज हवाओं के साथ बारिश की फुहारे शनिवार को सुबह सुबह दिल्ली और आसपास के इलाके में बड़ी राहत लेकर आई। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में पिछले कई दिनों से जारी तेज गर्मी के बीच मौसम का मिजाज अचानक बदला तो वीकेंड पर गर्मी से छुटकारे की उम्मीद परवान चढ़ने लगी। राजधानी के कई भागों में झमाझम बारिश हुई तो कुछ जगहों पर धूल भरी तेज आंधी ने मौसम का माहौल बदल दिया। मौसम विभाग ने इस सिलसिले में पहले अलर्ट भी जारी किया था।
6: तो 43 से 45 डिग्री का सितम झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लिए अचानक मौसम में बदलाव हुआ है और ऊपर बादलों का साया तो थंडरस्टॉर्म, जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि थंडरस्टॉर्म के साथ हवाओं के रौ अचानक से जो तापमान है वो 30 डिग्री के नीचे आ गया है। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है तो दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों पर बूंदाबांदी भी आपको मिलेगी और थोड़ी सी राहत जरूर इसे तापमान में मिलेगी।
5: मौसम विभाग और मौसम के जानकारों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने इस तरह करवट ली। बताया जा रहा है कि उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में सक्रिय हुआ था। इसके कारण दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिससे तेज गर्म हवाओं के बीच धूल भरी आंधी आई और हल्की बारिश भी हुई। इस दौरान कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 56 से 81 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई।
7: राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से मौसम काफी गर्म हो रहा था, चिलचिलाती हुई धूप निकल रही थी और पारा 45 डिग्री के पार जा रहा था, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। लेकिन आज शनिवार सुबह हुई बारिश के बाद लोगों को हल्की राहत मिली है, थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि काफी गर्मी थी।
5: हालांकि दिल्ली वालों के लिए गर्म से यह राहत मामूली रही क्योंकि कुछ समय बाद दिन चढ़ने पर फिर तेज धूप से गर्मी की पहले जैसी ही तपिश महसूस होने लगी। मौसम विभाग ने आने वाले कई दिनों तक तेज गर्मी की आशंका जताई है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए आगाह किया गया है। हालांकि हाल फिलहाल में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रात के वक्त गर्मी में कुछ कमी महसूस की जा सकती है। मौसम के बदलाव का असर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक में भी नजर आया। सुबह आसमान में बादल छाए और कई जगह हल्की हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही चली ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। पिछले कई दिनों से रोहतक में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा था।
8: पहले बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे भट्टी के अंदर तप रहा था, यहाँ पर इतनी लू चल रही थी बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था और इससे एकदम से चेंज हो गया, अभी बहुत राहत मिली।
9: गर्मी से राहत है, जो बहुत ज्यादा पारा चढ़ा हुआ था 45 डिग्री 47 डिग्री तक हमारा रोहतक का पारा पहुंच गया था, ये बारिश आने से कुछ ना कुछ उससे कम होगा, लोगों को बहुत राहत मिलेगी, लोग बाहर निकलेंगे।
5: इससे पहले शुक्रवार को गुजरात में जामनगर के कालावड़ इलाके में अचानक हुई बरसात ने माहौल बदल दिया। कालावड़ शहर और आसपास के इलाकों में दिन भर तेज गर्मी और धूप के बाद बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हुई। बहरहाल अभी मानसून आने में देर है, ऐसे में जगह जगह गर्मी से तपती धरती को बीच बीच में बारिश की झरोखों से तरावट मिलती रहे तो लोगों को सुकून रहेगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और आशुतोष कुमार के साथ रोहतक से सुरेंद्र सिंह और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: हाउ आर यू? प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉपिक।
12: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
13: Tunein's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
15: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
17: News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
24: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में फिट संडे ऑन साइकिल्स प्रोग्राम के 75वें संस्करण का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग RAC की 12वीं बटालियन के जवान भी हुए शामिल। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और उल्लास के साथ जारी चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20,76,000 के पार। शनिवार को करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ कपाट खुलने के पहले ही दिन 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक। वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग श्रृंखला में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले। वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 मुंबई और राजस्थान के बीच होगा मैच। शाम 7:30 ईडन गार्डन्स में कोलकाता और दिल्ली के बीच भिड़ंत। कान की क्लोजिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय का जलवा। व्हाइट आउटफिट में लगी बला की खूबसूरत सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नए युग का आगाज कर दिया है।

0: very, very good coffee.
1: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में जानी तो जाती हैं अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए, लेकिन समूचा यूरोप उन्हें आयरन लेडी मानता है। दरअसल मेलोनी का व्यक्तित्व संवेदना और फौलाद का अनोखा कॉम्बो है। डिप्लोमेसी को लेकर भी मेलोनी की सोच और समझ गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हालिया मेलोनी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

0: डिप्लोमेसी की दुनिया में मेलोडी के नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। 15 मई को 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में 20 मई को जब इटली पहुंचे, तो इटली और भारत का 8 दशक पुराना रिश्ता अचानक ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दरअसल साल 2000 के बाद किसी भी भारतीय पीएम का इटली का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक गिफ्ट पैक दिया। आप कह सकते हैं कि किसी एक देश के पीएम द्वारा किसी दूसरे देश के पीएम को दिया जाने वाला ये शायद सबसे सस्ता गिफ्ट था, लेकिन इस सस्ते गिफ्ट को मेलोनी ने जिस तरह से ग्लैमराइज किया, उससे भारत और इटली के बीच के प्रगाढ़ होते संबंधों की मुनादी पूरी दुनिया में हो गई। मेलोनी ने मेलोडी टॉफी के गिफ्ट पैक को लेकर पीएम मोदी के साथ मात्र 11 सेकंड का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और महज 6 घंटे में ही मेलोडी डिप्लोमेसी के इस वीडियो को करीब 11 करोड़ व्यूज मिल गए।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
0: आपको बता दें कि मोदी, मेलोनी और मेलोडी के सोशल मीडिया इम्पैक्ट का अपना एक खास पसे मंजर है, पृष्ठभूमि है। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये लफ्ज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। यूरोप की आयरन लेडी मेलोनी का ह्यूमर किस लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मोदी और मेलोनी पिछले 3.5 वर्षों में अलग अलग सम्मेलनों में कुल 7 बार मिल चुके हैं, लेकिन बीते 20 मई को इटली की राजधानी रोम में हुई मुलाकात डिप्लोमेसी के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी के इटली पहुंचने से लेकर वतन वापसी के लिए टेक ऑफ करने तक मेलोनी ने मोदी के साथ बिताए एक एक पल को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। सबसे पहले मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत किया। उसके बाद एक ही कार में बैठकर दोनों नेता रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। खास बात यह है कि कोलोसियम रोम का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के गौरवशाली कालखंड में बनाया गया था। प्राचीन रोम में इस स्टेडियम में जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित की जाती थीं। साफ है कि 2000 साल से इसका वजूद बरकरार है, जिसकी वजह से इसे रोमन साम्राज्य की ताकत और इंजीनियरिंग के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसी स्टेडियम की अलग अलग लोकेशन से मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कमाल ये है कि दुनिया मोदी मेलोनी की इन तस्वीरों में उलझी हुई थी, उसी दौरान इटली और भारत के रिश्तों का सबसे मजबूत दस्तावेज तैयार हो रहा था। पीएम मोदी के दौरे के आखिर में जब दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब दुनिया को पता चला कि इन लाइटर मोड वाली तस्वीरों के पीछे कूटनीति की कितनी गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मेलोनी ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन यूरो से बढ़ाकर साल 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, एयरोस्पेस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधार्थियों और ट्रेंड प्रोफेशनल्स के इटली में जाकर काम करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक पहल तैयार करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खास बात यह है कि कूटनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही मेलोनी के मन में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गहरा सम्मान है।
1: As we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our central old cultures develop a dialogue and make them more and more connected.
0: मेलोनी वैश्विक मंचों पर बेशक अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ बहुत गहरी है। सबसे खास ये है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का वे तहे दिल से सम्मान करती हैं। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिंदी के एक मशहूर कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है का स्टाइलिश इस्तेमाल किया।
1: Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying, Parishram hi safalta ki kunji hai.
0: भारतीय संस्कृति के साथ अपने लगाव को मेलोनी समय समय पर प्रकट करती रही हैं। पिछले महीने 24 अप्रैल को मेलोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक सेल्फी शेयर की जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का झुमका पहने नजर आईं। फॉर्मल आउटफिट में झुमका पहने मेलोनी बिल्कुल भारतीय नारी की तरह नजर आ रही थी। जून 2024 में इटली में आयोजित G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारतीय संस्कृति के प्रति मेलोनी के लगाव की झलक देखने को मिली थी। G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत सनातनी अंदाज में नमस्ते करते हुए किया था। बतौर मेजबान भारतीय प्रतिनिधियों का नमस्ते के साथ स्वागत तो कूटनीतिक मेजबानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेलोनी पिछले साल जब यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका के दौरे पर गईं, तो वहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए ही मिलीं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मिलने की मेलोनी की तस्वीरें भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी।
2: राजनीति मेलोनी को विरासत में नहीं मिली, ना ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सियासी गलियारे में आसानी से एंट्री मिल जाती। इतना ही नहीं, मेलोनी जब एक साल की थी तो उनके पिता ने दो बेटियों और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। मेलोनी को बचपन बेहद मुश्किलों भरा मिला। पेट भरने के लिए इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेहद कम उम्र से छोटे मोटे काम करने पड़े, यहाँ तक कि इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर की भी नौकरी की। बेहद दिलचस्प है, एक बार टेंडर से पीएम बनने तक का ये सफर।

0: लहरों के साथ मिलकर नौका पार करने का हुनर तो हर आमो खास के भीतर होता है, लेकिन इतिहास के अनमोल पन्नों पर रोशनाई की चमक उन्हीं की रंग लाती है जो धारा के विपरीत तैरने का दम रखते हैं। जीवन की दुर्धर्ष धाराओं को चीर कर कामयाबी के अलभ्य किनारे तक पहुंचने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया को अगर यूरोप की आयरन लेडी कहा जाता है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी पूरे विश्व की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अजस्र स्रोत हैं, क्योंकि इस महिला ने हालात से लड़कर तमाम बाधाओं को परास्त कर संघर्ष के रथ पर सवार होकर इटली के सर्वोच्च पद का सफर तय किया है। पहली बार 2021 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने एक जगह लिखा है,
1: मेरा कभी ये मानना नहीं रहा कि एक महिला को केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। राजनीति किसी जेंडर विशेष की अमानत तो नहीं, बल्कि सभी के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अगर मेरी जैसी किसी महिला को कहा जा रहा था कि संतान की हसरत है तो एक तरफ हो जाओ, तो कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली गर्भवती युवती के लिए क्या उम्मीदें रखी जाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे व्यवधान नहीं है, बल्कि व्यवधान को पार करने में हमारी मदद करते हैं।
0: काबिले गौर है कि अपनी आत्मकथा में महिलाओं के अधिकारों का मुखर समर्थन करने वाली मेलोनी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित होने के करीब एक साल बाद ही इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का मेलोनी का सफर दुश्वारियों और कठिनाइयों से लड़ने की अनूठी दास्तान है। कभी वैश्विक सभ्यता के केंद्र बिंदु रहे रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई जॉर्जिया मेलोनी के अपनी मां के गर्भ में आने के बाद से ही दुश्वारियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। दरअसल मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना उपन्यासकार। ये परिवार रोम के एक पॉश इलाके कैमिल्यूचिया में रहता था, लिहाजा आर्थिक तंगी तो नहीं थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के पहले से ही पिता फ्रांसिस्को और मां अन्ना के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने लिखा है,
1: जब मैं गर्भ में थी तो घर के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मां ने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया। इसके लिए वो हॉस्पिटल भी चली गई, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। मैं अपनी मां और उनके साहस की ऋणी हूं। अगर उन्होंने तब साहस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं इस दुनिया में आती ही नहीं।
0: काबिले गौर है कि मेलोनी के जन्म के बाद उनके माँ पिता के बीच पहले से ही खराब रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सेपरेशन की नौबत आ गई। मेलोनी बमुश्किल एक साल की थी तब साल 1978 में फ्रांसिस्को पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। मां अन्ना के कंधों पर अपना गुजारा करने के साथ ही एक साल की जॉर्जिया मेलोनी और 2.5 साल की एरियाना मेलोनी की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी। नॉवेल राइटर अन्ना कलमकारी से इतने पैसे कमा लेती थी कि दोनों बच्चियों की परवरिश ठीक से हो जाए। विधाता जब किसी को आसमानी मकाम अता करने वाला होता है तो पहले उसका कड़ा इम्तहान लेता है। जॉर्जिया जब 3 साल की हुई तो एक नामुराद घटना ने जिंदगी की दुश्वारियों में एक और बड़ी परेशानी का तड़का लगा दिया। वाकया साल 1980 का है। 3 साल की जॉर्जिया अपनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थी। दोनों की उम्र इतनी नादान थी कि व्यवहारिक जीवन में आने वाले खतरे का जरा भी इल्हाम नहीं था। दोनों बहनों ने एक ऐसी गलती कर दी कि घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी बहन एरियाना ने कहा था,
1: मैंने और जॉर्जिया ने लड़कपन वाले कौतूहल में लाइट नहीं जलाने का फैसला किया। लाइट के विकल्प के तौर पर हमने मोमबत्तियां भी जला ली। ना समझी ऐसी थी कि हम दोनों ने जलती हुई मोमबत्तियों को रजाई और खिलौनों से ढक लिया और पूरी बेफिक्री के साथ कार्टून देखने चले गए। उसके बाद तो पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
0: आग में घर का सारा सामान जल जाने के बाद मेलोनी की मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत नया सामान खरीद लें। लिहाजा वो दोनों बेटियों को लेकर रोम के गरबा टेला स्थित अपने मायके शिफ्ट हो गईं। मायके में भी इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आराम से रह सकें, लिहाजा मेलोनी और उनकी बहन को लंबे समय तक फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। इतने संकट और संघर्ष के बीच बचपन बीता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जॉर्जिया के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इसीलिए मेलोनी की ग्रेजुएशन करने की हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से मेलोनी ने काफी कम उम्र से ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। कुछ समय उन्होंने सीडी बेची, यहाँ तक कि क्रैच में बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे नामचीन नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। साल 2013 में अपने संघर्षपूर्ण अतीत को भारी मन से याद करते हुए मेलोनी ने जो कहा था उसे सुनकर आपकी मानवीय संवेदना झंकृत हो जाएगी।
1: मैंने जीवन का ककहरा संसद में आकर नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है।
0: दरअसल जॉर्जिया मेलोनी अपने शुरुआती दिनों से ही मानवीय मूल्यों और इटली की गौरवशाली परंपरा की पैरोकार रही हैं। उनकी विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रवादी भावना से लबरेज रही है। वामपंथी विचारधारा की पुरजोर मुखालिफत उनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। शायद यही वजह है कि महज 15 साल की उम्र में इटली की उस MSI पार्टी से जुड़ गईं, जिसे इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थकों ने 26 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी को मुसोलिनी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं रहा। हालांकि 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी के राजनीति में कदम रखने के पीछे एक ऐसी दर्दनाक घटना का हाथ था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। हुआ ये कि 19 जुलाई 1992 को प्रमुख इतावली मजिस्ट्रेट पाओलो बोर्सेलिनो को माफियाओं ने उनके 5 सुरक्षा कर्मियों समेत एक विस्फोट में उड़ा दिया, क्योंकि पाओलो बोर्सेलिनो माफियाओं के खिलाफ मामलों की सख्ती से सुनवाई कर रहे थे। इस घटना के बाद 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली की संसद में अपने पहले भाषण में 25 अक्टूबर 2022 को उस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा था,
1: मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमिलियो नरसंहार के बाद अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इस नरसंहार में माफियाओं ने जस्टिस पाओलो बोर्सेलिनो को उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसी समय मैंने तय कर लिया कि खामोश रहकर सब कुछ सहन करते रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है।
0: 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम झंझावातों और संघर्षों को पार करते हुए आखिरकार 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया अगर अगले 3 महीने तक PM बनी रही तो 1948 के बाद इटली की लॉन्गेस्ट सर्विंग PM बनने का तगमा भी उन्हें हासिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इटली में 1948 के बाद से अब तक 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी एक सरकार की औसत उम्र महज 16 महीने रही है, जबकि मेलोनी पिछले 43 महीनों से लगातार अपने देश की सेवा कर रही हैं।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
6: It's your boy,
5: just
6: Jay-Z.
5: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: कौन सी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं? शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में फिट संडे ऑन साइकिल्स प्रोग्राम के 75वें संस्करण का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। आरएसी की बर्फी बटालियन के लिए जवान भी शामिल हुए। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और उल्लास के साथ जारी है चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20,76,000 के पार। शनिवार को करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ, कपाट खुलने के पहले ही दिन 6,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक। वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग श्रृंखला में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले। वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे मुंबई और राजस्थान के बीच होगा मैच। शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में कोलकाता और दिल्ली में होगी भिड़ंत। कान की क्लोजिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय का जलवा, व्हाइट आउटफिट में लगी बला का खूबसूरत सोशल मीडिया पर नहीं वायरल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे कि शनिदेव की कृपा से आपको धन का लाभ कैसे हो सकता है और शनि आपको धनी कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक अचूक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन की मुश्किल है, धन की समस्या है, तो शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की पूजा करके आप अपनी धन संबंधी मुश्किल को कैसे दूर कर सकते हैं। शनि का धन के मामलों से क्या संबंध है? देखिए, शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का कारक है और आपके कर्मों का फल देने वाला ग्रह है। आपके कर्म के अनुसार आप धनवान होंगे या आप दरिद्र होंगे, ये निर्धारण जीवन में शनि देव ही करते हैं। और शनि की विशेष स्थितियों से धन की प्राप्ति सरल भी हो सकती है और कठिन भी हो सकती है। शनि अगर कुंडली में फेवरेबल है तो धन आसानी से मिलेगा, और अगर निगेटिव स्थान पर है, नकारात्मक सिचुएशन में है, तो धन पाना आपके लिए कठिन होगा। देखिए, शनि की जो महादशा होती है वो लगभग चलती है 19 साल तक। तो अगर शनि निगेटिव है कुंडली में तो 19 साल तक धन के लिए कष्ट होगा, लंबे समय तक आपको तकलीफ भोगनी पड़ेगी, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर शनि नकारात्मक है, निगेटिव है कुंडली में, तो जब आपकी 7:30 चलेगी या जब आपकी ढैया चलेगी तो उस समय में आपकी दरिद्रता बढ़ेगी, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि कुंडली में योग बड़े अच्छे हैं, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद आपके कर्म शुभ नहीं हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो शनि जीवन में धन की बहुत हानि करवाता है। यानी धन होगा या नहीं होगा ये प्रारब्ध तो है ही, उसके अलावा आपके अपने कर्म भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आप जीवन में धनवान होंगे या दरिद्र होंगे। मेष राशि।
आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं या आपके बहुत सारे कर्म ऐसे हो सकते हैं जब आपको धन की मुश्किल हो, धन की कठिनाई आपको परेशान करे। अगर शनि कुंडली के अशुभ भाव में बैठा है, शनि कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है तो ये धन की मुश्किल पैदा करेगा। अगर शनि नीच राशि में बैठा है और उसका नीचत्व भंग नहीं हुआ है, या सूर्य के साथ बैठा है और शनि की स्थिति ज्यादा निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में भी शनि आपके लिए धन की हानि करवाएगा। अगर कुंडली में प्रतिकूल शनि है, शनि की स्थिति खराब है और शनि की साढ़े साती चले या ढैया चले, तो धन को लेकर के, पैसे रुपए के मामले को लेकर के जीवन में दिक्कतें होंगी। अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, अपने मन से के मामले को लेकर के जीवन में दिक्कतें होंगी। अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, अपने मन से आपने शनि का रत्न नीलम पहन लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी धन का बड़ा नुकसान हो सकता है, धन की बड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध ना हो, उसकी आदतें अच्छी ना हो, उसका खान पान, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर करता हो, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता हो, तो ऐसी स्थिति में भी धन की कठिनाई, धन की मुश्किल आपको परेशान करेगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कन्या राशि, दुर्घटना से सावधान रहें, परिवार में विवादों से बचें, करियर के मामले में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, इस समय आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, शनि की बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब शनि आपको धनवान बना देता है, जीवन में धन देता है। कब ऐसा होता है? अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो, तीसरे, छठे या ग्यारहवें भाव में बैठा हो और फेवरेबल सिचुएशन में हो, तो व्यक्ति को शनि की वजह से जीवन में धन मिलता है। अगर कुंडली में शनि उच्च राशि में बैठ जाए, फेवरेबल हो जाए, अनुकूल हो जाए, या अपने घर में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन अवश्य मिलता है। अगर कुंडली में शनि बहुत बढ़िया हो, विशेष अनुकूल हो, शनि की महादशा चले, शनि की साढ़े साती चले, शनि की ढैया चले, अगर ऐसा हो जाए तो शनि की महादशा में, साढ़े साती में, ढैया में व्यक्ति को अपूर्व धन मिलता है, व्यक्ति के धन के भंडार भर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, अच्छा आचरण हो और उसका आहार सात्विक हो, पवित्र भोजन, पवित्र आहार हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन बहुत मिलता है। अगर किसी व्यक्ति पर उसके माता पिता का या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो शनि की कृपा होगी और आप कष्ट से बचे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव या भगवान कृष्ण का भक्त है, या कुछ स्थिति में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का भी भक्त है, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या हनुमान जी, अगर कोई व्यक्ति इनका भक्त है, इनकी पूजा करता है, तो शनि के नकारात्मक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, व्यक्ति को धन और सम्मान दोनों वैसे भी मिल जाते हैं। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखें, कोई बड़ा निर्णय अभी ना लें, रिश्तों की समस्या से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी,
संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नौकरी का सीधा मतलब होता है शनि। आप कोई भी रोजगार करें, कोई भी नौकरी करते हो, बिना शनि कृपा के नौकरी संभव नहीं है। तो आप ऐसा क्या उपाय नियमित रूप से करें कि नौकरी में समय पे इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो, आपको सफलता मिले, क्या उपाय करेंगे? अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो शनिवार को पहले हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा और परिक्रमा के बाद कम से कम 108 बार शनि देव के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा और जब मंत्र जप कर लें तो किसी निर्धन व्यक्ति को क्वाइंस या सिक्कों का दान करिएगा। 20 का सिक्का हो, 50 का हो, वो मटेरियल नहीं है, कोई भी क्वाइन हो, आप 1 चाहें 2 चाहें 10 चाहें जितने भी क्वाइन चाहें आप दान कर सकते हैं। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं और ये उपाय आप लंबे समय तक करते हैं तो नौकरी पाना आपके लिए सरल होगा। अगर आप धन संबंधी समस्या तुरंत दूर करना चाहते हैं, तुरंत हटाना चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। रोज

श्री पिपाजी महाराज चीरधर के पास गए। जो चीरधर जी थे उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी भक्ति मता, और वो इतने भक्तवान थे दोनों कि अपनी पूरी संपत्ति साधुओं के भंडारे में लुटा दी। अब कोई महात्मा पहुंचे तो वो उधार मांगे, तो जब तक लोगों को लगे कि ये चुका देंगे तो लोग उधार दे देते थे, पर एक सीमा होती है, जब लगा कि अब ये चुकाएंगे नहीं तो उधार कौन देवे, बंद कर दिया लोगों ने उधार देना। तो पिपाजी और इनकी पत्नी पहुंच गई उनके घर, उनके घर पर अन्न का दाना नहीं, पहली बार मुलाकात, परिचय तो था नहीं, पर साधु घर पर आए भूखा चला जाए। तो चीरधर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज क्या अतिथि को संत को खवाएंगे। पत्नी बोली, महाराज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा है, क्या किया जाए। बोले एक काम करो, धन सब चला गया, मेरा सोना भी चला गया, यहां तक कि आपने मेरी साड़ियां भी गिरवी रख दी, अब मेरे पास दो चीजें बची, क्या मेरे तुम बाल काटो, बाल की जोटी बनाकर किसी सेठ को दो, कुछ तो मिल जाएगा। कैसे काटे, तो एक नुकीली चीज देखी, अंधेरे में बालों को काटा पत्नी के, कहीं खून बह गया, कहीं वो नुकीली चीज लग गई, पर पत्नी का, स्त्री का सिंगार बाल है, केस, स्त्री का सिंगार केस है, पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया, सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा, सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्दी से लेके आ, थोड़े से चावल मिले लेके आए, पर उतने में चलेगा क्या, शाम का भोजन कैसे होगा। तो पत्नी ने कहा, एक उपाय है, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो, पर तुम कैसे रहोगी। मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी, पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। चीरधर की आंखों में आंसू आ गए, पत्नी के चरणों को पकड़कर बोले, तू धन्य है, बड़ी धन्य है, मैंने बहुत देखे, पर तू मेरी अंधांगिनी धन्य है, धन्य है। चीरधर जी

पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकाल कर सेठ को बेच, पूरे कपड़े निकाल कर सेठ को बेच दिए और लाए चावल। चावल लेकर के आए, इधर चीरधर की पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे। चावल बनाया तो चावल बनाकर पीपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए। तो पीपाजी ने कहा कि भक्तराज तुम्हारी कुछ देर पहले पत्नी दिख रही थी, अब तुम उसको भी बुला लो, वो भी साथ में प्रसाद पाले हुए भोजन कर ले। तो चीरधर जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान क्षमा करो क्षमा करो, वो बाद में पालेगी, आप पाओ वो पालेगी। नहीं नहीं नहीं, हमारी आदत है, हम सब बैठ कर भोजन करते हैं, तुम बुलाओ उसको। चीरधर कहते, भगवान वो नहीं आ पाएगी। पीपा जी ने डांटते हुए अपनी पत्नी को कहा कि जाओ तुम ले आओ। चीरधर गली में खड़ा हो गया, मत जाओ अंदर, एक तरफ हो, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी साथ में नहीं बैठी। क्या हुआ, आवाज भी नहीं आ रही, कहां गई? पीपा जी की पत्नी अंदर गई तो कोने में लुकी छिपी रो रही पकड़ी, क्या बात है, ये तुम्हारे कपड़े कहां गए, कपड़े कौन ले गया? चीरधर की पत्नी कहती है, बहन हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं था, आपका भोजन कैसे कराएं, तो हमने अपने कपड़े ही बेच डाले। पिताजी महाराज की पत्नी सीता सहचरी की आंख फट गई, दहाड़ कर रो पड़ी, धन्य है तू धन्य है, जो कौपीन जो वस्त्र पहन रखा था वो आधा कपड़ा शरीर को लपेट दिया, प्रणाम करके चीरधर को कहा, हमने बहुत साधु से भी देखे पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा। भगवान आपको बताएं, ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार शरीर हमारा ठिकाने नहीं रहा। बाद में चीरधर को भी ठाकुर के दर्शन हुए और पीपा जी को भी गोविंद के दर्शन हुए। जब संतों की जमात बैठी भोजन पाने, चार पांच और महात्मा आ गए, रोज की आदत थी भंडारे की, और जहां भोजन पाने महात्मा बैठे और प्रसाद लगाया, उन्हीं बीच में चतुर्भुज लूप लेकर के नारायण खड़े हो गए, चीरधर बुलाओ अपनी पत्नी को, आज का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया हूं। गोविंद भी कहते कि मैं धन्य हो गया हूं। साधु हमने कहा ना, गुरु कृपा जिस पर हो जाए, गोविंद को वो फक्करपन में भी पा सकता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में संपत्ति या पदार्थ हो, ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में पदार्थ हो तो गोविंद मिलेंगे। तुम्हारे पास जो है वो भगवान को समर्पित करो, भगवान उसमें भी तुमको दर्शन देंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी हम लोगों ने ली गुरु कृपा के ऊपर। हम तो क्या बताएं अब आपको, हमने तो जो भी पाया ना, सच बताएं जो भी हमने पाया वो गुरु कृपा से ही पाया है। लोग हमारे पास आते हैं कि आपके पास में है क्या चमत्कार, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आपके पास सिद्धि क्या है, आप ये ऐसे चमत्कार क्यों कर देते हैं। सच बताएं ना, हम तो इन संतों के कारण ही कर देते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, कोई तपस्या नहीं हमारी, पढ़े लिखे भी नहीं, भजन बल भी नहीं कि माला हो। हमारे पास तो एक ही है, इनका हाथ है, जब भी दरबार में बैठते हैं तो इन लोगों को याद कर लेते हैं, महात्माओं को, कि हम बैठ रहे हैं, नाक हमारी नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नाक आप लोगों की कटनी बचा ले। इन महात्माओं का तपोबल हमको बचा लेता है। आपसे भी हम कहेंगे, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कोई काम करना हो, गुरु को याद करके कह दिया करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, और गुरु जो आज्ञा दें उसको सर्वोपरि मान करके अगर चलोगे तुमको भी भगवान की प्राप्ति होगी, इसी युग में इसी समय आपको प्राप्ति होगी, इसमें किंचित मात्र

रामचरितमानस के दो पात्र हैं, एक अंगद का और एक जटायु का। रामायण के दो पात्र, एक अंगद का पात्र, एक जटायु का पात्र। जटायु का पात्र रावण से हार गया और अंगद जी उसी की लंका में उसी के सामने पैर जमा कर जीत गए। रावण की लड़ाई लंका में, उसी के राज्य में जटायु का, जटायु भारत में हार गए पर लंका में अंगद का पैर जीत गया। दोनों के पात्रों का अगर बारीकी से आप परिचय लोगे तो जटायु अपने बल पर लड़ा इसलिए हार गया, पुरुषार्थ के बल पर जटायु लड़ा इसलिए हार गया, अंगद जी प्रसाद के बल पर पैर रखते हैं तो अंगद जीत गए। अगर तुम अपने बल पर जियोगे तो तुम हारोगे ही हारोगे, जीत नहीं सकते, नेवर नो। और अगर तुम गुरु के बल पर जियोगे तो तुम जीतोगे ही जीतोगे, हार नहीं सकते हो। लाखों ताकते तुम्हें हाराने लग जाएं, हमारे पीछे लाखों ताकते लगी हैं और लगी रहेंगी, पर गुरु बलवान है तो चेला पहलवान। इसलिए हमें

0: Oh, hey, friends. This sale's for you. The DSW Friends and Family event is on. DSW VIP members get 25% off almost everything in stores and online for a limited time. Don't miss out. This only happens twice a year. Not a VIP? You're still family to us. Join for free to get in on the savings. Plus, VIPs always get free shipping on anything. Save on must-own shoes today when you shop the DSW Friends and Family event at your DSW store or DSW.com.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
3: La Que Buena.
2: ESPN Radio.
4: We know LeBron has to be the best player on the planet to
2: have. The Daily.
5: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूं। फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
20: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
21: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
22: It's my music and it's my station.
21: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
23: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
24: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
24: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
24: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
24: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
24: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
26: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
27: राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में फिट संडे ऑन साइकिल्स प्रोग्राम के 75वें संस्करण का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। आरएसी की बर्फी बटालियन के लिए जवान भी शामिल हुए। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और उल्लास के साथ जारी है चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20,76,000 के पार। शनिवार को करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ, कपाट खुलने के पहले ही दिन 6,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए।
26: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे, वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एविनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवीवेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है उसमें। होता बेसिकली ये अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर। और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती
0: है। AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ऐसे रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम AESA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: AESA दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले भी लगा है। पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेल पार्ट रहा है और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो है वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMCA में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्रा टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल्स हैं वो भी लग सकती हैं, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनेमिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना, जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे

0: अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें, ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है, और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता है।
1: आने वाले वक्त में भारत फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार करने का, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के 3 देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, और ये 3 देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास 2 तरह के 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी 2 तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35, जबकि रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है, तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
0: स्ट्रेट अवे ये देखें कि दुनिया में किसके पास सेल टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो यूएस उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टुडे ये 3 ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं जो इस स्टेल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन्स हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर

0: बीजिंग ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है, जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें रफेल दे रहा है और न सिर्फ रफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रो की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
0: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा तकनीक और जियोपॉलिटिकल हिसाब से अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में देखा गया है कि फ्रांस भारत का एक बहुत ही करीबी और भरोसेमंद दोस्त बन के उभरा है, जो कि पहले रूस हुआ करता था। यानी कहा जा सकता है कि अब भारत के पास दो दो विश्वसनीय दोस्त हैं, एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ फ्रांस है। फ्रांस की डसॉ एविएशन कंपनी से 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। ये डील भारतीय वायुसेना की ताकत को 50% तक बढ़ा देगी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने राफेल फाइटर जेट खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी का इंतजार है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक होता है तो ये डील भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। प्रस्तावित राफेल डील की कुल लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है, यानी लगभग $26 अरब, जो इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बनाता है। समझौते के तहत कुल 114 राफेल लड़ाकू विमानों का F4 वर्जन खरीदा जाएगा, जिनमें से 12 से 18 विमान पूरी तरह से तैयार हालत में फ्रांस से सीधे भारत लाए जाएंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, वहीं नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन का ऑर्डर भी दिया गया है। अब जब वायुसेना के लिए 114 राफेल का सौदा अंतिम रूप ले रहा है तो भारत के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे।
1: भारत और फ्रांस के बीच में 114 राफेल विमानों के लिए एक संभावित कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, जिसके तहत शुरुआती दौर में 18 राफेल विमान बने बनाए रेडीमेड फ्रांस से इंग्लैंड में आएंगे और बाकी जो 96 राफेल विमान है वह भारत में निर्मित होंगे और फ्रांस इसके लिए भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा कलपुर्जे भारत में जो बनेंगे 60% बनेंगे, 40% कलपुर्जे फिर भी फ्रांस से आएंगे। यानी अगर ये राफेल विमान भारत में आते हैं और जाहिर बात है वो अगले 30-40 साल तक उड़ेंगे, तो 40% कलपुर्जे जिनमें कि इंजन होगा, रडार होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम के पंप होंगे, ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो फ्रांस से ही आएंगे।
0: एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में 114 राफेल जेट की मांग रक्षा मंत्रालय को भेजी थी। खबर यह है कि राफेल फाइटर जेट का सौदा मेक इन इंडिया मिशन के तहत किया जाएगा। डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएगी। भारत का कहना है कि फ्रांस तमाम 114 राफेल फाइटर जेट्स में गोला बारूद मिसाइलों को इंटीग्रेट करे और साथ ही साथ इसका पूरा डेटा भारत के साथ साझा करे, ताकि इसे रडार सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सके। विमानों के सोर्स कोड को लेकर बातचीत हो रही है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ये सोर्स कोड क्या है। दरअसल सोर्स कोड एक तरह से फाइटर जेट का दिमाग होता है और उसी से तय होता है कि रडार कैसे काम करेगा, कौन सी मिसाइल लगेगी और सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव हो सकता है। अगर सोर्स कोड आपके पास नहीं है तो आप विमान बनाने वाली कंपनी या फिर उस देश पर निर्भर रहते हैं। भविष्य में किसी देसी हथियार या सिस्टम को जोड़ने के लिए भी आपको उनकी अनुमति की जरूरत पड़ती है।
1: सोर्स कोड जो है कंप्यूटर की वह कोड प्रणाली है जिसका इस्तेमाल करना पड़ता है अगर जहाज के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे नेविगेशन सिस्टम या वेपन डिलीवरी कंप्यूटर, उनको अगर मॉडिफाई करना हो, उनको अगर अपग्रेड करना हो तो सोर्स कोड की जरूरत पड़ती है। अगर फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा तो फिर भविष्य में जब भी हम भारत में उसको अपग्रेड करना चाहेंगे और समझिए मेड इन इंडिया मिसाइल या मेड इन इंडिया बॉम्ब्स रॉकेट फायर करना चाहेंगे, तो उसके लिए जो वेपन सिस्टम का जो कंप्यूटर है उसको अपग्रेड करने के लिए फ्रांस से किसी इंजीनियर को आना पड़ेगा जो आके हमारी सोर्स कोड को सेट करेगा, उसके बाद ही हम भारत के मिराज, भारत के रफाइल से भारत में निर्मित हथियारों को फायर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा दुनिया में प्राय सभी फाइटर विमान के कॉन्ट्रैक्ट्स में किया जाता है। फ्रांस अगर हमें सोर्स कोड नहीं देता है तो ये कोई खास उत्पीड़न वाली या खास चिंता वाली बात नहीं है।
0: माना जा रहा है कि कंपनी एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देगी, साथ ही ज्यादा तादाद में एक ही प्लेटफॉर्म होने से राफेल के रखरखाव की लागत भी कम हो जाएगी। भारत में बनने वाले विमानों में स्वदेशी कम्युनिकेशन सिस्टम फिट किए जाएंगे। इसमें विमान के लिए नेत्रा और फाल्कन AWACS लगेंगे। वहीं ग्राउंड बेस्ड रडार और ICCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ बेहद सुरक्षित तरीके से रियल टाइम टैक्टिकल डेटा एक्सचेंज कर पाएगा। राफेल के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी सर्वाइवेबिलिटी और रिलायबिलिटी, जो राफेल को दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। चर्चाएं इस बात को लेकर होने लगी जब हमारे पास फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट अमेरिका का F-35 और रशिया का Su-57 है, तो फिर हम 4.5 जेनरेशन के फाइटर जेट को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब सीधा और साफ है और कहें कि रणनीतिक तौर पर ही इसका जवाब तलाशा गया, जिसके बाद राफेल को चुना गया, क्योंकि भारत का निशाना केवल इस्लामाबाद नहीं है बल्कि भारत का निशाना बीजिंग है। दशकों तक भारत की रक्षा खरीद का पैमाना ये होता था कि क्या ये पाकिस्तान के F-16 से बेहतर है, लेकिन राफेल डील इस मानसिकता के अंत की घोषणा है। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना अब चीन के J-10C और JF-17 पर निर्भर है, जिनसे निपटना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। असली चुनौती हिमालय के उस पार है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और उसका J-20 स्टेल्थ फाइटर। अरुणाचल और लद्दाख जैसे ऊंचाई और हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में युद्ध के नियम बदल जाते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर किसी भी विमान की कागजी स्पीड मैटर नहीं करती है, यहाँ पर कोल क्षमता और साथ ही साथ पेलोड क्षमता मापी जाती है और उस हिसाब से फिर विमानों का चयन होता है। राफेल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के तहत ढाला जा रहा है, जो लेह में जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है।
1: जब भारत ने राफेल को लेना शुरू किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के पहले ही इंडियन एयरफोर्स के बेस्ट टेस्ट पायलट्स ने भारत में राफेल को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से भी ऊपर उड़ाकर देखा कि क्या राफेल से जब हम एयर टू ग्राउंड लेजर वेपन या एयर टू ग्राउंड GPS गाइडेड मिसाइल फायर करेंगे, क्या वो हाई अल्टीट्यूड में यानी 10,000-20,000 फीट की ऊंचाई पर अगर टारगेट है उस पर नेविगेट करके उस पर निशाना साध के उसको ध्वस्त कर सकते हैं। इन ट्रायल्स में राफेल बहुत ही शानदार तरीके से पास हुआ। उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने राफेल खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुमति ली।
0: भारत के पास इस समय 4.5 जेनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, इसीलिए भारत को पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत महसूस हो रही है। भारत के पास रूस और अमेरिका से पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने के विकल्प हैं। अब अगर भारत दोनों देशों में से किसी एक के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की डील करता है तो दोनों में से कौन भारत के लिए बेहतर साबित होगा, ये भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अमेरिकी F-35 जेट और रूस Su-57 लड़ाकू विमान की ताकत और खासियत के बारे में बताते हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आसमान का असली बाजीगर कौन है। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट और रूस का Su-57 लड़ाकू विमान दोनों ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, दोनों ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिससे दोनों ही रडार की पकड़ में नहीं आते। F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक यानी 1970 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं Su-57 की अधिकतम स्पीड 2 मैक यानी 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी भी लड़ाकू विमान के लिए उसके हथियार, युद्ध क्षेत्र में काम आने वाले रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ ही किसी भी हालात में बचने के लिए फुर्ती बहुत जरूरी होती है। Su-57 लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन F-35 की तुलना में बड़ा है। F-35 फाइटर जेट में ऑल एस्पेक्ट सेल्ट की सुविधा है, जिसका मतलब ये है कि ग्राउंड बेस्ड रडार के जरिए इसे डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। इसके ठीक उलट Su-57 में मजबूत फ्रंट एस्पेक्ट स्टेल्थ है, सामने से उड़ते समय जैसा कि घुसपैठ करने वाले लड़ाकू विमानों को रोकते समय होता है, Su-57 बिना पहचाने दुश्मन के लड़ाकू विमान के पास जाता है और उसे काफी नजदीक से निशाना बना सकता है। Su-57 की डिफेंसिव इंटरसेप्शन क्षमता F-35 की तुलना में इसके ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली रडार सेंसर सूट पर आधारित है।

0: तकनीकी लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका के F-35 विमान को दरअसल हमला करने के लिए ही चुना गया, क्योंकि अमेरिका की सोच ऐसी है। अमेरिका का मानना है कि सेल्फ डिफेंस का सबसे अचूक तरीका है हमला करना, जबकि रूस के विमान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो बचाव की मुद्रा में रहता है।
1: रूस ने लंबी दूरी के हवाई हमलों की तुलना में एयर डिफेंस को प्राथमिकता दी है, यानी अपने हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मन के विमानों को मार गिराने की ताकत। रूस के Su-57 को अपने विशाल भूभाग की रक्षा और अलग अलग परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अमेरिका ने नाटो सहयोगियों की रक्षा, कच्चे माल के परिवहन और सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए F-35 को डिजाइन किया है। Su-57 लड़ाकू विमान को सीमित स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ रूसी हवाई क्षेत्र के भीतर से एयर डिफेंस और कम दूरी के हवाई हमलों के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद अपनी सीमाओं के अंदर दुश्मनों के हमले को रोकना है।
0: दरअसल F-35 लड़ाकू विमान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के विवादित इलाके में घुस भी सकता है और वहां सही तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम भी दे सकता है। अगर सरल शब्दों में हम F-35 की काबिलियत की बात करें तो इसे एक्चुअली रूस के लिए ही तैयार किया गया है, ताकि उसके मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम से वो बच के बाहर निकल आए।
1: F-35 विमान अपनी छुपने की क्षमता, दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने की ताकत और दूसरे विमानों के साथ जुड़कर लड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि भारत के लिए रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट में कौन सा बेहतर है। Su-57 और F-35 दोनों ही स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है, लिहाजा भारत के हिसाब से इस बात का आकलन करना जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा विमान शानदार साबित हो सकता है।

अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 दोनों के बीच में तुलना कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका का F-35 अगर देखा जाए तो रूस के Su-57 के मुकाबले पीछे है, क्योंकि Su-57 सबसे अपग्रेडेड और नया फाइटर जेट है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिकी F-35 ने रण क्षेत्र में अपनी काबिलियत को परखा भी है और इसका लोहा भी मनवाया है। अगर आपको याद होगा तो हाल फिलहाल में ईरान पर हमला करने के लिए ही F-35 का इस्तेमाल किया गया था और रडार में आए बिना किस तरीके से उसने सटीक हमला किया था। वहीं अगर Su-57 की बात कर ले तो अभी तक केवल यूक्रेन युद्ध में ही इसका इस्तेमाल हुआ है, जिनके पास सही तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के मुकाबले कम से कम F-35 21 साबित हो रहा है। किसी भी लड़ाकू विमान का अधिग्रहण सिर्फ क्षमताओं के हिसाब से नहीं होता, बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 की गिनती दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में होती है। ये पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। बावजूद इसके भारत ने अमेरिका के इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी कई वजह हैं। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के बारे में कहा यह जाता है कि सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ कंप्यूटर है। F-35 का डेटा लिंक अमेरिका के सेंट्रल सर्वर से जुड़ा रहता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी न्यूक्लियर कमांड और संवेदनशील सामरिक डेटा को अमेरिकी निगरानी में नहीं रख सकता। भारत नहीं चाहेगा कि युद्ध जैसे हालात में उसका किल स्विच किसी और के हाथ में हो।

0: अगर हम F-35 लेते हैं तो एक तो अमेरिका से उसके हमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स को लाना पड़ेगा। कहा जाता है कि उसका स्टार्ट ऑन स्विच रिमोट कंट्रोल्ड है। इसी तरह से कहा जाता है कि F-35 का जो सेंट्रल सर्वर है वो हमेशा अमेरिका में उनका जो मास्टर कंप्यूटर सेंटर है उससे जुड़ा रहता है। ऐसी हालत में अमेरिका को हमेशा पता रहेगा कि भारत ने F-35 को कहाँ पर डिप्लॉय किया है, पूर्वी सीमा में, पश्चिमी सीमा में, या हो सकता है दुनिया में और कहीं पर। जाहिर बात है भारत नहीं चाहेगा कि जब इंडियन एयरफोर्स के विमान दुनिया में कहीं पर भी डिप्लॉयड हों तो अमेरिका को उसकी मिनट टू मिनट सूचना मिलती रहे।
1: अतीत की बात करें तो अमेरिका ने F-16 के स्पेयर पार्ट्स रोककर पाकिस्तान को खूब परेशान किया था। इसके उलट फ्रांस का रिकॉर्ड बेदाग है। वो भारत के किसी भी युद्ध, चाहे वो करगिल हो या फिर बालाकोट के बाद के हालात, उस वक्त में हथियार सप्लाई नहीं रोकी। अब बात रूस के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57 की कर लेते हैं। पांचवी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान को रूस की ओर से ऑफर किया जा चुका है, वो भी भारत की शर्तों के साथ। अब भारत फिफ्थ जनरेशन Su-57 की बजाय 4.5th जनरेशन राफेल को क्यों तरजीह दे रहा है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है, लेकिन Su-57 को लेकर भारत फूक फूक कर कदम उठा रहा है और इसके पीछे वजह वाजिब भी है। दरअसल रूस खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, उसकी सप्लाई चेन पूरी तरह से टूटी हुई है और भारत इस समय ये खामियाजा नहीं उठाएगा। किसी ऐसे देश से लड़ाकू विमान लेना जिसकी सप्लाई चेन टूटी हो, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ना हो, तो जाहिर सी बात है कि भारत भी इसको लेकर फूक फूक कर कदम रख रहा है। रूस के Su-57 को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी पूरी तरह से परखा हुआ फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं बना है। रूस खुद इसे सीमित संख्या में ही अपनी वायुसेना में शामिल कर पाया है और बड़े पैमाने पर इसका ऑपरेशनल इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है। इसके इंजन, स्टेल्थ क्षमता और मेंटेनेंस को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। कई एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-57 की रडार से बचने की क्षमता अमेरिका या चीन के फाइटर जेट्स के मुकाबले कमजोर है।
0: अगर हम रूस से सुखोई 57 खरीदते हैं तो रूस ने यह कहा है कि सोर्स कोड भी दे देगा। अमेरिका F-35 का सोर्स कोड हमें कभी नहीं देगा। इसी तरह से रूस ने यह भी कहा है कि अगर भारत में सुखोई 57 बनता है तो रूस जो है भविष्य में उसको रशियन जीपीएस यानी कॉस्मोस से जोड़ने का प्रावधान रखेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि युद्ध के दौरान अमेरिकन F-35 अगर वो इंडियन एयरफोर्स के पास हैं तो हमें अमेरिकन जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला करना पड़े। ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान पर हमला करने जाएं और पीछे से अमेरिका अमेरिकन जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह, उनका जीपीएस या तो बंद कर दे भारत के लिए, या भारत के लिए थोड़ा सा डिले कर दे, ढीला कर दे।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की नीति साफ है, ताकत ही शांति की सबसे मजबूत गारंटी है। और यही वजह है कि भारत देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बारीक से बारीक पहलू का विश्लेषण कर रहा है। हवाई ताकत से किसी भी तरह का समझौता ना हो, इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अगले एक दशक के भीतर अपनी ताकत को दोगुना करने का एक मेगा प्लान तैयार किया है। फ्रांस के साथ 114 राफेल विमानों के सौदे को अंतिम रूप देने के साथ ही भारत ने अगले 10 साल में 430 नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं पांचवी पीढ़ी के स्वदेशी AMCA की तैयारी एयरफोर्स को वो ताकत देगी जो एक साथ दो मोर्चों की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
1: के परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: Good news today.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरे से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो बनाइए, कैमरा उठाइए और एक ब्लॉग बनाइए, हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: TuneIn has the music.
2: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
4: TuneIn Poolside has the music I love.
2: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: तमिलनाडु के कोडाईकनाल में देखे समर फेस्टिवल के रंग, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में पहुंचे। राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में फिट संडे ऑन साइकिल्स प्रोग्राम के 75वें संस्करण का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, आरएसी की 12वीं बटालियन के जवान भी हुए शामिल। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक, वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग श्रृंखला में उमड़ी भारी भीड़। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले, वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे मुंबई और राजस्थान के बीच होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में कोलकाता और दिल्ली कैपिटल्स में मैच। कान की क्लोजिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय का जलवा, वाइट आउटफिट में लगी पला की खूबसूरत, सोशल मीडिया पर भी वायरल।
6: एनईसीसी, संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग रत्नों का प्रयोग करके आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। लग्न के हिसाब से आपको बताएंगे कि किस तरह की बीमारियां आपको होने की संभावना होती है और कौन सा रत्न अगर आप धारण करें तो बीमारियों की स्थिति से आप बच सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन तीन मंत्रों को मंत्र त्रयी कहा जाता है। आप कितनी भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हों, स्वास्थ्य की कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप निरंतर इन तीनों मंत्रों को एक साथ इसी क्रम में पढ़ना शुरू करिए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इनको निरंतर अगर आप जपेंगे, इनका निरंतर जप करेंगे, तो स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। हम आज बात कर रहे हैं कि रत्नों के प्रयोग से आप स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि जब हम रत्न धारण करते हैं तो रत्न किस प्रकार हमारे शरीर पर असर डालते हैं और रत्न को धारण करने से किस प्रकार बीमारियों में लाभ होता है। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जिस प्रकार आकाश मंडल में 9 ग्रहों की स्थिति है, वैसे ही हमारे शरीर में भी 9 ग्रह विद्यमान हैं और शरीर के ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग है और प्रभाव है। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है तब बीमारी होने लगती है, या जब आकाश मंडल के ग्रहों से आपके शरीर के ग्रहों का कनेक्शन कमजोर होता है तब बीमारी होने की स्थिति ज्यादा होती है। रत्न धारण करके हम उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर पाते हैं। आकाश के ग्रहों की तरंगें जब शरीर के ग्रहों को नहीं मिलती तब आप बीमार पड़ते हैं। आकाश के तरंगें और आपके शरीर की तरंगें एकदम ठीक से मिल जाएं, इसीलिए रत्न पहना जाता है और रत्न उन तरंगों को एडजस्ट कर देता है। और जब रत्न उन तरंगों को एडजस्ट कर देता है तब आप स्वस्थ होते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो मुख्यतः आपको ये समझना होगा कि किस रत्न की तरंग की आपको आवश्यकता है और कौन सा रत्न धारण किया जाए ताकि उसकी तरंग से आपको फायदा हो सके। सबसे पहले जानते हैं माणिक्य रत्न के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। माणिक्य किस ग्रह का रत्न है और इससे कौन सी बीमारियां दूर होती हैं? माणिक्य मुख्य रूप से सूर्य का रत्न है। सूर्य संबंधी तरंगें इसके अंदर पाई जाती हैं। माणिक्य का रंग होता है गुलाबी। हृदय रोग के मामले में, हड्डियों की बीमारी में, आंखों की भयंकर समस्या में माणिक्य धारण करने से बहुत लाभ होता है। अगर हृदय रोग होने की संभावना है या आप हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में माणिक्य पहनने से लाभ होता है। माणिक्य को पहना जाता है सोने या तांबे की अंगूठी में या लॉकेट में रविवार को प्रातः इसको धारण करने से लाभ होता है। तो अगर आपको हृदय रोग, हड्डियों की समस्या, आंखों की गंभीर समस्या है तो माणिक्य धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं मोती के बारे में। मोती का किस ग्रह से, किस कनेक्शन से संबंध है और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, मोती चंद्रमा का रत्न है और मोती के अंदर चंद्र ग्रह की, चंद्रमा की तरंगें पाई जाती हैं। जब आप मोती धारण करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालता है, धीरे धीरे शरीर पर असर करता है। शीत रोग, कोल्ड कफ के मामले में, एनीमिया, जब शरीर में रक्त कम हो जाए या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के मामले में ये लाभकारी माना जाता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है या जिनका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को मोती पहननी चाहिए। चांदी की अंगूठी में या चांदी के लॉकेट में सोमवार के दिन मोती धारण करना बेहतर होता है। अब बात करते हैं मूंगे की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरल। मूंगा किस ग्रह से संबंध रखता है और किन बीमारियों में फायदा पहुंचाता है? मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है। मंगल ग्रह की तरंगें मूंगे के अंदर पाई जाती हैं। कमजोरी के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में और बार बार बुखार आने के मामले में ये लाभदायक होता है। जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनको कमजोरी का अनुभव होता है, जिनको बार बार बुखार होता है, मन में और शरीर में कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए मूंगा पहनना फायदेमंद है। मूंगे को तांबे या सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। अगर आप इसको तांबे या सोने की अंगूठी में पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं पन्ना नाम के रत्न की। पन्ना किस ग्रह का रत्न है और इससे फायदा क्या होता है? पन्ना जो है ये बुध का रत्न है। हरे रंग का बड़ा सुंदर सा रत्न होता है पन्ना, और पन्ने के अंदर बुध ग्रह की तरंगें पाई जाती हैं। जब आप पन्ना धारण करते हैं तो ये मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से आपको जीवन में प्रभाव देता है। पन्ना सबसे ज्यादा फायदा करता है मानसिक बीमारियों के मामले में, मानसिक रोगों के मामले में, अगर आपको डिप्रेशन है, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मानसिक रूप से किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो पन्ना धारण करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। त्वचा की समस्या के मामले में और वाणी की समस्या के मामले में पन्ना धारण करने से जल्दी लाभ होता है। अगर आप पन्ना पहने तो आपके त्वचा के मामले में, आपके बोलने के मामले में और आपकी मानसिक चिंताओं के मामले में सुधार होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत हो या कोई मानसिक बीमारी हो, उनको पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं पीले पुखराज की। कौन सा ग्रह है इसके पीछे और इससे फायदा क्या होता है? देखिए, पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है, देव गुरु बृहस्पति से संबंध रखता है और पीला पुखराज भी मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से जीवन में प्रभाव देता है। अगर जीवन में शिक्षा की समस्या है, ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, पेट की दिक्कत आपको हो रही है या कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर आदि की समस्या है, तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनना चाहिए। बड़ी और गंभीर बीमारियों के मामले में कभी कभी पीला पुखराज पहनने से तुरंत फायदा होता है, तुरंत लाभ होता है, ऐसा देखा गया है। पीला पुखराज पहना जाता है सोने में या पीतल की अंगूठी में या लॉकेट में बृहस्पतिवार को प्रातः। अगर आप पीला पुखराज धारण करें तो आपको लंबी बीमारियों के मामले में, ज्ञान और शिक्षा के मामले में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं हीरे की। हीरा यानी डायमंड किस ग्रह का रत्न है और इसको धारण करने से क्या लाभ है? हीरा शुक्र का रत्न है। इसके अंदर जो तरंगे पाई जाती हैं वो शुक्र ग्रह की तरंगे हैं। हीरा अगर आप पहनते हैं सोच विचार करके, तो ये तीव्र गति से, बड़ी तेज स्पीड से जीवन में प्रभाव देता है। नपुंसकता के मामले में, इम्पोटेंसी के मामले में, दुर्बलता के मामले में, डायबिटीज में और आंखों की समस्या में ये बहुत लाभकारी होता है। अगर किसी का स्पर्म काउंट कमजोर हो या किसी की एक आंख में ज्यादा प्रॉब्लम होती हो या किसी को यूरिन, किडनी या डायबिटीज की समस्या हो, तो ऐसी दशा में हीरा धारण करने से लाभ होता है। लेकिन सलाह लेकर हीरा पहनना चाहिए, क्योंकि हीरा नुकसान करेगा तो आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हीरे को चांदी या प्लेटिनम में धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप हीरे को चांदी में पहने, अगर आप हीरे को प्लेटिनम में धारण करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं ब्लू सैफायर यानी नीलम की। नीलम किस रक्त रत्न से, किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से क्या लाभ होते हैं? नीलम के अंदर जो तरंगे पाई जाती हैं, वो तरंगे शनि ग्रह से संबंध रखती हैं, यानी नीलम जो है वो शनि ग्रह का रत्न माना जाता है। ये सबसे तेज गति से जीवन में प्रभाव देता है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा तीव्र और तेज होता है। स्नायु तंत्र के मामले में, नर्वस सिस्टम के मामले में, दुर्घटना में पक्षाघात यानी पैरालिसिस और असाध्य बीमारियों के मामले में, लंबी चलने वाली कठिन बीमारियों के मामले में लाभकारी होता है। लेकिन नीलम नुकसान भी बहुत जल्दी करता है, बहुत तेज करता है। इसीलिए बिना पूरी जानकारी के और बिना सलाह लिए हुए नीलम नहीं पहनना चाहिए। मोटे तौर पे आप ये जान लें कि जिनको पैरालिसिस हो गई, जिनको नर्व की प्रॉब्लम रहती है, जो लंबे समय से एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए नीलम धारण करना बेहतर होगा। अब बात करते हैं गोमेद और लहसुनिया की। कौन से ग्रह से जुड़े हुए हैं? गोमेद यानी हैसोनाइट, ये है राहु का रत्न, और कैट्स आई यानी विडालाक्ष या लहसुनिया, ये केतु का रत्न है। देखिए, राहु केतु का रत्न बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। अगर फायदा करे तो बीमारियों की सही पहचान होती है और सही इलाज होता है, लेकिन अगर ये फायदा ना करे, नुकसान करे, तो राहु या केतु का रत्न पहनने से आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो अलग अलग रत्नों का प्रभाव क्या है, किन बीमारियों में फायदा होता है, उनकी तरंग

लग्न की। देखिए सामान्यतः मेष लग्न वालों का जो स्वास्थ्य है ये मजबूत होता है, ये ताकतवर होता है। फिर भी मेष लग्न वालों के साथ अक्सर आप देखेंगे कि इनके साथ दुर्घटना होने की, चोट चपेट की संभावना जीवन में ज्यादा होती है। मेष लग्न वाले सामान्यतः बीमार नहीं पड़ते, ये परेशान होते हैं चोट चपेट के मामले से और दुर्घटना के मामले से। मेष लग्न वालों को माणिक्य धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। 90% मामले में अगर मेष लग्न वाले माणिक्य पहने तो वो स्वस्थ रहेंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मेष लग्न वालों को मोती धारण करने से भी लाभ होता है, मोती पहनने से भी फायदा होता है। वृषभ लग्न, वृष लग्न भी स्वास्थ्य के मामले में कुल मिलाकर ठीक लग्न है, तो वृषभ लग्न वालों का स्वास्थ्य कुल मिला जुलाकर जीवन में ठीक रहता है। फिर भी वृषभ लग्न वालों को हार्मोन्स की समस्या, सर्दी जुखाम की समस्या और ईएनटी की समस्या इनके साथ बनी रहती है। वृष लग्न वालों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर आपका वृष लग्न है और आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको एक नीलम धारण करना चाहिए। नीलम धारण करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इसके साथ आप चाहें तो ओपल भी धारण कर सकते हैं। यानी अगर आपका वृषभ लग्न है, वृष लग्न है और आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको नीलम और ओपल ये अवश्य धारण कर लेना चाहिए। मिथुन लग्न वायु तत्व का लग्न है और मिथुन लग्न वालों का स्वास्थ्य मिला जुला रहता है। कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। इनको नर्व की, नसों की, एलर्जी की और त्वचा की समस्या होती रहती है। मिथुन लग्न वालों को ब्रेन की दिक्कत, तनाव की दिक्कत, सोचने की दिक्कत भी जल्दी पकड़ लेती है। मिथुन लग्न वालों को हमेशा एक पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। अगर मिथुन लग्न वाले पन्ना धारण करें तो उनको लाभ होगा। और मिथुन लग्न वालों को जो आग्नेय रत्न है, फायर के रत्न है, माणिक्य है, मूंगा है, कुछ मात्रा में गोमेद है, ये रत्न आपको धारण करने से बचना चाहिए। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों का स्वास्थ्य अक्सर कमजोर रहता है। इनकी सेहत को बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता। इनको शारीरिक से ज्यादा, शरीर से ज्यादा मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं।

कर्क लग्न के लोग मेंटल टेंशन बहुत पालते हैं और चिंता कर करके बीमार पड़ जाते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा रत्न है मूंगा। अगर कर्क लग्न है आपका और आपने मूंगा धारण किया तो करियर के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में दोनों मामले में लाभ होगा। और अगर आप मूंगे के साथ मोती धारण करें तो आपके लिए लाभ की संभावना ज्यादा बनेगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न एक मजबूत लग्न माना जाता है और सिंह लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः मजबूत रहता है। अगर स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी हुई तो अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मानसिक ताकत से ये अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर लेते हैं। फिर भी सिंह लग्न वालों को हड्डियों का, पेट का और आंखों की समस्या का ध्यान रखना चाहिए और सिंह लग्न वालों को चोट चपेट न लगे, हड्डियां न टूटें या हड्डियों में कोई बड़ी समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखें। सिंह लग्न वाले अगर मूंगा पहने, कोरल बनवा करके पहने तो वो स्वस्थ रहेंगे, बेहतर जीवन जी सकेंगे। आप चाहें तो मूंगा धारण करने के अलावा आप एक माणिक्य भी पहन सकते हैं। माणिक्य धारण करना भी आपके लिए उत्तम होगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों का स्वास्थ्य या तो काफी खराब होता है या काफी अच्छा होता है। कन्या लग्न वालों को नसों की, नर्व की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या और बालों की समस्या हो जाती है। कन्या लग्न के जो लोग हैं उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बिना सोचे विचारे कहीं पर कुछ भी खा लेते हैं और इस वजह से ये बीमार पड़ जाते हैं। तो कन्या वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए पन्ना धारण करना लाभकारी होगा। पन्ना पहनने से लाभ होगा। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो परामर्श लेकर, सलाह लेकर अगर आप नीलम भी पहन लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला लग्न। तुला लग्न वालों के स्वास्थ्य में ज्यादातर उतार चढ़ाव रहता है। कभी बहुत बेहतर होता है, कभी एकदम गड़बड़ हो जाता है। इनको पेट की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, एलर्जी की दिक्कत और जो बीमारियां, जो समस्याएं इधर उधर के इन्फेक्शन से आती हैं वो तुला लग्न वालों को ज्यादा होती हैं। तुला लग्न के लोग अगर नीलम धारण करें सलाह लेकर तो उन्हें काफी फायदा होगा, लेकिन साथ में अगर ओपल भी पहन लें तो आपको लाभ ज्यादा होगा। वृश्चिक लग्न। इनका स्वास्थ्य सामान्यतः कमजोर होता है और जैसे कर्क लग्न वाले टेंशन बहुत पालते हैं उसी तरह से वृश्चिक लग्न वाले भी टेंशन काफी पालते हैं। इनको सर्दी जुखाम, इन्फेक्शन के रोग या मानसिक रोग ज्यादा होते हैं क्योंकि मेंटली ये अलर्ट नहीं रहते,
मेंटली एकाग्र नहीं होते, इस वजह से दिक्कतें आती हैं इनके जीवन में। इनके लिए मोती धारण करना लाभकारी होगा। और मोती के अलावा अगर ये मूंगा पहने, सबसे छोटी उंगली में मोती चांदी में और अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में तांबे या सोने में मूंगा, अगर आप वो धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। धनु लग्न स्वास्थ्य के मामले में मजबूत है, इनको बीमारी नहीं होती। इनके साथ चोट चपेट ज्यादा होती है, दुर्घटना ज्यादा होती है, ऑपरेशन हो जाता है, और अगर कभी बीमार वगैरह पड़े तो टाइफाइड होने की या गैस्ट्रिक ट्रबल होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन मुख्यतः धनु लग्न वालों को चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचना होगा। धनु लग्न के लोग अगर माणिक्य पहने तो वो इनके लिए बहुत शुभ है। साथ ही साथ अगर एक पीला पुखराज भी पहन लें तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। मकर लग्न। मकर लग्न वालों का स्वास्थ्य बचपन में खराब होता है। बचपन में सामान्यतः आरंभ में ये कमजोर होते हैं और बाद में उम्र बढ़ने के साथ ये स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। सामान्यतः इनको पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या परेशान करती है। धनु लग्न के लोगों को ऑपरेशन से बचना चाहिए, ये पहले आपको बताया। उसी तरह से मकर लग्न के लोगों को अपनी आंखों और अपनी स्किन का बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपका मकर लग्न है तो आप एक पन्ना जरूर पहनिएगा और पन्ना पहनने से स्वास्थ्य और मन बेहतर होगा। और पन्ने के साथ अगर संभव हो तो एक ओपल या एक हीरा आप अगर पहने तो आपको लाभ होगा। कुंभ लग्न। इनके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। कुंभ लग्न वाले ऐसा कोई काम करते हैं, ऐसा कोई कांड करते हैं कि बीमारी अपने जीवन में खुद अट्रैक्ट करते हैं, बीमारी को खुद अपने जीवन में लाते हैं। मानसिक रोग, नसों के रोग और इन्फेक्शन वाली बीमारियां जल्दी होती हैं। कुंभ लग्न वालों को डाइजेशन और लीवर को लेकर के हमेशा अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो ओपल या हीरा पहनिए। ओपल या हीरा पर्याप्त है आपके लिए। तर्जनी उंगली में, चांदी की अंगूठी में शुक्रवार की शाम को पहन लें। और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ओपल या हीरे के साथ एक नीलम भी अगर आप पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन लग्न। इनका स्वास्थ्य मिला जुला रहता है, ना तो बहुत अच्छा होता है ना तो बहुत खराब होता है। मीन लग्न वाले बड़े जल्दी मोटे होते हैं। मीन लग्न के अंदर मोटापे की टेंडेंसी होती है, तो मीन वालों को त्वचा की समस्या, मोटापा और इंजेक्शन वाली चीजों से देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन पकड़ लिया तो आप बार बार इंजेक्शन लगवाने को मजबूर हो जाएंगे। मीन लग्न वालों को एक मोती पहननी चाहिए। चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में
शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। साथ में अगर मीन लग्न के लोग पीला पुखराज पहन लें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, अलग अलग लग्न के अलग अलग बनावट हैं, अलग अलग तत्व है और अलग अलग ग्रहों का इम्पैक्ट यानी प्रभाव होता है। जब आप उस लग्न के तत्व को मजबूत कर देते हैं, जब आप उस लग्न के तत्व को ठीक कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर आपको अपने लग्न की जानकारी नहीं है तो क्या उपाय करें कि हमेशा स्वस्थ रहें? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और अगर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरा काम करें, रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और तीसरा काम ये करें, हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करें। अगर ये तीन उपाय आप नियमित रूप से करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य की या दुर्घटनाओं की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो गुड लक स्पेशल।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है खुशियां तो कहीं हंगामे। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली झलक सामने आ गई है। करीब 7 फीट ऊंचे बर्फ के शिवलिंग ने आकार ले लिया है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। पूरी यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा।

0: बाबा अमरनाथ की ये तस्वीर भोलेनाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर शिव भक्तों को आस्था के रंग में सराबोर कर रही है। ये तस्वीर सामने आते ही महादेव के भक्तों में अमरनाथ यात्रा का उत्साह और बढ़ गया है। यात्रा की शुरुआत में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन से पहले ही ये तस्वीर ही श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंग रही है। बाबा अमरनाथ की इस पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बर्फ से बना करीब 7 फीट का शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। अमरनाथ गुफा के आसपास अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान इस बर्फ को हटाकर पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। इस रास्ते को साफ करने वाले जवानों को ही भगवान के पहले दर्शन का सौभाग्य मिला है। यात्रा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी बर्फ 10 से 12 फीट तक हो चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान इस मार्ग को साफ करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यात्रा रूट के ज्यादातर हिस्से को साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी बर्फ से ढका दिख रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक पूरा यात्रा मार्ग साफ कर लिया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा 2 रूट से पूरी होगी। पहला रूट बालटाल सोनमर्ग से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दूसरा रूट नुनवा पहलगाम से होकर जाएगा। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। इस साल यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है, उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव का नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। सिनेमा के इस महाकुंभ में इस साल दुनिया भर के मशहूर सितारों की महफिल सजी हुई है। बॉलीवुड के कई मशहूर स्टार्स ने भी इस फेस्टिवल में खूब सुर्खियां बटोरी। फेस्टिवल के आखिरी दिनों में ऐश्वर्या राय के ग्लैमरस लुक की खूब चर्चा हुई।

0: बेहिसाब ग्लैमर, बेशुमार चकाचौंध, बेमिसाल फैशन और फिल्मी सितारों से सजी खूबसूरत महफिल कांस फिल्म फेस्टिवल। फ्रांस के खूबसूरत शहर कान में पिछले 12 दिनों से सजा सिनेमा का सबसे बड़ा मेला आज अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया। दुनिया भर के फिल्म मेकर्स, हॉलीवुड के दिग्गज और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों से सजी महफिल का आज आखिरी दिन है। 79वें कान फेस्टिवल का आगाज जितना शानदार था, इसका समापन भी उतना ही लाजवाब हो रहा है। इस बार के कान फिल्म फेस्टिवल में शुरू से लेकर अंत तक हिंदुस्तान का जलवा दिखा। कान की परमानेंट क्वीन कही जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या के साथ रेड कार्पेट की शान बढ़ाई। कान में ऐश्वर्या का लुक हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इस बार तो पिंक ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उनके इस पिंक गाउन को पिंक लीटर्स चार चांद लगा रहे थे। उनका ये लुक बेहद एलिगेंट और मॉडर्न लग रहा था। ऐश्वर्या के पिंक गाउन के साथ आराध्या की रेड ड्रेस ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कांस फेस्टिवल में इससे पहले ऐश्वर्या मिडनाइट ब्लू गाउन में बेहद खूबसूरत लगी। पेप्स को स्माइल और हैंड वेव करते हुए मरमेड गाउन में ऐश का स्टनिंग लुक फैंस को बेहद पसंद आया। पहले से स्लिम लग रही ऐश्वर्या ने अपने सिग्नेचर पोज में फोटोज क्लिक कराई। कांस के रेड कार्पेट पर पेप्स और फैंस को फ्लाइंग किस करते हुए और मुस्कुराते हुए हार्ट इमोजी बनाते हुए नजर आई। एक्ट्रेस ने गाउन को सेम कलर के दुपट्टे के साथ टीम अप किया। साथ ही साइड पार्टेड कर्ली हेयर्स और डायमंड इयररिंग्स के साथ ऐश्वर्या ने अपने लुक को शानदार बनाया। ऐश्वर्या कांस में साल 2002 से नजर आ रही हैं। तब से लेकर आज तक वो स्टनिंग ही लगी हैं। उन्होंने कांस के रेड कार्पेट पर अपने लुक्स को फ्लॉन्ट कर इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया है। वो हर साल अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं और फैंस ने भी उनके हर लुक पर अपना प्यार लुटाया है। ऐश्वर्या के साथ साथ इस बार आलिया भट्ट, जैकलिन फर्नांडिस और मौनी रॉय का लुक भी खासा चर्चा में रहा। बॉलीवुड की इन खूबसूरत हसीनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मों की दुनिया में हिंदुस्तान की दावेदारी को और मजबूत कर दिया। कांस फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जिसकी पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार करती है। ये फेस्टिवल इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा की कोई सरहद नहीं होती, कला, काबिलियत और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। कांस फिल्म फेस्टिवल सिनेमा से जुड़े दुनिया भर के सितारों का वो मेला है जो हर साल सिनेमा और फैशन को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरे से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो बनाइए, कैमरा उठाइए और एक ब्लॉग बनाइए। हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। अब आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडाई कनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडाई कनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल बहुत खुशनुमा बना हुआ है। ऐसे में सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान देखिए भव्य काइट शो का आयोजन भी किया गया और जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टर्स सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगें उड़ाई गईं। इस शो का आयोजन यहाँ पर मन्नावनूर गांव में स्थित शीप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया और यहाँ पर देखिए प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है खुशियां तो कहीं हंगामे। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn. TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
2: I have no idea how this election is going to play out,
1: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: भागलपुर के लोगों के लिए गुड न्यूज, विक्रमशिला सेतु पर सीमा सड़क संगठन का कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा बेली ब्रिज किया तैयार, 100 टन स्टील का हुआ इस्तेमाल। तमिलनाडु के कोडाई कनाल में देखे समर फेस्टिवल के रंग, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। गुरिंदर वीर सिंह ने एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरा करके रच दिया इतिहास, जीता गोल्ड। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक। वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग श्रृंखला में उमड़ी भारी भीड़। आईपीएल में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले, वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे मुंबई और राजस्थान के बीच होगा मैच, शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में कोलकाता और दिल्ली की टीमें आमने सामने। कान की क्लोजिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय का जलवा, वाइट आउटफिट में लगी बला की खूबसूरत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब, शनिवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 96,116 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। पिछले महीने 19 अप्रैल को शुरू हुई थी यात्रा, अब तक 20,76,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में शनिवार को सबसे ज्यादा 32,219 तीर्थयात्री पहुंचे, अब तक 5,56,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में अब तक 8,11,923 भक्त कर चुके हैं दर्शन, गंगोत्री में 3,52,162 और यमुनोत्री में 3,56,031 दर्शन कर चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में पहले ही दिन 6,605 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, बम बम बोले। दिल्ली में सुबह सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर दौड़ लगाते नजर आए बड़ी संख्या में लोग, सुबह में सुहाने मौसम का उठाया लुत्फ। राजधानी में आज फिट संडे ऑन साइकिल्स प्रोग्राम के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिल रैली में शिरकत की। साइकिल रैली से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर कसरत भी की, आरएससी के 12वीं बटालियन के जवान भी शामिल हुए। गानों की दोनों पर कसरत करते नजर आए लोग, फिटनेस के प्रति जागरूकता का संदेश। फिट संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए, कई जानी मानी हस्तियां उन्होंने शिरकत की। अहमदाबाद में भी हुआ संडे ऑन साइकिल्स इवेंट, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और राज्य मंत्री हर्ष सांग भी शामिल हुए। अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर संडे ऑन साइकिल्स इवेंट हुआ, एक्टर आयुष्मान खुराना शामिल हुए। संडे ऑन साइकिल्स इवेंट में बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं ने शिरकत की, फिटनेस और सेहत के लिए जागरूकता का संदेश। विजयवाड़ा में स्वच्छ आंध्र प्रदेश अभियान के तहत चलाया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप, एक महीने तक चलेगा आंध्र में ऑपरेशन क्लीन स्वीप, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नई पहल। रेड कार्पेट पर सितारों की रौनक के साथ कान फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी, फिल्मी दुनिया के दिग्गज शामिल हैं। क्रिस्टियन की फ्योर्ड ने कान फिल्म फेस्टिवल में जीता पाम डी ओ अवार्ड। कान क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय भी दिखी व्हाइट आउटफिट में, लग नजर आई बहुत खूबसूरत। ऐश्वर्या राय का लुक सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, यूजर्स ने जमकर तारीफ की। पैंट सूट के साथ ऐश्वर्या ने डायमंड रिंग पहनकर अपने लुक को किया कंप्लीट। फैंस ने उन्हें कान फेस्टिवल की क्वीन बताया। अर्जुन तेंदुलकर की शानदार गेंदबाजी देखकर भावुक हुए पापा सचिन, शेयर की खास पोस्ट। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने पूरे 4 ओवर डाले, प्रभसिमरन सिंह का अहम विकेट भी झटका। कोलकाता दिल्ली के बीच आज आईपीएल सीजन का आखिरी लीग मैच, नाइट राइडर्स के पास प्ले ऑफ में जाने का आखिरी मौका। ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा मैच शाम 7:30 बजे लाइव। कोलकाता 13 मैचों में 13 पॉइंट्स के साथ छठे पायदान पर है, दिल्ली पहले ही प्ले ऑफ से हो चुकी है बाहर। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी, लोगों को धूप से बचने के लिए सलाह। उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। बदायूं में भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा, घर से निकलना बाहर दो बार। कटिहार में मौसम में जबरदस्त बदलाव, आंधी तूफान से बची तबाही, कोई हताहत नहीं। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन बना तालाब, शेड से झरने की तरह बह रहा है पानी। चमोली में कंचनजंगा के ऊपर ग्लेशियर टूटा, पानी की तरह बहते हुए नजर आई बर्फ। ग्लेशियर पिघलने से नहीं हुआ कोई नुकसान, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इंफाल में कोकोमी संगठन ने निकाली युवा बाइक रैली, सेव मणिपुर का संदेश। चेन्नई में सफाई कर्मचारियों और पुलिस ने पेश की मिसाल, पब्लिक टॉयलेट में मिले बच्ची की बचाई जान। महिला सफाई कर्मचारियों को लावारिस हालात में मिली थी बच्ची। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दशहरा से पहले महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लोगों ने पूजा अर्चना की। तेज गर्मी के बावजूद अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, जय श्री राम के जयकारे। हर दिन करीब 1 से 2 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं श्री राम मंदिर के दर्शन, गर्मी की छुट्टियों के अलावा गंगा दशहरा मनाने के लिए भी पहुंचे हैं रामनगरी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था हो गई, सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay, come on, let it go. Norah Jones, the heart is drained. Daniel Caesar, we both know how, and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरे से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो बनाइए, कैमरा उठाइए और एक ब्लॉग बनाइए, हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today and let us surprise you.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
4: Thank God I get to wake
3: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है
तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन,
जीवाणु रोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर

0: सूत बनाता है और ये है अपामार्ग। क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
4: भागलपुर के लोगों के लिए गुड न्यूज, विक्रमशिला सेतु पर सीमा सड़क संगठन का कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा बैली ब्रिज किया तैयार, 100 टन स्टील का हुआ इस्तेमाल। तमिलनाडु के कोडाई कनाल में दिखे समर फेस्टिवल के रंग, भव्य काइट शो बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरा कर रच दिया इतिहास, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक, वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग श्रृंखला में उमड़ी भारी भीड़। IPL में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले, वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे मुंबई और राजस्थान के बीच होगा मैच, शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में कोलकाता और दिल्ली की टीम होंगी आमने सामने। कान की क्लोजिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय का जलवा, व्हाइट आउटफिट में

0: लगी बला की खूबसूरत सोशल मीडिया पर हुई वायरल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सबका संडे की इस सुहानी दोपहर में, सास बहू और बेटिया में। संडे की ये छुट्टी तो होती है फन, फैमिली और रिलैक्सेशन के लिए, और उसके साथ साथ मी टाइम और सेल्फ लव भी तो बनता है। तो कोई मना रहा है संडे की ये छुट्टी करके टोटली चिलैक्स, तो कोई एंजॉय कर रहा है अपनी फैमिली के साथ लेट ब्रंच। हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट को। आज तो है हमारे पास आपके लिए एंटरटेनमेंट और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये संडे स्पेशल एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
3: बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी वीकेंड स्पेशल की गुड न्यूज में आज देखिए। प्रथम के हाथों होगा कामिनी का एक्सीडेंट, राधिया को होगी टेंशन।
4: आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे।
3: प्रभात और चंद्रिका की 27th वेडिंग एनिवर्सरी पर झूम कर नाचेगा पूरा परिवार, दिखेगा वसुधा और देव का रोमांटिक अंदाज।

0: ड्रग डीलर बनेगी तपस्या, जगधात्री बनेगी पहना का सहारा, बदलेगा शिवाय का अंदाज।
1: प्लीज मैं आपसे भाग मत लो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ।
0: ईरा के आगे गिड़गिड़ाएगा गोपाल, अपराजिता की आंखों में आएंगे आंसू। नर्स बनकर गुरु के घर लेगी रूहानी एंट्री, पुष्पी मचाएगी बवाल।

0: और शिवानी चक्रवर्ती और उत्कर्ष गुप्ता संग पहुंचेंगे नूर ताज के खास इवेंट में, देखेंगे सभी नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: हम तो चाहते हैं कि संडे के पीसफुल मूड में यहाँ पर हो इमोशंस और रिलेशनशिप्स की सॉफ्टनेस। मैं तो बात कर रही हूँ मन अति सुंदर की इस कहानी की, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको राध्या और प्रथम के पास और देखते हैं किस तरह ये दोनों मना रहे हैं संडे की छुट्टी। क्या यहाँ पर है सब कुछ चिलपिल या फिर से आया है कोई हॉट एंड हैपनिंग ट्विस्ट? लेकर चलते हैं आप सबको इन दोनों के पास।
0: प्रथम की गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट, मोहल्ले वालों ने मचाया हंगामा।
2: तू कहां से चलता है? तू पैदल चलने वालों को कीड़े पकड़ समझा तू?
0: कहानी में आया नया ट्विस्ट। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में भाई आज राधिया और प्रथम निकल पड़े हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, और जरा देखिए तो कैसे भाई आज राधिया अपने बचपन की यादों को ताजा कर रही है, और मार्केट में उसने खरीद लिया है ये वाटर बबल्स का बॉटल जिसे वो खेल रही है और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। लेकिन भाई उसे क्या पता था कि मार्केट में आना उनके लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जाने अनजाने से प्रथम राध्या को ठोकर मारने वाला था अपनी कार से, लेकिन उसे बचाने के लिए हो गई कहानी में नई एंट्री।

0: अमीर क्या है? तूने एक लड़की की जान ले ली, हम तो छोड़ेंगे नहीं। तू कहाँ से चलता है? तो पैदल चलने वाले को कीड़े मकोड़े समझता तू?
1: अरे
0: भाग जाएगा ये, अरे छोड़ो मुझे। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? यही खड़ा हूँ ना मैं, इतना सुनाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जा रहा मैं। बस लड़की को देख रहा हूँ, वो ठीक है कि नहीं।
2: क्या तुमने जान ले ली लड़की की?
3: भाई प्रथम और राधिया की कोशिश से इस लड़की को होश आ जाता है और देखिए कैसे वो उठकर प्रथम का सपोर्ट करती है और सभी लोग जो प्रथम पर इल्जाम लगा रहे थे उनसे बचाती है।
0: सबसे पहले इस शादी को पुलिस के हवाले करो। हां चलो बुलाओ पुलिस को पहले।
3: भाई राध्या और प्रथम की जिंदगी में कम हंगामे नहीं है। ऐसे में आपको बता दे कि बहुत जल्द सास और बहू में भी होने वाली है तकरार। जी हाँ, ये नया प्रोमो जो हाल ही में शूट हुआ है इसमें यही देखने को मिल रहा है किस तरीके से परिवार को बचाने के लिए राध्या और उसकी सासुमा संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ हंगामे होते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: ड्यूटी और फैमिली के बीच बैलेंस बनाती हुई हमारी जगदात्री, इनका तो संडे भी है इमोशंस और चैलेंजेस से भरपूर। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज। क्या इन्हें संडे को मिल रही है चैन की सांस? यह फिर से आया है इनकी कहानी में कोई नया ड्रामा। लेट्स चेक इट आउट।
3: तपस्या बनी ड्रग डीलर। शिवाय का नया मिशन। बहनों के बीच दिखी झड़प। जी टीवी के सीरियल जगधात्री में भाई अब शिवाय और उसकी टीम को मिल गया है नया मिशन, जिसके चलते पूरी टीम अपना भेष बदल कर इस रेस्टोरेंट और बार में पहुंच गई है जहां वो एक ऐसे बड़े ड्रग डीलर को पकड़ना चाहती है जो लोगों की दुनिया तबाह कर रहा है। ऐसे में देखिए कैसे भाई इस रेस्टोरेंट में चल रही है पार्टी और सभी लोग यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं और ऐसे में शिवाय और उनके कॉप टीम लगी हुई है सब पर नजर रखने में। ऐसे में वहाँ पर एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसे देखकर तो शिवाय के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि भाई यहाँ पहुँच गई है तपस्या एक ड्रग डीलर बनकर और उसने अपना नाम बताया है RDX। भाई ये सब सुनकर तो शिवाय के पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि आखिर तपस्या इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। और भाई देखिए कैसे जहाँ एक तरफ तपस्या है तो वहीं दूसरी तरफ है शिवाय और इन दोनों के ही तेवर बदले बदले से है।
5: मैंने बारटेंडर का लुक लिया है और फिर भी मैं पहचान में आ रहा हूँ ना आपके। तुम पहचान पा रही हो ना? मना करना है तुम्हें?
6: तपस्या नहीं पहचान पा रही है बट येशा पहचान पा रही है ऑफ कोर्स। एक्चुअली रुद्र को थोड़ा शक होता है कि कोई तो नजर रख रहा है हम पर। सो वो मुझे बोलता है कि इंस्टेड ऑफ रुद्र गोइंग, क्योंकि रुद्र अगर यहाँ पर आता तो शिवाय इनके सामने आ जाता, पकड़ा जाता, तो वो मुझे बोलता है कि तू चली जा। और मुझे नहीं पता होता कि मैं ड्रग डील कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं तपस्या फिशरीज के लिए फिश सॉल्ट देने आई हूँ जो कि ऑफ कोर्स तपस्या स्टूपिड। बट कोई बात नहीं, तो मैं आती हूँ एंड मैं इसे पहचान नहीं पाती हूँ। तो मैं तो सोचती हूँ कि आई एम द ओनर ऑफ तपस्या फिशरीज, तो मैंने ऐसा गेटअप रखा है और मैं आती हूँ एकदम फोर्स के साथ कि लेट्स डील।
5: रुद्र ने इसकी बलि चढ़ा दी है, समझ रहे हो आप? तो अब ये पकड़ी जाएगी। तेरा मैं बोल रहा हूँ कि तेरा यूज हो रहा है, देख तू सरेंडर हो जा और सजा कम हो जाएगी।
6: नॉट हैपनिंग।
5: ठीक है, मैंने पहचान लिया इनको कि ये तपस्या ही हो, मेरे मुंह से निकल भी जाता है तपस्या तुम, और ये अपने इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि मैं ही हूँ RDX। समझ लो, ये शॉकिंग है हमारे लिए। ये निकली घर का बेदी लंका ढाए,
6: और मुझे तो पहचान में ही नहीं आता है कि ये शिवाय है, क्योंकि तपस्या बिंग तपस्या, तो मैं बोलती हूँ कि हाय आई एम आदि एग्स।
1: मैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में रुद्र भी पहुंचा था, लेकिन उसे जाने अनजाने ही सही अपनी टिप ही मिल गई कि उस पर कोई नजर रख रहा है, इसलिए उसने बकरा बनाया तपस्या को। लेकिन भाई, जब जगधात्री की बहन कोई मुसीबत में हो और जगधात्री उसे ना बचाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी तो देखिए कैसे आज भी उसकी ढाल बनकर वो यहाँ पहुंची और उसने अपनी बहन को बचाया, जिसके बाद दोनों के बीच छिड़ गई बातों की जंग। लेकिन यहाँ पर तपस्या जगधात्री को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है।
7: माहौल तो मुझे लगता है एक ही होता है, जब रुद्र इन्वॉल्व्ड है तो क्लब का ही कोई सीन होता है, और क्योंकि वो शामिल है ऐसे ड्रग्स और इन सब के कारनामों में, उनकी कुछ आदतें हैं, बहुत ही गंदी आदतें, और वो एक ऐसी एक्टिविटी में फंस गए हैं, या अपने आप को फंसा लिया है, या वो फंसना चाहते हैं, उन्हें मज़ा भी आ रहा है अब ये काम करने में, जहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई होती है, स्मगलिंग होती है, उनको लोगों को दिया जाता है, बेचा जाता है, और इसमें उन्होंने शामिल कर लिया मेरी बहन को, तपस्या को। तो आज वो आए हैं एक नया प्रोडक्ट लेके, जिसकी वैल्यू बहुत है मार्केट में, और वो बेचना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं उससे, और तपस्या शामिल है उसमें, और वो खुद सप्लाई नहीं कर रहे इस बार, वो तपस्या को आगे कर रहे हैं, अपने आगे कर रहे हैं, और तपस्या के हाथ से ये जो सेल है वो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जगधात्री आ जाती हैं, क्योंकि उनको टिप तो मिलती है कि RDX और इन्वॉल्व्ड है, और ऐसा कोई ड्रग्स का सप्लाई होने वाला है। तो जब वो यहाँ पर आती हैं, तब वो देखती हैं कि एक्चुअली तपस्या इन्वॉल्व्ड है इस केस में, एंड वहाँ पर उनका उनको जगधात्री को चूज़ करना पड़ जाता है बिटवीन हर जॉब एंड हर फैमिली, और ऐसा होता है इन इंस्टिंक्ट इन दैट मोमेंट कि वो अपनी फैमिली चूज कर लेती हैं और तपस्या को बचा लेती हैं वहाँ से, वो लेके चली जाती है कोने में, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि तपस्या इन्वॉल्व है, और आई डोंट थिंक उन्होंने इतना सोचा होगा, बट वो इंस्टिंक्ट होता है ना, जब फैमिली की बात आ जाती है तो कभी कभार हम सोच ही नहीं पाते हैं, हमें कुछ और दिखाई नहीं देता और हम अपनी फैमिली चूज करते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश में वो उसे ले जाती है और उसे कोशिश कर रही है, पूछने की कोशिश कर रही है कि उस पैकेट में क्या था, वो पैकेट किसने दिया तुझे, इंटेरोगेट करने की कोशिश कर रही है, सवाल जवाब करने की कोशिश कर रही है, पर तपस्या की प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनका जो पैकेट है जिसके लिए वो आई थी वो खो गया है, और जगधात्री बहुत कोशिश कर रही है कि तपस्या को इस प्रॉब्लम से निकाले किसी भी तरीके से, पर आई डोंट थिंक वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है इस केस में।
1: भाई, शिवाय और उसके कॉप टीम के आंखों से तपस्या ओझल हो गई, जिसके बाद वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ गया है, क्योंकि अब उसे नहीं पता कि वो अपनी बॉस यानी कि जगधात्री को क्या जवाब देगा और किस तरीके से उससे बेहद ही बड़ा मिशन फेल हो गया।
8: यहाँ दो कदम की दूरी पर काम से जब उसे सिक्योर करके वो गायब। क्या क्या एकदम दूर दूर बन के यहाँ क्लब तक पहुँच के वो स्मार्ट बने वो स्मार्ट करके हमारी नाक के नीचे चली। सच को ना तो हम लोग अंधे, हम अंधे हैं जो हमें वो दिखाई नहीं।
7: शिवाय यहाँ पर है विद द होल कॉप टीम, जगधात्री ने ही उन्हें यहाँ पर भेजा था डिस्गाइज में, जब तक जगधात्री घर का काम और रेखा और संपदा जी जो उनके आई और अत्या है उसे संभाल रही थी, तब तक यहाँ पर कॉप टीम इंक्लूडिंग शिवाय लीड कर रहे थे, जो वो संभाल रहे थे यहाँ की सिचुएशन। तो उन्होंने किसी को तो देख लिया था, एक लड़की को इसमें इन्वॉल्व, और उन्हें ये लग रहा था कि RDX कोई लड़का नहीं लड़की ही है। तो जब तक उसका खुलासा होने वाला था तब तक जगधात्री आ गई, यानी कि मैं आ गई और मैंने तपस्या को वहाँ से बचा लिया और मैं लेके चली गई। पर अब ये कॉप टीम कैसे रिएक्ट करेगी आई डोंट नो, जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने एक्चुअली अपनी बहन को सेव किया है।
1: भाई इस मिशन के लिए शिवाय ने काफी तैयारी की थी। अपनी टीम के साथ बैठकर उसने इस पूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया था। तभी तो देखिए कैसे यहाँ पर भी आज ये लोग काफी परेशान हैं। और जैसे जैसे शिवाय को टिप मिल रही है भाई वो हर बारीक चीजों पर नजर रख रहा है, साथ ही साथ जगधात्री को भी अपडेट कर रहा है। लेकिन फिलहाल जगधात्री का मिशन अपनी बहन तपस्या को बचाना है। तभी तो देखिए कैसे वो केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है।
5: मार्केट में नया ड्रग आया है और उसके साथ हम काफ़ी टाइम से टच में हैं, मतलब उस नेटवर्क को हम पकड़ना चाहते हैं, उसके पीछे जो लोग भी हैं। और मेन क्या है, रुद्री है वहाँ पे, तो एक ब्लू कलर का ड्रग है और हम उस मिशन पे निकलते हैं और वहाँ पे हम पहुँचते हैं और अचानक से जो डीलर थी वहाँ से वो गायब हो जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे पास इतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, सब कुछ था हमारे पास, पूरा मिशन का हर एक प्लान था। और मैं, हमारी पूरी टीम वहाँ पे पहुँची, हमने सब कुछ, एंड मोमेंट पे वो अचानक से गायब कैसे हो गई? तो मतलब कोई तो है जो हमारी टीम में मोल है, और वो कौन है जिसने बचाया? अब वो लड़की कौन है, जगधात्री का उनसे क्या लेना देना है? क्योंकि शक, आप समझ रहे होगे किस पे जा रहा है, किसने किया है ये सब। तो ये पूरा सीन है और बहुत एफर्ट्स डाले हैं पिछले बहुत टाइम से हमारी पूरी टीम ने, कॉप टीम ने, पकड़ने के लिए, और वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, ना तो मूसा हाथ आ पा रहा है, ना कुछ है। और ये जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं बड़े, तो इनकी प्लानिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन आज नहीं तो कल हम पकड़ तो लेंगे। मतलब वो डाइवर्ट कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाओ और ये करो वो करो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैंने इतनी बड़ी बात बता दी कि यार हमारी टीम में कोई तो एक मोल है, तो उससे ढूंढना ज़रूरी होना चाहिए फिलहाल सबसे पहले, क्योंकि ऐसे तो हमारे बाकी के भी जो हर एक चीज़ है मिशन से जुड़ी हुई वो लीक होती रहेगी। तो उनका फोकस उस पर नहीं है, उनका फोकस फॉरेंसिक रिपोर्ट पर है। लेट्स सी क्या होता है।
1: ऐसे में देखना होगा कि क्या जगधात्री असली मुजरिम को पकड़ पाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: संडे की शांति के बीच आने वाली है एंटरटेनमेंट की आंधी, हो गया ना रॉकिंग और शॉकिंग दोनों एक साथ। तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ये इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर खबर, कुछ रॉकिंग तो कुछ शॉकिंग।
1: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं इन दिनों चल रहे तुम से तुम तक के ट्रैक की। भाई यहाँ पर बहुत जल्द होने वाली है अनु और आर्यवर्धन की शादी। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि शो में होगी यशवर्धन की एंट्री, जिसका किरदार निभाने वाले हैं अंगद हसीजा।

देख लीजिए स्टार प्लस पर आने वाले नए शो सैराब के ये बिहाइंड द सीन नज़ारे।

0: शहनाज गिल इन दिनों बिसाओ में शूटिंग कर रही हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। देख लीजिए सेट का ये वीडियो। काफी समय से हेरा फेरी 3 को लेकर कई सारे स्पेकुलेशंस है कि परेश रावल इस सीरीज में होंगे या नहीं, लेकिन अब काफी सारे हाँ और ना के बाद परेश रावल ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही वो रिटर्न करेंगे अपना साइनिंग अमाउंट, वो भी पेनल्टी के साथ। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं आप सबके फेवरेट कीड़े यानी कि बंदार।
1: उसके पास तो मुझे फोन आया था कि आपको ऑडिशन के लिए आना है, और मैं ऑडिशन के लिए गया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास है, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए।
0: नजर डालते हैं सन्नियो के सीरियल दिव्य प्रेम की इस नई कहानी पर। भाई ये नया सीक्वेंस नए चैप्टर का आगाज है। ऐसे में देख लीजिए सेट से सामने आए हैं ये बिहाइंड द सीन नज़ारे।

0: एनएस टीवी लेकर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है शायद यही प्यार है, और इसमें आपको देखने मिलेंगे अदिति शर्मा और दक्ष पुरी।
1: 5 साल का रिलेशन एक पल में तोड़ के चला गया, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है क्या?

0: थे क्या? मुझे लगा कोई और ही है। तुम वापस कब आए?
1: मैं तुमसे दूर गया ही कब था?
0: तुम बिल्कुल नहीं बदले हाँ। मेरी फ्रेंड के छोटे भाई हो, वरना बहुत पीटती तुमको।
2: क्या प्यार में गिर जाती है उम्र की दीवार? शायद यही है प्यार।
0: वैसे किस एज की लड़कियां पसंद आती हैं तुम्हें, बताओ जरा।
1: मेरी एज की हो? 25 टाइम्स और क्यूट।
0: कितना अनोइंग है।
1: पर अगर दिल की अच्छी हो तो 35 भी चलेगी।
2: क्या प्यार में गिर जाती है उम्र की दीवार? शायद यही है प्यार।
3: संभावना सेठ बहुत जल्द मम्मी बनने वाली हैं। जी हाँ, इनकी ये प्रेगनेंसी सरोगेसी के थ्रू है, तभी तो इनके घर रखा गया बेबी शावर। सामने आई हैं ये तस्वीरें।

0: रिश्तों की इक्वेशंस बदलने वाली हैं और कुछ नए सच लेकर आएंगे, नए नए ट्विस्ट। अब संडे की ये छुट्टी तो होती है रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन ये जो हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियां हैं इनमें ये जो ड्रामा आता है इससे नहीं मिलती है संडे वाली छुट्टी। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ।
1: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
2: प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई आज मुक्ति और मायरा दोनों ही रेडी होकर पहुंच गए हैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। ऐसे में अरमान ने उन्हें ड्रॉप भी किया है, लेकिन देखिए कैसे, जब मायरा और मुक्ति दोनों ही रास्ते पर चल रहे होते हैं भाई उनके पीछे लग जाता है एक स्टॉकर।
3: ये आदमी तो बहुत तेजी से हमारा पीछा कर रहा है, क्या करे? इसकी हॉलीडे करती हूँ
2: भाई। घबरा तो दोनों ही जाते हैं, लेकिन मायरा अपनी सूझबूझ दिखाती है और देखिए कैसे पेपर स्प्रे इस स्टॉकर पर मारती है। लेकिन ट्विस्ट इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि ये स्टॉकर और कोई नहीं बल्कि अभीरा है।
3: मम्मा, ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है।
4: मुझे क्यों मार रही?
3: क्योंकि मैंने पेपर स्प्रे मारा, सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी। पर आप हमारा पीछा क्यों कर रहे? वो भी स्टॉकर बनके।
5: ओह गॉड, मैंने सोचा कि कोई नया प्रोफेशन आजमा के देखती हूँ।
2: ऐसे में देखिए कैसे भाई अभीरा यहाँ पर दोनों को ही काफी डांट फटकार लगा रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वाकई उनकी बेटी पर एक खतरा मंडरा रहा है।
3: सिर्फ मायरा ने मारा था, वो भी 2-4 सेकंड देर से मारा था। और मुक्ति तू तो रहने ही दे, क्या करे हम, क्या करे, यही सवाल पूछे जा रही थी। किडनैपर सबसे पहले तुझे ही उठा के लेके जाएगा। जब मैं तुम दोनों के इतने ज्यादा क्लोज आ गई तो किडनैपर तो मुझसे ज्यादा चालाक निकलेगा ना। तुम दोनों का ये मजाक लग रहा है?
4: अरे नहीं नहीं नहीं अभीरा, अगर ये मजाक कर रही होती तो ये हंस रही होती ना। ये तो कितनी सीरियस शक्ल बना के खड़ी है। तुम्हारी एक्चुअली आंखें बंद है ना, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा।
3: अरमान
4: हाँ, तुम लोग जाओ ना पार्टी के लिए, मैं यही कहने वाला था। मायरा मुक्ति जाओ जाओ जाओ।
3: सुनो, हमेशा अलर्ट रहना, अटैकर से हिचकिचाना मत। अगर वो अटैक करे तो सीधा नाक पे पंच मारना, और ध्यान से, मेरी नजर तुम दोनों पे है।
4: ओए हेलीकॉप्टर मम्मा।
3: वो क्या होती है?
4: हेलीकॉप्टर की तरह अपने बच्चों पे मंडराने वाली मम्मा जो तुम बनती जा रही हो।
3: उसे हेलीकॉप्टर मम्मा नहीं, उसे जिम्मेदार मम्मा कहते हैं। तुम चुप करो।
4: तुम आंखें खोलो, आंखें खोलो।
3: कैसे खोलूं?
4: तो मैं ना माओ की हिस्ट्री की पहली माँ होगी जिसकी बेटियों ने उस पर पेपर स्प्रे यूज किया है। ये रुक, आंखें खोलो।
3: अपनी गर्लीज की सेफ्टी के लिए मुझे कुछ भी मंजूर है।
4: ओ, अच्छा चलो दिखाओ एक बार, दिखाओ दिखाओ कितनी लगी, दिखाओ तो सही।

0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में वही प्रेम ने प्रेरणा को गद्दार ठहरा दिया है, जिसके बाद देखिए कैसे शुरू हो गई है इनमें बहसबाजी।
1: प्रेम जिस काम कर शांत हो जाओ, हम कुछ प्लान करेंगे ना, ये आखिरी 30 लोग थोड़ी थे यार। तुम
2: वो 30 लोग मुझ पर हंस रहे हैं प्रेरणा।
1: ये ऐसा नहीं है, वो तुम पे क्यों हंसेंगे?
2: जस्ट शट अप। धोखा दे दिया, अब झूठी तसल्ली मत देना।
1: क्या मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, धोखा तुमने मुझे दिया है। प्रेम आज ये बात कह के ना तुमने हमारी दोस्ती को धोखा दिया है। बाहर वाले के कहने पे तुमने इतनी सालों पुरानी दोस्ती को अपनी दोस्त को बस तुम्हारे ये स्टूपिड ईगो ने ना आज मुझे थपके मार के गिरा दिया है।
0: ऐसे में प्रेरणा को अपने लिए गद्दार शब्द सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बात अब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है।
1: हमारी दोस्ती के खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया, तुम्हारी बकवास सुनी, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम ना ये डिजर्व ही नहीं करते हो। इसीलिए आज मैं ये दोस्ती खुद खत्म करती हूँ। आज से ना हम पार्टनर्स हैं और ना ही दोस्त।
2: अरे ऐसी दोस्ती से तो दुश्मनी बेटर है। तुझे यहाँ काम नहीं करना है ना तो जा, लेकिन यहाँ पर हर्ट होने का ड्रामा मत करना। जस्ट गो अवे।
1: हाँ जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना सह सकती थी उतना सह लिया, लेकिन अब तू सहेगा। ये श्रुति जी के साथ रह के ना तू तड़पेगा, तू जिंदगी भर ना दर्द में ही रहेगा।
2: प्रेरणा
0: ऐसे में राही दोनों को ही शांत करने की कोशिश कर रही है, और वो तो ये भी कह देती है कि प्रेरणा आज के बाद अनुपमा से नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए कैसे यहाँ प्रेरणा अपना स्टैंड लेती है और सभी को शांत कर यहाँ से फौरन निकल जाती है।
1: तुमने अपनी माँ से रिश्ता अपनी मर्जी से तोड़ा था, मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलूंगी। एक बार सांडा बहन को सांडा बहन नाम मानने की गलती मैं पहले भी कर चुकी हूँ। उन्होंने तो मुझे बेचारी माफ भी कर दिया, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करने वाली।
2: गलती मुझसे हुई है जो तुझे अपना दोस्त माना। तुझे लगता है वो तेरी सगी है तो जा, लेकिन अब से तू मेरे कैफे में पार्टनर तो क्या, इम्प्लॉय के भी लायक नहीं है। You're fired.
1: प्रेम तुझे ना आजकल सब बात देर से ही समझ में आ रही है। तू इतना भी नहीं समझ पाया कि तेरे फायर बोलने के पहले मैं कैफे छोड़ चुकी थी। तेरा कुछ नहीं हो सकता,

तो क्या हैं आपके लाइफस्टाइल गोल्स? क्योंकि संडे को कोई बना रहा है चीट डे, तो कोई इसे बना रहा है डिटॉक्स डे। वेल, हमारा गोल तो सिर्फ एक ही है कि लेकर आए आपके लिए एंटरटेनमेंट भरपूर। तभी तो संभाल कर रखी है हमने आपके लिए स्पेशल स्टोरी। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।

अनुपमा की मीता कोठारी संग रंगबाजी दिलों की का रणबीर, उत्कर्ष गुप्ता और शिवानी चक्रवर्ती का गेरुआ इश्क। पर ये कोई सीरियल नहीं बल्कि है नजारे आगरा में हुए एक ब्यूटी पेजेंट न्यूरिताज सीजन 9 के, जहां पर अभिनेता उत्कर्ष गुप्ता और अभिनेत्री शिवानी चक्रवर्ती बने चीफ गेस्ट। भाई ये दोनों पहुंचे हैं ताज नगरी आगरा में, जहां उत्कर्ष अपनी फीमेल फैंस का दिल चुरा रहे हैं और देखिए अपने डांस से दर्शकों को मनोरंजन कर रहे हैं। वहीं शिवानी चक्रवर्ती बिखेर रही हैं अपने हुस्न की बिजलियां, कभी ताजमहल के किनारे, कभी अपनी चमक धमक और अपने डांस से कर रही हैं खास मेकअप, पहने हैं खास कॉस्ट्यूम और इसके साथ उन्होंने नूर-ए-ताज सीजन 9 के विनर्स को किया फेलिसिटेट। दोनों सेलिब्रिटीज ने मंच पर अपना खास प्रेजेंटेशन दिया और साथ ही चुना मिस्टर एंड मिस नूर-ए-ताज को भी।

आगरा के मशहूर आर्टिस्ट सनी चौहान ने किया शिवानी का मेकअप, वहीं पर इनकी ज्वेलरी है मुकुंद ज्वेलर्स की। इसी के साथ इन्होंने मंच पर अंतर्राष्ट्रीय मॉडल्स और फिजिकली चैलेंज मॉडल्स को भी सपोर्ट किया, और साथ साथ शिवानी और उत्कर्ष ने इन व्हीलचेयर मॉडल्स का खड़े होकर सम्मान भी किया। तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं आगरा, जहां पर भानु प्रताप और नूरताज की पूरी टीम कर रही है इन सेलिब्रिटीज का स्वागत। उत्कर्ष और शिवानी एक साथ पहुंचे मुंबई से सीधा आगरा, जहां पर हुआ उनका वेलकम।

0: इसके बाद उत्कर्ष तो चल गए आराम करने, लेकिन शिवानी को घूमना था ताजमहल।
1: तेरे ख्यालों में बीते राते।
0: तो वो पहुंची भानु प्रताप और नूरी ताज की पूरी टीम के साथ आगरा का ताजमहल देखने। भैया आप रोडेड फोटोज खिंचाए, रील्स बनाई और अपने इस विजिट को किया यादगार।

0: इसके बाद शिवानी पहुंची अपने रूम में क्योंकि उन्हें रेडी होना है नूरे ताज के लिए। तो आइए देखते हैं कैसा है शिवानी चक्रवर्ती का ये नूरे ताज मेकओवर जो कर रहे हैं आगरा के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट सनी चौहान।
1: जो देखे एक बार को पलट के बार बार।
0: शिवानी रेडी है और सनी ने शुरू किया उनका मेकअप। सबसे पहले उनके चेहरे को प्राइम किया गया, उसके बाद उनके चेहरे पर बेस लगाया गया, उसके बाद आई मेकअप और उसके बाद बाकी के स्टेप्स।
2: नमस्कार, मैं हूँ शिवानी चक्रवर्ती और मैं आज कुछ डिफरेंट मूड में हूँ। एक्चुअली मैं अपना नूर बढ़ाने आई हूँ क्योंकि मैं नूर-ए-ताज सीजन 9 में आई हूँ आगरा, और मेरा नूर बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगे हमारे सनी जो कि आज मेरे मेकअप आर्टिस्ट है। सनी ने कुछ सोचा है, सनी ने सोचा है कि
3: वेरी सटल एंड ग्लॉसी मेकअप, लाइक
2: मेकअप नो मेकअप,
3: नो मेकअप लुक।
2: हाँ,
3: तो हम शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से
2: जो कि होता है स्किन प्रेप। विदाउट स्किन प्रिपरेशन हम कुछ भी नहीं लगा सकते लाइक फाउंडेशन और मेकअप, बिकॉज प्रिपरेशन इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज हमारे पोर्स ओपन होते हैं, पोर्स को बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक हम कहते हैं ना कि मॉइस्चराइजर कर लो या फिर प्राइमर लगा लो, तो आजकल एक बड़ा अच्छा सा मतलब बोलते हैं ना सही सा एक चीज़ निकल गई है, मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमेशा प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कुकिंग के पहले हम मसाला तैयार करते हैं ना, वैसे मसाला तैयार करना बहुत जरूरी है।

0: ये भी एक थ्री का ही एक और एड ऑन है, करेक्टर ही है। अगर हमें अंडर आई को और भी थोड़ा सा सटल करना है तो उसके लिए एक करेक्टर आई, तो वी आर डूइंग लाइक माई अंडर आई का थिंग। उसका लॉजिक आई गेस आपके स्किन टोन से अंडर कलर है, तो फिर जब आप उसके ऊपर फेयर कलर या जो भी है थोड़ा सा टोन लाइटर टोन करते हो तो अंदर वाला जो करेक्टर है वो छुप नहीं है, बिकॉज वही मिक्स एंड मैच वाली चीज है, दैट्स वाई वो छुपता है।
1: आई एम यूजिंग फाउंडेशन।
0: इट्स अ फाउंडेशन इज लाइक इट्स ऑलवेज अ लिक्विड बेस्ड थिंग। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि मेरा केकी और वाइटिश नहीं चाहिए मुझे, मुझे थोड़ा सा सटल एंड ड्यूई चाहिए, और ड्यूई इफेक्ट के लिए हमेशा लिक्विड फाउंडेशन वर्क्स। सो यस वी आर गोइंग विद दैट।

0: I'm using a concealer.
1: कंसीलर अब आप देख रहे होंगे कि ये लाइटर शेड है और हमने अंदर जो यूज किया था करेक्टर वो भी कई लोग उसे कंसीलर मान के चलते हैं क्योंकि कुछ हम कंसील कर रहे हैं कुछ सील कर रहे हैं तो इसमें फर्क ये है कि हमने उसको अंडर आई में किया और जहाँ पे थोड़ा डार्किश और पैचिश था वहाँ किया लेकिन इससे हम एक अंडर आई को और हमारे चिक्स की जो टी जोन जिसे कहा जाता है उसको इन्हेंस कर रहे हैं अभी वही कर रहे हैं हमारे टी को थोड़ा सा ब्राइट अप तो वो पॉप अप हो जाता है एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये जो ब्लेंड कर रहे हैं आप देख रहे होंगे ब्लेंडर ब्लेंडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ मेकअप है
0: मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली टैपिंग कर रहा हूँ टैपिंग मोशन में मैं ऑनली ब्लेंडर चला रहा हूँ ना कि मैं उसे
1: हाँ रब कर रहे हो क्योंकि वो
0: रब करेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा रब कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट सेट हो रहा है आई एम यूजिंग ब्लश
1: एंड माई फेवरेट स्माइल बिकॉज हमें इसमें स्माइल भी करना होता है और इससे सारी जो एक कहते हैं ना केक पे चेरी वो वाली चीज है कि आपके जितने भी आपने फाउंडेशन लगाया है वाइट पाउडर यूज किया है कंसीलिंग किया है जो भी किया है उसके बाद जो उस पर एक पिंकिश इफेक्ट आता है या रेडिश जो भी वो उसको इन्हेंस करके आपके जो चिक बोन को भी अपलिफ्ट करता है और फेस को एक बहुत अच्छा लुक देता है

0: हम सेटल करेंगे आइस को। सो नाउ इट्स बेकिंग टाइम। आई मीन सॉरी, केक नहीं बनाना है और मेरे फेस में केकी मेकअप भी नहीं करना है, बट जो हमारा स्टेप है अगला वो है बेकिंग वाला, बिकॉज ये हम इससे हम सेट करेंगे, राइट सर?
1: इससे हम मेकअप को लॉक करेंगे।

0: Eye makeup. The most important part of our face.
1: Makeup.
0: Yeah. Eye. Because eye एक ऐसा part of your face है ना जो आपके हर चीज को बयां करता है. हम कहते हैं जैसे एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, हमें कहा जाता है कि कुछ नहीं करना है, आपकी कुछ लाइंस नहीं है जैसे आपके पास, तो आपकी आंखें ही आपका यू नो फीलिंग को बयां करेगी, लोगों तक पहुंचाएगी. तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना इम्पोर्टेंस है आंखों का.

0: अब हमारा अगला स्टेप है हाइलाइटिंग.
1: हाइलाइटिंग खुद में आप दैट वर्ड ओनली सेज द थिंग कि हाइलाइट करना, तो आपके चिक्स को, आपके जो हमने जो ब्लश किया है उसको एक क्या बोलना चाहिए आपको, एक ग्लो देता है. यस, द ग्लो इज द वर्ड, बिकॉज आप मैटिश करते हो, फिनिश करते हो, तो उसके बाद जो एक ग्लो आता है ना, वो आपका हाइलाइटर से आता है.

ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि आप फेस को मैच करना बहुत जरूरी होता है. हम फेस का मेकअप कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि नीचे जो नेक है वो डिफरेंट शेड का लग रहा है. सो ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी आप लास्ट टच दो मेकअप का, तो नेक करके ही बाहर निकलो.

दिस इज अ वेरी न्यूड कलर, न्यूड शेड यू कैन से, जो कि आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच हो जाएगी. आप अगर देख रहे होंगे तो लाउड है ही नहीं उस कलर में, कुछ डार्किश चीज है ही नहीं. लाइक एक होता है ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन होता है, रेड होता है. ऑफकोर्स वो कलर्स भी बहुत प्रिटी होते हैं और उसमें भी हम बहुत अच्छे लग सकते हैं. क्योंकि मेरा जो ड्रेस का कलर है वो बड़ा सटल न्यूड है, तो उसके साथ फेस को मैं बहुत लाउड नहीं कर, लिप्स को मैं बहुत लाउड नहीं कर सकती. सो मैंने यही एक कलर चूज किया है. थोड़ा सा अपने लिप्स से थोड़ा ऊपर लगाती हूँ, बिल्कुल ऊपर नहीं बट थोड़ा सा ऊपर, सो दैट वो प्लम्पी लगे और फुलर लगे. सो मेरे क्योंकि थोड़े से पतले लिप्स हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा फुलर करने के लिए तो एक छोटा सा हैक है कि आप उसको थोड़ा, और एक और होता है कि आप पहले ये और ये इसको लगाए और फिर लगाए. तो अभी मैं लगा चुकी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट या दिस इज अ न्यू शेड बट

हम अंडर आई का अंडर आई काजल बोल सकते हो, अंडर आई शेडो बोल सकते हो, जो एक डीप लुक देता है आपकी आंखों को, एक डेप्थ देता है। तो अब मेरा लास्ट स्टेप है मेकअप फिक्सर, इसके बाद

0: जो मेरा कॉर्सेट है, जो ब्लाउज है, वो काफी हैवी है और तो और उसके नेकलाइन को देखते हुए हमने एक प्रिटी सा नेक पीस चूज किया है और वो थोड़ा सा चोकर स्टाइल है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं करें, मिनिमल सा एक बट तैयार होना, मेकअप करना एक आर्ट है आर्ट, और उस आर्ट को निभाना भी एक आर्ट है आर्ट. तो मैं अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हूँ, थोड़ा सा कुछ बाकी है, तो हम मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद.
1: फाइनली शिवानी रेडी है, अब वक्त है कॉस्ट्यूम पहनने का, और कॉस्ट्यूम पहनकर शिवानी रेडी है और इन्होंने अपना आलिया भट्ट मोमेंट कर डाला.
0: Excited, and I'm always very excited and you know happy when it comes to fashion show and ramp walks, because main bhi ek time pe modeling kar chuki hu, ramp walk kar chuki hu, to wo sare din yaad aate hain, and being a guest over there is like a very happy thing and a very proud thing, and thank you for having me here. Look, jaise ki humne makeup karte hue aapko bataya tha ki dress reveal nahi kiya tha, of course this dress is very pretty and these are it has flowers all over the lehenga. And it's very western and Indo-Western kind of thing. और सारे यहाँ पे diamonds का sequence है. And जैसे कि मैंने कहा था, ये मैंने minimal रखा है. And makeup of course, it's very classy and pretty. So I hope मैं अच्छी लग रही हूँ आप लोगों को. मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. Thank you. गुलाबी आँखें.
1: भाई नूर ए ताज की चीफ गेस्ट जो है, इसलिए इनका नूर इस हैप्पी डांस में नजर आया.

नुरताज की शुरुआत हुई शिवानी और उत्कर्ष की इस ग्रैंड एंट्री के साथ, जी दोनों ने बॉलीवुड स्टाइल में एंट्री मारी, जहां पर बिल्कुल शाहरुख और काजोल बनकर दोनों ने अपने गेरवा डांस और इस गेरवे अंदाज को पेश किया। खास था उत्कर्ष गुप्ता का ये स्टंट वाला डांस, जिसे देखकर यहां की लड़कियां पागल हो उठी। और देखिए उत्कर्ष गुप्ता कैसे बन गए आगरा में लड़कियों के।

इसके बाद इवेंट शुरू हुआ। सबसे पहले यहां पर विदेशी और देशी मॉडल्स ने शिरकत की।

0: इसके बाद उर्ष गुप्ता ने स्टेज पर आकर आगरा वासियों से बात की।
1: कहते हैं ना ये प्यार की नगरी है, तो सच में ये प्यार की नगरी है। यहाँ पे 3-4 निशानियां और छोड़ के जानी चाहिए, शायद नेक्स्ट निशानी मैं ही छोड़ के जाऊंगा। नहीं, बहुत प्यार दिया है इन सब ने। और जो नूरे ताज था, जो जिस इवेंट के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, उसने भी काफी प्यार दिया। मुझे देख के इतना अच्छा लगा स्टेज पे हर टैलेंट को। मतलब कुछ भी बैरियर्स नहीं है, ना एज का बैरियर है, ना आपकी एबिलिटीज का कि आप में क्या गलत है क्या अच्छा है, सब। और मेरे लिए भी जिंदगी में सारे इंसान जितने भी सांस लेते हैं वो मेरे बहुत प्रिय हैं। सबसे प्यार करो और एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद एक अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। ये मैंने अपनी मम्मी पापा से सीखा है। सो या यहाँ पे देख के लगा मुझे सबको कि सब अच्छे इंसान है, इसीलिए दे आर गुड आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच।
0: इसके बाद कुछ और फैशन के राउंड्स, जहां पर आगरा के जाने पहचाने लोगों ने वॉक किया, जिनमें शामिल थे सोना मेकओवर्स और महालक्ष्मी मेकअप स्टूडियो की टीम भी।

अपना दुलार केक के कपड़ों को भी मॉडल्स ने पेश किया। उसके बाद शिवानी चक्रवर्ती ने सारी टीम को सम्मानित किया। उत्कर्ष गुप्ता ने भी कई लोगों को सम्मानित किया। और आखिर में वक्त था मिस्टर एंड मिस नूरे ताज को चुनने का, क्योंकि उत्कर्ष और शिवानी यहाँ पर एक और मिसेज इंडिया हेमा बैजल के साथ थे। तो हेमा, शिवानी और उत्कर्ष ने फाइनली तीन विनर्स को चुना।

0: आखिर में शिवानी, उत्कर्ष और हेमा ने किया ये धुरंधर डांस और अंत में सबके साथ डांस करते हुए हुआ नूर ए ताज का समापन, जो लेकर आए हैं भानु प्रताप सिंह और उनकी पूरी टीम। इस शो को होस्ट किया था भानु ने, जिन्होंने अपने चटपटे अंदाज से माहौल को बनाए रखा और साथ साथ आगरा वासियों को दिया एक नया मंच। लेकिन खास था शिवानी और उत्कर्ष का प्रेजेंस, जिसने इस नूर ए ताज के नूर को और बढ़ा दिया।
1: एक्चुअली जब वेलकम हुआ था तभी से मैं भानु का एक यू नो वाइब्स देख रही हूँ कि सबके साथ लगा है, सारे लोग, सिर्फ हम तो चलो गेस्ट हैं, हमारे लिए तो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरह से देख रही हूँ कि उनके जो ग्रुप को लेके चलना और एक टीम को लेके चलना, सब कहाँ है, कैसे है, क्या है, मैनेज करना, वो मैंने देखा भानु के अंदर है। और वो प्यार भी देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने कितने स्पेशल परफॉर्मेंस जो हमने देखे स्पेशल लोगों के, उनको लेके आना ये एक बहुत अच्छा थॉट है। क्योंकि हर रिजेक्ट तो इंसान बहुत जल्दी लोगों को कर देते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट करता है वो आई गेस काबिल तारीफ काम आप कर रहे हो। और मुझे लगता है इस चीज़ की दुआ आपको जरूर मिलेगी।
2: थैंक यू सो मच,
1: जरूर मिलेगी आपको वंदना दोनों को, बिकॉज आपने यही सब कुछ बोलते ना, सब पूर्ण कर लिया आपने, आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे।
2: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आप आगरा आए और इतना प्यार आपने हमारे ऑडियंस को दिया, और ये मेरे लिए वाकई सपने जैसा है, क्योंकि मैं आपको सीरियल में ना
1: देखता हूं, मुझे ये इनका कमेंट कमेंट आता है
2: किस तरफ से होते हो, आज किस तरफ से, मायके की या ससुराल?
1: आज मैं बेटियों की तरफ से।
2: क्या बात है, हमारी नूर ए ताज की बेटियों की तरफ से।
1: यस,
2: और सास बहू और बेटियों की तरफ से।
1: इसीलिए तो बोला।

0: वसुधा किस तरह बिता रही हैं अपनी संडे की छुट्टी। आई एम श्योर चल रहा होगा कोई ना कोई फैमिली ड्रामा या फिर कोई हार्ट ब्रेकिंग इमोशनल मोमेंट, या फिर हो सकता है कहानी में आया हो कोई ऐसा ड्रामा जो लेकर आ रहा हो हमारे लिए गुड न्यूज, क्योंकि हो सकता है थम गया हो ये परेशानियों का पहाड़ और हो सकता है रुक गया हो यहाँ पर ट्विस्ट का पानी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा वसुधा के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज।
1: आज सजे आए वे सारा शहर।
2: चंद्रिका और प्रभात की 27th वेडिंग एनिवर्सरी

0: वसुधा और देव का रोमांटिक अंदाज
1: जो डिगदे अंजू खुशियां आज तो सजना
0: झूम कर नाचा चौहान परिवार
1: जो डिगदे अंजू खुशियां आज तो सजना
0: जी टीवी के सीरियल वसुधा में भाई आज फाइनली फिर एक बार मनाई जा रही है प्रभात और चंद्रिका की 27th वेडिंग एनिवर्सरी। भाई इसके पहले हम सब जानते ही हैं कि जब ये सेलिब्रेशन रखा गया तो किस तरीके का तूफान चौहान परिवार में आया था, लेकिन आज फिर एक बार बिना किसी ट्विस्ट बिना किसी हाई वोल्टेज ड्रामा के ये घर में रखी गई है पार्टी, जहाँ पूरा गाँव इकट्ठा हुआ है। साथ ही चंद्रिका और प्रभात के सभी बिजनेस पार्टनर्स भी यहाँ खास मेहमान बनकर पहुँचे हैं, लेकिन अगर कमी है तो वो वसुधा की, क्योंकि वो आज भी चौहान परिवार की बहू के रूप

0: रूप में नहीं बल्कि उनके वर्कर की हैसियत से इस पार्टी में मौजूद है। जिस बात को देखकर देव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तो वो चाहता है कि वसुधा भी इस घर की बहुरानी बनकर रेडी शेडी होकर यहाँ पहुँच जाए, लेकिन वसुधा इस बात से इनकार कर देती है।
1: देव को अभी भी उम्मीद है कि मासा मान जाएंगी, लेकिन मासा के मन में कुछ है। मासा ने जो पूजा की थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए शायद देव को भी लगता है कि कहीं ना कहीं मासा के दिमाग में कुछ चल रहा है। लेकिन दादी सह सपोर्ट के लिए, पूरी फैमिली सपोर्ट के लिए है, तो सबसे बड़ी बात है कि मासा कब मानेंगी और क्यों नहीं मान रही है। ये सिर्फ पापा साहब और दादी साहब को ही पता है, वो देव को भी नहीं पता है कि मासा क्यों नहीं मान रही है। तो पूरी कोशिश की जाएगी, शायद हम वसु को जैसा मासा का कहना है कि उसे बिजनेस के भी बारे में समझ होती तो शायद हम उसे कुछ समझाएं, पढ़ाएं, लिखाएं या फिर मासा को समझाएं अच्छे से बैठा के, तो लेट्स सी क्या होता है।
0: लेकिन फिर कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि भाई देखिए कैसे यहाँ पर वसुधा भी सज धज कर पहुँच जाती है, वो भी बिल्कुल चौहान परिवार की बहुरानी बनकर। और बस फिर क्या शुरुआत होती है इस सेलिब्रेशन की, जहाँ सबसे पहले प्रभात और चंद्रिका एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं।

उसके बाद शुरू होती है डांस मस्ती। तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में देव और वसुधा ने किया क्यूट सा रोमांटिक डांस।

0: इतने महीनों से देव जिस चीज की चाह देव ने और पूरे परिवार ने जो चाह रखी हुई थी वो फाइनली हो रही है। मासा और पापसा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं हम खुशियों के साथ, बिना किसी नेगेटिविटी के और बिना किसी डर के और बिना कुछ कोई सच छुपाए। पापसा वापस आ गए हैं, मासा ठीक हो गई हैं और वसु भी हमारे साथ पार्टी में है, पूरा परिवार है और नाच गाना चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जो मैरिज एनिवर्सरी में खलल पड़ गई थी, नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी, उसके बाद फाइनली हम उस पार्टी को पूरा कर पाए। वो मेरे अंदर का जो बॉलीवुड घुसा हुआ है वो निकला है और हमारी एक एडी है राजश्री करके, तो वो शीज़ अ वेरी गुड डांसर, तो उन्होंने मुझे स्टेप सिखाए हैं बहुत सारे और बीच बीच में मैंने अपने अंदर का जो बॉलीवुड कीड़ा है उसको निकालने की कोशिश की है, तो दोनों का मिश्रण किया गया है डांस के लिए।
1: मैं आपको बता दे, आज जो वसुधा इतनी सज धज कर पहुंची है इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका को जाता है, क्योंकि उसके पीछे चंद्रिका की मेहनत है।
2: मेरा तो कारण पूरी अभी ऑडियंस को पता ही है क्या है रीजन जिसके वजह से वसुधा को अपना नहीं रही हूँ। एट द सेम टाइम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो क्योंकि उसे बहू के रूप में अपना नहीं पा रही हूँ इसीलिए उसको चीज़ें दे रही हूँ ताकि वो कहीं ना कहीं मन में यू नो कॉम्पेंसेट कर पाए ऐसा फील होने के लिए। मतलब ऐसा फील कर रही हूँ मैं कि शायद इससे कॉम्पेंसेट हो जाए कि मैं उसको बहू नहीं मान पा रही हूँ।
1: ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से वसुधा चंद्रिका के दिल में जगह बनाकर चौहान परिवार की बहू बन पाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: संडे के सुकून भरे दिन में प्यार और कंपेनियनशिप का एहसास और भी गहरा होने वाला है। क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है अपराजिता और रक्षित के साथ? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है अब ना अपराजिता के चेहरे पर रहेगी एक प्यारी सी मुस्कुराहट, क्योंकि रक्षित की एंट्री जो हो गई है। लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
4: प्लीज मैं आपसे भाग मत दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता
1: हूँ। ईरा के आगे गिड़गिड़ाए अपराजिता के पिता। अपराजिता पर लगे झूठे इल्जाम। रक्षक बना बाप बेटी का रक्षक। स्टापलेस की सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में भाई ईरा ने अपराजिता को कंपटीशन से साफ साफ डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो भी ये इल्जाम लगाकर कि उसके पिता उसकी साड़ी बुनने में मदद करते हैं। हालांकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। भाई हम सब जानते हैं कि जब ईरा ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था तब गोपाल जी सिर्फ और सिर्फ मशीन ठीक कर रहे थे। ऐसे में जब ईरा ऑफिस में आकर इस बात का ऐलान करती है, देखिए कैसे अपराजिता उसकी बहना और उसके पापा तीनों ही इस ऑफिस में पहुंचकर उससे इल्तिजा करते हैं कि वो झूठे इल्जाम ना लगाए।
5: मौका हर बार तुम्हें मौका क्यों मिला है? एक बार उस मौके के चक्कर में तुम्हें एक्स्ट्रा पेपर भी दिए गए, लेकिन अब तुम्हारा कोई भी चक्कर नहीं चाहिए।
6: बेटा मेरी बेटी बोलती
5: है एक बार उनकी बात सुन लीजिए। एक बार उसने
6: सचमुच हमारी मशीन खराब हो गई थी, मैकेनिक आके आगे भी ठीक कर गया था, मैं किसी से चेक कर रहा था।
5: आप शोर किया और उनका भी और राइटर भी की कहानी अच्छी है, लेकिन मुझे आपकी झूठ नहीं सुन। I'm not interested। आपकी भी चीटिंग करके पेपर ले गई और मेरे पास इस बात का सबूत है। आपके पास आपकी बात का क्या सबूत?
6: सबूत मेरे सबूत चाहिए मेरे पास। इतनी वो सारा मोहल्ला जहाँ अप्पू बड़ी हुई है, बचपन से देखा है उस मोहल्ले में अप्पू को, जो जानता है कि अप्पू कभी झूठ नहीं बोलता। अप्पू का स्कूल जहाँ वो बड़ी है, वो जानता है कि अप्पू ने सिर्फ मेहनत और लगन से सारी चीजें हासिल की है। सबूत मेरी अपनी परवरिश है जिसने उसे हमेशा सिखाया है कुछ ऐसा काम मत कर जो उसे अपनी नजर से गिरा है। सबूत खुद अप्पू है जो अपने राहों में आए हर मुसीबत को, हर रुकावट को एक चुनौती बनाती है, एक बहाना नहीं। ये सारे सबूत सिर्फ एक बार फिर से कह रहे हैं कि मेरी अप्पू ने कुछ गलत नहीं किया। ये बुनाई, ये सारी बुनाई, ये कारीगरी, ये अप्पू तो इसे ना बुनी, उसके लिए सिर्फ एक कला नहीं है, उसके लिए भगवान का रूप। और आदमी जिंदगी में अपने से झूठ बोल सकता है, लेकिन भगवान से कैसे कोई झूठ बोले?
5: इना, सो मच ऑफ ड्रामा, चीटिंग, झूठ। लगता है तुम ये सब और पाप से नहीं कर सकते।
1: भाई गोपाल जी ईरा की काफी मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। भाई वो तो गोपाल जी को भी झूठा और मक्कार ठहराती है, जिसके बाद अपराजिता बेहद गुस्से में आ जाती है कि उसके पिता के साथ कोई इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखिए कैसे गोपाल जी ईरा के पैरों में गिर गए, अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। इतना ही नहीं भाई, उन्होंने तो अपनी इज्जत की फिक्र ना करते हुए भी अपराजिता के लिए स्टैंड लिया।
7: तुम इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हो गई।
8: नहीं नहीं, ये बहुत गलत।
4: मैम प्लीज, मैम मैं आपसे भाग मत दो, मैम आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को वैसे मत
5: प्लीज पापा।
1: इसी हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच होती है रक्षित की एंट्री, जो देखिए कैसे ईरा को खूब खरी खोटी सुनाता है।
9: तुम्हें जो कुछ भी किया ना उसके लिए तुम राम गोपाल अंकल से माफी मांगोगी। कमा,
10: मैं क्यों माफी मांगू?
9: तुम्हारे पापा के उम्र के आदमी के साथ तुमने जो बदतमीजी की है उसके लिए माफी मांगो।
1: भाई इतना ही नहीं, वो तो अपराजिता के पापा से माफी भी मांगता है, और यही बात वो ईरा से भी कहता है कि वो उनसे माफी मांगे। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अपराजिता वापस इस कंपटीशन का हिस्सा बन पाएगी और क्या कुछ हंगामे होते हैं पूरे कंपटीशन के दौरान। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: संडे के चिल मोड में भी यहाँ पर इमोशंस का जुनून होने वाला है। वेल, ये दोनों भी नहीं लेते हैं चैन की सांस, क्योंकि इनकी कहानी में भी आते रहते हैं ऐसे ऐसे ट्विस्ट कि हम सब भी सोच में पड़ जाते हैं। तो कौन सी नई सिचुएशन का कर रहे हैं गुरु और रूहानी आज सामना? क्या आएगी यहाँ से कोई गुड न्यूज, या फिर से आएगा यहाँ पर कोई नया ट्विस्ट? लेट्स चेक इट आउट।
11: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: गुरु के घर नर्स की एंट्री।
1: सीधे रस्ते की ये तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल।
0: रूहानी ने बदला नर्स में अपना भेस। गुरु, नर्स और टशन। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में पुष्पी का ध्यान रखने के लिए घर में एक नर्स को अपॉइंट किया गया है, जो आज गलती से गुरु के कमरे में पहुंच गई। और भाई देखिए कैसे अपने कमरे में इस नर्स को देखकर गुरु उस पर भड़क रहा है।
2: तुम्हें यहाँ माँ की देखभाल के लिए रखा है, हमारी ताप चाक के लिए नहीं, यहाँ क्या करने आई?
3: सच्ची है,
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? चलो निकलो यहाँ से।
3: कैसे जी, आप तो नाराज हो गए, भूखा है ना, और जहाँ इलाज की जरूरत रहती है ना, अब मैं लाई और कुछ प्रेजेंट। ये सब छोड़िए, नाक पे से ये जो गुस्से की मक्खी है ना, इसे हटाइए और बताइए कि वो मलम पट्टी का बॉक्स कहाँ है। अरे ये लो, ये रहा बॉक्स।
2: इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, हमारी कंपाउंडर का है।
0: ऐसे में गुरु के दिल के साथ साथ उसके हाथों पर भी चोट लगी है और वो अपनी मरहम पट्टी खुद ही कर रहा है। लेकिन भाई इस नर्स से देखा नहीं गया और देखिए कैसे वो उसकी मरहम पट्टी करने के लिए पहुंच गई। भाई आपको बता दे कि ये नर्स और कोई नहीं बल्कि गुरु की रूहानी है, जो उसके दर्द को देख नहीं पा रही है और इसीलिए तो तड़प रही है।
2: वो कंपाउंडर हमारी पत्नी है।
0: ऐसे में देखिए कैसे भाई बड़े ही प्यार से रूहानी गुरु के हाथों में पट्टी बांध रही है। लेकिन गुरु को बिल्कुल भी इस नर्स की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई वो तो अपने गुस्से वाले फेस को लेकर बैठा है। साथ ही साथ रूहानी गुरु से उसकी वाइफ के बारे में बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी वहाँ होती है गुरु की माँ यानी कि नकली माँ पुष्पी की एंट्री, यानी कि नर्स को गुरु के इतना करीब देखकर उस पर भड़क उठती है।
3: पट्टी, हम तो पट्टी कर रहे थे। वैसे आंटी जी, हमको क्या लगता है ना कि घर में बहुत बड़ी वाली नजर लगी है। देखिए ना, वो कोई ना कोई टूटा फूटा ही रहता है। अरे जोगी जी, क्या है ना, ओ मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं थोड़ी मजाक की।
4: बस बस, तुम्हारा हंसी मजाक वाला स्वभाव देख लिया मैं। अब जाओ निकलो यहाँ से।
3: ओके।
4: निकलो।
3: तुम्हें चोट कैसे लगी, दिखाओ मैं।
2: अरे बात जरा सी चोट है, कुछ नहीं है, चिंता मत कीजिए।
4: जसलीन बहुत ही रिश्तेदार, वो फंसी है नर्स, जिससे देखो सब हमारे गबरू जवान बेटे पे डोरे डालती हुई नजर आती है। लगता है हमारे प्यारे बेटे की शादी करवानी पड़ेगी।
2: हमें कोई शादी नहीं करनी है।
4: क्यों नहीं करनी है, किसी को पसंद करते हो?
2: किसी को पसंद करते हैं ये तो नहीं पता, पर किसी को पसंद कर नहीं पाएंगे कभी, ये यकीन है।
0: भाई पुष्पी तो गुरु की शादी करवाना चाहती है लेकिन गुरु ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। असल में पुष्पी ने रूहानी को घर से बेदखल कर दिया है और उससे पहले देखिए कैसे गुरु अपनी रूहानी का ध्यान रख रहा है। भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसकी हर चीजों का ख्याल कर रहा है। भाई गुरु के इश्क का जुनून उस पर इतना सवार है कि उसे हर जगह रूहानी दिखाई दे रही है। तभी तो देखिए कैसे भाई गुरु और रूहानी एक दूसरे के करीब है, लेकिन ये हकीकत नहीं बल्कि गुरु का ख्वाब है। जब से ही रूहानी घर से गई है वो बेहद परेशान है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कैसे गुरु रूहानी को घर में वापस लेकर आता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: रिलैक्सेशन मोड के बीच भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ शॉकिंग रेवलेशंस और कुछ शॉकिंग मोमेंट्स, क्योंकि संडे की इस छुट्टी में भी आपके लिए एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए कम। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: बीती शाम हुआ वरुण धवन, पूजा और उणाल की आने वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर लॉन्च, जिसके बाद शाम में रखी गई एक खास पार्टी, जो कि थी सिर्फ और सिर्फ फिल्म मेकर डेविड धवन के लिए, जहां पर उनकी सिनेमैटिक जर्नी को प्रोत्साहन किया गया। ऐसे में यहां पर डेविड धवन पहुंचे अपने बेटे वरुण धवन संग। इसी खास मौके पर नजर आए सलमान खान। भाई सलमान खान और डेविड धवन का काफी पुराना रिश्ता है। डेविड धवन के साथ सलमान खान काफी सारी फिल्मों में नजर आए। और उसी की तरह सलमान खान और वरुण धवन का रिश्ता भी बहुत गहरा है, और ये वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है।

बैसी के साथ यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुँचे गोविंदा के बेटा और बेटी यानी कि टीना और यश। जी हाँ, गोविंदा ने भी डेविड धवन के साथ काफी फिल्मों में काम किया है, ऐसे में वो तो इस मौके पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनके फैमिली के सदस्य यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुँचे। इसके अलावा पूजा हेगड़े, अनु मलिक, रमेश तौरानी, एजाज खान और कई सारे कलाकारों ने यहाँ पर शिरकत की। शाम हुई रीलॉन्च पार्टी हाउस ऑफ अकीना की, जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंची जैकलिन फर्नांडिस। रजत बेदी, करणवीर ग्रोवर, करण कुंद्रा और तेजस्वी। इसके अलावा कई और कलाकार बने खास मेहमान।

0: देख लीजिए टू जूलियट जद्दी का ये नया प्रोमो, जहां हीर और नवाब के बीच शुरू होगा नया सफर।
1: मंगलम भगवान, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है।

0: अलग नहीं हो सकते नवाब, कोई अलग नहीं कर सकता हमें।
1: भोपाल में हुआ पेडी का म्यूजिक लॉन्च, सामने आए हैं ये सभी खास नजारे, आइए डालते हैं इन पर एक नजर।

स्टार प्लस लेकर आ रहा है पूरे स्टार परिवार को एक साथ। जी हाँ, क्योंकि बहुत जल्द होने वाली है स्टार स्टडेड फैशन नाइट। ऐसे में सामने आई हैं ये तस्वीरें। अब इस फैशन नाइट में कौन किस तरीके से अपने फैशन को एम्ब्रेस करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।

0: कहीं रेसिपी फेल हो रही है तो कहीं लाफ्टर का प्रेशर कुकर हो रहा है फुल ऑन टाइट। अब हमारे लाफ्टर शेफ्स तो लेकर हाजिर हैं हमारे लिए कॉमेडी वाला तड़का और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट फुल ऑन। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको लाफ्टर शेफ के इस मंच पर और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इस मंच पर आज, क्योंकि यहां तो है हमारे लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। लेट्स चेक इट आउट।
1: यस, ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि दुनिया देखती रह जाए दोनों को।
2: लाइटर, अचारी मसाला बनाना आता है?
3: नहीं
2: तो सीखिए।
3: आप
4: और मैं बेस्ट है देखना। अभी लो आटा गूंदो। अच्छा मैं गूंदता हूँ।
5: करण भाई कहाँ है?
6: सुन, अरे करण भाई छोड़,
7: करण भाई छोड़,
6: मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मैं बहुत,
5: मुझे विश्वास ही ना तेरे पे, दो पैसे का विश्वास ना।
6: कोई बात, इट्स ओके, इट्स नॉट अबाउट मनी।
8: अच्छे लोग होते हैं, कुछ कुछ उनकी मनुष्यत होती है, साथ
1: है।
8: मैं हर रोज जीतता हूँ, अगर आज मैं नहीं जीता तो समझ जाता।
1: नहीं, मेरे
8: गलती सीखी में नहीं है।
2: मटरी के लिए अच्छा आटा गूंदना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
3: हाँ तो तुम शुरू करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर।
2: नहीं, कहाँ जाके आता हूँ
3: मैं? आ जाऊंगा एक डेढ़ घंटे में। अरे
5: अचार कैसे बनेगा?
9: अचार वही बना, बता
3: रहा हूँ।
2: पाउडर, बस एक चीज है जो आपको नहीं करनी है।
3: क्या?
2: जो आप हर डिश के पहले बोलते हैं ना, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा सर, और जब मैंने बोला मैंने स्टार जीता है, आपने कभी स्टार नहीं जीता ये बोल के।
3: ये नहीं बोलूं?
2: जी बिल्कुल नहीं।
3: बोल दूंगा मुझे बनाना नहीं आता और बना के दिखा दूं?
2: ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी है अपने को, है? खाना बनाने ओवर एक्टिंग नहीं करनी।
3: माय गॉड, नील को एक्टिंग बताएगी। अबे एल्विश, इधर किसी को मत बताना।
5: किसी को बताना ही नहीं तो मुझे भी मत बता।
3: सुन, अचार नहीं बनाना है, इट्स अ पाउडर फॉर्म, किसी को मत बताना।
5: कौन सा पाउडर? इधर। अरे अचार बनेगा भाई?
3: नहीं बनेगा अचार यार।
5: अरे भाई बनता
3: नहीं
5: है,
3: बनेगा
9: वो आटा तो गूंज आता है।
3: सुन ये देख,
5: अरे ज्यादा बोल रहा तेरा पार्टनर,
6: व्हाई डोंट यू इग्नोर हिम?
10: बेसन जाएगा तो?
8: बेसन नहीं जाएगा, बेसन के लिए, फिलिंग के लिए। बेसन यहाँ रखो।
10: पक्का?
5: बेसन भी है ना,
9: बेसन इसमें जाएगा अचार में।
11: सारे तो मसाले हैं।
5: सौंफ भी डाल रहा है क्या?
9: थोड़ा सा भून रहा हूँ मैं।
11: मैदा, अजवाइन,
9: अजवाइन आटा बनाना इसी के साथ, जीरे के साथ और अजवाइन भर भर के साथ।
11: ब्लैक कलर का?
9: हाँ, जो व्हाइट करके डालते हैं।
11: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं।
3: ये गोलू?
5: हाँ। अरे भाई,
3: आर यू इनसेन?
5: इनसेन?
3: हाँ, ये इसका अलग से बनेगा, इसमें मत डाल।
5: अरे यार तू तो खाए
3: यार। नहीं, ये नहीं डलेगा, ये अलग से इसका चूर्ण बनेगा।
5: अरे भाई मेरे को पता है, ये मत सिखा तू आटे का कुछ भी, तुझे पता ना है क्या मैं कौन हूँ?
3: तू आटा क्वीन है,
5: आटा प्रिंस है,
3: आटा किंग, क्योंकि मेरा अभिषेक है।
2: तुम्हें सौटे करना आता है?
12: सौते ले क्या होते हैं
1: यार? अमाल, अचारी फिलिंग कैसे बनेगी?
12: अचार का है?
1: अल्लाह अम्मा।
3: बाबा ध्यान में लग चुके,
12: आज खाना मेरे पार्टनर के साथ बाबा ही बनाएंगे।
3: बाबा,
1: why you behaving like I don't know anything?
9: हमसे बात करती है तो कैसे बात करती है? आज क्रश आया तो why you behaving like I don't know anything? है ना, हमारे साथ कैसे बात करती है?
12: चिल्ला चिल्ला के
9: तू लेके गया मेरा, तू लेके गया मेरा।
1: पिंक कलर अर्जुन आएंगे दोस्तों, मेरे कलर अर्जुन आएंगे।
9: अमर, अगर हम जीतेंगे तो तू भी जीतेगा, आगे बता।
3: आगे फिर उसके बाद अपने फ्लेवर से अचार बना ले।
9: अचार कैसे बनेगा?
3: फ्लेवर से,
5: इसे कुछ ना आवे, ऐसी बेकू बना रहा
3: था। बता यार रोहित। समझा? कुली
9: कृष्णा को
3: अली,
2: वो खुद बच रहा है अंकिता से, वो मुझे क्या बचा?
1: बचने की जरूरत नहीं उसको,
3: मेरे को कन खजूरा दे दिया।
1: उसे एक सुंदर सी लड़की मिली है, वो बहुत खुश है बिट्टू।
2: लड़की तो ठीक है।
3: अरे लड़की मिली है, सुंदर सी लड़की कहाँ है अली?
1: ये आची का जो लेप है ना,
2: आप क्या करेंगे आप उसका?
1: बिट्टू अच्छे से बनाओ।
3: अरे भौजी आज हाथ लगा के दिखाओ।
1: बिट्टू मेरा स्टूल क्या है? बिट्टू
3: आज मेरे पास जन्नत है।
1: अपनी चिल्लर अपने पास रखिए, मेरे पास डॉलर है, डॉलर।
7: ये ऐसा नहीं लग रहा चेस की दो गोटियां लड़ रही हैं।
1: आज के एपिसोड के बाद विक्की भैया कोयले का काम छोड़ के कान के वो होती ना मशीन उसका काम करेंगे।
9: बस स्टैंड के बाहर नहीं बैठे होते?
1: हाँ हाँ हाँ, वो देखो। अरे अरे बाप रे,
12: इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही
1: है। बीवी के साथ नहीं करते, देखा विक्की भैया, देखा।
12: वरना मेरा जो एपिसोड शुरू होता था ना, शुरू ही कलेश के साथ होता था।
1: कोई बात नहीं, मैं भी तो नहीं करती अपने पति से इतनी प्यारी बातें, जितनी मैं कहां गया।
0: तो ये था आपका संडे स्पेशल एंटरटेनमेंट डोज, जहां मिला आपको फैमिली टाइम, रिलैक्सेशन और टीवी वर्ल्ड का फुल ऑन ड्रामा। अब लौटेंगे फिर, तब तक आप एंजॉय कीजिए अपना संडे, वक्त बिताइए अपनी फैमिली के साथ और देखते रहिए सास बहू और बेटिया। सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम जगह। बिल्कुल यहीं करेंगे हम आपका इंतजार और लेकर आएंगे एक बार फिर आपके लिए नए नए ट्विस्ट और नए अपडेट्स।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
14: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help you save. Valid through 5/27 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
15: Visit your nearby Lowe's on East 17th Avenue in Hutchinson.
16: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
17: One more, let's go.
16: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
18: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
22: Sage University, transforming your passion into profession.
23: लखनऊ में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन की शानदार पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, गाड़ी चालकों पर किया जा रहा ठंडे पानी का छिड़काव। भागलपुर के लोगों के लिए गुड न्यूज, विक्रमशिला सेतु पर सीमा सड़क संगठन का कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा वैली ब्रिज किया तैयार, 100 टन स्टील का हुआ इस्तेमाल। एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में गुरविंदर वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरा कर रचा इतिहास, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। तमिलनाडु के कोडई कनाल में दिखे समर फेस्टिवल के रंग, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे पर्यटक, वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग शिंकुला में उमड़ी भारी भीड़।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
23: चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, शनिवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 96,116 यात्रियों ने किए दर्शन। पिछले महीने 19 अप्रैल को शुरू हुई थी यात्रा, अब तक 20,76,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। बद्रीनाथ में बीते दो दिनों में ही 60,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 5,56,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन पूजन। केदारनाथ धाम में अब तक 8,11,923 भक्त कर चुके हैं दर्शन, गंगोत्री में 3,52,162 और यमुनोत्री धाम में 3,56,031 तीर्थयात्री अब तक पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में पहले दिन 6,605 भक्तों ने किए दर्शन, बोले सोनिहाल, सर श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठी पूरी लोकपाल घाटी। दिल्ली में सुबह सुबह इंडिया गेट और करतब पथ पर दौड़ लगाते दिखे बड़ी संख्या में लोग, सुबह के सुहावने मौसम का उठाया लुत्फ। राजधानी में आज फिट संडे ऑन साइकिल्स प्रोग्राम के 75वें संस्करण का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने चलाई साइकिल। साइकिल रैली से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर की कसरत, आरएसी की 12वीं बटालियन के जवानों ने लिया हिस्सा। गानों की धुनों पर कसरत करते लोगों में दिखा उत्साह, फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिया गया संदेश। फिट संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी हुए शामिल, कई जानी मानी हस्तियों ने भी की शिरकत। अहमदाबाद में भी हुआ संडे ऑन साइकिल्स इवेंट, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य के मंत्री हुए हर्ष अंग भी हुए शामिल। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर हुआ संडे ऑन साइकिल्स इवेंट, एक्टर आयुष्मान खुराना ने बढ़ाया लोगों का जोश। संडे ऑन साइकिल्स इवेंट बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं भी शामिल, फिटनेस और सेहत के लिए जागरूकता का दिया गया संदेश। विजयवाड़ा में स्वच्छ आंध्र अभियान के तहत चलाया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप, राज्य के मंत्री, अधिकारियों और आम लोग शामिल। एक महीना तक चलेगा आंध्र में ऑपरेशन क्लीन स्वीप, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई पहल। रेड कार्पेट पर सितारों की रौनक, इस दाद कान फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी हुई, पूरी फिल्मी दुनिया के दिग्गज एक साथ नजर आए। क्रिस्टियन की फ्योर्ड ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जीता पाम डी और अवार्ड, रेनेट रिसिंदे और स्टैन भी रेड कार्पेट पर नजर आए। कान क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का भी दिखा जलवा, व्हाइट आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आई। ऐश्वर्या राय का लुक सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, यूजर्स ने की जमकर तारीफ। पैंट सूट के साथ ऐश्वर्या ने डायमंड रिंग पहनकर अपने लुक को किया कंप्लीट, फैंस ने उन्हें कान फेस्टिवल की क्वीन का दिया तमगा। अर्जुन तेंदुलकर की शानदार गेंदबाजी देख भावुक हुए पापा सचिन, शेयर की खास पोस्ट, बेटे को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने पूरे 4 ओवर डाले, प्रभसिमरन सिंह का अहम विकेट भी झटका। कोलकाता दिल्ली के बीच आज आईपीएल सीजन का आखिरी लीग मैच, नाइट राइडर्स के पास प्लेऑफ में जाने का आखिरी मौका। ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, शाम 7:30 पर शुरू होगा मुकाबला। कोलकाता 13 मैचों में 13 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान, दिल्ली पहले ही प्लेऑफ से हो चुकी है बाहर। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी, लोगों को धूप से बचने की सलाह, जरूरी होने पर ही घर से निकले बाहर। उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 47 तक पहुंच सकता है पारा। बंगाल में भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बाजार में पसरा सन्नाटा, घर से निकलना हुआ मुश्किल। कटिहार में मौसम में जबरदस्त बदलाव, आंधी तूफान से मची भारी तबाही, कोई हताहत नहीं। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन बना तालाब, शेड से झरने की तरह पानी गिरते नजर आया। चमोली में कंचनगंगा के ऊपर टूटा ग्लेशियर, पानी की तरह बहते हुए दिखा बर्फ। ग्लेशियर पिघलने से नहीं हुआ कोई नुकसान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इम्फाल में कोकोमी संगठन ने निकाली युवा बाइक रैली, सेव मणिपुर का दिया संदेश। चेन्नई में सफाई कर्मचारियों और पुलिस ने पेश की मिसाल, पब्लिक टॉयलेट में मिले बच्चे की बचाई जान। महिला सफाई कर्मचारियों को लावारिस हालत में मिली थी बच्ची, इंक्यूबेटर की सहायता से शिशु को ले जाया गया हॉस्पिटल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्मारती, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन। गंगा दशहरा से पहले महाकालेश्वर मंदिर में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने की पूजा अर्चना। तेज गर्मी के बावजूद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, जय श्री राम के जयकारे लगाते कतारों में लगे लोग। करीब 1 से 2 लाख श्रद्धालु कर रहे श्री राम मंदिर में दर्शन, गर्मी की छुट्टियों के अलावा गंगा दशहरा मनाने रामनगरी पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात। कुपवाड़ा में ऐतिहासिक थिटवाल वॉर मेमोरियल पर मनाया गया थिटवाल डे 2026, सेना के अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि। थिटवाल डे 2026 के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह ने पेश की उद्यमिता की मिसाल, मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर कर रहे हैं कमाई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत लगाई गई मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट, लोगों को मिल रहा है रोजगार। तमिलनाडु के थूथुकुडी में जलीय परिंदों की बहार, सैलानियों के लिए माहौल हुआ शानदार। तमिलनाडु के कोडई कनाल में दिखे समर फेस्टिवल के धूम, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र। समर फेस्टिवल में शामिल होने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का जमकर लिया मजा। आसमान में रंग बिरंगी और अलग अलग कलाकृतियों आकृतियों वाली पतंगों ने मोहा लोगों का मन, काइट शो में कार्टून कैरेक्टर वाली विशाल पतंगी बनी आकर्षण का केंद्र। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस रंगीन नजारे को कैमरे में कैद करता नजर आया, शीप एंड रैबिट वूल रिचर्ड्स स्टेशन हुआ आयोजन। मशहूर स्टेशन में प्राकृतिक खूबसूरती के बीच हुआ फेस्टिवल ने बढ़ाया पर्यटकों का उत्साह, ठंडी हवाओं और रंगीन पतंगों के बीच उत्सव में रंगों में रंगा पूरा इलाका।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है
तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर

जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दो

0: दोबारा लौट कर नहीं आएगी, तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा, अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: लखनऊ में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन की शानदार पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, गाड़ी चालकों पर किया जा रहा ठंडे पानी का छिड़काव। भागलपुर के लोगों के लिए गुड न्यूज, विक्रमशिला सेतु पर सीमा सड़क संगठन का कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा वैली ब्रिज किया तैयार, 100 टन स्टील का हुआ इस्तेमाल। एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरा कर रचा इतिहास, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। तमिलनाडु के कोडई कनाल में देखे समर फेस्टिवल के रंग, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक, वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग, शिंकुला में भारी भीड़ उमड़ी।
11: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, और आज बात माँ गंगा की होगी। तो वो गंगा जिसकी हर एक बूंद में समाहित है अमृत, जो मोक्षदायिनी है, उस निर्मल गंगा की धारा कल और अधिक चमत्कारी हो जाएगी, क्योंकि आने वाला दिन है गंगा दशहरा, वो दिव्य तिथि जब माँ गंगा साक्षात धरती पर आई थी। गंगा धरती पर ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को आई थी और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। मोक्षदायिनी गंगा की धरती पर अवतरण की महिमा क्या है, आपको कैसे करनी है माँ गंगा की पूजा आराधना, कैसे स्नान और दान से हो सकता है आपका कायाकल्प, आइए जानते हैं।

0: ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी, जब पतित पावनी गंगा का हुआ था धरती पर अवतरण। सनातन संस्कृति में गंगा मात्र एक नदी नहीं है, बल्कि मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली माता है, जो पापनाशिनी और उद्धार करने वाली है। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक की यात्रा में गंगा के तट पर कई तीर्थ आते हैं, जो भक्तों को सदियों से धर्म का मर्म समझा रहे हैं। भक्तों के पाप और संताप का हरण करने वाली है माँ गंगा। गंगा जिसकी हर बूंद को पवित्र माना जाता है और जिसकी लहर पर प्रवाहित होती है भक्ति और आस्था, वो माँ भी है, देवी भी है, शक्ति भी है और उद्धारिणी भी है। जन्म जन्मांतर के पाप धोने वाली गंगा के धरती पर आने की कहानी असाधारण है। मान्यता है कि गंगा दशहरा ही वो तिथि है जब भागीरथ ऋषि अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। तब से माँ गंगा के अवतरण को गंगा दशहरा के रूप में मनाने की परंपरा है।
1: ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि गंगे तब दर्शनाद मुक्ति, गंगा जी का तीन बार नाम लेने मात्र से, गंगा गंगा गंगा कहने मात्र से समस्त पापों की मुक्ति हो जाती है। और गंगा त्रिपथ गामिनी है, गंगा तीनों लोक में बहती हैं, पृथ्वी में भी हैं, आकाश में भी हैं और पाताल में हैं। तो गंगा दशहरा का सबसे बड़ा महत्व इस दिन ही गंगा मैया धरती लोक पर आई थी, और वो तिथि थी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि थी। उसी दिन से समस्त सनातन धर्मावलंबी, समस्त हिंदू जनमानस गंगा दशहरा पर्व मनाया जाने लगा।
0: पंचांग की तिथि कहती है कि 25 मई को गंगा दशहरा की तिथि पड़ रही है। कहते हैं गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने किए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा की तिथि पर भक्त गंगा में स्नान करते हैं और माँ गंगा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस तिथि की महिमा क्या है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाभ मिलता है। इस बार गंगा दशहरा 25 मई को मनाया जाएगा।
1: गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने का सर्वोत्तम महत्व ये है कि आज ही के दिन गंगा मैया धरती लोक पर आई थी और यहाँ पर स्नान करने मात्र से जीव के पाप, ताप, संताप और तीनों जन्म के पापों का समन होता है। साथ साथ में हमारे जो आंतरिक आभ्यंतर जगत के पाप होते हैं, जो मन से पाप हो जाते हैं, तो मन से पापों की निवृत्ति के लिए गंगा स्नान करने से हमारे मानसिक जो बीमारियाँ हैं वो समस्त दूर हो जाती हैं। इसलिए गंगा दशहरा पर हमें गंगा स्नान करना नितान्त आवश्यक है।
0: कहते हैं बड़े भाग्य से गंगा मैया के दर्शन होते हैं और उससे भी उत्तम भाग्य हो तो मिलता है उनके जल में डुबकी लगाने का अवसर। पतित पावनी गंगा से केवल धार्मिक भावना नहीं जुड़ी है, विज्ञान भी इस अद्वितीय जल के गुणों के आगे नतमस्तक है। गंगा का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था, साथ ही ये शिव जी की जटाओं में निवास करती है। शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदिनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई है और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वो अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर हो जाते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है।
1: इस दिन प्रायः मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ मंत्रों का जप करें, जैसे गुरु जी के द्वारा प्रदत्त किया हुआ गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान शिव जी का जो दिव्य महामृत्युंजय मंत्र है तो उस महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, शताक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, यदि संभव नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, यदि और संभव है तो हनुमान जी का जप कर सकते हैं। इस दिन जो मंत्र आप करेंगे वो मंत्र संसिद्ध होते हैं, क्योंकि तिथि जो है गंगा दशहरा की पूर्णा है, पूर्णा शुमांगल्य विवाह यात्रा समस्त प्रकार की यात्राओं को संसिद्ध करती है, समस्त प्रकार की मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराती है।
0: सनातनी आस्था है कि माँ गंगा की कृपा से ही धरती पर जीवन संभव हुआ, इसलिए इस दिव्य दिन का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन ये जानना भी परम आवश्यक है कि गंगा दशहरा के दिन क्या कर सकते हैं।
1: गंगा दशहरा पर किया हुआ दान अक्षय होता है, अक्षय पुंडरी का अक्षय, तो मानो गंगा दशहरा के दिन जो आप दान देते हैं वो आपका अक्षय हो जाता है, उस दान के फल का विनाश नहीं होता। इसलिए गंगा दशहरा के दिन लोग फल मीठा वस्त्र आदि आदि जिसके पास यथासंभव जो जो वस्तु सामग्री है वो दान करके पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।
0: किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करें, घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ को या तो जल में डालें या पीपल के नीचे रख दें, माँ गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पूजन में जो भी सामग्री प्रयोग करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए, विशेष रूप से 10 दीपक का प्रयोग करें, दान भी 10 ब्राह्मणों को करें। गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान का फल अक्षय माना गया है, तो आप भी शास्त्रीय विधान से गंगा दशहरा का पर्व मनाएं और माँ गंगा की विशेष कृपा के भागी बन जाएं। लेकिन तब क्या करें अगर आप गंगा नदी में स्नान ना कर पाए, और साथ ही जानेंगे माँ गंगा के अवतरण की कथा। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: गंगावतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। गंगा दशहरा पर माँ गंगा का पूजन अखंड पुण्य दिलाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पे गंगा स्नान और गंगा पूजन व्यक्ति के मोक्ष का कारक बन जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि माँ गंगा के अवतरण की कहानी आखिर क्या है।

0: शास्त्रों में वर्णन है कि माँ गंगा श्री विष्णु के चरणों से जन्मी है और इन्हें देवताओं की नदी माना जाता है, जिनका स्थायी वास शिव की जटाओं में माना गया है। पद्म पुराण में वर्णन है कि यदि कोई पापी भी गंगा का स्मरण करता है या गंगा जल छू लेता है तो वो भी उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेता है।
1: माँ गंगा की कृपा पाने के लिए ज्योतिषी प्रयोग की यदि बात करें तो गंगा जी का ज्योतिषी प्रयोग यह बताया गया है कि गंगा जी मानो चंद्रमा के कारक भी हैं। यदि आपको चंद्रमा की पीड़ा है, मानसिक अशांति है, सूर्य है, सर में दर्द रहता है, तो गंगा जी में जा करके आप सूर्य के निमित्त प्रायः एक नारियल फल, लाल फल, मीठा इत्यादि को अपने ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज उतार करके गंगा दशहरा के दिन यदि आप प्रवाहित करते हैं गंगा जी में, तो प्रायः वहाँ से आपको भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होगी।
0: स्कंद पुराण और भागवत पुराण में बताया गया है कि गंगा जल में अमृत जैसा गुण है जो शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता प्रदान करता है। धर्मग्रंथ के जानकार बताते हैं कि भले ही आप सारे तीर्थों की यात्रा कर लीजिए, बस एक बार माँ गंगा का सानिध्य पा लीजिए, आपको सारे तीर्थों का फल एक बार में मिल जाएगा।
1: नवग्रह की शांति के लिए जो गंगा जी में पक्षी रहते हैं, मछलियां रहती हैं, उनके लिए आप 108 आटे की गोली बना लीजिए और गंगा दशहरा के दिन एक एक गोली मछलियों को खिलाइए। इससे मछलियों का भी संरक्षण होगा, संवर्धन होगा और वहां पर रहने वाले जो जीव हैं, पक्षी हैं, उनको भी प्रायः आप कुछ खाद्य पदार्थ खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपको समस्त नवग्रहों की कृपा प्रसाद प्राप्ति होगी।
0: ये कथा है माँ गंगा के जन्मोत्सव की, जिसने भारतवर्ष का उद्धार कर दिया। ये मार्मिक कथा है जिसमें छिपा है राजा सगर पुत्रों का उद्धार। चलिए आपको वो कथा सुनाते हैं, एक ऋषि के शाप और एक राजा के तप की अनूठी कहानी है। कथा कहती है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था सगर। कहते हैं राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन राजा सगर के अश्वमेध घोड़ों को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। कथा कहती है अश्वमेध घोड़ों की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़ों को बंधा देखा तो आश्रम पर ही धावा बोल दिया। कथा है कि शोरगुल से तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई। तपस्या में विघ्न देख मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। कथा है कि राज सगर के पौत्र अंशुमान को जब इसका पता चला तो कपिल मुनि से अपने वंशजों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। कथा कहती है चला तो कपिल मुनि से अपने वंशजों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। कथा कहती है गंगा जल को धरती पर लाना आसान नहीं था, क्योंकि गंगा का वेग इतना प्रबल था कि उनके सीधे धरती पर आने का मतलब था तबाही। कहते हैं तब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। कथा कहती है माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने से पूर्व भगवान शिव के जटाओं में उतरी थीं। गंगा के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में बांध दिया, जिसकी वजह से उनको पृथ्वी पर उतरने का मौका नहीं मिला। इस बात का ध्यान भगीरथ को भी नहीं था। एक बार फिर उन्होंने भगवान शिव को अपनी कठोर तप से प्रसन्न किया और माँ गंगा को उनकी जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब जाकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया।
1: तो वहाँ पर कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे तो उन्हें लगा कि घोड़े को चुरा करके ये कपिल जी आकर यहाँ पर बैठे समाधि लगाए हुए हैं। तो सगर के 60,000 बालकों ने मानो अपमान किया और उस अपमान को किया और जैसे कपिल भगवान ने अपने आँख खोले तो सारे 60,000 बच्चे जल करके भस्म हो गए थे और उन्हीं को उद्धार करने के लिए इन्हीं के पुत्र, इन्हीं के प्रपौत्र श्री भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा जी को इस धरती लोक पर लाया।
0: माँ गंगा के अवतरण की कहानी। भागीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे चल रही थी। राजा भागीरथ पतित पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनको अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भागीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। कथा कहती है कि अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाने के बाद भागीरथ ने गंगा सागर में ही अपने पुरखों का तर्पण किया था। इसी स्थान पर सगर पुत्रों को मोक्ष मिला था। कहते हैं यहाँ स्नान करने वालों को माँ गंगा के साथ कपिल मुनि का भी आशीर्वाद मिलता है।
2: गंगा जल को शास्त्रों में जितना पवित्र माना गया है उतना ही शक्तिशाली भी माना गया है। बात अगर हम आयुर्वेद की करें तो आयुर्वेद में गंगा जल को अमृत बताया गया है, लेकिन इस तिथि पर अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर पाए तो आखिर आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं।

0: भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नदियों में मैं भागीरथी गंगा हूँ। इसलिए माना जाता है कि गंगा के दर्शन, स्पर्श और मात्र नाम लेने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि स्नान दान की दिव्य तिथि है गंगा दशहरा। सनातन संस्कृति में गंगा स्नान और दान का हमेशा से महत्व रहा है। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने और दान देने से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन तब क्या करें जब गंगा में किसी कारणवश डुबकी ना लगा पाए। चलिए जानते हैं इसका ज्योतिषीय समाधान।
1: इस दिन यदि किसी कारणवश आप गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर पर ही हैं, कोई बाल हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, किसी भी प्रकार के बूढ़े व्यक्ति हैं जो गंगा जी में नहीं जा करके स्नान कर सकते, छोटे बालक हैं, रोगी हैं, चल नहीं पाते, तो उनके लिए एक बाल्टी में जो भी आपका जल है उस जल के ऊपर प्रायः अपना हाथ रख के 3 बार गंगा गंगा गंगा का आपने उच्चारण कर दिया तो ऐसा शास्त्रों में मान्यता है कि गंगा जी उस पात्र में आ जाती हैं और अभिमंत्रित करके और गंगा जी का आवाहन करके गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को बोलते हुए गंगा गंगा गंगा केवल 3 बार बोलते हुए गंगा जी का आवाहन करके और फिर गंगा जल से स्नान करें।
0: घर में ही शीतल जल से स्नान करें, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं या तुलसी के पत्ते डालें। इसके बाद माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें। निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करें। तो गंगा दशहरे पर आप भी माँ गंगा की विधि विधान के साथ आराधना कीजिए। संभव हो सके तो जहाँ भी गंगा आरती होती है वहां जाकर माँ की आराधना में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। मन, कर्म और वचन से खुद को जाने अनजाने किए पाप कर्मों से मुक्ति की प्रार्थना कीजिए और जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसा दान कीजिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ गंगा आपके पापों का हरण कर लेंगी।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
5: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
4: Smartless.
6: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
4: Marketplace.
7: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
4: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
8: How are you?
9: Oh, fine.
8: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
10: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है, और ये खबर है कि उन्हें अब रास्ते में ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस बीच चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का उत्साह लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी झलक हर दिन आ रहे यात्रियों से जुड़े आंकड़ों से मिल रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: भगवान बद्री विशाल के द्वार पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी है। हर दिन हजारों लोग बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर के कपाट खुलने के बाद से लगातार यहां पहुंचने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। क्योंकि मौसम साफ है तो चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को हुआ था। 23 मई तक 35 दिनों में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। रास्ता दुर्गम होने के बावजूद केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी अब तक करीब 5.5 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्राओं के लिए व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के प्रयास लगातार जारी है। हालांकि परेशानी खासतौर से तब होती है जब चारधाम की यात्रा मार्ग पर लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है, लेकिन बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों को इस दिक्कत का सामना न करना पड़े इसके लिए जोशीमठ में ही अब खास ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है। इस तरह नई व्यवस्था के तहत
1: बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जोशीमठ में गुरुवार से लगातार जाम की स्थिति देखने को मिल रही थी, वहीं देख सकते हैं आप जोशीमठ के पेट्रोल पंप में हम हैं, जहां से वन वे शुरू हो जाता है। एक साइड से गाड़ियां जाती हैं, वहीं दूसरी साइड से आती हैं, लेकिन यहां से जो मार्ग आगे जाता है जीरो बैंड होते हुए मारवाड़ी तक ये मार्ग पहुंचता है, इस समय गाड़ियां ऊपर आ रही हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब एक साइड की गाड़ियां जो हैं, जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जानी है, उन्हें यहां पे रोक दिया गया है जोशीमठ में। आज से ये नई व्यवस्था पुलिस और प्रशासन द्वारा जो की गई है, यहीं पे गाड़ियां रहेंगी, ये लंबा जाम यहां पे इसे रोका जाएगा, ताकि जोशीमठ से मारवाड़ी तक की सारी गाड़ियों को रोका जाए और उन्हें मारवाड़ी विष्णुप्रयाग के करीब रोका जाए। वहां से जो वापसी होंगी, जब यहां से गाड़ियां ये एक साइड की चलेंगी,
2: हमारा पेट्रोल पंप के पास में और नरसिंह मंदिर वाली रोड पे हम यात्रियों की गाड़ियों को रोकेंगे, और नीचे हमारा जो मारवाड़ी पुल है उसके पास विष्णुप्रयाग की तरफ को गाड़ियां रुकेंगी। तो करीब आधे घंटे का हम इसमें टाइम देंगे और फिर इसको वन वे तरीके से हम इसको यात्रा रूट पे गाड़ियां हम चलाएंगे, ताकि गाड़ियां जाम में न फंसे।
0: प्रशासन और पुलिस ने जोशीमठ के पेट्रोल पंप से लेकर मारवाड़ी तक गेट सिस्टम और वन वे सिस्टम लागू कर दिया है। इससे एक बार में आने वाले यात्रियों की गाड़ियां इस रूट पर चलेंगी, तो अगली बार जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों को रास्ता मिलेगा।
3: आज से हमने ये व्यवस्था शुरू कर दी है यहाँ पर से, कि पहले हम एक तरफ से छोड़ेंगे और एक तरफ रोक देंगे, तो बीच इस ये जो हमारा 8 किलोमीटर का पैच खाली मिल जाएगा, और उसमें जब हमारा यहाँ से एक कानवाई टाइप चलेगी तो वो स्मूथली पार करेगी, तो वहाँ आधा घंटे में हमारा पूरा ट्रैफिक निकल जाएगा। जो 2-3-4 घंटे तक जाम लग रहा वो हमारे आधे घंटे में निकल जाएगा।
0: इससे फायदा ये होगा कि जोशीमठ में रोकी जा रही गाड़ियों के यात्रियों को चाय पानी और खाने पीने के लिए भी समय मिल जाएगा, उन्हें आगे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक पर भी दबाव नहीं पड़ेगा। वहीं पहाड़ों में मौसम के बदलाव को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट रखा गया है। साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का खास ख्याल रखने के निर्देश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं, ताकि हर तीर्थ यात्री की चारधाम यात्रा सुरक्षित तरीके से और सहूलत के साथ पूरी हो सके। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध, और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ।
6: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
7: What you got for me, Jack?
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
8: call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
9: It's your boy,
8: just
9: Jay-Z.
8: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: लखनऊ में लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन की शानदार पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, वाहन चालकों पर ठंडे पानी के फुहारे। बिहार के भागलपुर में लोगों के लिए शानदार खबर, विक्रमशिला सेतु पर बीआरओ ने किया कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा वैली ब्रिज किया तैयार, इस्तेमाल। एथलेटिक्स फेडरेशन टूर्नामेंट में गुरिंदर वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में की पूरी, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। तमिलनाडु के कोडई कनाल में देखे समर फेस्टिवल के रंग, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का आनंद उठा रहे लोग। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी, खूबसूरत नजारों के बीच मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी, वीकेंड पर हिमाचल के रोहतांग, शिंगुला में उमड़े पर्यटक।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के बाद जहां कई घरों में जश्न का माहौल है, वहीं कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कम नंबर आने के बाद मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सीबीएसई काउंसलर के पास मदद मांगने वाले छात्रों के फोन लगातार बढ़ रहे हैं। कई छात्र अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, लेकिन सभी को ये समझना होगा कि परीक्षाएं महज जिंदगी का एक पड़ाव होती हैं, मंजिल नहीं। कम मार्क्स नहीं बनेंगे आपकी बाधा। एक्सपर्ट से जानिए हर सवाल का जवाब। मार्कशीट की मोहताज नहीं होती है कामयाबी। हमारे साथ जाने माने एजुकेशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट भी रहेंगे मौजूद। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों के बाद काफी अहम मामला अब सामने आया है। कम मार्क्स पाने वाले कुछ छात्र बेहद तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड रिजल्ट के बाद कुछ छात्र चिंतित हैं। कम नंबर आने से कुछ छात्र उलझन में हैं, लिहाजा सीबीएसई काउंसलर के पास छात्रों के लगातार फोन आ रहे हैं। सीबीएसई ने ये फ्री हेल्पलाइन काउंसिल सेवा शुरू की थी। बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद कुछ छात्र अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं, कुछ छात्र खुद को असफल मान रहे हैं, तो कुछ अभिभावकों की उम्मीदों से भी परेशान हैं। कम नंबर आने की एक वजह गलत विषय चुनना भी है, क्योंकि पेरेंट्स के दबाव में अक्सर बच्चे ये गलती कर बैठते हैं। ऐसे में माता पिता को समझना होगा कि नतीजों पर बच्चों को ना डराएं, दूसरे छात्र से तुलना ना करें, अपने बच्चों पर भरोसा करें, बच्चों की सुने, उनके प्रयास की तारीफ करें। सफलता की मार्कशीट नहीं होती, बच्चों को भी नंबर की चिंता छोड़नी चाहिए। परीक्षाएं आती जाती रहती हैं, इसलिए तनाव और दबाव को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, ये बेहद जरूरी है। तो 12वीं के नतीजे आने के बाद आपको बता दें कि सीबीएसई ने छात्रों और पेरेंट्स की मदद के लिए टेली काउंसलिंग और ईमेल सहायता सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी समस्या रख रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने सीबीएसई के हेल्पलाइन काउंसलर डॉक्टर नेहा शर्मा से बातचीत की, सुनिए।
1: मेरे साथ डॉक्टर नेहा शर्मा है जो की काउंसलर है सीबीएसई हेल्पलाइन की। मैम, जो रिजल्ट आपने मुझे बताया कि इस तरह से मार्क्स की वजह से, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ये चीजें खराब हो रही हैं, क्या केसेस आपको सुनने में आए?
2: देखिए, केसेस बहुत सारे आते हैं, पर मैं अभी कुछ चुनिंदा केसेस की बात करूंगी जो कहीं ना कहीं मेरे को भी इम्पैक्ट करके गए। जैसे एक बच्ची थी, वो बहुत परेशान थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्क्स उसके अच्छे नहीं आए थे, और ऐसे में जहां पेरेंट्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए था, वह पेरेंट्स ने सपोर्ट करने की जगह उस पर सवाल उठाए कि तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, तुमने पूरी मेहनत नहीं की होगी, अगर प्री बोर्ड में मार्क्स आ गए तो कोई और ही कारण रहा होगा, और बहुत सारी चीजें,
1: तुमने नकल की होगी, ये आरोप
2: भी, बिल्कुल ये आरोप भी लगाया कि भाई प्री बोर्ड में तुम्हारे मार्क्स इसलिए ज्यादा आ गए कि तुमने, बिल्कुल तुम्हारी फ्रेंड्स ने तुम्हें मदद की होगी, तुमने चीटिंग की होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि देखिए, बच्चा तो बच्चा है, पर अगर पेरेंट्स भी उसके साथ बच्चे बन जाएं और ना समझो जैसा व्यवहार करने लगे, तो वो बात थोड़ा गलत हो जाती
1: है। क्लास का बच्चा था
2: ये बच्चा 12th का था, और
1: रिजल्ट
2: के बाद की ये कॉल थी, और बच्चे ने बहुत दुखी मन से बताया कि मैम, मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छे आए, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, पर जो मेरे रिजल्ट बोर्ड में मेरा एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया है, और मुझे मालूम है कि मैं पेपर बहुत अच्छा करके आई हूँ। उसका कहना है कि मेरे 15-16 नंबर आए थ्योरी में, अब उसका कहना है कि 21 नंबर का तो मैं एमसीक्यू ही सही करके आई हूँ, तो 15-16 नंबर आने की तो बात ही नहीं बनती। और मेरे पेरेंट्स को जब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने पेपर अच्छे से किया था, पूरी तरह से पूरा पेपर कंप्लीट करके आई थी, तो वो उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा दिमाग तो पूरा टाइम मोबाइल में रहता था, तुम्हारा दिमाग तो पूरा टाइम दोस्तों के साथ बातें करने में रहता था। बल्कि बच्चा इस बात से भी परेशान है कि मेरे खुद के पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे दिन रात मेहनत करते हुए देखा, वो मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं।
1: एक तरह से बच्चा डबल शॉक में है, एक तो वो खुद जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आया, ऊपर से उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैम, यहाँ दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो पेरेंट्स जो बच्चे को बोल रहे हैं वो, और दूसरा अगर बच्चे को अपना रिजल्ट अपनी मेहनत के हिसाब से नहीं लग रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, दोनों का सोल्यूशन क्या है,
2: देखिए
1: क्या गाइड किया मतलब आपने उसे भी?
2: हाँ बिल्कुल, पहले हम बात करेंगे कि जहां पर रिजल्ट की बात है, क्योंकि बच्चा हमारे को कॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि सीबीएसई क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसके बारे में उसे जानकारी मिले। तो सबसे पहले जहां पर आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, सीबीएसई रिजल्ट आने के तुरंत बाद पोस्ट एग्जाम फैसिलिटीज ओपन करता है, जिसमें सबसे पहले आप अपने जो भी आपका पेपर है उसकी फोटोकॉपी मांग कर सकते हैं। उस फोटोकॉपी को आप जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है और जो क्वेश्चन पेपर आपका आया वो भी वहां पर है, तो उससे मैच करके आप ये देख सकते हैं कि भाई आपका कहां पेपर ठीक था और कहां पर चीजें वैसी नहीं थी जैसा मार्किंग स्कीम के हिसाब से होना चाहिए। तो आप अपने पेपर की एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें आप अपने टीचर्स की भी मदद ले सकते हैं और उसके बेसिस पर आप सीबीएसई को कह सकते हैं कि भाई मेरा ये पेपर ठीक था, आपकी तरफ से शायद कुछ आगे पीछे हो गया है, मेरे ये मार्क्स बनते हैं। सीबीएसई आपको तुरंत उस चीज के मार्क्स देगा। और अभी रिसेंटली सीबीएसई ने एक और नियम लगाया है कि अगर सीबीएसई की गलती निकलती है तो जितना भी पैसा बच्चे को उस आंसर कॉपी को मंगवा लेने में और वो सारी जांच की प्रक्रिया में खर्च हो रहा है, जो उसे सीबीएसई को देना पड़ रहा है, सीबीएसई वो सारा पैसा बच्चे को वापस भी कर देगा।
1: ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये तो जो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन था। अब पेरेंट्स के साथ क्या हो?
2: देखिए सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर पेरेंट्स की ही पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स जो है पेरेंट्स अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का सोचते हैं। उनकी परेशानी यह है कि चलो मेरे बच्चे के नंबर कम आए उसका उन्हें शायद उतना दुख नहीं होता, मेरे ताऊ जी के चाचा जी के बेटे की बेटे का नंबर ज़्यादा आ गए मेरे बच्चे से, उससे ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो ये जो कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर एक ये भी होता है कि वो अपनी आशाएं अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के ऊपर डालना चाहते हैं, तो जब वहाँ पर एक ब्रेक मिलता है उन्हें, वहाँ पर एक उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती, तो वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं वो बौखला जाते हैं और उस बौखलाहट में उनको खुद से ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त जब बच्चे के लिए इतना सेंसिटिव टाइम है तो वो उस बच्चे की मदद करने की जगह अपना स्ट्रेस अपना जो प्रेशर है वो बच्चे को ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि इस वक्त एक परिवार के जैसे उन्हें साथ बैठना चाहिए, जो सपोर्ट सीबीएसई प्रोवाइड कर रही है वो करना चाहिए। और चलिए मान लीजिए बच्चे का पेपर खराब हो गया, रिजल्ट खराब हो गया, तो ये पूरी जिंदगी की तो परेशानी नहीं है ना, ये जिंदगी की किताब का एक पन्ना भर है, पलट दीजिए नया पन्ना आ जाएगा, नई इबारत लिख लीजिए, एक बार फिर से अपीयर कर लीजिए उस एग्जाम में। सीबीएसई आपको इम्प्रूवमेंट के मौके देता है, कंपार्टमेंट एग्जाम के मौके देता है, तीन तीन मौके देता है, और वो भी नहीं तो एक साल आपका जाएगा, एक साल पूरी मेहनत से दोबारा एग्जाम में अपीयर की।
0: देखिए विकल्प आपके पास कई सारे हैं, इसमें जरूरी ये है कि पेरेंट्स को भी समझना होगा और बच्चों को भी समझाना होगा कि परेशान होने से कुछ नहीं होता, जो रास्ते हैं उस पर अमल करना है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ मेहमान जुड़ेंगे आपको हम परिचय करवा दें। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इस वक्त सीमा त्यागी जी अध्यक्ष पेरेंट एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ गई है। सीमा जी बहुत स्वागत है आपका। रुचिका राय मदान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि शिक्षाविद है एजुकेशनिस्ट है। रुचिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें डॉक्टर गीतांजलि कुमार हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि स्टूडेंट काउंसलर हैं। और इनके साथ ही हम बता दें कि हमारे साथ थोड़ी ही देर में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बता दें डॉक्टर निशा खन्ना, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ये तमाम लोग होंगे, लेकिन सबसे पहले सीमा जी और रुचिका जी, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है। सबसे पहले सीमा जी आप इसका जवाब दें कि क्या अब ऐसा हो गया है कि 90% से अगर कम नंबर आ रहा है बच्चों का तो हम ये मान लें कि आप जीवन में असफल हो गए, ऐसा हो गया है क्या हमारे समाज में? आप
3: श्वेता जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपने टैगलाइन दिखाई कि मार्क्स आर नॉट द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस इन द लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है कि 90% से कम अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सफल नहीं होंगे। दूसरे अगर हम देखें तो हम इस बात को अब जज कर सकते हैं कि आफ्टर 12th जिन भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो जेई मेन्स आप देना चाह रहे हो, चाहे आप मेडिकल देना चाह रहे हो, चाहे कुछ और देना चाह रहे हो, तो वहां आपकी 12th की मार्कशीट सिर्फ एंट्रेंस के लिए है। वहां 95% मार्क्स है या 99 मार्क्स है तो उसकी कोई वेटेज आपको वहां नहीं मिलने वाली। दूसरे आफ्टर 12th जितने भी आपके लिए लाइनें खुलती हैं वो या तो सारे कंपटीशन बेस्ड हैं या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 90% से कम अगर आप हैं तो आप लाइन में कहीं नहीं खड़े हैं। श्वेता जी, इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो शुरू से ही कुछ मार्किंग बेस पर ही है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम है, चाहे हमारा समाज का ढांचा है, वो मार्किंग पर ही ज्यादा जोर देता है। अच्छा, ऐसा है भी इसलिए क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बच्चों को कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ता है। अगर 12th से निकले हुए वो बच्चे जो मेरे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, अगर वो सारे डॉक्टर बन जाएं, ऐसी फैसिलिटी मेरे देश में हो, तो शायद 12th के मार्क्स की कोई चिंता ही नहीं करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: अगर बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं और इतने इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार दे दे तो शायद इस बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि एक चीज
0: हम और इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं सबसे ये इस सवाल का जवाब चाह रही थी, इसलिए रुचिका जी आपके पास भी आते हुए और आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सीमा जी ने अभी बात कही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरीके का रहा है जहां पर मार्क्स की शुरू से ही बहुत अहमियत रही है, तो यहां बच्चा क्या करे? अगर वो 90% से कम आ रहा है तो वो तो ऐसे ही परिवार वाले हों, तमाम लोग हों, उसका तो ये कहना है कि भाई फिर तो जीवन आपका असफल रहा, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं जीवन में।
4: अब जो है काफी सारी जो है सिचुएशन बदल गई है, ये नहीं देखा जाता कि अगर 90% से प्लस है। अगर हम देखें तो पूरे साल में जब शुरुआत करी जाती है 12वीं की, तो पेरेंट्स और बच्चे उन दोनों को आपस में पता होता है कि असलियत क्या है। पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा बच्चा क्या 90 से ऊपर लाने वाला है, 95 से ऊपर लाने वाला है, या 70 से ऊपर लाने वाला है, या 75 या 80 से ऊपर लाने वाला है। अगर आपको याद हो तो अराउंड 20 इयर्स बैक देखें तो हमारे में ये कहा जाता था कि अगर हमारे 60% है, 70% है, डिस्टिंक्शन है और कॉलेजेस में एडमिशन बहुत इजी हो जाती थी। और अब आप देखेंगे तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेनी है तो CUT आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए भी आपको एक परसेंटेज चाहिए, उसमें भी परसेंटेजेस के क्राइटेरिया है, हर एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम्स है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया कि 90 प्लस से ऊपर है तो हम सफल हैं और 90 से नीचे तो हम असफल है।
0: बिल्कुल,
4: हर एक परसेंटेज पे आपके लिए हर लाइन ओपन है।
0: और डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर निशा, आपसे पहले भी बात हुई है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपने अपने एंड से दी है दर्शकों को। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक जिंदगी नहीं जुड़ी होती है, पूरा का पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है। आपसे यहां पर ये समझना चाहेंगे कि ऐसे में जबकि अभी रिजल्ट्स आ गए, जब आपको पता है, जो अभी रुचिका जी कह भी रही थी कि हर पेरेंट को पता होता है कि उसका बच्चा कितना मार्क्स लाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता एक अनड्यू प्रेशर, एक अनकॉल्ड अनसेड प्रेशर लगातार परिवार पर बना रहता है मार्क्स का?
5: देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, और कई बार पेरेंट्स भी अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर लाते हैं, कुछ सपने जो मेरे पूरे नहीं हो पाए वो मेरे बच्चे पूरे करें, ये एक माँ बाप की बहुत नॉर्मल सोच है। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, जब पेरेंट्स से अगर बात की जाए तो वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा, जैसे अभी मेरे जो एक कलीग है वो के बोल रहे थे कि मेरे हर बच्चा डॉक्टर बने, तो पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। और आज कॉम्पिटिटिवनेस का दौर है, कई बार पेरेंट्स खुद भी कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो अपने सेट ऑफ सिबलिंग्स के साथ हो, या किसी दोस्त के बच्चे के साथ हो, पड़ोसी के बच्चे के साथ हो, या रिश्तेदार के बच्चे के साथ, या अपने खुद के साथ कि मैं आपके जमाने में ऐसे मार्क्स आए थे, मैं ये करता था। तो मुझे लग रहा है पेरेंट्स को अपना प्रेशर कम करने की जरूरत है, और वो बहुत जरूरी है ताकि बच्चों पर दबाव ना पड़े। कई बार बच्चों पेरेंट्स के कहे बिना भी बच्चों पर अपना दबाव होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे पेरेंट्स की को ये चीजें बहुत अच्छे से की है, या उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, मुझे भी उतना ही परफॉर्म करना है, उससे कम मैं नहीं कर सकता। तो क्यों होता है, बच्चे खुद ही कई बार अपने आप को गिल्ट में रखते हैं, बच्चे खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसे समय में बच्चों को भी ये हौसला देना चाहिए, अगर मार्क्स कम भी है तो आपकी लाइफ खत्म नहीं होती, आप करियर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। और करियर के मायने पर ही आपके अच्छे या बुरे होने का, या आपके रिश्ते और आपकी पूरी लाइफ तय नहीं होती। ये माँ बाप ही सिखा सकते हैं, स्कूल में टीचर्स सिखा सकते हैं, क्योंकि स्कूलों की तरफ से भी बहुत प्रेशर आता है, तो ये प्रेशर तो माँ बाप की तरफ से है। तो मुझे लग रहा है माँ बाप को ये प्रेशर हटाना चाहिए। हाँ, बच्चा अगर कर रहा है उससे पूछिए, हम कहाँ आपकी मदद कर सकते हैं, आपको हमारी कहीं गाइडेंस चाहिए, हम वो कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को कुछ चीजों खुद गाइड कर सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं। इट इज नॉट कि आपको साइंस और पर लाइफ की बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज पेरेंट्स बच्चों को दे सकते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं, लाइफ स्किल्स जिसे बोलते हैं। तो वो लाइफ स्किल देना बच्चों को पेरेंट्स का फर्ज है, बट प्रेशर नहीं डालिए कितने मार्क्स ला रहे हैं। और बच्चा कम ला रहा है तो उससे पूछिए कहां उसे दिक्कत आ रही है, कैसे उस दिक्कत को दूर किया जा सकता है वो बच्चा बता सकता है। अगर जरूरत पड़ती है तो प्रोफेशनल्स के पास जाइए, आजकल करियर काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट है, अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, काउंसलर्स के पास जाइए, ताकि वो गाइड कर पाए आपके बच्चे को कि कैसे उन चीजों का सामना कर सकते हैं।
0: डॉक्टर निशा, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए सीमा त्यागी जी आपसे जाना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी है पेरेंट्स एसोसिएशन की, आप बेहतर बताएंगी आपको क्या लगता है कि जाने अनजाने में पेरेंट्स खुद कितना प्रेशर डाल देते हैं बच्चों पर मार्क्स को लेकर, एग्जाम को लेकर।
3: श्वेता जी, हम ये बात अगर आज से 15 साल पहले कह रहे होते तो मैं कहती कि 100% पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो पिछले 8-10 साल से ये ट्रेंड चेंज हुआ है। हम अपने आप ही देख लें, हम चार महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हम में से कितनी अपने बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डालती है कि भाई बेटा तुझे 90% ही लाने, क्योंकि अब पेरेंट्स बच्चों को बच्चों की च्वाइस के हिसाब से आगे बढ़ने दे रहे हैं। पहले जब हमारे आपके पेरेंट्स होते थे तो उनको नहीं इतनी नॉलेज होती थी, लेकिन अब पेरेंट्स क्योंकि पढ़े लिखे हैं, वर्किंग है, तो वो ये जानते हैं कि मैं अपने बच्चे में ये देखूं कि उसकी खूबी क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से बच्चा होता है, हर एक बच्चा एक सांचे में नहीं डल सकता।
0: बिल्कुल।
3: और आजकल इतनी सारी लाइनें बच्चे के लिए खुली हैं, बच्चे को नौकरी लेने के लिए ही पढ़ाई नहीं है, जीवन कैसे जीना है इसकी भी पढ़ाई है। जैसे अभी मैडम ने कहा कि हम बच्चों को लाइफ स्किल्स हम पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ट्रेंड हमने देखा है कि जो अपनी स्कूलिंग में बहुत टॉपर्स बच्चे होते हैं वो लाइफ में फेल हो जाते हैं। जब कोविड आया था तो हमने देखा था कि जो हमारे यहाँ के टॉपर्स यूएस में बैठे थे और जब उनकी नौकरी चली गई तो वो डिप्रेशन में आ गए और कुछ तो उनमें से अपने जीवन को खत्म भी कर चुके।
0: बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया सीमा जी, लेकिन इसी बात को मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब भी उस दौर से गुजरे हुए हैं। रुचिका, आपके पास आते हुए आप मुझे ये बताइए कि हम इसे ऐसे समझना चाहते हैं कि क्या हम आज के समय में, क्योंकि हमने जो फेज देखा है उसमें तो ये रहा है कि भाई अगर आप अच्छे मार्क्स ट्वेल्थ में नहीं लाते हैं तो अच्छे कॉलेजेस में भी आपके एडमिशन नहीं होंगे। आप डीयू की ही बात करें, पहले जिस तरह से उसमें होता था एडमिशन आपके होते थे तो कट ऑफ ही कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 98 point something, 96 point something परसेंटेज वहां आपको चाहिए होते थे, कट ऑफ लिस्ट ही ऐसे आते थे। ऐसे में उन बच्चों का क्या जिनकी अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी रही है, क्लैरिटी रही है, लेकिन मार्क्स उतने नहीं आए।
4: उसी को देखते हुए अगर आपने देखा होगा, आप डीयू की बात जैसे कर रहे हैं मैम, तो डीयू में अभी हमने सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम्स जो स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसको ही देखते हुए आपको एक दोबारा मौका है। आपके बारहवीं में नंबर अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन आपको एक दोबारा, अगर आपको अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन है जो कि बहुत अच्छे हमारे सारे कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स में आपकी परसेंटेज जिस हिसाब से, तो ये एकदम बारहवीं के रिजल्ट से हमें मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पे हमें दोबारा मौका दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहे डीयू के कॉलेजेस में जाना चाहें तो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम है। आप कोई भी कोर्स और करना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, आर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, हर तरह की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको दोबारा मौका दिया जाता है। जहां पे आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे ये क्लैरिटी चाहिए और वहां पे आपके उस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, आपको बारहवीं के एंट्रेंस

0: कि मेरे नहीं आए, तो आपके पास एक और मौका
1: बिल्कुल,
0: है उस
1: लेकिन अब ये है
0: इंसान
1: कि
0: से
1: हमारे
0: डायरेक्ट
1: समाज
0: करो।
1: में जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस वक्त अब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शंस कई सारे हो गए हैं, अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक ही सीमित चीजें नहीं रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी कई सारी चीजें हैं। डॉक्टर निशा, आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अक्सर देखिए पेरेंट्स बिना सोचे समझे अपनी उम्मीदों का बोझ बच्चों पर लाद देते हैं, ये एक सच्चाई है। एक ऐसे ही बच्चे की उलझन समझने की कोशिश करते हैं जो कि कॉमर्स लेना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में उसे साइंस लेनी पड़ी। अब सुनिए सीबीएसई काउंसलर के साथ इस छात्र की बातचीत, कैसे इस बच्चे को मिला उसकी समस्या का समाधान।
2: मैम, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैम,
3: ओके
2: मैम, मेरे जो है पीसीएम में साइंस में फेल हो गया हूँ मैम।
3: अच्छा, आपके साइंस में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आपके मार्क्स कितने आए हैं?
2: नहीं मैम,
3: ओके
2: मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता था, तो फादर ने इंसिस्ट किया कि नहीं आप पीसीएम लो, उस वजह से मैम मेरे कम नंबर आए हैं, तो आप प्लीज हेल्प करिए मैम।
3: अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने कभी घर पर इस बारे में बात किया कि आप साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं?
2: मैम मैं कर नहीं पाया, जब फादर ने इंसिस्ट किया तो मैं बोल नहीं पाया कि मैं कॉमर्स करना चाहता हूँ, पर मेरा फेवरेट कॉमर्स ही था मैम।
3: अच्छा, तो अब आप एक काम कीजिएगा, आप जरा अपने पेरेंट्स से एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि आप, क्योंकि आपके दो सब्जेक्ट्स में रिपीट थ्योरी हैं और अगर आप कह रहे हैं कि फेल हैं आप, तो आप आगे एक प्राइवेट कैंडिडेट के जैसे भी अपियर करके एग्जाम दे सकते हैं अगले साल साइंस के साथ, नहीं तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज करके 12th में दोबारा से कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेके दोबारा से आप 12th कर सकते हैं। पर उससे पहले आप एक बार अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि आपका मन किन सब्जेक्ट्स में लगता है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके पढ़ने पसंद हैं, और क्या पढ़कर क्या सब्जेक्ट्स जो हैं आपको अच्छे से समझ में आते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ बात सिर्फ साइंस या कॉमर्स पढ़ने की नहीं है, यहाँ बात ये भी है कि आप जो भी कुछ पढ़े आपको उसमें अपना फ्यूचर बनाना है। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वही चीज हमारे को अपने लिए चुननी चाहिए जिसको करके हम जिंदगी भर खुश रहें। तो अगर आप कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर और उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर करियर पाथवे में आगे जाकर अगर आप खुश रह सकते हैं, तो एक बार आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, और आई एम श्योर वो आपकी बात को समझेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। पर बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। क्या आप मुझे अपने पेरेंट्स से भी बात करवा सकते हैं? मैं उनसे भी बात करती हूँ, कर सकती हूँ।
2: बिल्कुल मैम, मैं श्योर मैम, मैं कराऊंगा, पेरेंट्स से भी बात करूंगा मैम।
3: हाँ, आप मेरे को पेरेंट्स से बात करवाइएगा, आप दोबारा इसी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, जब आप कॉल करेंगे तो आपको कनेक्ट कर देंगे, और जब कनेक्ट करेंगे तो मेरे को आप अपने पेरेंट्स से भी बात करवाइएगा।
2: श्योर मैम,
3: ठीक है, ठीक है,
2: थैंक यू मैम, थैंक यू, ठीक है,
3: थैंक यू, बेस्ट विशेस,
2: थैंक यू मैम।
1: तो सीबीएसई काउंसलर और एक छात्र की बात आपने सुनी, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर निशा, आपके पास आते हुए एक तो पहले जो आप कुछ कहना चाह रही थी वो भी आप कहिएगा, लेकिन साथ ही साथ आपने सुना होगा अभी जो हमने ये प्ले किया, लगातार अब जो बताया जा रहा है कि ये जो सीबीएसई काउंसलर्स की टीम है, 12th के रिजल्ट के बाद एकाएक फोन कॉल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं और इनको कॉल कर रहे हैं समस्या का समाधान पाने के लिए। इसे आप किस तरीके से देखती हैं, ये क्या संकेत देता है?
4: देखिए, एक चीज मैं बोलना जो चाह रही थी वो थी रिजेक्शन। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को रिजेक्शन लेना नहीं सिखाते हैं। जिंदगी में सिर्फ जीता नहीं जाता, जिंदगी में हार भी होती है, और हार हमें ये सिखाती है कि हम कुछ चीजें करने में शायद सक्षम नहीं है, या हमसे ज्यादा किसी और ने उस चीज पर मेहनत की है, या कुछ चीजें करने का स्किल सेट हमारे पास नहीं है। तो मुझे लग रहा है एक रिजेक्शन शब्द अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को बच्चों को हर चीज इजिली वे अवेलेबल कराना भी एक बहुत बड़ा डिटरेंट होता है। कई बार बच्चों के लिए भी टारगेट कुछ फिक्स करने जरूरी है, और जरूरी नहीं हर चीज के लिए जो वो अच्छा करे उनको हर बार कोई इनाम दिया जाए, उनकी वर्बल प्रेज भी की जाए।

0: होनी चाहिए। रही बात जो आपने सवाल भी बोला है, उसमें भी मेरा ये कहना है कि अगर पेरेंट्स के पास की इन प्रॉब्लम्स की वजह से रिजल्ट के बाद बच्चे अगर काउंसलर्स के पास जा रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे परेशान हैं। एक, उन्होंने अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रख ली हैं। दूसरा, कंपटीशन का दौर है, हम भी चाहते हैं हम लाइफ में कुछ करें, पर कई बार वही अब हमने रिजेक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे मार्क्स जितने हमने सोचे थे उससे कम आए हैं, उसे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड, अगर हम उसमें फिर बात करें कि कहीं ना कहीं जब हम मार्क्स कम आ रहे हैं और जा रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं, किन कॉलेजेस में एडमिशन होता है और क्या उन कॉलेजेस में पर एडमिशन इजीली हो जाएगा कि पैसे देकर करवाना पड़ेगा। अगर आप अब्रॉड में कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें भी पता है ट्रम्प की और यूएस की कंडीशन की वजह से बहुत सारे वीजाज रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसीलिए भी सफर कर रहे हैं कि उनका यूनिवर्सिटीज में उनको वीजा नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही हैं।
1: बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। रुचिका, आपके पास आते हुए, आपको नहीं लगता कि आज के समय में, खास करके हमारे एजुकेशन सिस्टम में, अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन को हम ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस करें हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो ये टेंशन और प्रेशर दोनों ही कहीं ना कहीं बच्चों और पेरेंट्स में कम करेगा?
2: बिल्कुल 100%। स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज अनगिनत हैं, उसके बाद उनके कोर्सेज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हर टेक्निकल लाइन, चाहे आप आर्ट्स की लाइन में जाना चाहें, आप आईटी की लाइन में जाना चाहें, आप साइंस की किसी लाइन में जाना चाहें, आप कॉमर्स की भी कोई फील्ड देखेंगे, हर फील्ड में अपने वोकेशनल कोर्सेज, अपने स्किल बेस्ड सब कोर्सेज अवेलेबल हैं। हर एक की जो जानकारी है साइट पे प्रॉपरली अवेलेबल है। हर बच्चे को ये इजीली पता लग सकता है कि वो जो भी उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, जिस भी लाइन में उसको इंटरेस्ट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको एंट्रेंस एग्जाम सब जगह जाके देके ही उसको जो कोर्स टॉपर को मिला है वो ही उसको ही करना है। वो उसको नहीं करना होगा तभी वो इस लेवल पे नहीं है। और जिस भी लेवल पे जिस परसेंटेज, आपने ये बहुत इतिहास भी इस बात का आपको पता है कि गवाह है कि ये नहीं है कि जिनके कम नंबर आए हैं, मुझे तो लगता है जिनके कम नंबर आए हैं वो भी उसी ऊंचाइयों पे आगे पहुंचे हैं। हमारा जीवन जो है, जीवन एक इतना अच्छा हमारे को भगवान ने जो दिया है उसको हमने जीने के लिए जीना है, तो उसके लिए हमारे पास हर लाइन ओपन है।
1: रुचि, मुझे लगता है कि इसको अगर हम उतना वेग ना करें, लेकिन अगर हम कुछ क्लैरिटी में बच्चों को बता सके, दर्शकों को बता सके, तो बेहतर होगा कि अगर स्किल डेवलपमेंट में ही बढ़ा जाए तो क्या क्या वो कर सकते हैं। एक्चुअली आज एट प्रेजेंट अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे देश की, क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फॉरेन अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेज सके, उन्हें रख सके, वहां पढ़ा सके। कई बच्चे अकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं करते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन क्या अगर रियलिटी देखी जाए तो स्पोर्ट्स में आज हमारे पेरेंट्स बच्चों को आगे बढ़ने दे सकते हैं भारत में, आपको लगता है?
2: स्पोर्ट्स अकेडमीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो जितनी भी खुली है, और हर अपने एरिया के हर जगह पे, चाहे छोटे शहर हो चाहे कोई बड़ा शहर हो, हर शहर में आपके पास स्पोर्ट्स अकेडमी अवेलेबल है। और हर फील्ड की, सिर्फ जैसे हम कहते हैं कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट उस जगह पे नहीं, आप देखेंगे बास्केटबॉल में देख लीजिए, आप लेडीज की किसी भी लाइन में, वॉलीबॉल में चले जाएं, आप मेन लाइन में जाएं, स्पोर्ट्स की भी अवेलेबिलिटी है। आप टेक्निकल लाइन, आप आईटी की बात करें, आईटी में एक टॉपर वो है जो जाके एप्पल ज्वाइन कर रहा है, वो है जो जाके इंडिया की किसी भी हाई एंड टेक्नोलॉजी लाइंस में काम कर रहा है, और वो भी है जो मोबाइल के रिपेयर से लेके उस मोबाइल तक को बनाने तक की, उनके लिए हमें हर जगह एक इंसान की जरूरत है जो वो उस टेक्निकल लाइन के थ्रू कर रहा है। तो वोकेशनल और टेक्निकल जितने भी हमारे कोर्सेज,
1: बिल्कुल,
2: आप मेडिकल लाइन में चले जाएं, मेडिकल लाइन में सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर है, हम नर्स से शुरू होके उसके बीच में हमारे पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे पास मेडिकल जितने आप देखेंगे दवा खाना खुल रहे हैं,
1: तो ऑप्शन कई सारे हैं,
2: टेक्निकल फील्ड अवेलेबल,
1: बिल्कुल ऑप्शन कई सारे हैं, उसे टटोलने उसे जानने की जरूरत है। सीमा जी के पास हम आएंगे। सीमा जी, आपने हाथ उठाया था, कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have. TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: How are you?
12: Oh boy.
11: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
13: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: बात और हम आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या मार्कशीट किसी का जीवन, किसी का भविष्य तय कर सकती है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको इस बीच लेकिन बता दें कि बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स उन पर भरोसा रखें, क्योंकि पहले ही कम मार्क्स पाने वाले बच्चे तनाव में रहते हैं। अगर पेरेंट्स भी उन पर डाउट करेंगे तो बच्चों के लिए इस स्थिति से निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सुनिए कैसे सीबीएसई काउंसलर एक स्टूडेंट की समस्या का समाधान निकाल रही है।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
2: गुड आफ्टरनून
1: मैम, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ।
2: ओके।
1: और मैम, मुझे प्री बोर्ड में जब मेरा एग्जामिनेशन हुआ था तो मेरे मार्क्स 90 और 80 के अराउंड आए थे मैम।
2: अच्छा।
1: और अब मैम, जब मेरा बोर्ड का एग्जाम है तो मेरे मार्क्स जो हैं वो इस बार ही बहुत कम आए मैम।
2: अच्छा, कितने मार्क्स आए हैं अब आपके?
1: मैम, मेरे 50 और 60 की रेंज में आए मैम।
2: अच्छा, ओके।
1: तो मैम, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि आपने जो प्री बोर्ड दिया था, प्री बोर्ड में आपके मार्क्स इसलिए अच्छे आए कि आपने उसमें चीटिंग किया होगा।
2: अरे अच्छा, ओके।
1: बट मैम, ऐसा कोई चीटिंग का नहीं था। मैंने अपने जो एग्जाम दिया था वो पूरी डेडिकेशन से और मेहनत से दिया था मैम।
2: अच्छा।
1: बट अभी जो मेरे एग्जाम बोर्ड के एग्जाम है इसमें मार्क्स नहीं आ पाए मैम।
2: ओके। तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट?
1: यस मैम, यस मैम।
2: अच्छा, और आपने उनको समझाया कि आपकी मेहनत जो है वो पूरी थी, पर
1: yes,
2: किसी भी कारण से शायद मार्क्स नहीं आ पाए हैं, क्या आपने उन्हें बताने की कोशिश की?
1: यस मैम, राइट मैम। मैंने ये जो डिस्कशन है वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी किया, बट वहाँ से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला मैम।
2: अच्छा।
1: तो मैं अभी थोड़ा डिप्रेशन में हूँ मैम। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूँ और इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करूँ इसको।
2: अच्छा, पहली चीज तो देखिए, इसमें डिप्रेशन की कोई इतनी खास जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए आपने मेहनत तो पूरी की, और
1: yes,
2: परेशान होने की जरूरत हमें तब होती है जब हम मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है? तो जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, आपके प्री बोर्ड के मार्क्स जब इतने अच्छे आए हैं, तो हो सकता है दो तीन कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स ठीक ना हो। हो सकता है आपका जो तैयारी हो वो प्री बोर्ड में ज़्यादा अच्छी हो, बट बोर्ड का पेपर उसके कंपेरिजन में टफ आया हो, तो उसकी वजह से भी मार्क्स डिप हो सकते हैं। पर आप उस केस में इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये रही। पर उससे भी पहले, अभी जब आपके अब रिजल्ट्स के बाद बोर्ड बहुत जल्दी अपना विंडो खोलेगा पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज के लिए, जिसमें आप अपनी जो जिस भी सब्जेक्ट की आपको लग रहा है आपके मार्क्स ठीक नहीं आए हैं, आप उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स और मार्किंग स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो आप उनके साथ कंपेयर करके ये चेक कर सकते हो कि आपका पेपर कितना सही गया था और कितना आपका पेपर उस मार्किंग की स्कीम के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। जब आप ये कंपैरिजन कर लेंगे तो उसके बाद आप बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हो उस पेपर का रीवेरिफिकेशन करने का, या आप रीवैल्यूएट भी करवा सकते हो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए और आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो आप इसको रीवैल्यूएट भी करवा सकते हो। और अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो उस रीवैल्यूएशन में भी आपको अच्छा खासा मार्क्स का गेन हो सकता है। और रही बात पेरेंट्स के सपोर्ट करने की, तो मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि आप अपने पेरेंट्स से एक बार बात करें, और अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो घर में किसी और की मदद ले जो आपकी बात उन तक बेहतर तरीके से पहुंचा पाए और उनको समझा पाए।
0: तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आपने सुना किस तरह से जो सीबीएसई काउंसलर हैं लगातार स्टूडेंट्स की समस्याएं सुन रही हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन अब जो आपने सुना होगा किस तरह से सीबीएसई काउंसलर बात कर रही थी, इसमें साफ नजर आता है, साफ समझ में आता है कि पेरेंट्स सबसे पहली बात वही अपने बच्चों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा खुद भी प्रेशर में रहते हैं, वो सामाजिक प्रेशर है या क्या प्रेशर है, रिलेटिव्स का भी कई बार प्रेशर रहता है, जो निशा जी कह चुकी हैं और भी बाकी लोग भी कह चुके हैं, रुचिका जी भी कह चुकी हैं कि आपके रिलेटिव्स, आपके समाज का इतना प्रेशर रहता है कि वो सारे प्रेशर मिला के छोटे से बच्चे पे आप डाल देते हैं और उससे उम्मीदें करने लगते हैं।
3: श्वेता जी, मैं जो पहले अपनी बात कहना चाह रही थी उसको कहूंगी। निशा जी ने बताया और आपने उसको क्लैरिफाई भी कर दिया कि जो कुछ पेरेंट्स की अति महत्वाकांक्षाएं हैं और जो बचपन से उस बच्चे में डाल देते हैं कि मेरा बच्चा तो आगे जाके विदेश से ही पढ़ेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से ही पढ़ेगा, तो इस प्रेशर को पेरेंट्स को बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। अपने हिंदुस्तान में बहुत कुछ पढ़ाई है। दूसरी बात श्वेता जी, मैं आपके माध्यम से ये सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि एनईपी 2020 जब से लागू हुई है तब से ऐसा कोई बंदिश बच्चों के ऊपर रही नहीं। जैसे एक बच्चे को मैंने अभी सुना कि पेरेंट्स ने कहा पीसीएम पढ़ो, मेरा कॉमर्स मन था, तो आपके पास सब्जेक्ट च्वाइस इतनी ज्यादा है एनईपी में कि अगर आप पीसीएम ले रहे हैं तो आप उसके साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। अगर बच्चे का मन साइकोलॉजी पढ़ने का है तो पीसीएम के साथ साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले रहा है, ह्यूमैनिटीज लेता है और वो चाहता है मैं मैथ्स में भी अच्छा हूं, मैं मैथ्स पढ़ूं, तो वो मैथ्स भी पढ़ सकता है। लेकिन शायद हम उस चीज को पेरेंट्स तक और बच्चों तक अभी नहीं पहुंचा पाए कि आप सब्जेक्ट वेरिएशन कर सकते हैं। और श्वेता जी, इतने ऑप्शंस हमारे पास हैं, आप जिस फील्ड से हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, क्या उसमें 12th की मार्कशीट काम आती है? नहीं, टोटली पैशन काम आता है। तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे का पैशन क्या है, मेरा बच्चा क्या अच्छा कर सकता है और उस अच्छा करने में एंजॉय भी कर सकता है और अपना करियर भी बना सकता है।
0: जब घर में कोई नया मेहमान आने वाला होता है, जब बच्चे के हम स्वागत करते हैं, तब पेरेंटिंग को लेकर ना जाने कितनी किताबें लोग पढ़ डालते हैं, कितने वीडियोज देख डालते हैं। आपको नहीं लगता है कि जरूरी ये भी है कि जब आपके बच्चे इतने क्रूशियल मोड पर हो एग्जामिनेशन के, जब वो एग्जाम देने जा रहा हो, उससे पहले भी पेरेंट्स को कुछ पढ़ने की गाइडेंस की जरूरत है? इनफैक्ट उन्हें ही काउंसलिंग की जरूरत है।
4: जैसे आप कह रहे हैं कि हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत है, अभी आपने हमने सुना कि सीबीएसई में एक बच्चे को पीसीएम दिला दिया, उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में रहा है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि 9th और 10th में सारे स्कूल्स अपने एंड पे आप देखेंगे तो पूरा इनको पेरेंट्स को बुला के ये बताया जाता है कि हो सकता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो सकता है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, बट आपका बच्चा शायद वो नहीं बनना चाहता है। तो उस वजह से हम 9th में जब सब्जेक्ट सिलेक्शन 9th के एग्जाम्स के बाद कंप्लीट होता है, 10th में हमने बोर्ड्स दिए हैं, 10th के बाद जैसे ही हम अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद पे आते हैं कि 11th में हमने कौन सा सब्जेक्ट लेके कौन सी फील्ड में जाना है, हम अपने पेरेंट्स को सबको स्कूल्स में बुला के ये गाइडेंस देते हैं और उनको कन्विंस करते हैं। और काफी को आप मानेंगे 80-90% को हम कन्विंस करने में हो जाते हैं और कईयों को सच्ची में हमें बहुत मेहनत लगती है उनको ये समझाने में कि नहीं आपका बच्चा इस चीज के लिए नहीं बनना है। वो कहते नहीं, आप फिर भी वो उनका क्या क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल सही बात है कि आप फर्स्ट टर्म दिला के देख लीजिए, शायद अगर फर्स्ट टर्म में अगर आपका बच्चा ना कर पाए और कितनी जगह पे हमें फर्स्ट टर्म उसको 11th में साइंस में दिलाना पड़ता है और जब उसके नंबर नहीं आते तो हम फिर पेरेंट को बुला के बताते हैं देखिए ये नहीं पॉसिबल है। इसलिए ये प्रेशराइजेशन से हटने के लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग हमेशा ही जरूरी रही है। और 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स आपका बहुत बड़ा एक मापदंड रहते हैं जिसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन इजी कर दिया जाता है कि इस लेवल से परसेंटेज ऊपर लाने वाला बच्चा साइंस इजीली कर पाएगा। चाहे वो आर्ट्स चाहता हो तो हम उसको आर्ट्स देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो साइंस के परसेंटेज लाया और हम उससे बोले नहीं आप साइंस लो, उसका इंटरेस्ट आर्ट्स है। तो कई जगह पेरेंट्स समझ पाते हैं, कई जगह नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनकी
0: बिल्कुल यानी कि पेरेंट्स जो है उनकी भी काउंसलिंग जरूरी है। सीमा जी,
4: अभी भी हाँ। आप देखेंगे, मैं इसमें एक एड ऑन करूंगी कि 12th के रिजल्ट के बाद अभी भी कुछ पेरेंट्स फोर्स करेंगे अपने बच्चों को कि नहीं तो 1 साल दोबारा दे दे, लेकिन आप वो ट्रॉमा सोचिए कि जिस ट्रॉमा से बच्चा ऑलरेडी निकल चुका है और वो बच्चा उस स्कूल में दोबारा जाके वो अपने जूनियर्स के साथ नहीं बैठना चाहता कि मुझे वो दोबारा 12th का एग्जाम देना पड़े कि भाई मेरे पापा या मम्मी चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, वकील बनूं या मैं इंजीनियर बनूं। तो इस वजह से इन चीजों से बचने के लिए जिस भी फील्ड में बेस्ट है, अनलिमिटेड वेब डिजाइनिंग देख लीजिए, मार्केटिंग चले जाइए, अनलिमिटेड फील्ड
0: बिल्कुल बिल्कुल
4: परसेंटेज पे खुली
0: है। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है रुचिका। सीमा जी, यहाँ पे ये बताइए ना कि ये कौन सी मनोदशा है, ये कौन सी मानसिकता है लोगों की, पेरेंट्स की, कि वो अपनी बात इस हद तक थोप देते हैं अपने मासूम पर, अपने बच्चों पर, कि वो ना चाहते हुए भी वो अच्छा नहीं कर सकता है, उसे इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिर भी उसे लेना होता है।
3: श्वेता जी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो इसको क्लियर करती हूँ। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चीज को कवर अप करते हैं। पहली बात तो ये, अभी अब बताया आपको मेरे साथी ने कि टेंथ के बाद मार्क्स सेट कर देते हैं स्कूल की, 80% से ऊपर लाएगा तो पीसीएम मिलेगा, 60% से नीचे लाएगा तो ह्यूमैनिटीज मिलेगा। तो बच्चों के और पेरेंट्स के दिमाग में ये बैठ गया कि पीसीएम जो है वो शायद टॉप मोस्ट चीज है और ह्यूमैनिटीज सबसे रिजेक्टेड है। बच्चों के च्वाइस के हिसाब से नहीं देते, बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग देते हैं स्कूल। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लिए हुए है कि जब हम बच्चे के मार्क्स के हिसाब से उसकी स्ट्रीम सेट कर रहे हैं, बनिस्पत उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है, उसकी इच्छा कितनी है, उसका पैशन कितना है। क्योंकि 3 घंटे का जो पेपर होता है ना श्वेता जी, वो आपकी पूरी साल की मेहनत को जज नहीं कर सकता। बाई चांस उस वक्त बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि वो साइंस का पेपर अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन उसके साइंस के कंसेप्ट बहुत अच्छे थे और वो साइंस पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको क्योंकि टेंथ में मार्क्स कम रह गए तो 11th में स्कूल साइंस नहीं देंगे। दूसरी चीज श्वेता जी, पेरेंट्स की अगर हम बात करें, हमारे हिंदुस्तान की ये विडंबना है कि हम पेरेंट्स तो बन जाते हैं लेकिन पेरेंटिंग की ट्रेनिंग हमें कहीं नहीं दी जाती। तो हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि बच्चों को पालना कैसे है, बच्चों को आगे कवरअप कैसे करना है। जिनके 2 बच्चे हैं वो पहली बार में जो गलती करते हैं अपने आप ही ट्राई एरर मेथड से दूसरे बच्चे के साथ वो मिस्टेक नहीं करते। तीसरी चीज, क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर हम नीट की ही बात करें, 22 लाख बच्चा पेपर दे रहा है और 1 लाख बच्चे भी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो जब इतना टफ कंपटीशन होता है तो फिर वहां पेरेंट्स का अघोषित प्रेशर बच्चों के ऊपर आ जाता है। तीसरी चीज हम कह रहे थे कि समाज का प्रेशर है, एक्चुअल में तीसरे व्यक्ति को काउंसलिंग की आवश्यकता श्वेता जी पड़ती क्यों है कि जब पेरेंट्स और बच्चे के बीच में विश्वास नहीं है।
0: बिल्कुल,
3: मेरे हिसाब से तो मेरे अपने बच्चों के लिए बेस्ट काउंसलर मैं ही हूँ या उनके पापा हैं, तीसरा व्यक्ति क्या उनको बता पाएगा। लेकिन पहले मैं खुद तो अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ श्वेता जी। हमने एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया, हमने यूनिवर्सल एजुकेशन भी कर दिया, हमने एजुकेशन का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, हम नासा तक बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम का ह्यूमनाइजेशन नहीं कर पाए।
0: जिस बहुत बड़ी बात आपने कही,
3: ह्यूमनाइजेशन करने को
0: बिल्कुल
3: हम ये समझा पाए अपने बच्चों को कि बेटा एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम एक हाई पैकेज की सैलरी लो।
0: बिल्कुल,
3: एजुकेशन का मतलब ये है कि आप जीवन को जीना कैसे ये सीख पाओ।
0: बिल्कुल, और अब मुझे ये लगता है
3: जो आपका पैशन है
0: बिल्कुल
3: पैशन को जियोगे।
0: बिल्कुल, अब मुझे ये लगता है खास करके इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, बहुत सही बात आपने कही। लेकिन रुचिका आपके पास भी आऊंगी और आपसे ये सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि देखिए, आप खुद प्रधानमंत्री एग्जाम से पहले जब बच्चों से बात करते हैं तो उसमें भी बहुत खुलकर वो कहते हैं कि किस तरह से सिर्फ मार्क्स ले आने से आप सफल हो जाएंगे जीवन में, इस कॉन्सेप्ट को आपको छोड़ना होगा, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। और ये सिर्फ वर्बली मुझे लगता है बोलने से नहीं चलेगा, हमारे समाज में वैसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे कि अगर किसी के 90%+ नहीं भी मार्क्स आ रहे हैं फिर भी वो इंसान सफल है और खुश है अपने जीवन में, ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे। डॉक्टर निशा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर निशा, आपसे वही सवाल जानना चाहेंगे क्योंकि उसी बात को लेकर देखिए बहुत चर्चा हो रही है, पेरेंटिंग को लेकर, क्योंकि अक्सर हम बच्चों पर सारी, अगर वो फेल हुआ तो भी उसके ऊपर हम सारा ठीकरा फोड़ देते हैं, अगर वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आता है तो फिर क्रेडिट लेने के लिए तो खैर पूरी दुनिया होती है कि हर कोई उसके साथ था और इसी वजह से वो कामयाब हो पाया। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता है, या फिर आप ये बताएं कि वो कौन से 2-3 टिप्स हैं जो कि पेरेंट्स को एग्जाम से पहले भी करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए और बच्चों के लिए भी अच्छे हों?
5: आई थिंक सो, एक चीज मुझे लग रहा है पेरेंट्स और बच्चों को डिस्कशन करनी चाहिए कि उनकी क्या सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। अगर खुलकर सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे और बच्चे को भी बोलने का ये हक देना चाहिए कि वो किसमें कंफर्टेबल है या किसमें नहीं। और ऐसा नहीं होता सिर्फ कि पेरेंट्स कई बार अपनी एक्सपेक्टेशंस डालते हैं, बच्चों की भी अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम ये कर पाएंगे। कई बार बच्चे भी वो सब्जेक्ट को खुद ही अपनी मर्जी से चूज कर लेते हैं और बच्चे खुद ही उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को ये समझाना कि अगर मार्क्स कम भी आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाइफ स्किल्स में जो जैसे पहले भी कह रही थी, और बच्चों को अगर वो बच्चों को हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक है वो जरूरी है, वो बच्चों को समझाकर उसके बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें बच्चा अपने दोस्तों से बात करे, क्योंकि कई बार पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि आप एग्जाम्स के टाइम खेलने नहीं जा सकते, आप एग्जाम के टाइम अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते। कई बार वो बच्चों के लिए ब्रेक अपने आप में ही रिजुविनेशन का काम करता है और वो रिकनेक्ट कर पाते हैं, तो उस चीज से मत करिए। अगर बच्चा ब्रेक लेना चाह रहा है, हाँ उसे आप लिमिट कर सकते हैं, अगर बच्चा आधा घंटा या एक घंटा खेलने जा रहा है, दोस्त से मिलने जा रहा है, तो उसे करने दीजिए। इसके अलावा जैसा कि अगर बच्चे को कंफर्टेबल है, वो सुबह पढ़ना चाहता है, रात को पढ़ना चाहता है, इसके बारे में आप डिस्कशन पहले ही कर लीजिए, किसी भी चीज पर उसके प्रेशराइज मत करिए। कई बार कई बच्चे ऐसा भी बोलते हैं एग्जाम का टाइम है, पेरेंट्स घर पर रहे। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ जो एग्जाम्स का टाइम होता है और बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, पूरे टाइम घर पर रहेंगे,
5: पूरा टाइम घर पर रहेंगे,
0: नेट इंटरनेट इंटरनेट बंद हो जाता है, मोबाइल से आप दूर कर देते हैं उसी बच्चे को जिसको सालों भर आपने मोबाइल दे रखा है, लेकिन एग्जाम के टाइम में आप बंद कर देते हैं, ये तमाम तरह की चीजें होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे में पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल रुचिका आपसे, जो मैंने पूछा था उसका जवाब दे दे।
4: बिल्कुल, उसका एक बड़े दो शब्दों में आपको उसका मैं जवाब दूंगी, टॉपर्स ट्रैप वर्सेस द रियल वर्ल्ड। जो टॉपर्स का एक ट्रैप है कि 90 से ऊपर ही दुनिया है, वो बिल्कुल ही वर्सेस बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट है रियल वर्ल्ड के। रियल वर्ल्ड में वही एक नॉर्मल पास होने वाला बच्चा और टॉपर बच्चा, उसकी किस्मत, उसकी डेस्टिनी, उसकी मेहनत आगे जो दुनिया में वो कर रहा है और जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है और उस फील्ड में वो लग के अपना 100% दे रहा है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाहे वो टॉपर हो सकता है, वो 99 भी लाया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आगे की फील्ड में, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं करेगा, बट हो सकता है नहीं, वो 100% श्योर हूं। और आप ऐसे रियल वर्ल्ड में इतने एग्जाम्पल्स देखेंगे जो 50% 60% लाकर भी अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं और अपनी एक फील्ड और लाइन में एक्सेल कर रहे हैं हर
0: बिल्कुल
4: चीज़ में।
0: अगर इसी को अगर हम समअप करना चाहें तो यही कहेंगे कि देखिए, अंक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये किसी बच्चे की क्षमता, संवेदनशीलता और उसके भविष्य को कोई मार्कशीट डिफाइन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप अपने बच्चों पर विश्वास करें, निश्चित तौर पर उनका भविष्य बहुत ही खुशहाल और बहुत अच्छा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
6: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Good news today.
8: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: और अब आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडैकनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडैकनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है, यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल भी बेहद खुशनुमा है। ऐसे में सैलानी और स्थानीय लोग यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान भव्य काइट शो भी यहाँ पर हुआ जो आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगें उड़ाई गई। इस शो का आयोजन यहाँ पर मनावनूर गाँव में स्थित शीप एंड रैबिट होल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
11: Thank God I get to wake up.
6: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now. TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
13: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
12: to live sports action.
14: To the near side corner, to wrap around, he scores!
12: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
15: मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
10: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग विदेश के दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो कैमरा उठाइए और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
19: How are you?
20: Good fine.
19: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
21: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: लखनऊ में लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन की शानदार पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, वाहन चालकों पर ठंडे पानी की फुहारें। बिहार के भागलपुर में लोगों के लिए शानदार खबर, विक्रमशिला सेतु पर बीआरओ ने किया कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा वेली ब्रिज किया तैयार। एथलेटिक्स फेडरेशन टूर्नामेंट में गुरिंदर वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में की पूरी, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। तमिलनाडु के कोडई कनाल में दिखे समर फेस्टिवल के रंग, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का आनंद उठा रहे लोग।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नए युग का आगाज कर दिया है।

0: very, very good coffee.
1: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जी हाँ, आपको बता दें, एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में जानी तो जाती है अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए, लेकिन समूचा यूरोप उन्हें आयरन लेडी मानता है। दरअसल मेलोनी का व्यक्तित्व संवेदना और फौलाद का अनोखा कॉम्बो है। डिप्लोमेसी को लेकर भी मेलोनी की सोच और समझ गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हालिया मेलोडी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
2: How are you?

0: डिप्लोमेसी की दुनिया में मेलोडी के नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। 15 मई को 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में 20 मई को जब इटली पहुंचे, तो इटली और भारत का 8 दशक पुराना रिश्ता अचानक ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दरअसल साल 2000 के बाद किसी भी भारतीय पीएम का इटली का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक गिफ्ट पैक दिया। आप कह सकते हैं कि किसी एक देश के पीएम द्वारा किसी दूसरे देश के पीएम को दिया जाने वाला ये शायद सबसे सस्ता गिफ्ट था, लेकिन इस सस्ते गिफ्ट को मेलोनी ने जिस तरह से ग्लैमराइज किया, उससे भारत और इटली के बीच के प्रगाढ़ होते संबंधों की मुनादी पूरी दुनिया में हो गई। मेलोनी ने मेलोडी टॉफी के गिफ्ट पैक को लेकर पीएम मोदी के साथ मात्र 11 सेकंड का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और महज 6 घंटे में ही मेलोडी डिप्लोमेसी के इस वीडियो को करीब 11 करोड़ व्यूज मिल गए।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
0: आपको बता दें कि मोदी मेलोनी और मेलोडी के सोशल मीडिया इम्पैक्ट का अपना एक खास पसे मंजर है, पृष्ठभूमि है। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये लफ्ज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। यूरोप की आयरन लेडी मेलोनी का ह्यूमर किस लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मोदी और मेलोनी पिछले 3.5 वर्षों में अलग अलग सम्मेलनों में कुल 7 बार मिल चुके हैं, लेकिन बीते 20 मई को इटली की राजधानी रोम में हुई मुलाकात डिप्लोमेसी के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी के इटली पहुंचने से लेकर वतन वापसी के लिए टेक ऑफ करने तक मेलोनी ने मोदी के साथ बिताए एक एक पल को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। सबसे पहले मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत किया। उसके बाद एक ही कार में बैठकर दोनों नेता रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। खास बात यह है कि कोलोसियम रोम का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के गौरवशाली कालखंड में बनाया गया था। प्राचीन रोम में इस स्टेडियम में जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित की जाती थीं। साफ है कि 2000 साल से इसका वजूद बरकरार है, जिसकी वजह से इसे रोमन साम्राज्य की ताकत और इंजीनियरिंग के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसी स्टेडियम की अलग अलग लोकेशन से मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कमाल ये है कि दुनिया मोदी मेलोनी की इन तस्वीरों में उलझी हुई थी, उसी दौरान इटली और भारत के रिश्तों का सबसे मजबूत दस्तावेज तैयार हो रहा था। पीएम मोदी के दौरे के आखिर में जब दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब दुनिया को पता चला कि इन लाइटर मोड वाली तस्वीरों के पीछे कूटनीति की कितनी गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मेलोनी ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन यूरो से बढ़ाकर साल 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, एयरोस्पेस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधार्थियों और ट्रेंड प्रोफेशनल्स के इटली में जाकर काम करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक पहल तैयार करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खास बात यह है कि कूटनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही मेलोनी के मन में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गहरा सम्मान है।
1: As we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our central old cultures develop a dialogue and make them more and more connected.
0: मेलोनी वैश्विक मंचों पर बेशक अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ बहुत गहरी है। सबसे खास यह है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का वे तहे दिल से सम्मान करती हैं। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिंदी की एक मशहूर कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है का स्टाइलिश इस्तेमाल किया।
1: Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying, Parishram hi safalta ki kunji hai.
0: भारतीय संस्कृति के साथ अपने लगाव को मेलोनी समय समय पर प्रकट करती रही हैं। पिछले महीने 24 अप्रैल को मेलोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक सेल्फी शेयर की, जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का झुमका पहने नजर आई। फॉर्मल आउटफिट में झुमका पहने मेलोनी बिल्कुल भारतीय नारी की तरह नजर आ रही थी। जून 2024 में इटली में आयोजित G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारतीय संस्कृति के प्रति मेलोनी के लगाव की झलक देखने को मिली थी। G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत सनातनी अंदाज में नमस्ते करते हुए किया था। बतौर मेजबान भारतीय प्रतिनिधियों का नमस्ते के साथ स्वागत तो कूटनीतिक मेजबानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेलोनी पिछले साल जब यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका के दौरे पर गईं, तो वहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए ही मिलीं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मिलने की मेलोनी की तस्वीरें भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी।
2: राजनीति मेलोनी को विरासत में नहीं मिली, ना ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सियासी गलियारे में आसानी से एंट्री मिल जाती। इतना ही नहीं, मेलोनी जब एक साल की थी तो उनके पिता ने दो बेटियों और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। मेलोनी को बचपन बेहद मुश्किलों भरा मिला। पेट भरने के लिए इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेहद कम उम्र से छोटे मोटे काम करने पड़े, यहाँ तक कि इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर की भी नौकरी की। बेहद दिलचस्प है एक बार टेंडर से पीएम बनने तक का ये सफर।

0: लहरों के साथ मिलकर नौका पार करने का हुनर तो हर आमो खास के भीतर होता है, लेकिन इतिहास के अनमोल पन्नों पर रोशनाई की चमक उन्हीं की रंग लाती है जो धारा के विपरीत तैरने का दम रखते हैं। जीवन की दुर्धर्ष धाराओं को चीर कर कामयाबी के अलभ्य किनारे तक पहुंचने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया को अगर यूरोप की आयरन लेडी कहा जाता है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी पूरे विश्व की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अजस्र स्रोत हैं, क्योंकि इस महिला ने हालात से लड़कर तमाम बाधाओं को परास्त कर संघर्ष के रथ पर सवार होकर इटली के सर्वोच्च पद का सफर तय किया है। पहली बार 2021 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने एक जगह लिखा है,
1: मेरा कभी ये मानना नहीं रहा कि एक महिला को केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। राजनीति किसी जेंडर विशेष की अमानत तो नहीं, बल्कि सभी के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अगर मेरी जैसी किसी महिला को कहा जा रहा था कि संतान की हसरत है तो एक तरफ हो जाओ, तो कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली गर्भवती युवती के लिए क्या उम्मीदें रखी जाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे व्यवधान नहीं है, बल्कि व्यवधान को पार करने में हमारी मदद करते हैं।
0: काबिले गौर है कि अपनी आत्मकथा में महिलाओं के अधिकारों का मुखर समर्थन करने वाली मेलोनी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित होने के करीब एक साल बाद ही इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का मेलोनी का सफर दुश्वारियों और कठिनाइयों से लड़ने की अनूठी दास्तान है। कभी वैश्विक सभ्यता के केंद्र बिंदु रहे रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई जॉर्जिया मेलोनी के अपनी मां के गर्भ में आने के बाद से ही दुश्वारियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। दरअसल मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना उपन्यासकार। ये परिवार रोम के एक पॉश इलाके कैमिल्यूचिया में रहता था, लिहाजा आर्थिक तंगी तो नहीं थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के पहले से ही पिता फ्रांसिस्को और मां अन्ना के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने लिखा है,
1: जब मैं गर्भ में थी तो घर के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मां ने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया। इसके लिए वो हॉस्पिटल भी चली गई, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। मैं अपनी मां और उनके साहस की ऋणी हूं। अगर उन्होंने तब साहस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं इस दुनिया में आती ही नहीं।
0: काबिले गौर है कि मेलोनी के जन्म के बाद उनके माँ पिता के बीच पहले से ही खराब रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सेपरेशन की नौबत आ गई। मेलोनी बमुश्किल एक साल की थी तब साल 1978 में फ्रांसिस्को पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। मां अन्ना के कंधों पर अपना गुजारा करने के साथ ही एक साल की जॉर्जिया मेलोनी और 2.5 साल की एरियाना मेलोनी की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी। नॉवेल राइटर अन्ना कलमकारी से इतने पैसे कमा लेती थी कि दोनों बच्चियों की परवरिश ठीक से हो जाए। विधाता जब किसी को आसमानी मकाम अता करने वाला होता है तो पहले उसका कड़ा इम्तहान लेता है। जॉर्जिया जब 3 साल की हुई तो एक नामुराद घटना ने जिंदगी की दुश्वारियों में एक और बड़ी परेशानी का तड़का लगा दिया। वाकया साल 1980 का है। 3 साल की जॉर्जिया अपनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थीं। दोनों की उम्र इतनी नादान थी कि व्यवहारिक जीवन में आने वाले खतरे का जरा भी इल्हाम नहीं था। दोनों बहनों ने एक ऐसी गलती कर दी कि घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी बहन एरियाना ने कहा था,
1: मैंने और जॉर्जिया ने लड़कपन वाले कौतूहल में लाइट नहीं जलाने का फैसला किया। लाइट के विकल्प के तौर पर हमने मोमबत्तियां भी जला ली। ना समझी ऐसी थी कि हम दोनों ने जलती हुई मोमबत्तियों को रजाई और खिलौनों से ढक लिया और पूरी बेफिक्री के साथ कार्टून देखने चले गए। उसके बाद तो पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
0: आग में घर का सारा सामान जल जाने के बाद मेलोनी की मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत नया सामान खरीद लें। लिहाजा वो दोनों बेटियों को लेकर रोम के गरबा टेला स्थित अपने मायके शिफ्ट हो गईं। मायके में भी इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आराम से रह सकें, लिहाजा मेलोनी और उनकी बहन को लंबे समय तक फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। इतने संकट और संघर्ष के बीच बचपन बीता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जॉर्जिया के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इसीलिए मेलोनी की ग्रेजुएशन करने की हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से मेलोनी ने काफी कम उम्र से ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। कुछ समय उन्होंने सीडी बेची, यहाँ तक कि क्रैच में बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे नामचीन नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। साल 2013 में अपने संघर्षपूर्ण अतीत को भारी मन से याद करते हुए मेलोनी ने जो कहा था उसे सुनकर आपकी मानवीय संवेदना झंकृत हो जाएगी।
1: मैंने जीवन का ककहरा संसद में आकर नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है।
0: दरअसल जॉर्जिया मेलोनी अपने शुरुआती दिनों से ही मानवीय मूल्यों और इटली की गौरवशाली परंपरा की पैरोकार रही हैं। उनकी विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रवादी भावना से लबरेज रही है। वामपंथी विचारधारा की पुरजोर मुखालिफत उनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। शायद यही वजह है कि महज 15 साल की उम्र में इटली की उस MSI पार्टी से जुड़ गईं, जिसे इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थकों ने 26 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी को मुसोलिनी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं रहा। हालांकि 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी के राजनीति में कदम रखने के पीछे एक ऐसी दर्दनाक घटना का हाथ था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। हुआ ये कि 19 जुलाई 1992 को प्रमुख इतावली मजिस्ट्रेट पाओलो बोर्सेलिनो को माफियाओं ने उनके 5 सुरक्षा कर्मियों समेत एक विस्फोट में उड़ा दिया, क्योंकि पाओलो बोर्सेलिनो माफियाओं के खिलाफ मामलों की सख्ती से सुनवाई कर रहे थे। इस घटना के बाद 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली की संसद में अपने पहले भाषण में 25 अक्टूबर 2022 को उस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा था,
1: मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमिलियो नरसंहार के बाद अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इस नरसंहार में माफियाओं ने जस्टिस पाओलो बोर्सेलिनो को उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसी समय मैंने तय कर लिया कि खामोश रहकर सब कुछ सहन करते रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है।
0: 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम झंझावातों और संघर्षों को पार करते हुए आखिरकार 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया अगर अगले 3 महीने तक PM बनी रही तो 1948 के बाद इटली की लॉन्गेस्ट सर्विंग PM बनने का तगमा भी उन्हें हासिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इटली में 1948 के बाद से अब तक 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी एक सरकार की औसत उम्र महज 16 महीने रही है, जबकि मेलोनी पिछले 43 महीनों से लगातार अपने देश की सेवा कर रही हैं।
2: तो वंदे मातरम में आज आपने जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
4: I have no idea how this election is going to play out,
3: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Or favorite country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार

0: भगवान बद्री विशाल के द्वार पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी है। हर दिन हजारों लोग बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर के कपाट खुलने के बाद से लगातार यहां पहुंचने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि मौसम साफ है तो चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को हुआ था। 23 मई तक 35 दिनों में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। रास्ता दुर्गम होने के बावजूद केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी अब तक करीब 5.5 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्राओं के लिए व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के प्रयास लगातार जारी है। हालांकि परेशानी खास तौर से तब होती है जब चारधाम की यात्रा मार्ग पर लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है, लेकिन बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों को इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जोशीमठ में ही अब खास ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है। इस तरह नई व्यवस्था के तहत
1: बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जोशीमठ में गुरुवार से लगातार जाम की स्थिति देखने को मिल रही थी, वहीं देख सकते हैं आप जोशीमठ के पेट्रोल पंप में हम हैं, जहां से वन वे शुरू हो जाता है। एक साइड से गाड़ियां जाती हैं, वहीं दूसरी साइड से आती हैं, लेकिन यहां से जो मार्ग आगे जाता है जीरो बैंड होते हुए मारवाड़ी तक ये मार्ग पहुंचता है, इस समय गाड़ियां ऊपर आ रही हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब एक साइड की गाड़ियां जो हैं, जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जानी है, उन्हें यहां पे रोक दिया गया है। जोशीमठ में आज से ये नई व्यवस्था पुलिस और प्रशासन द्वारा जो की गई है, यहीं पे गाड़ियां रहेंगी। ये लंबा जाम यहां पे इसे रोका जाएगा, ताकि जोशीमठ से मारवाड़ी तक की सारी गाड़ियों को रोका जाए और उन्हें मारवाड़ी विष्णुप्रयाग के करीब रोका जाए। वहां से जो वापसी होंगी, जब यहां से गाड़ियां ये एक साइड की चलेंगी,
2: हमारा पेट्रोल पंप के पास में और नरसिंह मंदिर वाली रोड पे हम यात्रियों की गाड़ियों को रोकेंगे, और नीचे हमारा जो मारवाड़ी पुल है उसके पास विष्णुप्रयाग की तरफ को गाड़ियां रुकेंगी। तो करीब आधे घंटे का हम इसमें टाइम देंगे और फिर इसको वन वे तरीके से हम इसको यात्रा रूट पे गाड़ियां हम चलाएंगे, ताकि गाड़ियां जाम में न फंसे।
0: प्रशासन और पुलिस ने जोशीमठ के पेट्रोल पंप से लेकर मारवाड़ी तक गेट सिस्टम और वन वे सिस्टम लागू कर दिया है। इससे एक बार में आने वाले यात्रियों की गाड़ियां इस रूट पर चलेंगी, तो अगली बार जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों को रास्ता मिलेगा।
3: आज से हमने ये व्यवस्था शुरू कर दी है यहाँ पर से, कि पहले हम एक तरफ से छोड़ेंगे और एक तरफ रोक देंगे, तो बीच इस ये जो हमारा 8 किलोमीटर का पैच खाली मिल जाएगा, और उसमें जब हमारा यहाँ से एक कानवाई टाइप चलेगी तो वो स्मूथली पार करेगी, तो वहाँ आधा घंटे में हमारा पूरा ट्रैफिक निकल जाएगा। जो 2-3-4 घंटे तक जाम लग रहा वो हमारे आधे घंटे में निकल जाएगा।
0: इससे फायदा ये होगा कि जोशीमठ में रोकी जा रही गाड़ियों के यात्रियों को चाय पानी और खाने पीने के लिए भी समय मिल जाएगा, उन्हें आगे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक पर भी दबाव नहीं पड़ेगा। वहीं पहाड़ों में मौसम के बदलाव को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट रखा गया है। साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का खास ख्याल रखने के निर्देश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं, ताकि हर तीर्थ यात्री की चारधाम यात्रा सुरक्षित तरीके से और सहूलत के साथ पूरी हो सके। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: As a truck driver, I've learned how important road safety is. I know that large trucks need more time and room to stop. That's why I always hang back and follow other vehicles at a safe distance. Everyone can help keep our roads safe. Next time you're driving, try to remember to always give trucks extra space when you merge in front of them. Let's all plan to share the road safely. Learn how at www.sharetheroadsafely.gov.

0: You love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। लखनऊ में लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन के शानदार पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, वाहन चालकों पर ठंडे पानी की फुहारें। बिहार के भागलपुर में लोगों के लिए शानदार खबर, विक्रमशिला सेतु पर बीआरओ ने किया कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा वैली ब्रिज किया तैयार, इस्तेमाल। एथलेटिक्स फेडरेशन टूर्नामेंट में गुरिंदर वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में की पूरी, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। तमिलनाडु के कोड़े कनाल में देखे समर फेस्टिवल के रंग, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का आनंद उठा रहे लोग।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: चार धाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, शनिवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 96,116 भक्तों ने किए दर्शन। पिछले महीने 19 अप्रैल को शुरू हुई थी यात्रा, अब तक 20,76,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। बद्रीनाथ में बीते दो दिनों में ही 60,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 5,56,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन पूजन। केदारनाथ धाम में अब तक 8,11,923 भक्त कर चुके हैं दर्शन, गंगोत्री में 3,52,162 और यमुनोत्री धाम में 3,56,031 तीर्थयात्री पहुंचे दर्शन करने। विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में पहले दिन 6,605 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठी पूरी लोकपाल घाटी। दिल्ली में सुबह सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर दौड़ लगाते दिखे बड़ी संख्या में लोग, सुबह में सुहावने मौसम का उठाया लुत्फ। राजधानी में आज फिट संडे ऑन साइकिल्स प्रोग्राम के 75वें संस्करण का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिल रैली में लिया हिस्सा। साइकिल रैली से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर की कसरत, आरएसी की 12वीं बटालियन के जवानों ने लिया हिस्सा। गानों की धुनों पर कसरत करते देखे लोगों में दिखा उत्साह, फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिया गया संदेश।

फिट ऑन संडे साइकिल्स कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी हुए शामिल, कई जानी मानी हस्तियों ने की शिरकत। अहमदाबाद में भी हुआ संडे ऑन साइकिल्स इवेंट, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य के मंत्री हर्ष सिंह भी हुए शामिल। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर हुआ संडे ऑन साइकिल्स इवेंट, एक्टर आयुष्मान खुराना ने बढ़ाया लोगों का जोश। संडे ऑन साइकिल्स इवेंट में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं भी शामिल, फिटनेस और सेहत के लिए जागरूकता का दिया गया संदेश। विजयवाड़ा में स्वच्छ अंध अभियान के तहत चलाया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप, राज्य के मंत्री अधिकारी और आम लोग हुए शामिल। एक महीना तक चलेगा अंध में ऑपरेशन क्लीन स्वीप, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई पहल। रेड कार्पेट पर सितारों की रौनक के साथ कान फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी हुई पूरी, फिल्मी दुनिया के दिग्गज एक साथ नजर आए। क्रिश्चियन की फ्रॉड ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जीता पाम डी और अवार्ड, रेनेट रिंसवे और स्टैन भी रेड कार्पेट पर नजर आए। कान क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का दिखा जलवा, व्हाइट आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आईं। ऐश्वर्या राय का लुक सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, व्यूअर्स ने की जमकर लुक की तारीफ। पैंट सूट के साथ ऐश्वर्या ने डायमंड रिंग पहनकर अपने लुक को किया कंप्लीट, फैंस ने उन्हें कान फेस्टिवल की क्वीन का दिया तमगा। अर्जुन तेंदुलकर की शानदार गेंदबाजी देख भावुक हुए पापा सचिन, शेयर की खास पोस्ट, बेटे को शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने पूरे 4 ओवर डाले, प्रभसिमरन सिंह का अहम विकेट भी झटका। कोलकाता दिल्ली के बीच आज आईपीएल सीजन का आखिरी लीग मैच, नाइट राइडर्स के पास प्लेऑफ में जाने का आखिरी मौका। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, शाम 7:30 पर शुरू होगा मुकाबला। कोलकाता 13 मैचों में 13 पॉइंट के साथ छठे स्थान पर, दिल्ली पहले ही प्लेऑफ से हो चुकी है बाहर। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी, लोगों को धूप से बचने की सलाह, जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह। उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 47 तक पहुंच सकता है पारा। बदायूं में भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा, घर से निकलना हुआ मुश्किल। कटिहार में मौसम में जबरदस्त बदलाव, आंधी तूफान से मची भारी तबाही, कोई हताहत नहीं। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन बना तालाब, शेड से झरने की तरह पानी गिरते नजर आया। दिल्ली में कल की मामूली राहत के बाद फिर से गर्म हुआ दिन, दोपहर में कड़ी धूप के बीच घर से निकलना मुश्किल। दिल्ली की तपती गर्मी में खुलेआम काम करने वालों की बढ़ाई मुश्किलें, रिक्शा चालक और स्टेशन पर कुलियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। यूपी के कई जिलों में रिकॉर्ड बनाने में जुटी गर्मी, राजधानी लखनऊ में भी तापमान पहुंचा 45 के पार। हीटवेव के संबंध में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा राहत बचाव को लेकर रहे सतर्क। लखनऊ में लोगों को गर्मी से बचाने की शानदार पहल, रेड सिग्नल्स पर लगाए गए ग्रीन शेड, कूलिंग वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था। राजस्थान के जैसलमेर में गर्मी ने बनाया रिकॉर्ड, पारा 56 के पार पहुंचा। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए हर स्तर पर किए जा रहे हैं इंतजाम, जमशेदपुर के चिड़ियाघर में जंगली जानवरों के लिए विशेष सुविधाओं की सौगात। जमशेदपुर के टाटा जू में हर जानवर के लिए अलग अलग व्यवस्था, शेर के पिंजरे में लगाए गए कूलर।

0: टाटा जू में गर्मी से बचाव के लिए छोटे छोटे और बड़े जानवरों के बाड़ों का रखा जा रहा है ठंडा। खाने पीने के भी किया गया बदलाव। करीब 60 एकड़ में फैला है जमशेदपुर का टाटा जू। जंगली जानवरों को देखने के लिए बड़ी संख्या पहुंचते हैं लोग। चमोली में कंचनगंगा के ऊपर टूटा ग्लेशियर, पानी की तरह बहते हुए दिखा बर्फ। ग्लेशियर पिघलने से नहीं हुआ कोई नुकसान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इम्फाल में कोकोमी संगठन ने निकाली युवा बाइक रैली, सेव मणिपुर का दिया संदेश। चेन्नई में सफाई कर्मचारियों और पुलिस ने पेश की मिसाल, पब्लिक टॉयलेट में मिले बच्चे की बचाई जान। महिला सफाई कर्मचारियों को लावारिस हालत में मिली थी बच्ची, इंक्यूबेटर की सहायता से शिशु को ले जाया गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर मचे हंगामे के बीच सीएम योगी का बड़ा एक्शन, गांव से लेकर शहर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। दिल्ली विदेश मंत्री जयशंकर के साथ संयुक्त वार्ता में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो, कहा जल्द ही हॉर्मुज पर अच्छी खबर मिल सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत और रणनीतिक बताया, ये भारत की वैश्विक अहमियत को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पीएम मोदी को न्योता, व्हाइट हाउस में मुलाकात की संभावना। नागपुर में गोडम लॉजिस्टिक्स पार्क का शुभारंभ, समारोह में मुख्यमंत्री फडणवीस भी हुए शामिल। भागलपुर के लोगों के लिए गुड न्यूज, विक्रमशिला सेतु पर सीमा सड़क संगठन का कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा वैली ब्रिज किया तैयार। वैली ब्रिज निर्माण में 100 टन स्टील का हुआ इस्तेमाल, 7 जून से पहले हल्के वाहनों के लिए खोलने की तैयारी। एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरा कर रचा इतिहास, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में पहली बार 100 मीटर रेस में 10.10 सेकंड का मार्क हुआ क्रैक, गुरिंदर वीर की अपने रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत ने सोशल मीडिया पर वायरल एआई डी फेक वीडियो मामले में साइबर शिकायत कराई दर्ज, कहा वायरल वीडियो पूरी तरह फर्जी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई बाबा महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगा दशहरा से पहले महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने की पूजा अर्चना। तेज गर्मी के बावजूद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, जय श्री राम के जयकारे लगाते कतारों में लगे लोग। हर दिन करीब 1 से 2 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं श्री राम मंदिर में दर्शन, गर्मी की छुट्टियों के अलावा गंगा दशहरा मनाने रामनगरी पहुंच रहे लोग। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात। कुपवाड़ा में ऐतिहासिक टिथवाल वॉर मेमोरियल पर मनाया गया टिथवाल डे, सेना के अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि। टिथवाल डे के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह ने पेश की उद्यमिता की मिसाल, मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर कर रहे हैं कमाई। 1 जुलाई के उत्पाद के तहत लगाई गई मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट, लोगों को मिल रहा है रोजगार। तमिलनाडु के थूथुकुडी में जलीय परिंदों की बहार, सैलानियों के लिए माहौल हुआ शानदार। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में देखिए समर फेस्टिवल की धूम, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र। समर फेस्टिवल में शामिल होने बड़ी संख्या पहुंचे सैलानी, लोगों ने रंगारंग कार्यक्रमों का जमकर लिया मजा। आसमान में रंग बिरंगी और अलग अलग आकृतियों वाली पतंगों ने मोहा लोगों का मन। काइट शो में कार्टून कैरेक्टर वाली विशाल पतंगे बनी आकर्षण का केंद्र। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस रंगीन नजारे को कैमरे में कैद करता नजर आया। शिप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन हुआ आयोजन। मशहूर हिल स्टेशन में प्राकृतिक खूबसूरती के बीच हुआ फेस्टिवल ने बढ़ाया पर्यटकों का उत्साह। ठंडी हवाओं और रंगीन पतंगों के बीच उत्सव के रंग में रंगा पूरा इलाका। स्थापना के 30 साल पूरे करने जा रहे भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 26 मई को कर्नाटक में होगा मेगा एयर शो। सूर्यकिरण टीम अपनी सटीक और रोमांचक हवाई कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध। कम ऊंचाई पर बेहद करीबी फॉर्मेशन में उड़ान सबसे बड़ी खासियत। वायुसेना का राजदूत भी मानी जाती है सूर्यकिरण टीम। 27 मई 1996 को कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स स्टेशन पर की गई थी स्थापना। पिछले 30 सालों में देश ही नहीं विदेशों में भी एयर शो कर चुकी है सूर्यकिरण टीम। 800 से ज्यादा एयर डिस्प्ले में दिखा चुकी है शौर्य। सूर्यकिरण टीम ने चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में भी अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। अनुशासन, साहस, समर्पण और टीम वर्क का अजीवंत उदाहरण है सूर्यकिरण। किंग चार्ल्स ने इंग्लैंड के वारिक शायर में नाटक द टेम्पेस्ट का किया शो देखा शो। कलाकारों ने से की बैकस्टेज मुलाकात। रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ किंग चार्ल्स का पुराना रिश्ता। 1991 से कंपनी के अध्यक्ष के तौर पर किया काम। साल 2024 से निभा रहे संरक्षक की भूमिका। लोरियन गिजा मुकाबले में अलेक्सांड्र उसिक ने 11वें राउंड में रिको वेरहोवेन को नॉकआउट कर दिया। आखिरी सेकंड में आए अपरकट ने दुनिया के सबसे बड़े रटफेरों में से एक होने से मुकाबला बचा लिया। पूर्व किकबॉक्सर रिको वेरहोवेन ने शुरुआत से ही उसिक को कड़ी टक्कर देकर सबको चौंका दिया। कई स्कोर कार्ड्स में 37 वर्षीय डच फाइटर मुकाबले में आगे चल रहे थे। जीत के बाद उसिक ने यूक्रेन में जारी बमबारी का जिक्र करते हुए भावुक बेटी को समर्पित की जीत। यूक्रेन में वाइल्ड ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन। सैन्य ड्रोन ऑपरेटर्स ने लिया हिस्सा। वाइल्ड ड्रोन प्रतियोगिता में यूक्रेन के 19 प्रमुख सैन्य यूनिट्स और ड्रोन निर्माता कंपनियों ने लिया हिस्सा। वीडियो गेम कंट्रोलर से ऑपरेट होता है ड्रोन। मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चीन तैयार। मिशन ज्यूक 1 सैटेलाइट सेंटर से होगा लॉन्च। बांग्लादेश में ईद से पहले दुर्लभ सफेद भैंसा बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। सुनहरे बालों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप दिया गया नाम। ढाका के एक फॉर्म में पाला गया दुर्लभ भैंसा। करीब 700 किलो के भैंसे के माथे पर लटकते सुनहरे बाल की वजह से लोगों ने इसे डोनाल्ड ट्रंप दिया नाम। भोपाल में पैदी की टीम का धमाका। रामचरण जानवी को देख एक्साइटेड हुए फैंस। फिल्म 4 जून को होगी रिलीज। माधुरी दीक्षित ने मां बहन के ट्रेलर लॉन्च की शेयर की तस्वीरें। येलो प्रिंटेड साड़ी में दिखी बेहद खूबसूरत। फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। तुलू रस्मों से हुई एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना की गोद भराई। सुनहरी साड़ी के साथ भव्य 16 श्रृंगार अगस्त बनने जा रही है मां। मुंबई में प्रसिद्ध गायिका और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के सुरों का चला जादू। भक्ति संगीत कॉन्सर्ट में शानदार गीतों से बांधा समा। फीफा वर्ल्ड कप अंतिम में देखेंगे शकीरा। डाई डाई गाने से टूटेगा 16 साल पुराना रिकॉर्ड। गाने पर करेंगी लाइव परफॉर्म। औरा वर्ल्ड टूर के अपने गीतों से दुनिया भर में जलवा बिखेरे सिंगर दिलजीत दोसांझ। अटलांटा में शानदार प्रस्तुति से बांधा समा। तरसेम जस्तर की पंजाबी फिल्म दस्तार का टीजर आउट। 1980 के दशक की सच्ची घटनाओं पर आधारित। 17 जून को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। पंजाबी फिल्म में चढ़ती कला का धमाकेदार ट्रेलर जारी। फिमल कौर खालसा के जीवन पर आधारित। 29 मई को होगी फिल्म रिलीज। इश्कनामा से सामने आया शहनाज गिल के अजय रंधावा का फर्स्ट लुक। टीजर जल्द होगा रिलीज। फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। कमल हासन ने किया पीएम मोदी की ऊर्जा बचाने की अपील का समर्थन। ईंधन से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर की बात। सरकार को सुझाव भी दिए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
4: Thank God I get to wait.
3: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है, और ये खबर है कि उन्हें अब रास्ते में ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस बीच चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का उत्साह लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी झलक हर दिन आ रहे यात्रियों से जुड़े आंकड़ों से मिल रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: भगवान बद्री विशाल के द्वार पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी है। हर दिन हजारों लोग बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर के कपाट खुलने के बाद से लगातार यहां पहुंचने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। क्योंकि मौसम साफ है तो चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को हुआ था। 23 मई तक 35 दिनों में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। रास्ता दुर्गम होने के बावजूद केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी अब तक करीब 5.5 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्राओं के लिए व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के प्रयास लगातार जारी है। हालांकि परेशानी खास तौर से तब होती है जब चारधाम की यात्रा मार्ग पर लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है, लेकिन बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों को इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसके लिए जोशीमठ में ही अब खास ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है। इस तरह नई व्यवस्था के तहत
1: बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जोशीमठ में गुरुवार से लगातार जाम की स्थिति देखने को मिल रही थी, वहीं देख सकते हैं आप जोशीमठ के पेट्रोल पंप में हम हैं, जहां से वन वे शुरू हो जाता है। एक साइड से गाड़ियां जाती हैं, वहीं दूसरी साइड से आती हैं, लेकिन यहां से जो मार्ग आगे जाता है जीरो बैंड होते हुए मारवाड़ी तक ये मार्ग पहुंचता है, इस समय गाड़ियां ऊपर आ रही हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब एक साइड की गाड़ियां जो हैं, जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जानी है, उन्हें यहां पे रोक दिया गया है जोशीमठ में। आज से ये नई व्यवस्था पुलिस और प्रशासन द्वारा जो की गई है, यहीं पे गाड़ियां रहेंगी, ये लंबा जाम यहां पे इसे रोका जाएगा, ताकि जोशीमठ से मारवाड़ी तक की सारी गाड़ियों को रोका जाए और उन्हें मारवाड़ी विष्णुप्रयाग के करीब रोका जाए। वहां से जो वापसी होंगी, जब यहां से गाड़ियां ये एक साइड की चलेंगी,
2: हमारा पेट्रोल पंप के पास में और नरसिंह मंदिर वाली रोड पे हम यात्रियों की गाड़ियों को रोकेंगे, और नीचे हमारा जो मारवाड़ी पुल है उसके पास विष्णुप्रयाग की तरफ को गाड़ियां रुकेंगी। तो करीब आधे घंटे का हम इसमें टाइम देंगे और फिर इसको वन वे तरीके से हम इसको यात्रा रूट पे गाड़ियां हम चलाएंगे, ताकि गाड़ियां जाम में न फंसे।
0: प्रशासन और पुलिस ने जोशीमठ के पेट्रोल पंप से लेकर मारवाड़ी तक गेट सिस्टम और वन वे सिस्टम लागू कर दिया है। इससे एक बार में आने वाले यात्रियों की गाड़ियां इस रूट पर चलेंगी, तो अगली बार जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों को रास्ता मिलेगा।
3: आज से हमने ये व्यवस्था शुरू कर दी है यहाँ पर से, कि पहले हम एक तरफ से छोड़ेंगे और एक तरफ रोक देंगे, तो बीच इस ये जो हमारा 8 किलोमीटर का पैच खाली मिल जाएगा, और उसमें जब हमारा यहाँ से एक कानवाई टाइप चलेगी तो वो स्मूथली पार करेगी, तो वहाँ आधा घंटे में हमारा पूरा ट्रैफिक निकल जाएगा। जो 2-3-4 घंटे तक जाम लग रहा वो हमारे आधे घंटे में निकल जाएगा।
0: इससे फायदा ये होगा कि जोशीमठ में रोकी जा रही गाड़ियों के यात्रियों को चाय पानी और खाने पीने के लिए भी समय मिल जाएगा, उन्हें आगे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक पर भी दबाव नहीं पड़ेगा। वहीं पहाड़ों में मौसम के बदलाव को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट रखा गया है। साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का खास ख्याल रखने के निर्देश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं, ताकि हर तीर्थ यात्री की चारधाम यात्रा सुरक्षित तरीके से और सहूलत के साथ पूरी हो सके। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग विदेश के दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो कैमरा उठाइए और बनाइए व्लॉग, और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध, और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ।
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
9: Gone! Home run!
8: NHL.
9: Scores!
8: College basketball.
10: He shoots it immediately.
11: He makes it in!
8: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
12: One lap to go.
8: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: आना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सावधान रहने की अपील। लखनऊ में लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन के शानदार पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, वाहन चालकों पर ठंडे पानी की फुहारें। बिहार के भागलपुर में लोगों के लिए शानदार खबर, विक्रमशिला सेतु पर बीआरओ ने किया कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा बेले ब्रिज किया तैयार। एथलेटिक्स फेडरेशन टूर्नामेंट में गुरविंदर सिंह वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में की पूरी, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में दिखे समर फेस्टिवल के रंग, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का आनंद उठा रहे लोग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कहावत पुरानी है कि आग से खेलना नहीं चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि बिना आग से खेले आग बुझाएगा कौन। जब आग लगती है तो उसकी बेलगाम लौ और झुलसा देने वाली तपिश अच्छे अच्छों को जला डालती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धधकने वाली लौ और तपिश में खुद को तपाकर उस वक्त अपनी जान दांव पर लगाकर उसी आग से खेलते हैं जो आग दूसरों को जला डालती है। आज कहानी दिल्ली फायर सर्विस के ऐसे जाबाज की जो फ्लावर नहीं सच में फायर है।
1: सीधी फायर कॉल है आपके लिए, सीधी फायर कॉल है, फायर कॉल नोट करेंगे, फायर कॉल नोट करें।

यूँ तो हर दफ्तर में फोन होता है, फोन बजता भी है, लेकिन इस फोन और इस फोन की घंटी दोनों तमाम फोन और उसकी बजने वाली घंटी से बिल्कुल अलग है। इस फोन की बजने वाली हर घंटी अपने साथ एक आग लेकर आती है और लीजिए घंटी बज गई। इधर घंटी बजी, उधर फोन उठा, फोन उठाने वाले ने डायरी पर पता लिखा और फिर अचानक पूरे अहाते में सायरन की आवाज गूंज उठी। यहाँ रहने वाले लोग इस सायरन के बजने का मतलब बखूबी जानते हैं। सायरन बजते ही जो जिस हाल में होता है दौड़ पड़ता है। ये सायरन उन्हें इतनी मोहलत भी नहीं देता कि वो ठीक से कपड़े पहन सके या जूते पहन सके, इसीलिए कई बार तो जूते हाथ में लेकर ही दौड़ना होता है। अब सभी भागते हुए इस गाड़ी तक पहुंचते हैं। इस गाड़ी को तो आप पहचानते ही होंगे, इसे अंग्रेजी में फायर ब्रिगेड और आम भाषा में दमकल कहते हैं। अब इसे देखकर इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी अभी कहीं आग लगी है। वो फोन की घंटी उस आग की खबर देने के लिए बजी थी। वो सायरन फायर फाइटर्स को आग बुझाने वाली इस गाड़ी तक पहुंचने के लिए बजा था। अब सभी फायर फाइटर्स दौड़ते भागते इस गाड़ी में बैठ चुके हैं। ड्राइवर भी मुस्तैद है। सायरन बजाते हुए गाड़ी अब तेजी से सड़क की तरफ भागती है। हर लम्हा कीमती है। इससे पहले कि आग की गुस्सैल लौ सब कुछ खाक कर दे, इन्हें उस पर पानी डालकर उसके गुस्से को शांत करना है। लेकिन ट्रैफिक तो ट्रैफिक है, कई बार सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां भी इनकी इमरजेंसी को समझ नहीं पाती। पर ड्राइवर को तजुर्बा है, किसी तरह उस ट्रैफिक के बीच से अपनी गाड़ी को भगाता हुआ आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहां आग लगी है। अब यहां से ड्राइवर का काम खत्म और गाड़ी में बैठे फायर

0: ऐसी भयानक तस्वीरें आपकी नजरों से कई बार गुजरी होंगी। छोटी बड़ी आग की ऐसी तमाम खबरें भी आपने अनगिनत बार सुनी होंगी। ऐसी घटनाओं के बाद जब आग की लपटों और धुएं के गुबार से हर कोई दूर भाग रहा होता है, तब उस वक्त यही वो जाबाज फायर फाइटर्स होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर आग की लपटों के करीब पहुंचते हुए गुस्सैल आग को शांत करने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली अग्निशमन सेवा यानी फायर सर्विस का हेडक्वार्टर है, दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में। इस हेडक्वार्टर के अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुल 71 फायर स्टेशन है, जिनमें 323 आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं। कुल 2500 फायर फाइटर्स हैं। इन्हीं 2500 फायर फाइटर्स के ऊपर पूरी दिल्ली को आग से बचाने या आग बुझाने की जिम्मेदारी है। हालांकि आबादी के हिसाब से इनकी तादाद कम है, कहां दिल्ली के 2.5 करोड़ की आबादी और कहां 2500 फाइटर्स, लेकिन इसके बावजूद इनके हौसलों में कोई कमी नहीं है।
1: टोटल हमारे पास 71 फायर स्टेशन है दिल्ली के अंदर अभी, और हमारे पास जो टोटल फ्लीट है हमारा वो 323 का है।
0: सर्दी या बरसात तो ठीक है, लेकिन गर्मी में हालात सबसे बुरे होते हैं, खास तौर पर मई और जून का महीना। ये वो दो महीने हैं जिनमें दिल्ली समेत देश भर में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। औसतन इन दो महीनों में हर दिन फायर सर्विस को आग लगने के 200 से ज्यादा कॉल आते हैं। इनमें से 10-20 कॉल को छोड़ भी दे तो हर दिन 125 या 200 दमकल की गाड़ियां सड़कों पर सायरन बजाती आपको नजर आ जाएंगी। हालांकि दिल्ली के मौसम को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने 12 महीनों को कुल 4 क्वार्टर में बांट रखा है। ये बंटवारा महीने और मौसम के हिसाब से लगने वाली आग के मद्देनजर किया गया है।
1: हम साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला क्वार्टर है वो इसमें ज़्यादा कॉल्स नहीं होती, एवरेज कॉल्स होती हैं। जो हमारा सेकंड क्वार्टर होता है जो अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक जाता है, उसमें हमारी कॉल्स 2 टाइम से भी ज़्यादा चली जाती हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वार्टर है या उसमें भी फिर एवरेज कॉल रहती हैं। और फिर जो हमारा फेस्टिवल सीजन वाला क्वार्टर आता है जिसमें फेस्टिवल्स आते हैं, उसमें हमारी कॉल्स बढ़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉल्स जो हमारी बढ़ती हैं क्वार्टर सेकंड जो हमारा है, जो समर सीजन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर बढ़ती हैं। जो नॉर्मली हमारी कॉल 80-90 होती हैं पर डे, वो इस सीजन के दौरान 200-250 तक चली जाती हैं।
0: चलिए आज आपको बताते हैं कि फायर सर्विस, फायर फाइटर्स, दमकल की गाड़ियां, आग बुझाने के उपकरण और आग से लड़ने के अलग अलग वो क्या तरीके हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो शुरुआत उस शुरुआती जगह से जहां से इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत होती है, यानी कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम दिल्ली फायर सर्विस के हेडक्वार्टर में बना है। 102 नंबर पर जब भी कोई फायर डिपार्टमेंट को फोन करता है तो उसकी घंटी इसी कंट्रोल रूम में बजती है। इस कंट्रोल रूम में 365 दिन और 2400 घंटे कोई न कोई फोन के पास बैठा होता है। कंट्रोल रूम में सिर्फ फोन उठाने के लिए 100 लोगों की एक पूरी टीम है। हर शिफ्ट में कम से कम 25 लोग काम करते हैं।
1: हमें जो कॉल मिलती है वो हमारे कंट्रोल रूम पे आती है। पहले कंट्रोल रूम पे आने के लिए उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि या तो किसी ने सीधा ही 101 पे कॉल किया तो हमारे पास आएगी, या 112 पे अगर किसी ने कॉल किया तो हमारे पास, हम इंटीग्रेटेड हैं उसके साथ, वो कॉल वहाँ से हमें आ जाती है तुरंत ट्रांसफ़र होके। तीसरा तरीका है कि जितने इमरजेंसी के और कंट्रोल रूम्स हैं उनके साथ हमारा कंट्रोल रूम हॉटलाइन से कनेक्टेड है। अगर उनको कोई फायर की कॉल मिलती है तो हॉटलाइन के थ्रू भी वो हमें ट्रांसफ़र होती है।
2: ये कॉल रिसीव करते हैं, रिसीव करने का एक यहाँ ये पैड है, इसमें कॉलर का नाम, जो कॉलर होता है उसके कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है जो इनको ये भरते हैं, उसका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, लैंडमार्क और किस थाने के लोकेशन के नज़दीक है, उसको इस स्लिप को पूरा भरने के बाद ये फिर हमारा वायरलेस सिस्टम है वहाँ कॉल को देते हैं, वहाँ से कंसर्न स्टेशन को कॉल रिसीव हो जाती है।
0: तो ये फायर कंट्रोल रूम है, ये वो कंट्रोल रूम है जहाँ पूरे दिल्ली की कॉल्स यहाँ आती है और यहाँ से कॉल जो है वो आगे की तरफ डाइवर्ट की जाती है, आगे की तरफ जो है फॉरवर्ड की जाती है, और वहाँ से ये तय होता है कि कौन से थाने में ये पूरा मामला आता है, कौन से लोकेशन का, और उस लोकेशन के पास वाले फायर सर्विस पर ये कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और वहाँ के जो फायर फाइटर्स होते हैं, वहाँ की जो टीम होती है वो पहुँचती है और वहाँ रेस्क्यू वाली जगह पर पहुँच जाती है। तो ये वो सेंटर है जहाँ से पूरी दिल्ली की कॉल इनके पास आती है और ये उन कॉल्स को जो है वो अलग अलग जगह पर ट्रांसफर करते हैं। फोन पर आग लगने की इत्तला मिलते ही कंट्रोल रूम उस फायर स्टेशन को पलटकर फौरन फोन करता है जो आग लगने वाली जगह से सबसे करीब हो। कंट्रोल रूम फायर स्टेशन को आग की इत्तला देने के साथ साथ ये भी जानकारी देता है कि आग घर में लगी है, दुकान में, मॉल में, होटल में, बहुमंजिला इमारत में, दफ्तर में या झुग्गी में। इसके साथ ही कंट्रोल रूम ये भी बताता है कि आग कितनी बड़ी या छोटी है। इसकी वजह यह है कि इससे फायर स्टेशन को ये समझने में आसानी हो जाती है कि मौके पर दमकल की कितनी गाड़ियां भेजनी है और कौन सी गाड़ियां भेजनी है। चूंकि कंट्रोल रूम से कभी भी फोन आ सकता है, इसीलिए हर फायर स्टेशन में फायर फाइटर के साथ साथ दमकल की गाड़ियां भी 2400 घंटे तैयार रहती हैं। हर दिन सुबह शाम गाड़ियों की चेकिंग होती है ताकि एन वक्त पर वो धोखा ना दे।
3: कितने टाइप की गाड़ियां, किसकी कितनी कैपेसिटी है पानी?
4: मैम जो उस साइड पे खड़ी है वो SWT, हाँ, चार स्मॉल वाटर टेंडर, वो छोटे आग के लिए होती है वैसे। उसकी 3000 रहती है ना,
5: 5000 लीटर के लिए,
4: 4-5 हज़ार लीटर के समथिंग उसमें आता है। उसके बाद होता है बाउजर, ये 10-12 हज़ार लीटर होगा जी। उसके बाद आ गई मैम ये AWT जी, आर्टिकुलेटर वाटर टावर। ये ना रिमोट से चलती है मैम टोटली। जैसे यहाँ पे खड़ी है नीचे, तो यहाँ से ये ऑपरेट हो जाएगी एटलीस्ट 57 मीटर तक।
3: कितने फ्लोर होंगे?
4: 57 मीटर में देख लो मैम कितने हो जाएगी लगभग। हाँ, 10 फ्लोर से भी ऊपर जी।
3: किसी बड़ी बिल्डिंग में, सोसाइटी में, अपार्टमेंट में,
4: हाई राइज बिल्डिंग में है या फैक्ट्री वगैरह में है, तो उनके लिए बेस्ट है। ये इसमें कैमरा लगा हुआ है, इसका मॉनिटर है, उस पर आगे कैमरा लगा हुआ है, नीचे इसमें डिस्प्ले में सब दिखता रहता है और ये रिमोट की तरह चलती है।
3: और QRV भी है?
4: हाँ, वो साइड खड़ी हूँ वो। उसके बाद
3: ये क्या है?
4: ये है TTL, टर्न टेबल लैडर। मैम ये एटलीस्ट 30 मीटर तक हाई चली जाती है। इसमें आगे केज है, उस पर हम लोग भी जा सकते हैं। मतलब कोई ऊपर फंसा हुआ है इंसान, तो उसे इसके थ्रू उतार सकते हैं, और साथ में इससे ऊपर जाकर हम फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं ऊपर से ही। इसमें होज वगैरह कनेक्ट हो गए, इनका खुद का पानी नहीं होता, इन दोनों गाड़ी में खुद का पानी नहीं स्टोर होता जैसे उनमें है। अगर इनको ऑपरेट करना है तो बाउजर की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हीं का पानी इनको सप्लाई चाहिएगा जी। ये QRV है मैम।
3: QRV मतलब
4: क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल। इसमें मैम ये 100 लीटर का ये पंप ये रखा हुआ है, तो ये एटलीस्ट छोटी मोटी आग के लिए है।
3: मकसद क्या?
4: मेन छोटी छोटी गलियों के लिए, जैसे कंजेस्टेड गली है जहाँ पे वे नहीं जा सकती और छोटी मोटी फायर है, तो उनके लिए है।
0: दमकल की गाड़ियों के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। वो पानी ही है जिससे आग बुझाई जाती है। दिल्ली के हर फायर स्टेशन में बाकायदा पानी के बोर पंप लगे हैं, जो बेहद फोर्स के साथ और कम वक्त में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के टैंक को फुल करते हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से भी दमकल की गाड़ियों में पानी भरा जाता है। इसके लिए बाकायदा फायर फिलिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। जिस तरह हर दिन सुबह शाम गाड़ियों की चेकिंग होती है, उसी तरह दमकल की गाड़ियों के पानी को भी चेक किया जाता है।
1: गाड़ियों में हमारे 27 फायर स्टेशंस के ऊपर ऑलरेडी बोर है अपना, हम वहाँ से भरते हैं, या जो जल बोर्ड के हमारे फिलिंग पॉइंट्स हैं उनसे भरते हैं, या जो आसपास कहीं बिल्डिंग है हमारी, जो हाईरेज बिल्डिंग है, उनमें भी पानी की पूरी व्यवस्था होती है, उन बिल्डिंगों से हम इन गाड़ियों को भरते हैं।
0: दमकल के अलग अलग गाड़ियों में गाड़ियों के टैंक के साइज के हिसाब से एक गाड़ी में 2.5 से 3 हज़ार, 4 से 5 हज़ार और 12 हज़ार लीटर तक पानी आता है। इसके अलावा कई आग ऐसे होते हैं जिन पर पानी का असर नहीं होता। ऐसी आग को फोम और खास केमिकल से बुझाया जाता है।
1: देखिए, गाड़ियों की जो कैपेसिटी है वो वाटर कंटेनिंग अलग अलग है। जैसे कि मेरे पास स्मॉल वाटर टेंडर है, नॉर्मल वाटर टेंडर है और वाटर बाउजर है। तीन गाड़ियां हैं मेरे पास जो वाटर कैरी करती हैं। इनमें जो स्मॉल वाटर टेंडर है उसमें 2.5 से 3 हज़ार के बीच का टैंक है, और जो नॉर्मल वाटर टेंडर है उसमें 4 से 5 हज़ार का टैंक होता है, और जो वाटर बाउजर है वो 12 हज़ार लीटर का है।
6: इसमें होज पाइप है, ब्रांच है, फॉर्म ड्रम है, BS सेट है, कटिंग टूल है, ये सब चीज़ आप देखना चाहो देख सको। और लैडर एक्सटेंशन लैडर है जी, इसमें पंप है।
3: हाँ जी,
6: हाँ पानी इससे, ये डिलीवरी है, ये पंप है, इससे आगे है, इसे कनेक्ट हो जी, यहाँ कनेक्ट करके और बढ़ाते चले जाओ।
3: पानी का पाइप है वो इससे कनेक्ट कर देते।
6: हाँ, इससे कनेक्ट करते हैं
3: और इसे चला देते हैं।
6: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी।
3: हाँ,
6: छोटी आग, छोटी आग के लिए एक कैमरा आया था गाड़ी के, गाड़ी को बैक करना हो उसमें दिखाई दे, छोटी मोटी आग के लिए होजरी लगी हुई है, इससे
7: काम करना हो,
6: छोटी मोटी आग के लिए इससे ही काम हो जाए, बड़ी आग के लिए पाइप द्वारा।
0: आपको शायद पता ना हो, दमकल की गाड़ियों में आग बुझाने के लिए जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ पानी होता है। वो पानी जो हमारे और आपके घरों में आता है, पीने वाला पानी। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? असल में फायर फाइटर्स हर रोज आग बुझाने के दौरान आग के बीच उस तपिश से गुजरते हैं जब गला सूखने लगता है। पल पल आग की लौ तेज होती जाती है, ऐसी सूरत में प्यास लगने या गला सूखने पर वो आग को छोड़कर पानी पीने नहीं जा सकते, इसीलिए वो उसी पानी को पीते हैं जिससे आग बुझाते हैं।
1: इनके अंदर नॉर्मल जो है बोर का पानी या ड्रिंकिंग वाटर जो जल बोर्ड का है वही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जब हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं तो ये दो तीन चीजें होती हैं। कई बार ब्रांचमैन जो है सेकेंड ब्रांचमैन को कवर देता है पानी के से ही, पानी का शावर चला के, तो वो पानी उसकी बॉडी पे भी टच होता है, बार बार भीगता भी है वो उस पानी में। और कई बार फायर फाइटिंग करते हुए वो पानी गलती से भी पी जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि उसको अंदर घुसा हुआ है, प्यास लग रही है, तो वो उस ब्रांच से पानी भी पी लेता है। तो हम इसलिए नॉर्मल वाटर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है और जो बोरिंग का वाटर है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी वाटर हम यूज़ नहीं करते।
0: फाइटर्स के इन कपड़ों को तो आपने देखा होगा, तपती गर्मी में आग की तपिश के बीच कई बार ये इतने ज्यादा तापमान से घिरे होते हैं कि इनके ये कपड़े ना हो तो ये खुद जल जाए। लेकिन इन कपड़ों और इनके पहने बूटों का वजन इतना ज्यादा होता है कि आम इंसान तो ठीक से चल भी ना पाए और इन्हें तो दौड़ना होता है।
8: जैसे ही घंटी बजती है, कॉल आती है, पता चलता है कि जिंदगी खतरे में है, पता चलता है कि आग लग चुकी है, फौरन एक मिनट के अंदर ये फायर फाइटर्स अपने इस लबादे को ओढ़कर, इस हेलमेट को पहनकर, इन बूट्स को पहनकर तैयार हो जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए जल्द से जल्द, जहां पर कई लोगों की जिंदगी जोखिम में पहले से ही रहती है। अब ये सोचिए, एक मिनट के अंदर की पूरी तैयारी और उसके बाद 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर का, और जो इन्होंने ये जैकेट पहनी है काफ़ी मोटी जैकेट है क्योंकि ये उनको भी प्रोटेक्ट करती है आग से। ये जो हेलमेट है इसका वजन बहुत ज्यादा है, लगभग 2 किलो के आसपास का ये हेलमेट होता है। जो बूट्स इन्होंने पहने हैं, इस बूट्स का वजन भी लगभग 4 से 5 किलो का है। तो एक वजनी लबादा अपने ऊपर ओढ़े हुए ये फायर फाइटर्स फौरन निकल जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां पर आग की सूचना मिली होती है, और उसके बाद वहां पर जाने के बाद वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं।
0: दिल्ली फायर सर्विस के लिए सबसे मुश्किल काम होता है आग लगने वाली जगह पर वक्त पर पहुंचना। इसके लिए बाकायदा खुद फायर सर्विस ने अपनी टीम के लिए रिस्पांस टाइम तय किया हुआ है।
9: मेट्रो पिलर नंबर 42।
0: कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजने के बाद जैसे ही सायरन बजाया जाता है, उस सायरन के बजने का मतलब ये है कि अब अगले एक मिनट में फायर फाइटर्स जिस हाल में भी हो उन्हें दमकल की गाड़ी में बैठकर फायर स्टेशन छोड़ देना होता है।
6: एक मिनट के अंदर हमने स्टेशन को छोड़ना होता है। रास्ते में व्हीकल है, जाम की स्थिति हो है, इसमें टाइम लग जाता है, वरना हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। हेलमेट, गम बूट और फायर सूट ये गाड़ी में ऑलरेडी रखा रहा है।
3: अच्छा।
6: हम जैसे ही फायर सायरन सुना उठ के भगले हैं।
3: अच्छा।
6: चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, बाथरूम वो भी स्नान कर रहा है वो भी ऐसे ही भग लेता है।
3: अच्छा।
6: और गाड़ी में आके बैठ के हेलमेट गम बूट डांगरी पहन के अपने रेडी हो जाए।
0: ने लेकिन यही रिस्पांस टाइम रात के वक्त एक मिनट से बढ़कर दो मिनट हो जाता है। वजह ये कि अमूमन रात में स्टाफ आराम कर रहा होता है। असल में फायर फाइटर्स की ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से नहीं बल्कि ग्रुप के हिसाब से होती है। इनकी ड्यूटी 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक की होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जरूरत के हिसाब से स्टाफ कम है।
1: हमें तीनों चीजों की जरूरत है। हमें फायर स्टेशन भी 120 चाहिए जल्दी जल्दी, हमें इक्विपमेंट्स अप्लायंसेस भी चाहिए जो कि हम डिप्लॉय कर सकें, और साथ ही साथ मैन पावर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज की तारीख में मेरी है, क्योंकि मेरे पास आज की तारीख में 12,000 प्लस आदमी होने चाहिए ऑपरेशन के, लेकिन मेरे पास वो 2,500 ही हैं और वो 24 आवर राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं।
0: फायर फाइटर्स के लिए स्टेशन छोड़ने का रिस्पांस टाइम बेशक एक मिनट है, पर दिक्कत ये होती है कि कई बार सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। मौखाए वारदात की दूरी भी स्टेशन से दूर, हर सेकंड या मिनट बेहद कीमती होता है। कई बार जिस जगह आग लगी होती है वहाँ रास्ता भी बेहद संकरा या भीड़ भाड़ वाला होता है। यही वजह है कि कई बार मौके पर पहुँचने में देरी भी हो जाती है।
8: ये एक रियल कॉल है और हम इस रियल कॉल पर इस दमकल की गाड़ी में फायर फाइटर्स के साथ निकल गए हैं। और देखिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है कि दिल्ली की ट्रैफिक से भी आपको जूझना है, आपको उस जगह पर कम से कम समय में भी पहुंचना है। जिस चुनौती की हम बात कर रहे थे ना कि ट्रैफिक मिलता है और मतलब गाड़ी चाह कर भी जा नहीं पा रही है उस जगह पर समय पर, क्योंकि इस जगह को आप देखिए और नैतिकता है कि जो बाकी यहाँ के आम लोग हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अंदर तक पहुँचाया जाए, और खुद जो इसमें मौजूद फायर फाइटर्स थे वो उतर करके रास्ता भी क्लियर करते हैं और साथ ही साथ ये गाड़ी जो आगे बढ़ती है। तुर्कमान गेट है और यहाँ से सीधे अंदर हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक बिरयानी शॉप में आग लगी है और वहाँ पर उसे काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ तक एंटर करना वाकई बहुत मुश्किल था।
0: दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक शहर में नए बने घर और अपार्टमेंट्स का जो स्ट्रक्चर या डिजाइन है उसकी वजह से भी अब आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल आती है। पुराने दौर के बने घरों में ऊंची छत, रोशनदान और खिड़कियां होती थी, जिसकी वजह से आग को फैलने में तब औसतन 15 से 17 मिनट का वक्त लगता था, लेकिन नए दौर के घरों में छत नीची हो गई है, रोशनदान और खिड़कियां कम, जिसकी वजह से आग 3 से 5 मिनट में ही पूरे घर में फैल जाती है।
1: आज से जो 25 से 30 साल पहले बिल्डिंग बनती थी उनका डिजाइन इस तरह का था, उनकी छतें ऊंची थी, उनमें रोशनदान थे, जो घर के अंदर चीजें यूज हो रही थी वो ज्यादा फ्लेमेबल नहीं थी कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो जब कभी आग लगती थी कमरे में तो फ्लैश ओवर एक फिनोमिना होता है, जो फायर छोटी से होकर के और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती कि पूरा कंपार्टमेंट, पूरा कमरा इन्वॉल्व हो जाए फायर में, 600 डिग्री के करीब टेम्परेचर जब हो जाता है। तो ये फिनोमिना पहले 15 से 17 मिनट में होता था। अभी जो हमारी आज की तारीख में बिल्डिंगों के डिज़ाइन हो गए हैं, फॉल सीलिंग लगने लगी, छत की हाइट नीचे आ गई, रोशनदान खत्म हो गए, आप वॉल पैनलिंग करा रहे हो, आप कारपेट लगा रहे हो या वॉल पेपर लगा रहे हो, या बहुत सारा आपकी तारीख में फ्लेमेबल मटेरियल आपके कमरे में होता है, पीयू के जैसे सोफे, गद्दे, कुर्सी, ये सब जो है बहुत हाईली फ्लेमेबल है। तो आज की तारीख में ये हो गया है कि जब एक फायर शुरू होती है तो ऑक्यूपेंट को फ्लैश ओवर होने तक केवल 3 से 5 मिनट मिल रहे हैं।
0: हालांकि हर फायर फाइटर को फायर सर्विस में ज्वाइन कराने से पहले एक मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होता है।
1: फाइटर्स की दो तरह की ट्रेनिंग है, जो हमारे ग्रुप सी हैं वो सारे हमारे ही ट्रेंड किए हुए लोग होते हैं, उनको हम हमारा नेशनल लेवल का एक हमारे पास ट्रेनिंग एकेडमी है, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी रोहिणी में है, वहाँ से हम उनको 6 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं अपनी, उसके बाद जो है वो लोग फायर सर्विस में इंडक्ट होते हैं हमारे। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं ग्रुप बी एंड अबव, ये सभी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर या उसके इक्विवेलेंट जो इंस्टीट्यूट बाद में खुल गए हैं उनसे क्वालिफाइड हैं सारे।
0: हालांकि बढ़ती आबादी के मद्देनजर जल्द ही दिल्ली में 50 नए और फायर स्टेशन बनाने की तैयारी है। इस तरह दिल्ली में फायर स्टेशन की तादाद 70 से बढ़कर 120 हो जाएगी। हालांकि फायर स्टेशन या फायर फाइटर की तादाद जरूर बढ़ जाएगी।
1: फायर स्टेशंस भी हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि इस साल हम 8 फायर स्टेशंस को हमने टेकअप किया हुआ है।

0: रिकमेंड करते हैं, एडवाइजरी इशू करते हैं और उसका कंप्लायंस भी इंश्योर करते हैं। तो जो कुछ इस तरह की बिल्डिंग है, जो सेंसिटिव बिल्डिंग मैं कह सकता हूँ नेशनल प्रायोरिटी से, तो उन बिल्डिंग्स के अंदर हमने लोकल फायर स्टेशंस भी खोल के दिए हुए हैं उनको। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक फायर स्टेशन है, उसका ज्यूरिडिक्शन केवल सुप्रीम कोर्ट है, वो उसी के लिए है। सिमिलरली हमारा जो है आपका टाउन हॉल में एक है, एक एम्स में हमने अभी एक फायर स्टेशन खोला है। तो इस तरह से जहाँ हमें लगता है प्राइम इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट हमारे पास अगर आती है तो हम वहाँ पर उनको फैसिलिट करते हैं, फायर स्टेशन की खोल के गाड़ी वहाँ प्लेस कर देते हैं।
1: तो अगली बार दिल्ली की सड़कों पर जब भी आपको सायरन बजाते दिल्ली फायर सर्विस की ये गाड़ियाँ दिखाई दे, तो सबसे पहले तो इन्हें फौरन रास्ता दे और दूसरा इन गाड़ियों में बैठे फायर फाइटर्स को दिल से दुआ दे। याद रखिएगा, घर दुकान किसी का भी जल रहा हो, उस जलती आग में सबसे आगे आगे और सबसे पहले यही कूदते हैं अपनी जान दांव पर लगाकर। इसीलिए ये फ्लावर भी हैं और फायर भी। कैमरामैन नासिर खान के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। हमारे रक्षक, हमारे फायर फाइटर्स के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और अब आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडैकनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडैकनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल भी बेहद खुशनुमा है। ऐसे में सैलानी और स्थानीय लोग यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान भव्य काइट शो भी यहाँ पर हुआ, जो आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगें उड़ाई गई। इस शो का आयोजन यहाँ पर मनावनूर गाँव में स्थित शीप एंड रैबिट होल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध, और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे से।
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home.

0: and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। लखनऊ में लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन के शानदार पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, वाहन चालकों पर ठंडे पानी की फुहारें। बिहार के भागलपुर में लोगों के लिए शानदार खबर, विक्रमशिला सेतु पर बीआरओ ने किया कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा वेल ब्रिज किया तैयार, 100 टन लोहे का हुआ इस्तेमाल। एथलेटिक्स फेडरेशन टूर्नामेंट में गुरिंदर वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में की पूरी, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। तमिलनाडु के कोडईकनाल में दिखे समर फेस्टिवल के रंग, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का आनंद उठा रहे लोग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या बैठक कर रहे हैं मनाली का रुख, यहाँ की ठंडी वादियों और सुहाने मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं टूरिस्ट। मनाली में सैलानी हिमाचली पारंपरिक वेशभूषा पहनकर करा रहे हैं फोटोशूट, स्थानीय संस्कृति और पहनावे को लेकर पर्यटकों में दिखा जा रहा खासा उत्साह। हिडिंबा देवी मंदिर और आसपास के इलाकों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, लोग देवदार के जंगलों के बीच यादगार तस्वीरें कैद कर रहे हैं। प्राकृतिक वादियों के बीच सैर का आनंद ले रहे पर्यटक, कई सैलानी पारंपरिक ड्रेस में रील और वीडियो भी बना रहे हैं। मनाली के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों बढ़ गई रौनक, ठंडी हवाएं, खूबसूरत नजारे और हिमाचली संस्कृति पर्यटकों कर रही खास आकर्षण। अनंतनाग के मारतंड सूर्य मंदिर में पुरुषोत्तम मास के दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, वनमास मेले में दिखा आस्था और परंपरा का संगम। इस मेले में भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की, धार्मिक अनुष्ठानों से गूंज उठा। वनमास मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला, पुरुषोत्तम मास के अवसर पर दूर दूर से पहुंचे भक्त। धार्मिक आस्था का केंद्र बने मारतंड सूर्य मंदिर में भक्तों ने पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान में लिया हिस्सा, पुण्य लाभ किया अर्जित। परंपरा और आस्था के प्रतीक वनवास मेले में पूरे दिन दर्शन और पूजा का सिलसिला जारी रहा, भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के बीच मंदिर परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, शनिवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 96,116 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। पिछले महीने 19 अप्रैल को शुरू हुई थी तीर्थ यात्रा, अब तक 20,76,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। बद्रीनाथ में बीते दो दिनों में ही 60,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 5,56,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन पूजन। केदारनाथ धाम में अब तक 8,11,923 भक्त कर चुके हैं दर्शन, गंगोत्री में 3,52,162 और यमुनोत्री धाम में 3,56,031 तीर्थयात्री अब तक पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में पहले दिन 6,605 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठी पूरी लोकपाल घाटी। दिल्ली में सुबह सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर दौड़ लगाते दिखे बड़ी संख्या में लोग, सुबह सुहावने मौसम का उठाया लुत्फ। राजधानी में आज फिट संडे ऑन साइकिल्स प्रोग्राम के 75वें संस्करण का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिल रैली में लिया हिस्सा। साइकिल रैली से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर की कसरत। आरएसी की 12वीं बटालियन के जवानों ने हिस्सा। गानों की धुनों पर कसरत करते लोगों में दिखा उत्साह। फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिया गया संदेश। फिट संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी हुए शामिल। कई जानी मानी हस्तियों ने की शिरकत। अहमदाबाद में भी हुआ संडे ऑन साइकिल्स इवेंट। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य के मंत्री हर्ष सिंह भी हुए शामिल। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर हुआ संडे ऑन साइकिल्स इवेंट। एक्टर आयुष्मान खुराना ने बढ़ाए लोगों का जोश। संडे ऑन साइकिल्स इवेंट बड़ी संख्या में युवा महिलाएं भी शामिल। फिटनेस और सेहत के लिए दिया जागरूकता का संदेश। विजयवाड़ा में स्वच्छ आंध्र अभियान के तहत चलाया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। राज्य के मंत्री अधिकारी और आम लोग हुए शामिल। एक महीने तक चलेगा आंध्र में ऑपरेशन क्लीन स्वीप। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई पहल। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी। लोगों को धूप से बचने की सलाह। जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह। उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। बदायूं में भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा। घर से निकलना हुआ मुश्किल। कटिहार में मौसम में जबरदस्त बदलाव। आंधी तूफान से मची भारी तबाही। कोई हताहत नहीं। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन बना तालाब। शेड से झरने की तरह पानी गिरता नजर आया। दिल्ली में कल की मामूली राहत के बाद फिर से गर्म हुआ दिन। दोपहर में कड़ी धूप के बीच घर से निकलना मुश्किल। दिल्ली की तपती गर्मी ने खुले में काम करने वालों की बढ़ाई मुश्किलें। रिक्शा चालकों और स्टेशन पर कुलियों को करना पड़ रहा है दिक्कत का सामना। यूपी के कई जिलों में रिकॉर्ड बनाने में जुटी गर्मी। राजधानी लखनऊ में भी तापमान पहुंचा 45 डिग्री के पास। हीट वेव के संबंध में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। कहा राहत बचाव को लेकर रहें सतर्क। लखनऊ में लोगों को गर्मी से बचाने की शानदार पहल। रेड सिग्नल्स पर लगाए गए ग्रीन शेड कूलिंग वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था। राजस्थान के जैसलमेर में गर्मी ने बनाया रिकॉर्ड। पारा 56 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए हर स्तर पर किए जा रहे हैं इंतजाम। जमशेदपुर के चिड़ियाघर में जंगली जानवरों के लिए विशेष सुविधाओं की सौगात। जमशेदपुर के टाटा जू में हर जानवर के लिए अलग अलग व्यवस्था। शेर के पिंजरे में लगाए गए कूलर। जमशेदपुर में करीब 45 डिग्री के पास पहुंचा पारा। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए दिन में दो बार नहलाया जा रहा है। करीब 60 एकड़ में फैला है जमशेदपुर का टाटा जू। जंगली जानवरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं लोग। चमोली में कंचनगंगा के ऊपर टूटा ग्लेशियर। पानी की तरह बहते हुए दिखा बर्फ। ग्लेशियर पिघलने से नहीं हुआ कोई नुकसान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इम्फाल में कोकोमी संगठन ने निकाली युवा बाइक रैली। सेफ मणिपुर का दिया संदेश। चय चेन्नई में सफाई कर्मचारियों और पुलिस ने पेश की मिसाल, पब्लिक टॉयलेट में मिले बच्चों की बचाई गई जान। महिला सफाई कर्मचारियों को लावारिस हालत में मिली थी बच्ची, इनक्यूबेटर की सहायता से शिशु को ले जाया गया अस्पताल। यूपी में बिजली कटौती को लेकर मचे हंगामे के बीच सीएम योगी का बड़ा एक्शन, गांव से लेकर शहर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली में विदेश मंत्री अजय शंकर के साथ संयुक्त वार्ता में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो, कहा जल्द ही हम उस पर अच्छी खबर मिल सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत और रणनीतिक बताया, ये भारत की वैश्विक अहमियत को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पीएम मोदी को न्योता, व्हाइट हाउस में मुलाकात की संभावना। नागपुर में गोडम लॉजिस्टिक्स पार्क का शुभारंभ, समारोह मुख्यमंत्री फडणवीस हुए शामिल। भागलपुर के लोगों के लिए गुड न्यूज, विक्रमशिला सेतु पर सीमा सड़क संगठन का कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा वैली ब्रिज किया तैयार। वैली ब्रिज निर्माण में सॉटन स्टील का हुआ इस्तेमाल, 7 जून से पहले हल्के वाहनों के लिए खोलने की तैयारी। एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में गोविंदर वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरा कर रचा इतिहास, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में पहली बार 100 मीटर रेस में 10.10 सेकंड का मार्क हुआ क्रैक, गुरिंदर वीर की अब नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत ने सोशल मीडिया पर वायरल AID फेक वीडियो मामले में साइबर शिकायत दर्ज कराई, कहा वायरल वीडियो पूरी तरह फर्जी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई वह महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।

0: 15 दशहरा से पहले महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने की पूजा अर्चना। तेज गर्मी के बावजूद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, जय श्री राम के जयकारे लगाते कतारों में लगे लोग। हर दिन करीब 1 से 2 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं श्री राम मंदिर में दर्शन। गर्मी की छुट्टियों के अलावा गंगा दशहरा मनाने रामनगरी पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात। कुपवाड़ा में ऐतिहासिक चिठवाल वॉर मेमोरियल पर मनाया गया चिठवाल डे, सेना के अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चिठवाल डे के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह ने पेश की उद्यमिता की मिसाल, मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर कर रहे हैं कमाई। एक जुलाई के उत्पाद के तहत लगाई गई मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट, लोगों को मिल रहा है रोजगार। तमिलनाडु के थूथुकुडी में जलीय परिंदों की बहार, सैलानियों के लिए माहौल हुआ शानदार। तमिलनाडु के कोडई कनाल में दिखे समर फेस्टिवल की धूम, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र। समर फेस्टिवल में शामिल होने बड़ी संख्या पहुंचे सैलानी, लोगों ने रंगारंग कार्यक्रमों का जमकर लिया मजा। आसमान में रंग बिरंगी और अलग अलग आकृतियों वाली पतंगों ने मोहा लोगों का मन, काइट शो में कार्टून कैरेक्टर वाली विशाल पतंगें बनी आकर्षण का केंद्र। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस रंगीन नजारे को कैमरे में कैद करता नजर आया, शिप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन पर हुआ आयोजन। मशहूर हिल स्टेशन में प्राकृतिक खूबसूरती के बीच हुआ फेस्टिवल ने बढ़ाया पर्यटकों का उत्साह, ठंडी हवाओं और रंगीन पतंगों के बीच उत्सव के रंग में रंगा पूरा इलाका। अर्जुन तेंदुलकर की शानदार गेंदबाजी देख भावुक हुए पिता सचिन, शेयर की खास पोस्ट, बेटे को शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने पूरे 4 ओवर डाले, प्रभसिमरन सिंह का अहम विकेट भी झटका। कोलकाता दिल्ली के बीच आज आईपीएल सीजन का आखिरी लीग मैच, नाइट राइडर्स के पास प्लेऑफ में जाने का आखिरी मौका। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, शाम 7:30 पर शुरू होगा मुकाबला। कोलकाता में 13 मैचों में 13 पॉइंट के साथ छठे स्थान पर, दिल्ली पहले ही प्लेऑफ से हो चुकी है बाहर। रेड कारपेट पर सितारों की रौनक के साथ कान फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी हुई पूरी, फिल्मी दुनिया के दिग्गज एक साथ नजर आए। क्रिश्चियन के फ्रॉड ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जीता पाम डी और अवार्ड, रेनेट रिंसवे और स्टैन भी रेड कार्पेट नजर आए। कान क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का भी दिखा जलवा, व्हाइट आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आई। ऐश्वर्या राय का लुक सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, यूजर्स ने जमकर की लुक की तारीफ। पैंट सूट के साथ ऐश्वर्या ने डायमंड रिंग पहनकर अपने लुक को किया कंप्लीट, फैंस ने उन्हें कान फेस्टिवल की क्वीन का दिया तमगा। रामचरण की पेडी का नया सॉन्ग हेलो हेलो रिलीज, रामचरण के साथ जानवी कपूर और श्रुति हसन ने लगाया डांस का जबरदस्त तड़का। इस स्पोर्ट्स ड्रामा पेडी का भोपाल में प्रमोशन, रामचरण जानवी को देख एक्साइटेड हुए फैंस, फिल्म 4 जून को होगी रिलीज। रामचरण जानवी के साथ साथ देवेंदु शर्मा, रवि किशन समेत सभी स्टारकास्ट पहुंचे, जानवी का नजर आया बेहद खूबसूरत लुक। भोपाल में सिंगर और म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान का शानदार लाइव कॉन्सर्ट, फिल्म पैडी के गानों की भव्य प्रस्तुति से बांधा समा। बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने पैडी के चार्टबस्टर गाने चिकरी चिकरी को भी गाया, सॉन्ग संगीतकार एआर रहमान ने किया तैयार। रामचरण ने गेंदबाज बुमराह को फुटबॉलर बोलने पर हाथ जोड़कर मांगी माफी। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मलयालम दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 3 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार। दृश्यम 3 ने राजा शिवाजी, चांद मेरा दिल समेत कई फिल्मों का बिगाड़ा खेल, तीसरे दिन 13 करोड़ 70 लाख का किया बिजनेस। दूसरे वीकेंड भी सूर्या तिश्रा के एक्शन थ्रिलर करुप्पो की शानदार कमाई, 9 दिन में दुनिया भर में 217 करोड़ 74 लाख का किया कारोबार। करुप्पो ने कमाई से 9 दिन में ही निकाला बजट, सूर्या ने 10 साल बाद दी पहली सक्सेसफुल फिल्म, 2026 की सबसे बड़ी तमिल फिल्म बनी। यागो डोरा ने न्यूजीलैंड के रेगलन WSL इवेंट में सीजन का पहला परफेक्ट 10 स्कोर किया, शानदार रोटेशन और दमदार मूव से उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई। कैरिसा मूरे ने महिलाओं के सेमीफाइनल में सीजन का सबसे बड़ा 19.00 हीट टोटल बनाया, उनकी बैकहैंड सर्फिंग ने मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा कर दिया। न्यूजीलैंड के मनुबे में पहली बार चैंपियनशिप टूर प्रतियोगिता आयोजित हुई, 3 से 5 फुट ऊंची लहरों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। यागो डोरा ने अमेरिकी सर्फर कोल हर्शमंड को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की, आखिरी मिनट में आए परफेक्ट 10 ने मुकाबले का रुख बदल दिया। कैरिसा मोरे ने जीत के बाद अपनी 1 साल की बेटी की ओर देखकर मनाया जश्न, उनके ये इवेंट का 4th शानदार प्रदर्शन रहा। किंग चार्ल्स ने इंग्लैंड के वारिक शहर में नाटक द टेम्पेस्ट का देखा शो, कलाकारों से की बैक स्टेज मुलाकात। रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ किंग चार्ल्स का पुराना रिश्ता, 1991 से कंपनी के अध्यक्ष के तौर पर किया काम, साल 2024 से निभा रहे हैं संरक्षक की भूमिका। ग्लोरिन गेजा मुकाबले में अलेक्सांड्रो ओसिक ने 11वें राउंड में रिको वॉरहेवन को नॉकआउट कर दिया, आखिरी सेकंड में आए अपरकाट ने दुनिया के सबसे बड़े लटफेरों में से एक होने से मुकाबला बचा लिया। पूर्व किकबॉक्सर रिको वेरहोवेन ने शुरुआत से ही उसे को कड़ी टक्कर देकर सबको चौंका दिया, कई स्कोर कार्ड्स में 37 वर्षीय डच फाइटर मुकाबले में आगे चल रहे थे। जीत के बाद उसिक ने यूक्रेन में जारी बमबारी का जिक्र करते हुए भावुक बेटी को समर्पित की जीत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
3: After multiple assassination attempts, they can't even get.
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडैकनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडैकनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल भी बेहद खुशनुमा है। ऐसे में सैलानी और स्थानीय लोग यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान भव्य काइट शो भी यहाँ पर हुआ, जो आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगें उड़ाई गई। इस शो का आयोजन यहाँ पर मनावनूर गाँव में स्थित शीप एंड रैबिट होल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध, और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे से।
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सावधान रहने की अपील। लखनऊ में लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन के शानदार पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, वाहन चालकों पर ठंडे पानी की फुहारें। बिहार के भागलपुर में लोगों के लिए शानदार खबर, विक्रमशिला सेतु पर बीआरओ ने किया कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा बेली ब्रिज किया तैयार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
16: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच भी मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हां, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये खबर बिहार के सासाराम में 18 मई को एक ट्रेन में लगी आग का वीडियो है। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई का ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
16: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सासाराम से पटना जा रही ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए है, वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का ये वीडियो है और वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है रिपोर्ट देखिए।
17: आग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है, वो खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सासाराम से चलने वाली ट्रेन में आग लगी है, बहुत ही भयानक, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वायरल वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगातार वायरल किया जा रहा है।
16: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है एक ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है, वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे का ये वीडियो है जहां एक ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और जांच के दौरान दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। वीडियो में एक शख्स ने कैमरा पकड़ा हुआ है और उसके पीछे एक शख्स ने माइक भी पकड़ा हुआ है। ऐसे में हम ये किसी शूटिंग के दौरान का वीडियो, हमें ऐसा लगा कि ये हो सकता है, हमें संदेह हुआ। 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। जब आग लगी थी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था, जबकि वायरल वीडियो में यात्री नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल जो आया वो ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी शूटिंग के वीडियो को नया एंगल देकर लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
17: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 9 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो गोधरा फिल्म की शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स का है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने YouTube पर फिल्म के ट्रेलर को सर्च किया। हमें ट्रेलर एक आधिकारिक YouTube चैनल पर मिला। ट्रेलर 25 जून 2024 को शेयर किया गया था। वीडियो में 19 सेकंड पर वायरल वीडियो वाली महिला को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई थी। जब आग लगी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि सासाराम ट्रेन हादसे के नाम पर वायरल वीडियो किसी असली घटना का नहीं है। असल में वायरल वीडियो साल 2024 में रिलीज हुई गोधरा फिल्म का है। उस फिल्म के एक सीन को गलत दावे के साथ सासाराम स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
16: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ महिलाओं को रोते हुए और गुहार लगाते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। वीडियो उसी कार्रवाई का है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती है। रिपोर्ट देखिए।
17: सोशल मीडिया पर बुलडोजर कार्रवाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाओं को रोते हुए देखा जा सकता है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। ये वीडियो उसी कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, योगी जी के आशीर्वाद से शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर पश्चिम बंगाल में सफाई अभियान शुरू किया। बाबा योगी जी ने सबको बिगाड़ रखा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
16: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक बुलडोजर को घरों को तोड़ते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं बच्चों को रोते हुए भी इसमें देखा जा रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है उसका वीडियो बता रहे हैं, और ये वीडियो उसी कार्रवाई का है ये भी कहा जा रहा है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था। तो टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इसे देखने से यह साफ हो गया कि अतिक्रमण को हटाने से यह वीडियो जुड़ा हुआ है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल का है यह जानना भी जरूरी था। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों के ड्रेस के कलर पर गया। ये जवान नीली वर्दी में नजर आ रहे थे। पश्चिम बंगाल की पुलिस नीली वर्दी नहीं पहनती। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये निकल कर आया कि अगर ये वीडियो सच्चा है तो ये सवाल निकल कर आता है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई का ये वीडियो कब का है और कहां का है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच गलतफहमी, लोगों के बीच अफवाह फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है।
17: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी YouTube चैनल पर मिला। वीडियो को 14 मई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के अनुसार वीडियो बांग्लादेश के जैसोर का है, वहां अतिक्रमण हटाया गया था। इस अभियान के तहत करीब 600 घरों को तोड़ा गया था। पड़ताल के दौरान हमें वायरल वीडियो इसी जानकारी के साथ कुछ बांग्लादेशी YouTube चैनल्स पर 14 मई 2026 को अपलोड किया हुआ मिला। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट पर भी मिली। इस रिपोर्ट को 12 मई 2026 को बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जैसोर में 400 से ज्यादा अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया था। इनमें अनाधिकृत घर, दुकानें, कारखाने और राजनीतिक कार्यालय शामिल थे। यह कार्रवाई बांग्लादेश की राष्ट्रीय आवास प्राधिकरण ने की थी। साफ है अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। वीडियो का बंगाल से कोई संबंध नहीं है। असल में ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां अतिक्रमण को हटाया गया था। उसी घटना के वीडियो को अब पश्चिम बंगाल से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
16: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिये।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया। अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक की टीम ने ऐसे कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इस कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग बस में बैठा कर लोगों को ले जा रहे हैं और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का है। वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की और सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा गया और सुना गया। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी लगी, ये बांग्ला नहीं थी। इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे हैं, इस पर भी जो शब्द लिखे हुए जो दिख रहे हैं वो बांग्ला नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर मिलती, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये आया कि अगर दावा सच्चा है, सच है, तो हाल फिलहाल में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी अब तक क्यों नहीं मिली। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। तो आइए देखते हैं हमारी टीम ने क्या सच खंगाल कर निकाला है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
4: आप मैजिक में यकीन करते हैं? अक्सर लोग इसे महज हाथ की सफाई मानकर भूल जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नए वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए। मशहूर फ्रांसीसी जादूगर जेवियर मार्टिमर ने एक ऐसा हैरतअंगेज मैजिक ट्रिक दिखाया है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए हैं। वीडियो में जेवियर मार्टिमर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आम लोगों की तरह खरीदारी कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स उनके पास पहुंचता है और हैरान होकर पूछता है, क्या आप जेवियर हैं? आप मैजिक करते हैं ना? जब जेवियर हाँ कहते हैं तो शख्स उन्हें लाइव कोई जादू दिखाने की चुनौती देता है। इसके बाद जेवियर ने जो किया उसने न सिर्फ उस शख्स को बल्कि पूरे मॉल को सन्न कर दिया। जेवियर अपनी शॉपिंग ट्रॉली को तेजी से धक्का देते हुए दौड़ते हैं। अगले ही पल जैसे ही ट्रॉली की रफ्तार पकड़ती है, जेवियर के पैर जमीन छोड़ देते हैं और वो सुपरमैन की तरह हवा में तैरने लगते हैं। ये दृश्य देख मॉल में मौजूद लोग दंग रह जाते हैं और तुरंत जेब से फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। जब हैरान परेशान युवक चिल्लाता है कि ये शख्स ऐसा कैसे कर पा रहा है, तब हवा में उड़ते उड़ते जेवियर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये मेरा मैजिक ट्रिक है, क्या मेरे साथ शॉपिंग करोगे? महिलाएं अपनी हिम्मत के दम पर कुछ भी कर सकती हैं, ये दुनिया जानती है। अब दुनिया के सामने महिलाओं ने एक और कारनामा कर दिखाया है। आईटीबीपी की महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इस टीम ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई साउथ पोल मार्ग से होते हुए पूरी की। ये चढ़ाई 21 मई 2026 को सुबह 6:52 पर शुरू हुई थी। आईटीबीपी की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो और फोटो पर देशवासी को गर्व महसूस करा रहे हैं। इस पर महिलाएं चोटी पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराती दिख रही हैं। उनके चेहरे पर कमाल कर लेने की खुशी साफ नजर आ रही है। बेंगलुरु के न जाने कितने वीडियो आपने देखे होंगे, कभी ट्रैफिक का तो कभी आईटी सेक्टर में जॉब का। मगर इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी वो खास है। ये खास इसीलिए है क्योंकि इसमें किसी का दिल खुश हो गया है। फिर इस दिल खुश होने का वीडियो लोगों को पसंद भी खूब आ रहा है। वीडियो के शुरू में बताया जाता है कि एक फूल मांगा था सिर्फ। इस वक्त सामने फूल का टेम्पो दिखाई देता है जिसमें ढेरों फूल रखे होते हैं। वीडियो पर लाइन लिखी होती है कि टेम्पो वाले भैया ने मेरा पूरा हफ्ता बना दिया। फिर आगे बात बढ़ती है और सामने वैष्णवी ढेर सारे फूल बुके की तरह पकड़े दिखती है। फिर बताया जाता है कि उसने मांगा एक था लेकिन वो कितने सारे दे गया, वो भी फ्री। उनकी मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही। नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन को लोटपोट कर दिया।
5: मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते हैं।
4: जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन को लोटपोट कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपील की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तोतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
5: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ।
4: इसके बाद वो हंसते हुए जो वजह बताती है उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं, वो लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं।
5: मोदी जी आप टेंशन मत।

0: मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है। माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वो अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वो अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी वीडियो छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है।
1: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
2: मुझे तो उससे भी ज्यादा याद आएगी।
0: वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी, तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड के इस क्लिप में दादा पोती के बीच की एक छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया।

0: अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
16: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
17: भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। लखनऊ में लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन की शानदार पहल, ट्रैफिक

0: सिग्नल पर लगाया गया ग्रीन शेड, वाहन चालकों पर ठंडे पानी की फुहारे। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे लोग, हिमाचल का मनाली सैलानी से गुलजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना, बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। बिहार के भागलपुर में लोगों के लिए शानदार खबर, विक्रमशिला सेतु पर बीआरओ ने किया कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा वैली ब्रिज किया तैयार, 100 टन स्टील इस्तेमाल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कहते हैं कि आस्था के आगे हर बाधा घुटने टेक देती है। इस समय बद्री विशाल के दरबार में भक्तों का एक ऐसा अद्भुत और अल्पनीय जोश देखने को मिल रहा है जिसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। हर रोज रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। घंटों लंबी कतारों में खड़े होने के बाद भी उनके चेहरों पर थकान की एक शिकन तक नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के दरबार में आस्था की ऐसी अनवरत बयार बह रही है कि पूरा धाम जय बद्री विशाल के उद्घोष से गुंजायमान है। पूरा वातावरण साक्षात नारायण के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। चार धामों में सर्वोच्च आध्यात्मिक महत्व रखने वाले इस पवित्र धाम में पहुंचना लाखों श्रद्धालुओं के लिए केवल यात्रा नहीं बल्कि जीवन का सौभाग्य है।

0: पवन मंद सुगंध शीतल हे मंदिर शोभितम, निकट गंडा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरम। यानी पहाड़ों की पवन अत्यंत मंद सुगंधित और शीतल बह रही है, वहां का हेमजड़ित मंदिर अत्यंत शोभायमान हो रहा है। ठीक उसी के निकट निर्मल गंगा यानी अलकनंदा नदी बह रही है और ऐसे पावन स्थान पर संपूर्ण संसार का पालन पोषण करने वाले श्री बद्रीनाथ जी विराजमान है। नीलकंठ पर्वत की ओर से फूटती सूर्य की स्वर्णिम किरणें माँ अलकनंदा के पावन जल की कल कल ध्वनि और हिमालय की पवित्र वादियों में गूंजता जय बद्री विशाल का महाघोष। ये दृश्य है आस्था के परम शिखर धरती के साक्षात बैकुंठ बद्रीनाथ धाम का, जहाँ एक ऐसी अलौकिक आभा दमक रही है जिसे देखकर साक्षात देवलोक का भ्रम होने लगता है। कपकपाती ठंड और दुर्गम रास्तों के बीच बद्रीनाथ धाम की ये दिव्य छटा हर भक्त के अंतर मन को असीम शांति से भर देती है।
1: बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आने के बाद चलो कोई तो स्वर्ग में आ गया है ऐसा लगता है। बाकी यात्रा एकदम सही चल रही है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सब जगह से मदद होती है।
2: मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ, पूरी फैमिली है जिसमें मामा दामाद भाई बेटी सभी लोग हैं और हम लोग ने हरिद्वार से स्टार्ट किया है गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और अब हम बद्री विशाल जा रहे हैं और यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही।
3: तो हम लोग अभी 2-3 धाम कर चुके हैं तो बहुत अच्छा अनुभव था और अभी 4th धाम बाकी है तो वो भी अच्छा ही रहेगा।
4: व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सभी भक्तों से कहूंगा कि अपने मन में भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखें और यात्रा संपूर्ण आपकी तब होगी जब आप 4 धाम करेंगे और जरूर उत्तराखंड आइए, यहाँ का टूरिज्म बहुत बेहतर है।
0: बद्रीनाथ धाम में आस्था का एक ऐसा महासागर उमड़ा है जिसने इतिहास के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। कपाट खुलने के बाद से ही हर रोज रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु भगवान बद्री नारायण के दर्शन के लिए हिमालय की ऊंचाई में आस्था के शिखर पहुंच रहे हैं। क्या बूढ़े क्या बच्चे और क्या युवा, हर कोई बस उस एक पावन पल की प्रतीक्षा में घंटों कतारों में खड़ा है जब सिंह द्वार के भीतर उन्हें अपने आराध्य की एक झलक मिल जाए। चारों ओर बिखरी इस अटूट श्रद्धा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण संसार ही नारायण के चरणों में नतमस्तक हो। भक्तों का ये उत्साह देखने लायक है। कोई इस पावन धाम को देखकर भावुक है तो कोई ढोल मंजीरों की थाप पर साक्षात हरि के कीर्तन में लीन है। लेकिन पहाड़ों की हाड़ कपा देने वाली ठंड भी इन भक्तों के कदम नहीं डिगा पा रही।
5: हर तरफ चप्पे चप्पे पे श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा है, जगह जगह जय बद्री विशाल के जय घोष जयकारे यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में जो दर्शनों की लाइन है वो अब लंबी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन लंबी हो रही है। वहीं जो व्यवस्थाएं हैं दर्शन सुगम दर्शन आसान व्यवस्था, पुलिस लगातार जो श्रद्धालु कहीं गुम हो जाता है लापता हो जाता है, बच्चे कहीं भटक जाते हैं तो ऐसे में भी पुलिस और मंदिर समिति तमाम व्यवस्थाओं में यहाँ पे लगी हुई है जिससे श्रद्धालु भी गदगद दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ गदगद ही नहीं बल्कि धन्यवाद भी कर रहे हैं। वहीं जो पार्किंग की व्यवस्था अव्यवस्था बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रही थी वो भी अब सुलझा दी गई है। वहीं घस्तोली मार्ग पर पार्किंग बनाने से माणा तक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अब यात्रा और बेहतर चलेगी क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पहाड़ों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा में भी और उत्साह देखने को मिलेगा।
0: भक्तों पर नारायण के नाम का ऐसा जादू है कि हर चेहरा केवल बद्री विशाल की जय के उद्घोष से खिल उठता है। मौसम की चुनौतियां चाहे जितनी बड़ी हों लेकिन बद्रीनाथ के प्रति भक्तों की ये आगाज श्रद्धा हर बाधा पर विजय पा लेती है। युग बदले इतिहास बदला लेकिन बद्रीनाथ के प्रति इंसानी आस्था आज भी वैसी ही अडिग है। रोज उमड़ता ये जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि युग चाहे कोई भी हो, नारायण के इस भू बैकुंठ की महिमा आदि और अनंत है। श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: ना भूतो ना भविष्यति, यानी इस पूरी सृष्टि में भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम जैसा पावन और अलौकिक स्थान ना कोई दूसरा था और ना कभी होगा। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के बीच बसा नारायण का यह दरबार सिर्फ करोड़ों भक्तों की अगाध श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि एक गवाह है ऐसे कई रहस्यों का जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जरा सोचिए, जहां चारों तरफ हाड़ कपा देने वाली बर्फबारी होती हो, वहां अलकनंदा नदी के ठीक किनारे पर मौजूद तप्त कुंड क्यों गर्म रहता है? क्या ये महज एक प्राकृतिक अजूबा है या साक्षात अग्निदेव का आशीर्वाद? क्यों भगवान विष्णु के इस पावन धाम में शंख बजाना पूरी तरह वर्जित है? और क्या है इस मंदिर के सिंह द्वार की अनूठी वास्तुकला का रहस्य? बद्रीनाथ धाम की हर कहानी, हर परंपरा अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ आस्था के चमत्कार भी है और विज्ञान के अपने तर्क भी।

0: बर्फ से ढके नीलकंठ पर्वत के पीछे से उगता सूरज, मंदिर का भव्य रंग बिरंगा सिंह द्वार, श्रद्धालुओं की भारी भीड़, समुद्र तल से 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई, चारों तरफ इंसानों को जमा देने वाली कड़ाके की ठंड और बीच में मौजूद साक्षात नारायण का वो धाम जिसे बैकुंठ कहा गया है, वो है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों की एक ऐसी किताब है जिसके पन्ने आज भी विज्ञान पूरी तरह से खोल नहीं पाया। वो धाम जहां 6 महीने तक कपाट बंद रहने पर भी अखंड जोत जलती रहती है, जहां शंख बजाना वर्जित है, वहां मौजूद है एक हैरान कर देने वाला रहस्य जो आज भी अनसुलझा है, जहां आज भी भगवान विष्णु की तपस्या का तेज महसूस किया जाता है। अलकनंदा नदी के ठीक किनारे मौजूद है प्रकृति और आध्यात्म का सबसे बड़ा अजूबा जिसे तप्त कुंड कहते हैं, जिसे श्रद्धालु सिर्फ कुंड नहीं बल्कि दिव्य आशीर्वाद मानते हैं। एक तरफ चारों ओर मौजूद पहाड़ों पर जमी बर्फ और अलकनंदा नदी, लेकिन दूसरी तरफ तप्त कुंड से उठती ये भाप, जिस जगह तापमान आमतौर से बेहद कम रहता है, जहां खून जमा देने वाली सर्दी होती है, वहां पानी के बीच से उठती ये भाप आज भी एक रहस्य है। जरा सोचिए, जहां अलकनंदा का पानी छूते ही हाथ सुन्न हो जाएं, हड्डियां कपकपाने लगें, उसी पानी से महज चंद इंच की दूरी पर बने इस कुंड का पानी 45 डिग्री से भी ज्यादा गर्म होता है। आखिर माइनस डिग्री तापमान और बर्फबारी के बीच भी ये पानी क्यों इतना गर्म है, कोई नहीं जानता। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तप्त कुंड को अग्निदेव का वास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में कठोर तप किया तो उन्होंने अग्निदेव को आदेश दिया कि वो इस कुंड में निवास करें। एक दूसरी मान्यता के अनुसार सूर्यदेव को भक्षा भक्षी की हत्या का पाप लगा था, तब भगवान नारायण के कहने पर सूर्यदेव बद्रीनाथ आए और तप किया, तब से सूर्यदेव को भगवान ने जल रूप में विचलित किया। एक अन्य किंवदंती है कि नारद मुनि ने तप्त कुंड में स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान लगाया था, उनके समर्पण से प्रसन्न होकर अग्निदेव स्वयं जल में प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस कुंड का जल अनेक चमत्कारी गुणों से भरपूर है, खासकर त्वचा से जुड़ी बीमारियों में ये जल औषधि का काम करता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि बाहर से छूने पर कुंड का पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी शरीर के तापमान जितना ही हो जाता है। तप्त कुंड सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम भी है। जहां एक तरफ हिमालय की ठंडी हवाएं चलती हैं, वहीं दूसरी ओर कुंड का गर्म जल श्रद्धालु को ऊर्जा और विश्वास से भर देता है। हालांकि आसमान का तापमान कई बार 0 के करीब पहुंच जाता है, लेकिन समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचाई पर मौजूद इस तप्त कुंड का पानी हर मौसम में गर्म रहता है। जबकि श्रद्धालु इसे सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि ईश्वर की दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच उबलता ये दिव्य जल सदियों से श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। जब आसपास की हर चीज बर्फ में ढकी होती है तब भी तप्त कुंड का जल उबलता रहता है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय ताप का परिणाम मानते हैं, लेकिन भक्त इसे दैवीय ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। चाहे विज्ञान इसे सल्फर का चमत्कार माने या भक्त इसे साक्षात हरि का आशीर्वाद, लेकिन सच तो यही है कि सदियों से अलकनंदा की ठंडी लहरों के बीच बहती तप्त कुंड की एक गर्म धारा आज भी इंसानी समझ से परे है और बद्रीनाथ धाम की महिमा को अद्वितीय बनाती है। यहाँ हर डुबकी के साथ भक्ति, विश्वास और सनातन परंपरा की अनूठी शक्ति महसूस होती है। इस पावन धाम की महिमा जितनी विशाल है, इसके रहस्य उतने ही गहरे हैं। दुनिया के हर मंदिर में शंख गूंजता है, ढोल नगाड़ों से आकाश गुंजायमान होता है। शंख की ध्वनि शुभ मानी जाती है, लेकिन हिमालय की गोद में बद्रीनाथ के दरबार में शंख बजाना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब माता लक्ष्मी यहाँ तुलसी के रूप में कठोर तपस्या कर रही थी, तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के असुर का संहार किया। विजय का अवसर था, परंपरा शंख बजाने की थी, लेकिन नारायण ने मौन चुना। अपने भक्त और अर्धांगिनी की तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। और तब से लेकर आज तक धाम के प्रांगण में या उसके आसपास शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और पौराणिक कथाओं का अनोखा संगम है। यहाँ का हर कोना, हर पत्थर और हर जलधारा किसी न किसी कहानी से जुड़ी है। श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के बीच नर और नारायण पर्वतों की छत्रछाया में बसा साक्षात नारायण का घर यानी बद्रीनाथ धाम। ये पावन धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भक्ति का वो शिखर है जहां आकर हर किसी का अहंकार शून्य हो जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो फल अन्य तीर्थों में हजारों वर्षों के तप से मिलता है, वो बद्री विशाल के केवल एक बार दर्शन से प्राप्त हो जाता है। पतित पावनी माँ अलकनंदा, जिसके चरणों को पखारती हूँ, और साक्षात शालिग्राम रूप में जहाँ भगवान बद्री नारायण योग मुद्रा में विराजमान हो, उस भूमि की आभा कितनी अलौकिक होगी, इसका अंदाजा लगाना भी इंसानी समझ से परे है।

0: बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश्यम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। वो बद्री धाम जहाँ हिम शिखरों की ओर से बहती माँ अलकनंदा की कल कल ध्वनि नारायण के चरणों को पखारती है, उसी पावन तट से ठीक 50 मीटर ऊंचे धरातल पर स्थित है ये परम धाम। मान्यता है कि इस कलयुग में जो भी भगवान बद्री विशाल के दर पर सिर झुकाता है उसके जन्म जन्मांतर के ताप मिट जाते हैं। भगवान बद्री के इस धाम के आस पास का वातावरण जितना अलौकिक है उतनी ही अद्भुत परम धाम का मुख्य प्रांगण है, जो पूरी तरह पत्थरों से निर्मित है। लेकिन सबसे अविस्मरणीय है सिंह द्वार। श्रद्धालु जब भक्ति के रस में डूबे हुए चौड़ी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो उनका स्वागत स्वयं सिंह द्वार ही करता है, जिसे बैकुंठ का मुख्य द्वार माना गया है। यदि आप इस द्वार को ध्यान से देखें तो इसकी बनावट और चटक रंग बेहद अनोखे हैं। इतिहास और सनातन संस्कृति के जानकार बताते हैं कि इस भव्य द्वार पर प्राचीन बौद्ध विहारों और तिब्बती स्थापत्य शैली का भी एक सुंदर प्रभाव दिखाई देता है। जब 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस धाम का पुनरोद्धार किया तब हिमालयी क्षेत्र के इस ऐतिहासिक संगम को इस देव शिल्प में संजोया गया। इस भव्य सिंह द्वार के शीर्ष पर साक्षात देवताओं के तेज के सामने चमकते 3 स्वर्ण कलश स्थापित हैं। ठीक मध्य में लटकी है महाघंटी, जिसके बजते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ओम के नाद से गूंज उठा हो। चारों तरफ धनुषाकार वातायन यानी खिड़कियां बनी हैं, जो एक अलौकिक एहसास कराती हैं। सिंह द्वार से भीतर प्रवेश करते ही भक्त सभा मंडप के दर्शन करते हैं, जिसके स्तंभ और प्राचीर पर देवताओं की जटिल और सूक्ष्म नक्काशी की गई है। ये वही पवित्र स्थान है जहां बैठकर साधक वेदांती और वेद पाठी विद्वान हरि कीर्तन, विशेष अनुष्ठान और महाआरती के स्वर गूंजते हैं। मान्यता है कि यहां बैठकर की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर के चरणों में पहुंचती है। अब प्रवेश करते हैं मंदिर के सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमयी और अलौकिक हिस्से में, जिसे भगवान का गर्भगृह कहा जाता है। इसकी गगनचुंबी शकुंधारी छत लगभग 15 मीटर ऊंची है, जिसके शिखर पर सोने का पानी चढ़ा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिखर साक्षात सूर्य देव की भांति चमकता है। इसी गर्भगृह की शीतल छाव में विराजे हैं इस सृष्टि के पालनहार भगवान बद्री नारायण। पवित्र बद्री वृक्ष की छत्र छाया में सोने की सुंदर चंदवा के बीच विराजते हैं साक्षात बद्री नारायण। अत्यंत पवित्र और दुर्लभ शालिग्राम से निर्मित ये मूर्ति करीब 3.25 फीट ऊंची है।
1: बता दें, कहा जाता है कि खुद आदि गुरु शंकराचार्य जो है अलकनंदा नदी से, उन्हें स्वप्न में ये बात आई थी कि भगवान विष्णु जो है वो अलकनंदा नदी में वहां पर मौजूद हैं, और वहां से उन्होंने उनकी जो मूर्ति है, जो शिला है, वो उन्हें मिली थी इस अलकनंदा नदी से, और फिर बद्री विशाल मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया, तब से उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई।
0: शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान विष्णु के 9 क्षेत्रों में गिना जाता है जहाँ वे स्वयं प्रकट हुए थे। यानी यहाँ प्रभु किसी मनुष्य के बुलावे पर नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। भगवान यहाँ योग मुद्रा में विराजमान हैं। उनके 2 हाथ ऊपर उठे हैं जिनमें शंख और चक्र है, जबकि शेष 2 हाथ पद्मासन की मुद्रा में गोदी में टिके हैं। जबकि प्रभु के ललाट पर जड़ा दिव्य हीरा गर्भगृह के अंधकार को चीर कर भक्तों के अंतर मन को आलोकित कर देता है। यहाँ की शांति ही यहाँ की सबसे बड़ी प्रार्थना है। यहाँ का सन्नाटा ही सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल यहाँ पद्मासन मुद्रा में गहरे ध्यान में लीन है। ऐसे में यहाँ ढोल नगाड़ों की तेज आवाज पर पाबंदी है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार ध्यान की मुद्रा में शोर वर्जित है। इसीलिए गर्भगृह के पास ढोल नगाड़ों की तेज आवाज पर पाबंदी है। इस दिव्य दरबार में केवल बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि धन के अधिपति कुबेर, देवर्षि नारद, भगवान के परम सखा उद्धव और साक्षात नर नारायण भी शालिग्राम रूप में स्थापित हैं। इतना ही नहीं, जगत जननी माता लक्ष्मी, गरुण देव, नव दुर्गा और सनातन धर्म के पुनरुद्धारक आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र विग्रह की भी यहाँ पूजा की जाती है। इन समस्त दिव्य मूर्तियों के दर्शन मात्र से मनुष्य के तमाम कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस पावन देव शिल्प, अलौकिक शालिग्राम विग्रहों और हिमालय के इस ईश्वरीय वातावरण में आकर हर भक्त का अहंकार शून्य हो जाता है और आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। इस अद्भुत वातावरण में कदम रखते ही हर इंसान अपनी सुध बुध भूल जाता है। यही इस धाम की गरिमा है, यही इसकी महिमा है। श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग विदेश के दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो कैमरा उठाइए और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें। हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे।
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime. Anywhere.
2: परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: भीषण गर्मी के बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। लखनऊ में लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन की शानदार पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, वाहन चालकों पर ठंडे पानी की फुहारें। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं लोग, हिमाचल का मनाली सैलानियों से गुलजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना, बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। बॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म समुक में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार, हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा, अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात करते हैं गंगा दशहरे की। ज्येष्ठ महीने की तपती धूप में जब पूरी धरती प्यासी थी, तब भगीरथ की कठिन तपस्या से स्वर्ग से उतरकर भगवान शिव की जटाओं में मां गंगा समा गई और धरती पर अवतरित हुई। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी यानी गंगा दशहरा का यह पावन पर्व कल पूरे देश में पूरी आस्था के साथ मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन गंगा मैया में सिर्फ एक डुबकी लगाने से इंसान के जाने अनजाने किए तमाम पाप धुल जाते हैं।

0: गंगा दशहरा, वो दिन जब गंगा मैया धरती पर आई। सदियों से इसी तरह बहती आ रही है गंगा। माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार 25 मई यानी सोमवार को गंगा दशहरा की तिथि पड़ रही है। माना जाता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाभ मिलता है। गंगा दशहरा की महिमा बेहद विशेष है। कहते हैं कि बड़े भाग्य से गंगा मैया के दर्शन होते हैं और उससे भी उत्तम भाग्य हो तो उनके जल में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। कुछ इस तरह की महिमा है गंगा दशहरा की और इसलिए इस दिन लाखों लोग पुण्य लाभ कमाने के लिए घाटों पर जुटते हैं। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह भी मान्यता है कि माँ गंगा शिवजी की जटाओं में निवास करती हैं। शिवजी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया है। ये धाराएं हैं नलिनी, रिदिनी, पावनी, सीता, चशुक्ष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में मोक्ष दायिनी मानी गयी। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान का फल अक्षय माना गया है। इस पावन मौके पर सही तरीके से पूजा करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति का विधान है, जिससे माँ गंगा की विशेष कृपा बनी रहे। किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करें, घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ को या तो जल में डालें या पीपल के नीचे रख दें। माँ गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें, उनके मन्नतों का जाप करें। पूजन में जो भी सामग्री प्रयोग करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से 10 दीपक का प्रयोग करें। दान भी 10 ब्राह्मणों को करें, परंतु ब्राह्मणों को दिए जाने वाले अनाज 16 मुट्ठी होने चाहिए। पुराणों के मुताबिक गंगा दशहरा अत्यंत फलदायी पर्व है। आम जिंदगी में कुछ ऐसे पाप होते हैं जो अनजाने में होते हैं, मनुष्य को उसका अंदाजा भी नहीं होता है। ये पाप आपकी किस्मत में रुकावट बन जाते हैं जिनके चलते खुशियां आपसे दूर हो जाती हैं। लेकिन गंगा दशहरा पर स्नान, पूजन और दान करके आप अपना यह लोक के साथ परलोक भी सुधार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है, और खबर यह है कि उन्हें रास्ते में अब ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस बीच चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का उत्साह लगातार बढ़ते जा रहा है, अब जिसकी झलक हर दिन आ रहे यात्रा से जुड़े आंकड़ों से सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: भगवान बद्री विशाल के द्वार पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी है। हर दिन हजारों लोग बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर के कपाट खुलने के बाद से लगातार यहां पहुंचने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। क्योंकि मौसम साफ है तो चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को हुआ था। 23 मई तक 35 दिनों में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। रास्ता दुर्गम होने के बावजूद केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी अब तक करीब 5.5 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्राओं के लिए व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के प्रयास लगातार जारी है। हालांकि परेशानी खास तौर से तब होती है जब चारधाम की यात्रा मार्ग पर लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है, लेकिन बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों को इस दिक्कत का सामना न करना पड़े इसके लिए जोशीमठ में ही अब खास ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है। इस तरह नई व्यवस्था के तहत
1: बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जोशीमठ में गुरुवार से लगातार जाम की स्थिति देखने को मिल रही थी, वहीं देख सकते हैं आप जोशीमठ के पेट्रोल पंप में हम हैं, जहां से वन वे शुरू हो जाता है। एक साइड से गाड़ियां जाती हैं, वहीं दूसरी साइड से आती हैं, लेकिन यहां से जो मार्ग आगे जाता है जीरो बैंड होते हुए मारवाड़ी तक ये मार्ग पहुंचता है, इस समय गाड़ियां ऊपर आ रही हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब एक साइड की गाड़ियां जो हैं, जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जानी है, उन्हें यहां पे रोक दिया गया है जोशीमठ में। आज से ये नई व्यवस्था पुलिस और प्रशासन द्वारा जो की गई है, यहीं पे गाड़ियां रहेंगी, ये लंबा जाम यहां पे इसे रोका जाएगा, ताकि जोशीमठ से मारवाड़ी तक की सारी गाड़ियों को रोका जाए और उन्हें मारवाड़ी विष्णुप्रयाग के करीब रोका जाए। वहां से जो वापसी होंगी, जब यहां से गाड़ियां ये एक साइड की चलेंगी तो वहां की गाड़ियों को रोका जाए।
2: हमारा पेट्रोल पंप के पास में और नरसिंह मंदिर वाली रोड पे हम यात्रियों की गाड़ियों को रोकेंगे और नीचे हमारा जो मारवाड़ी पुल है उसके पास विष्णुप्रयाग की तरफ को गाड़ियाँ रुकेंगी। तो करीब आधे घंटे का हम इसमें टाइम देंगे और फिर इसको वन वे तरीके से हम इसको यात्रा रूट पे गाड़ियाँ हम चलाएंगे, ताकि गाड़ियाँ जाम में न फंसे। और
0: प्रशासन और पुलिस ने जोशीमठ के पेट्रोल पंप से लेकर मारवाड़ी तक गेट सिस्टम और वन वे सिस्टम लागू कर दिया है। इससे एक बार में आने वाले यात्रियों की गाड़ियां इस रूट पर चलेंगी तो अगली बार जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों को रास्ता मिलेगा।
3: आज से हमने ये व्यवस्था शुरू कर दी है यहाँ पर से कि पहले हम एक तरफ से छोड़ेंगे और एक तरफ रोक देंगे, तो बीच इस ये जो हमारा 8 किलोमीटर का पैच खाली मिल जाएगा और उसमें जब हमारा यहाँ से एक कानवाई टाइप चलेगी तो वो स्मूथली पार करेंगे, तो वहाँ आधा घंटे में हमारा पूरा ट्रैफिक निकल जाएगा। जो 2-3-4 घंटे तक जाम लग रहा वो हमारे आधे घंटे में निकल जाएगा।
0: इससे फायदा ये होगा कि जोशीमठ में रोकी जा रही गाड़ियों के यात्रियों को चाय पानी और खाने पीने के लिए भी समय मिल जाएगा, उन्हें आगे रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक पर भी दबाव नहीं पड़ेगा। वहीं पहाड़ों में मौसम के बदलाव को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट रखा गया है। साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का खास ख्याल रखने के निर्देश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं, ताकि हर तीर्थ यात्री की चारधाम यात्रा सुरक्षित तरीके से और सहूलत के साथ पूरी हो सके। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड यस्टरडे।
4: देश के तमाम इलाकों में तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन कल से इसमें और इजाफा हो सकता है, क्योंकि कल से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है। लिहाजा गर्मी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है ही, इसके साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि नौतपा है, नौतपा क्या होता है और ये किस तरह फायदेमंद भी है। इस बार खासतौर से नौतपा की अवधि काफी अहम रहने वाली है, आखिर क्यों, यह जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
5: इन दिनों गर्मी लगातार परवान चढ़ रही है। दिल्ली समेत उत्तर, मध्य और पश्चिम और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में पारा लगातार चढ़ रहा है। वैसे तो मई के महीने में ज्येष्ठ की शुरुआत के साथ ही उत्तर और मध्य भारत में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, लेकिन मौसम और ज्योतिषों दोनों के लिहाज से साल का वो सबसे कठिन समय अब शुरू होने जा रहा है, जिसे नौतपा कहा जाता है। नौतपा वे 9 दिन होते हैं जब साल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से नौतपा की शुरुआत होती है। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का नक्षत्र माना गया है जो शीतलता का प्रतीक है। माना जाता है कि रोहिणी में प्रवेश करने पर सूर्य उसके ठंडे प्रभाव को सोख लेते हैं जिससे तेज गर्मी पड़ती है। इन 9 दिनों में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी कम मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जिससे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके कारण धरती का तापमान अचानक बहुत बढ़ जाता है और पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों और दूसरे प्राणियों को हीट वेव का असर झेलना पड़ता है। इस बार नौतपा की अवधि 25 मई से 2 जून तक है। इस दौरान मौसम में खास बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि नौतपा में कई राज्यों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों में तेज गर्मी का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार नौतपा की अवधि एक और मायने में खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष की माने तो इसके साथ दुर्लभ संयोग भी बनने जा रहे हैं। 27 साल में पहली बार नौतपा के 9 दिनों में 2 मंगलवार पड़ेंगे। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है। इस वजह से माना जा रहा है कि नौतपा के दौरान हीट वेव और बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, नौतपा में सूर्य, मंगल, शुक्र, राहु और चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन होगा। ग्रहों के गोचर असर सभी राशियों पर अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। नौतपा के 9 दिनों में भले ही गर्मी कितनी भी तेज क्यों न पड़े, लेकिन माना जाता है कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। माना जाता है कि नौतपा की प्रचंड गर्मी मिट्टी के अंदर छिपे हानिकारक कीड़ों, टिड्डियों के अंडों और खरपतवार को नष्ट कर देती है जिससे मॉनसून में अच्छी फसल हो सकती है। ये भी माना जाता है कि नौतपा में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है मॉनसून में उतनी ही अच्छी बारिश भी हो सकती है। 9 दिनों तक तेज गर्मी से भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर निम्न दबाव का सिस्टम बनने में मदद मिलती है। ये सिस्टम मॉनसून की हवाओं को और ज्यादा ताकतवर बनाता है। हालांकि प्रकृति में आ रहे बदलावों और जलवायु परिवर्तन का असर दिखने की वजह से नौतपा का इस बार कितना असर होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन गर्मी पड़ रही है तो इससे बचाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा ताकि सेहत पर बुरा असर ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गर्मी का असर पूरे देश में दिख रहा है, ऐसे में लोगों के लिए अपने बचाव का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जगह जगह इस सिलसिले में खास इंतजाम भी किए गए हैं ताकि सड़कों पर निकलने वालों की सेहत पर बुरा असर ना पड़े और लोग खुद भी अपना ख्याल किस तरह रख रहे हैं, यह जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।

0: तेज गर्मी के इस मौसम में इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है, अगर चिलचिलाती धूप में सड़क से गुजरते हुए छांव मिल जाए। धूप की तपिश के बीच चेहरे और बदन पर पानी की हल्की फुहारें पड़ जाएं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहां राहगीरों को गर्मी से राहत देने के लिए सड़कों पर ये खास इंतजाम किए गए हैं। सहारनपुर के मुख्य चौराहों पर दूर दूर तक ग्रीन नेट लगाई गई है, ताकि धूप से लोगों का बचाव हो सके। साथ ही पानी के फुहारे और मिस्टर स्प्रे सिस्टम के जरिए भी ठंडक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, ताकि जब सिग्नल पर लोगों को रुकना पड़े तो सूरज की तीखी किरणों और गर्म हवाओं के बीच उन्हें कुछ सुकून का एहसास हो सके। खास तौर से ट्रैफिक सिग्नल पर फवारे लगाए गए हैं। रुकने और गुजरने वाले लोगों पर लगातार पानी की फुहार छोड़ी जा रही है। शहर में मुख्य चौक चौराहों पर कहीं एक ओर तो कहीं दोनों तरफ ग्रीन नेट लगाई गई है। लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए 15 जगहों पर वाटर कूलर भी लगाए गए हैं। गर्मी का असर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें मुरादाबाद की है। गर्मी के बावजूद लोग यहाँ सड़कों पर निकल तो रहे हैं, लेकिन तरावट के लिए छाछ, लस्सी और जूस का सहारा ले रहे हैं।
1: बस उसी का सहारा है, इसलिए तपिश ज्यादा हो रही थी तो मैंगो शेक पीने का, थोड़ा गर्मी शांत हो जाएगी इसलिए रुक गए थे यहाँ पर।
2: बहुत गर्मी है, जगह जगह वो पीते चल रहे हैं ठंडा पानी। बहुत गर्मी लग रही है आज, बहुत।
3: इस गर्मी में अपना तो पानी पिए, खूब पानी पिए और अपना ध्यान रखें, धूप में ज्यादा न घूमें, जो भी काम हो जब भी घर से बाहर निकलें।
0: शहर में जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था है और समाज सेवी संस्थाओं की ओर से भी लोगों को पानी और शरबत पिलाने की व्यवस्था है, ताकि बदन में पानी की कमी ना हो और सेहत दुरुस्त रहे।
4: ज्यादा है, आप देख ही रहे हैं कि सूरज आग उगल रहा है, बिल्कुल ऐसे तैयार हो रहे हैं सब। फिलहाल यहाँ जो इन्होंने व्यवस्था कर रखी है उसको देखते हुए लग रहा है कि काफी अच्छा काम है, शरबत पिला रहे हैं ये लोग सभी लोगों को। तो गर्मी जो है अपने चरम सीमा पे है और देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ सभी लोग रुक रहे हैं और शरबत पी रहे हैं ताकि थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल सके।
5: मौसम में बहुत गर्मी होने के कारण गुरुद्वारे की तरफ से छबील बरताई जा रही है।
0: इन दिनों उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी लोगों को गर्मी से बचाव के लिए खास ध्यान रखना पड़ रहा है। ऐसे मौसम में शहर में निकलने वाले लोगों के लिए पीने का पानी, लस्सी, छाछ, शरबत और गन्ने का जूस बड़ा कारगर साबित हो रहा है। वहीं धूप से बचाव के लिए तमाम लोग छाते और तौलिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेष रूप से तेज धूप में ट्रैफिक ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात पुलिस कर्मियों के लिए ऐसे मौसम में अपना काम करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।
6: पानी वगैरह की, पानी की बोतल वगैरह, जूस वगैरह पी लेते हैं रास्ते में, ORS पी लेते हैं, जिससे मतलब डिहाइड्रेशन कम हो।
0: बहरहाल तापमान बढ़ रहा है और कामकाज के लिए घर से निकलना पड़ता है, तो सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। तो मौसम के इस माहौल में अपना ख्याल जरूर रखें। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गर्मी के इस मौसम में जगह जगह तापमान बढ़ रहा है, पारा चढ़ रहा है, तो इंसान के साथ जानवरों पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे में जमशेदपुर के चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए खास व्यवस्थाएं की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया में परिंदों को दाना पानी मिले, इसके लिए कुछ आम लोगों ने खास पहल की है। देखिए रिपोर्ट।
8: पानी के फुहारों के बीच मस्त बाघ और शावक गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। मजबूत ग्रिल वाले बंद बाड़ों में रह रहे इन प्राणियों को जंगल की हरियाली में छोड़ना तो मुमकिन नहीं है, लिहाजा यहां पर इन्हें गर्मी से छुटकारा दिलाने के लिए पाइप से पानी की फुहारें छोड़ी जा रही हैं। इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी से इंसान तो इंसान, बेजुबान प्राणी भी परेशान है। ये तस्वीरें जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क की हैं। यहाँ पर जंगल के राजा शेर हो या भालू जैसे दूसरे प्राणी, सभी को गर्मी से राहत की दरकार है। गर्मी हद से ज्यादा पड़ रही है, लिहाजा यहाँ पर रखे गए जानवरों को ठंडक मिले इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं।
9: गर्मी को देखते हुए यहाँ हर एक जगह टाइगर हो गया, आपका लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, भालू हो गया, जितने जगह भी देखेंगे सभी जगह कूलर का व्यवस्था किया गया है और जितने जगह कराल है सभी में ऊपर से चटाई लगाया गया है। और हम लोग सुबह 9:30 बजे के बीच में पानी का ये लोग बॉडी में पानी मारते हैं, उसके बाद डिस्प्ले एरिया में।
8: जमशेदपुर में इन दिनों तापमान 43 से 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में इस चिड़ियाघर में जानवरों के खान पान का खास ध्यान रखा जा रहा है और बाड़ों से लेकर हर जगह पानी का पर्याप्त इंतजाम किया गया है ताकि उन्हें तरावट मिलती रहे।
10: उनको पानी पीने की पूरी व्यवस्था होती है, ठंडा पानी, जिससे कि उनको और ठंडा पानी से थोड़ा थोड़ा राहत महसूस देती है। इसी तरीके से हम लोग जो डियर इनक्लोजर्स हैं वहाँ पर भी पूरे पर्याप्त पानी की हम लोग पानी की व्यवस्था की है, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। जहाँ पर छाया और एडिशनल जो है कि एनिमल को कहीं से भी ऐसा ना हो कि धूप में ही रहना पड़े तो उसको छाया की पूरा व्यवस्था किए हुए हैं, चटाई लगाई है हम लोगों ने, उनके शेड बनाए हैं, उनकी कई जगह क्लॉथ लगा के गर्म होकर रोकने की, लोहे रोकने की हमने व्यवस्था की है। कूलर पूरे रात भर कूलर चलते हैं।
8: वही उत्तर प्रदेश में औरैया के बिधुना इलाके में इन दिनों पंछियों को गर्मी से बचाने के लिए खास पहल की गई है। यहाँ के कुछ लोगों ने कनस्तर को काट कर बनवाए गए खास किस्म के घोंसलों में पंछियों के लिए दाना पानी रखने की शुरुआत की है ताकि परिंदों को चिलचिलाती धूप में खाने और पानी के लिए भटकना ना पड़े।
11: ये देखा गया है कि गर्मी जो 45 डिग्री चल रही है उसके देखते हुए जो जीव जंतु के लिए हम लोगों ने एक राधा रानी कृपा से ये व्यवस्था की हुई है। और व्यवस्था वो इस प्रकार मैंने की है कि जो टीन ऐसे हम टांग रहे हैं कि हम तो ये कार्य शैली को फैलाया है, जो व्यक्ति अगर चाहे सेवा कर सकें, पानी डाल सकते हैं, उसके अंदर दाना डाल सकते हैं, वो सारी पूर्णतः व्यवस्था है।
12: हमने देखा जब जो मानव इतना इस भीषण गर्मी में अपनी दिक्कतें महसूस कर रहा है तो ये जो बेजुबान है, बेसहारा है, इनको कितनी गर्मी का महसूस करना पड़ता होगा और ये पानी के लिए इनको बहुत बड़ी परेशानी होती होगी।
13: कितनी जगह आपके द्वारा लगाया जा रहा है?
12: अभी तक 15 या 16 हमने बनाए हैं जिनको हमने स्वयं ही बनाने का प्रयास किया है।
8: टीन के इन घोंसलों को जगह जगह पेड़ों पर लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि गर्मी में पंछियों को दाना पानी देने के लिए आम लोगों की ओर से किया जा रहा ये प्रयास काफी कारगर हो सकता है क्योंकि इनमें पक्षी आराम से बैठकर पानी पी सकते हैं और दाना चुग सकते हैं। और ऐसे सूर्या शर्मा और जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: एक तरफ मैदानी इलाकों में जोरदार गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में मौसम खुशनुमा है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। मनाली में रिकॉर्ड तादाद में पर्यटक पहुंच गए हैं। आलम यह है कि रोहतांग पास के आसपास तो लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है।

मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश और रिकॉर्ड तोड़ पारे से बचने के लिए लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मनाली इन दिनों देश भर के पर्यटकों से गुलजार है। वीकेंड

0: और रोहतांग यहाँ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है घूमने लायक इस जगह पे। ये सुन देखने के लिए अटल टनल बहुत अच्छा, जाने जाना चाहिए वहां पे। वहां थी पैराग्लाइडिंग की थी।
1: का टेम्परेचर देख के हमको बहुत अच्छा लगा, और इधर क्लाइमेट भी बहुत ठंडा है। लोगों को मेरी कामना है कि बहुत सारे लोगों को इधर आना चाहिए गर्मियों में, बच्चों के साथ, स्कूल की छुट्टियां गिरी हुई है तो परिवार के सहित इधर आओ।
2: हालांकि राहत की ये चाहत लोगों के लिए परेशानी भी पैदा कर रही है। पर्यटकों की इस भारी भीड़ के चलते खासकर रोहतांग मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां रिंगती हुई नजर आई। जो सैलानी ठंडी वादियों का मजा लेने आए थे, उन्हें घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ रहा है। हालांकि इस परेशानी के बीच एक अच्छी खबर भी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बर्फबारी का दौर भी देखने को मिला, जबकि कुछ इलाकों में बारिश ने माहौल को खुशनुमा बना दिया।
3: कुल्लू मनाली की बात करें तो यहाँ तापमान मई महीने में बेहद खुशनुमा बना हुआ है। आज सुबह से रोहतांग दर्रे सहित जो आसपास के इलाके हैं वहाँ बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू मनाली के अधिकांश इलाकों में अब बारिश का दौर जारी रहा, जिसके बाद यहाँ आए पर्यटक वो अब काफी खुश हैं क्योंकि इस तरह का मौसम के लिए वो यहाँ पे पहुंचे थे। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय ये कुल्लू का इलाका है, तो लोग जो हैं पर्यटक जो है वो खासकर जो नदी किनारे जो इस पूरे मौसम का जो लुत्फ उठा रहे हैं।
2: मौसम का ये मिजाज जैसे सैलानियों के लिए सौगात बनकर आया हो। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई हल्की बर्फबारी और बारिश के बाद माहौल में ठंडक बढ़ी है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे।
4: तो कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप हो रही थी, जिस कारण कि बहुत सी गर्मियां हो रही थी यहाँ पे। तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बारिश हो रही है सुबह से लेकर, और यहाँ पे इतना तापमान बढ़ गया था धूप का कि लोगों का बाहर रहना भी, दुकानें मार्केट वगैरह सब बंद ही रह रही थी मैक्सिमम धूप की वजह से। तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
2: फिलहाल अगर आप भी इस वीकेंड या आने वाले दिनों में मनाली, रोहतांग या शिंकुला जाने का प्लान बना रहे हैं, तो घर से थोड़ा वक्त लेकर निकले और ट्रैफिक अपडेट्स पर नजर जरूर रखें, क्योंकि इस वक्त पहाड़ों पर कूल कूल एहसास के साथ साथ हैवी ट्रैफिक आपका इम्तिहान ले सकता है। मनिंदर अरोड़ा, मनाली, गुड न्यूज टुडे।
5: और आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडई कनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडई कनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल बेहद खुशनुमा है। ऐसे में सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान हुआ भव्य काइट शो यहाँ आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगे आसमान में देखने को मिली। इस शो का आयोजन यहां पर मनावनूर गांव में स्थित शिप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अगली खबर खेल जगत से है। भारतीय एथलेटिक्स में आज एक नया इतिहास रच दिया गया है। पंजाब के फर्राटा धावक गुरिंदर वीर सिंह अब भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। जी हां, उन्होंने 100 मीटर की रेस में वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय नहीं कर सका। गुरिंदर वीर ने महज 10.09 सेकंड, जी हां 10.09 सेकंड का समय निकालकर ना सिर्फ रेस जीती बल्कि भारतीय नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 100 मीटर के ट्रैक पर इस रफ्तार ने ट्रैक को मानो आग लगा दी। गुरिंदर वीर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। धावक गुरिंदर वीर ने इतिहास दर्ज दिया है। 100 मीटर रेस में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और देश का फ्लाइंग मास्टर का खिताब अब उनके नाम हो गया।
6: What a performance this is!
7: मैं हमेशा बोलता हूँ भी लास्ट मिनट पे मेंटली गेम ज़्यादा रहती है फिजिकली से। जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा। तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी। हाँ, ट्रेनिंग किया, बहुत चीज़ें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया, जो वीकनेस थी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की अपने जितने भी हद तक मैं उसको कम कर सकता हूँ।
5: अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।

0: right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
9: दिनांक 25 मई 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 9:07 तक. राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक. पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आम जो धारणा है लोगों की वो ये है कि बृहस्पति लोगों को एजुकेटेड बनाता है। लोग ये मानते हैं कि बृहस्पति जो है वो आपको पढ़ने लिखने में सहायता करता है। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का अधिपति है और ज्ञान का एजुकेशन से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। बिना एजुकेशन के भी आप परम ज्ञानी हो सकते हैं। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो सूर्य और बुध का एजुकेशन से शिक्षा से क्या संबंध है वो समझते हैं। देखिए, जो काल पुरुष की कुंडली है, जो बेसिक कुंडली बनती है, उसमें पांचवें स्थान का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। आपने सुना होगा ना कि भाई दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? हनुमान जी। और उनको किससे शिक्षा मिली? सूर्य से। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। तो यानी सूर्य जो है वो मुख्यतः शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। और कुंडली में ये शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है, आपके एजुकेशन की सिचुएशन को बताता है। सूर्य सबसे बड़ी बात जो बताता है वो ये बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। भाई, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग मौज मजे में पढ़ते हैं, कुछ लोग पिताजी माताजी पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ते हैं, और कुछ लोग सीरियसली पढ़ते हैं। तो आप कितने गंभीर हैं शिक्षा के लिए, ये सूर्य बताता है। और सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाता है। बहुत सारे लोग शिक्षा के मामले में एक साथ पांच तरह की पढ़ाई करते हैं और पांचों में बढ़िया परफॉर्म करते हैं, यानी उनकी जो एडॉप्ट करने की, ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बड़ी अच्छी है। तो सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाता है। बुध जो है वो शिक्षा की दिशा बताता है, डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन। आप किस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे ये बुध की स्थिति से पता चलता है। आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, ह्यूमैनिटी में जाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यानी क्या डायरेक्शन होगा आपकी पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई की दिशा दशा क्या होगी, ये बुध बताता है। तो मोटे तौर से प्राइमा फेसी आप कुंडली देख करके सूर्य बुध को देखिए, एक मिनट में आप जान जाएंगे कि आदमी की शिक्षा के प्रति सिचुएशन क्या है और आदमी पढ़ना चाहता है या नहीं और क्या पढ़ना चाहता है। मेष राशि, आर्थिक स्थिति में धन के मामले में सुधार दिखाई दे रहा है, करियर में कुछ बदलाव होगा, सर्दी जुखाम हो सकता है, उसको लेकर थोड़ा सतर्क रहें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, हर व्यक्ति आसानी से पढ़ ले, आराम से पढ़ ले, ऐसा जरूरी नहीं है। और बहुत बार लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा में रुकावट आती है, बाधाएं आती हैं। तो शिक्षा में बाधाएं कब उत्पन्न होती हैं? सूर्योदय के बाद अगर आप देर तक सोते हैं, सूर्य उगते हैं सुबह 5:30-6 बजे, आप सो के उठते हैं 10-11 बजे, तो ये विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो सूर्योदय के बाद देर तक सोने से जो मेधा है, जो ब्रेन है, वो उतना शार्प नहीं होता, शिक्षा में बाधा आती है। अगर आप अंधेरे घर में रहते हैं या अंधेरे कमरे में रहते हैं या ज्यादातर आपके पास अंधकार रहता है, तो ये निगेटिव वाइब्रेशन को मजबूत करता है और शिक्षा में बाधा आती है। आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, खासतौर से पिता का सम्मान नहीं करते, तो निसंदेह मानकर चलिए आपकी शिक्षा में मुश्किलें जरूर आएंगी। लेट कर अगर आप लिखते पढ़ते हैं तो ये आंखों के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो तो है ही, लेकिन ऐसा करने पर भी शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में बाधा आती है। ज्यादा पेट भरकर अगर आप खाते हैं तो आलस्य बढ़ता है, शरीर की सारी ऊर्जा खाना पचाने में खर्च होगी। तो ज्यादा पेट भरकर अगर आप खाएंगे तो शिक्षा में बाधा आएगी। देखिए, आपका खान पान बड़ा महत्वपूर्ण है आपके मन के लिए, आपके विचारों के लिए और आपकी शिक्षा के लिए। खान पान में अगर आप सावधानी नहीं रखते तो भी आपकी शिक्षा में बाधा आएगी। जो बच्चे उल्टा सीधा खान पान रखते हैं, मांस आदि का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, फास्ट फूड या बाहर के भोजन पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, उन बच्चों की मना स्थिति स्थिर नहीं होती और ऐसे बच्चों की शिक्षा में बाधा की संभावना प्रबल होती है। सिंह राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंडली के कुछ योग ऐसे होते हैं कि आदमी थोड़ा सा प्रयास करता है, बढ़िया एजुकेशन पाता है, और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि नौकरी कर लिए, जीवन में आगे बढ़ गए, फिर भी पढ़ाई वो लगातार जारी रखते हैं। शिक्षा में सफलता कब मिलती है, क्या होते हैं योग, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। जो लोग सुबह के समय जल्दी उठने की आदत डालते हैं, देखिए मजबूरी है आपकी तो कुछ नहीं कह सकते कि भाई नाइट शिफ्ट करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद आप सुबह नहीं उठते हैं तो अच्छा नहीं करते। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका एजुकेशन वाला पार्ट बेहतर होता है। साफ सुथरे तरीके से अगर आप रहते हैं, गंदगी नहीं रखते, तो आपकी तरंगे, आपके वाइब्रेशन बेहतर होते हैं और ये मुश्किलें कम हो जाती हैं। सूर्य की रोशनी का अगर आप लाभ उठाते हैं, अर्थात आप रोज सुबह उठ के नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं या ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी आती हो, तो आपको लाभ होता है। एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में फायदा होता है। अपने पिता और गुरुजनों का अगर आप सम्मान करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करता है और उनके आशीर्वाद से भी आपको शिक्षा के मामले में सफलता मिलती है। खान पान अपना शुद्ध रखते हैं, सात्विक रखते हैं, कोशिश करते हैं कि फास्ट फूड आदि से बचा जाए तो लाभ होगा। हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, खाना पवित्र रखते हैं, नियमित रूप से पूजा उपासना करते हैं, तो इससे कुंडली में और आपके ग्रहों में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है और इस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपको पढ़ने में सहूलियत होती है और शिक्षा के मामले आपके बेहतर हो जाते हैं। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवाद हो सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी ना हो या स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन रही हों कि शिक्षा में आपको दिक्कतें हो रही हों, परेशानियां आ रही हों, तो शिक्षा में सफलता के लिए कौन से उपाय किए जाएं? प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करिए और अगर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। शिक्षा प्राप्त करने में ज्यादा समस्या आए या ज्यादा बाधा आए तो गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पढ़ने के लिए लकड़ी की मेज या लकड़ी की कुर्सी रखें तो ज्यादा उत्तम होगा, क्योंकि लकड़ी जो है वो सूर्य से संबंध रखती है और लकड़ी की मेज कुर्सी का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको फायदा ज्यादा होगा, ऐसा करने से आप ज्यादा बेहतर पढ़ लिख पाएंगे। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो इससे आपको लाभ होगा, इससे आप शिक्षा में ज्यादा बेहतर तरक्की, ज्यादा बेहतर प्रगति कर पाएंगे। रोज सुबह अपने पिताजी के चरण स्पर्श जरूर करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से शिक्षा और ज्ञान के मामले में आपको लाभ होगा। शिक्षा के लिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, आपका खान पान। जो आजकल बच्चे, छोटे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ते लिखते नहीं, बात नहीं सुनते, आप गौर करके देखिए उनका खान पान ज्यादातर बाहर का या उल्टा सीधा ही होगा। तो खान पान पहले सुधारना आवश्यक है, और दूसरे नंबर पे वो बचपन से कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालें, इतना भी अगर करें तो बहुत अच्छा है। अगर बचपन से बच्चों को थोड़ी पूजा साधना सिखाई जाए और उनके खान पान को रेगुलेट किया जाए तो नॉर्मली शिक्षा के मामले में दिक्कतें नहीं होंगी। शिक्षा और प्रतियोगिता में, किसी भी कंपटीशन में, एजुकेशन में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपने आहार को शुद्ध करिए। आप क्या खाते हैं इसको शुद्ध बनाइए, नियमित रूप से पूजा उपासना करिए, थोड़ा ध्यान करिए, तो शिक्षा के मामले में जीवन में सुधार होगा। आप बड़ी मेहनत से साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या उपाय करें? किसी भी स्थिति में दोनों समय, भले आप बीमार हों, अपने गुरु से या ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि साधना में एक स्टेज ऐसी आती है जब भक्त से कुछ नहीं हो सकता, वहां पर भगवान की जरूरत जबरदस्त है। तो दोनों समय अपने गुरु या ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने आहार और व्यवहार पर ध्यान बनाए रखें और सत्संग करें, महान संत महापुरुषों की बातें सुनें, उनके साथ बैठें, अन्यथा सत्संग वाली पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ें। सत्संग से, शुद्ध आहार से आपका मन पवित्र होगा, आप आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे।
10: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have. TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: मौसम विभाग की ओर से दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी का अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, विजिबिलिटी पर भी पड़ेगा असर। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे लोग, हिमाचल का मनाली सैलानियों से गुलजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मारतंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना, वनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। बॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म समुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार, हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा, अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: सितारों की प्राइवेसी में नो एंट्री। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा जिसी को लेकर करेंगे, आप सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे, और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सलमान खान ने कितने गुस्से में बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए थे, लेकिन उनको गुस्सा क्यों आया आज बात उसी की करेंगे। और इसीलिए हमने अपने इस शो का नाम दिया है सितारों की प्राइवेसी में नो एंट्री। ये पूरा मामला दरअसल सलमान खान से जुड़ा हुआ है और उसके बाद एक बहस छिड़ गई है। बहस ये कि सोशल मीडिया और तकनीक के इस दौर में कहीं सितारों के निजी स्पेस में दखल तो नहीं हो रहा है। असल में मुद्दा यह है कि दो दिन पहले सलमान खान एक अस्पताल पहुंचे थे और पीछे पीछे पैपराजी यानी तमाम फोटोग्राफर्स भी वहां पर पहुंच गए, चिल्लाते हुए फोटो लेने लगे, लेकिन सलमान इसी से खफा हो गए। फिर यह बहस छिड़ गई कि सितारों की निजता में दखल क्यों दिया जाए। पैपराजी को सलमान खान ने नसीहत क्या दी और बिग बी को भी अपने एक मामले में क्यों करनी पड़ी पोस्ट, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे ही वाकया सामने आए। वैसे केवल बिग बी और सलमान खान नहीं, ऐसे बहुत से मामले हैं जिनका जिक्र आगे हम करेंगे, जहां पर पैपराजी किसी की निजी जिंदगी में दखल देते कितना सही, आज इसी को लेकर बात करेंगे। तमाम सवालों पर, तमाम मसलों पर बातचीत होगी। हमारे साथ होंगे फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां और साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो चलिए बात करते हैं फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और दूसरे वीवीआईपीज की प्राइवेसी की, क्योंकि लगातार निजता का हनन हो रहा है। अक्सर सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आलिया, विराट कोहली समेत कई दूसरे और बड़ी हस्तियों के पर्सनल स्पेस में बाहरी दखलअंदाजी देखी जाती है। फिलहाल तो ताजा मामला सलमान खान से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये था कि मंगलवार देर रात सलमान खान अस्पताल पहुंचे, वो एक करीबी को देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान पैपराजी यानी कि फोटोग्राफर्स भी अस्पताल पहुंच गए। और इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी लग रहा है कि पैपराजी ने गाड़ी में भी सलमान का पीछा किया था और फिर अस्पताल परिसर में तस्वीर लेने पर सलमान गुस्सा हो गए। हालांकि यहां पर खबर यह भी आ रही कि उन्होंने किसी तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर सलमान को काफी गुस्सा आया। तो मंगलवार रात तस्वीर खींचने के लिए पैपराजी चिल्ला रहे थे और इसी बीच सलमान खान ने पैपराजी को नसीहत दे डाली। सलमान ने पैपराजी को चुप रहने के लिए कहा। फिर करीब 20 घंटे बाद सलमान खान बुधवार रात एक पार्टी में पहुंचे। हालांकि ये पार्टी रितेश की फिल्म सक्सेस पार्टी थी। इस दौरान पैपराजी ने अपनी हरकत के लिए सलमान खान से माफी भी मांग ली, लिहाजा सलमान खान ने भी उन्हें तुरंत माफ कर दिया है। लेकिन इस बीच वीवीआईपी की तस्वीरें लेने पर एक बहस जरूर छिड़ गई है। कभी सलमान खान होते हैं, कभी अमिताभ बच्चन होते हैं, कभी विराट कोहली की निजता में दखल की बात सामने आ जाती है, तो ऐसे तमाम सितारे हैं। सितारों की निजता का भी सम्मान होना चाहिए। मोबाइल उठाया, वीडियो बनाया वाले दौर में सभी को यह समझना होगा कि हर जगह पर वीडियो नहीं बनाए जा सकते हैं, हर जगह सितारों का पीछा नहीं हो सकता है। ये सबसे अहम मसला है कि सितारों की अपनी पारिवारिक जिंदगी भी होती है, ऐसे में खुद ही सभी को नैतिक तौर पर भी एक लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी। तो निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी एक बुनियादी मानव अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत जिंदगी, विचारों और डेटा को बराबरी बाहरी हस्तक्षेप या फिर दखल से बचाने की आजादी देता है। लेकिन अक्सर स्टार्स की प्राइवेसी पर वजह बेवजह दखल दिया जाता है। सबसे ताजा मामला सलमान खान से जुड़ा हुआ है। 19 तारीख का ये मामला है। सलमान खान किसी करीबी दोस्त को देखने के लिए मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैपराजी ने सलमान खान को तब देखा जब उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और बाद में अस्पताल तक उनका उन्होंने पीछा किया। और जैसे ही सलमान खान अस्पताल पहुंचे या फिर उससे बाहर अस्पताल से बाहर निकले, तो कुछ फोटोग्राफर्स ने उनका ध्यान खींचने के लिए भाई भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। सलमान खान ने तब उन्हें अस्पताल के पास चुप रहने के लिए कहा और उनसे पूछा कि अगर आपके परिवार का कोई अस्पताल में भर्ती होता तो क्या वो ऐसे ही रिएक्ट करते। तो अस्पताल से घर पहुंचने के बाद रात करीब 3 बजे उनका गुस्सा एक बार फिर से फूटा। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर कई सेल्फ पोस्ट किए हैं, साथ ही पैपराजी को एक बार फिर से उन्होंने नसीहत दी है। सलमान खान ने पोस्ट में लिखा, जिस प्रेस के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, जिनसे बातचीत की है, उनकी देखभाल की है, ये सुनिश्चित किया है कि वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें, लेकिन अगर वो मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहें, मजा ना लें। सलमान खान ने इशारों इशारों में ये भी कहा कि अगर कोई अपनी निजी जिंदगी या फिर मुश्किल वक्त का मजाक बनाने की कोशिश करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सलमान ने आगे लिखा कि 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालोगे। और उसके बाद उन्होंने हा हा हा लिखा है। बेशक सलमान खान ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कुछ बातें मजाक में भी लिखी होंगी, लेकिन पेपराजी के व्यवहार से आहत सलमान खान के शब्दों में तलखी साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि सलमान खान ने बड़ा दिल दिखाते हुए पेपराजी को माफ कर दिया। दरअसल ये बुधवार शाम की, क्योंकि मंगलवार को ये वाकया हुआ था, बुधवार शाम सलमान खान रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में पहुंचे थे और सलमान खान ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर वो वेन्यू की तरफ एंट्री लेने लगे, वहां पर नजारा पूरी तरह से बदला हुआ था। मीडिया के कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे और सभी पेपराजी एक दिन पहले की अपनी हरकत के लिए एक ही सुर में सलमान खान को सॉरी बोल रहे थे। इस दौरान सलमान ने कैमरों के आगे पोज दिया, साथ ही पेपराजी को नसीहत भी दे डाली कि उन्होंने कहा कि ये सही जगह है, यहाँ फोटो आप क्लिक कर सकते हो। सलमान ने फिर से मजाक में कहा कि जोर से सॉरी बोलो। तो चलिए, ये तो सलमान खान का मामला है। जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि तमाम सेलिब्रिटीज पेपराजी के किसी ना किसी व्यवहार से परेशान रहते हैं। बिग बी का एक मामला आपको बता देते हैं। दरअसल आजकल बिग बी एक क्रिप्टिक पोस्ट, उनकी काफी चर्चा में है। उन्होंने खास ह्यूमर वाले अंदाज में कविता शेयर की है जिसका सार ये है कि चील जब होवे शांत तो भैया तोते बोलन शुरू करे, यानी चील जब चुपचाप हो जाती है तो तोते चहचहाना शुरू कर देते हैं। फैंस बिग बी की इस पोस्ट को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बिग बी ने खुद के अस्पताल में भर्ती होने की अफवाह उड़ाने वालों पर यह तंज कसा है। बिग बी ने पोस्ट के अंत में लिखा है, प्यार, प्रार्थनाएं और भी बहुत कुछ। चलिए, इसी को लेकर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद खान एक्टर हमारे साथ हैं, प्रदीप सरदाना कुछ ही देर में स्टूडियो में हमारे साथ पहुंचेंगे, रामकिशोर पाठशाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेजनी त्रिपाठी हैं, लेकिन सबसे पहले सना फरजीन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सना, आपके पास आना चाहूंगी। आपने बहुत, आपका एक लंबा करियर है, आपने फिल्म रिपोर्टिंग की है, तमाम एक्टर्स के आपने इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ लिया है, लेकिन ये पेपराजी कल्चर आज की तारीख में क्या कैसे इसको देखा जाए? क्योंकि देखिये, एक कानून है निजता के हनन का, लगातार किसी की प्राइवेसी में जाना और लगातार बार बार उसको ट्रैक करना, ये कितना सही? क्या मुंबई में इसको लेकर कहीं चर्चाएं होती हैं?
1: हाँ जी, बिल्कुल इसको लेकर चर्चाएं होती है, स्पेशली क्योंकि जो जैसा हम बात कर रहे हैं ना कि हम सब ने लंबा करियर एक जर्नलिस्ट की तरह जिया है, हमारा काम ही रिपोर्टिंग है, जब आप उसे पेपराजी के साथ भी कनेक्ट करते हो वो भी कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और इस बारे में काफी मीडिया वालों ने भी पहले आपत्ति जनाई है, क्योंकि पेपराजी जो हम शायद एक इंटरनेशनल वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते थे जहां कैमराज पीछे भागते थे सेलिब्रिटीज के, जैसे प्रिंसेस डायना की जो हमने स्टोरी देखी है, जिस तरीके से उनका देहांत हुआ, उस तरीके की होती है पेपराजी। बट यहाँ बॉम्बे में हमारा बहुत ही पीआर ड्रिवन पैप कल्चर भी है कि आपको फोन करके बुलाया जाता है कि आप आए और हमें शूट करें एयरपोर्ट पे, कहीं जिम में या लोकेशंस पे। बट जब एक पेपराजी, जब एक कैमरा ले आप उनके घर के अंदर घुस रहे हैं, उन्हें एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कैप्चर कर रहे हैं, या जैसे सलमान खान के इंसिडेंट पे हॉस्पिटल में, और स्पेशली हम जब देखते हैं किसी के फ्यूनरल पे जिस तरीके से कवरेज होता है कि आप जूम करके उनके चेहरे को दिखा रहे हैं, वो रो रहे हैं, ये सारे बहुत ही प्राइवेट मोमेंट्स होता है और ये एक बहुत ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाता है ये लाइन कि आप कौन सा एथिकल है और कौन सा नहीं। बट ये शायद कहीं ना कहीं अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम इसे समझे और इसे फॉलो करें कि आप एक एक्टर है, एक पब्लिक फिगर है, बट उनकी भी कहीं ना कहीं प्राइवेसी है।
0: सना, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चले शहजाद, आपके पास आना चाहूंगी, आप भी एक एक्टर हैं। ये पेपराजी कल्चर से एक एक्टर, एक्ट्रेसेस या फिर तमाम जो वीवीआईपी लोग होते हैं, कितना ये मुश्किल है इनको हैंडल कर पाना?
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए पापराजी जो है या हमारे जो न्यूज वाले बच्चे हैं उनको इतना कुछ जो पुराने हैं वो बहुत अदब के दायरे में रहते हैं, लेकिन अभी जो नए बच्चे आए हैं वो कहीं भी घुस जाते हैं कैमरा लेके, वो किसी भी इस जो हरकतें करते हैं। और जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे दोस्त सलमान खान के साथ जो हुआ है कि ऑब्वियसली वो किसी को मिलने गए होंगे हॉस्पिटल में, कोई करीबी होगा। अब हॉस्पिटल में आदमी जाता है तो उसका मूड बड़ा अजीब सा रहता है कि कौन है, मतलब क्या कब ये निकलेगा या क्या, डॉक्टर्स एक बड़ा अजीब अलग सा माहौल रहता है, बहुत आदमी डिप्रेस रहता है, बहुत वो रहता है। और उसके बीच में जब आप बाहर निकलते हैं तो वहां पर जो प्रेस वाले जो है पापराजी का हो या मामा राजी जो भी है, ये लोग जो है वहां से चिल्लाते हैं फोटो और फिर उनके वो फिल्म मातृभूमि के बारे में पूछ रहे, ये कोई जगह है? और हॉस्पिटल है भाई, एक अकेला वहां पर वो पेशेंट नहीं है जो सलमान खान का दोस्त है या जान पहचान वाला है, और भी लोग हैं वहां पर
0: जी।
2: तो एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, हमारे पैप्स को इतनी वो होनी चाहिए कि भाई हम अस्पताल में आए या बीमार लोग है, कोई सीरियस है, कोई आईसीयू में है, तो इनकी इतना आवाज इतना न्यूसेंस हमें नहीं क्रिएट करना चाहिए। इतनी तो समझ और अकल इन पैप्स में होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और रामकिशोर भारचा जी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, ये कल्चर किस तरीके से समय के साथ या कहें कि सोशल मीडिया बूम जब से आया तब से और ज्यादा बढ़ा है, और दूसरी बात यह कि एक सेंसिटिविटी जो होती है, हम उम्मीद करते हैं किसी जर्नलिस्ट में या फिर वो कोई भी इंसान जो कि फिल्म कवर कर रहा है या टेलीविजन को कवर कर रहा है या किसी को भी कवर कर रहा है, एक रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, क्या ये सब फॉलो किए जाते हैं?
3: देखिए नवजोत, आपको याद होगा कि प्रिंसेस डायना जो थी पेरिस में थी और वो किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी और पेपराजी जो है उनका पीछा कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि एक लुक उनका ले सके, एक तस्वीर उनकी ले सके। और उसी समय उनका वो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलटी मर्सिडीज और उनकी मौत हो गई थी, ये आपको किस्सा याद होगा। उस समय भी ये पेपराजी जो है उनके पीछे में लगे। तो जो पेपराजी कल्चर है बेसिकली तो वो तो वेस्ट कंट्रीज का कल्चर है, हमारे यहाँ पहले ये कल्चर नहीं होता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से पेपराजी जो है जिसको कि फोटोग्राफर बेसिकली कहा जाता है, और वो जैसे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म हुआ करता था एक टाइम पर, वो उस तरह के लोग होते हैं कि जो एक झलक पाने के लिए सितारे की या कोई ऐसा मोमेंट पकड़ने के लिए जिसे वो बताकर दुनिया के सामने लाकर अपने लिए कुछ कर सकें या अपनी ब्रांडिंग कर सकें, लेकिन उसके जो खतरे हैं और उसके जो पर्सनल लाइफ में घुसने के जो रास्ते हैं उन पर थोड़ी सी रोक जो है वो कम से कम लगनी चाहिए। क्योंकि सलमान का किस्सा अकेला किस्सा नहीं है, वो तो एक अभिनेता है, लेकिन कई अभिनेत्रियों के भी ऐसे किस्से सामने आए हैं जब पेपराजियों ने उनकी तस्वीर लेने के बहाने उनकी पर्सनल लाइफ को टच किया है। तो नैतिक तौर पर अगर देखा जाए तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस या जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं एक तस्वीर लेने के लिए, उसको पेपराइज्म के नाम पर जो है काफी इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि उससे हमारा आपका और स्टार्स का ही नहीं उस आदमी का भी नुकसान होता है जिसके लिए वो पीछे भाग रहे हैं।
0: बिल्कुल, उनकी लाइफ भी इतनी ईजी नहीं होती। प्रदीप जी क्या कहेंगे इसको लेकर, पेपराजी कल्चर को?
4: नहीं बिल्कुल, ये देखिए जो पेपराजी का एक प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, मैं तो पिछले करीब 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री को बड़े नज़दीक से कवर कर रहा हूँ। तो पहले बड़ा एक आत्मीय रिश्ता होता था फिल्म कलाकारों के साथ हमारा, उनके यहाँ कोई फंक्शन होता था हमको घर पे बुलाते थे, हम उनको अपने यहाँ भी बुलाते थे, हमारे घरों पर भी आते थे, कहीं भी मिलते थे बड़े आत्मीयता के साथ मिलते थे और बातों बातों में भी फिल्मों का जिक्र, कहानी का जिक्र, आपके हालचाल पूछते थे, और उसी में बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स भी होते थे, बहुत अच्छी बातें भी होती थी और बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी निकल कर आती थी। लेकिन जैसे जैसे मीडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका दायरा बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो उससे जो है पिछले कुछ समय में पेपराजी हमारे यहाँ बहुत तेजी से पनप रहे हैं। खैर उसमें कोई बुराई नहीं है, वो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और घंटों खड़े रहते हैं एक पोज के लिए, एक सीन के लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि आप कोई अस्पताल में जा रहा है या किसी का निधन हो गया है या कोई ऐसी दुखी घड़ी में है तो आप उसके पीछे पीछे भागे और उसके जबरदस्ती उसके पोज बनाए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं इसका बिल्कुल हर समय इसका मना करता हूँ, इनकार करता हूँ चीज़ से कि ऐसी चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। अभी भी जो हादसा हुआ ये भी बड़ा गलत था कि सलमान खान अस्पताल में किसी से मिलने जा रहे हैं हिंदुजा में, अपने बहुत से व्यक्तिगत उनके संबंध होते हैं, बहुत से लोग होते हैं वो चाहते भी नहीं इस चीज़ को करें, लेकिन जब कोई ऐसा करता है तो वो बहुत गलत है। और अच्छी बात यह है कि पेपरा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। अस्थियां प्रभावित करने सनी देओल और उनका परिवार हरिद्वार गया,
0: हाँ।
4: तो वहां पेपरा जी फोटो खींचने लगे, तो उन्होंने बिल्कुल उसको गुस्से में पूछा कि तेरे को कितने पैसे चाहिए, तेरे को मैं पैसे देता हूँ, इसको बंद करो। जिस तरह जब उसके बाद उनको घर पर ले आया गया था, उनके उसको जब ज्यादा उनकी स्थिति खराब थी, कोमा में जा रहे थे, तब भी वो सब आ गए, तब भी उनका क्या बात है, तुम्हारे घर में अगर पिता हो बाप हो उनके साथ कोई ऐसा करे तो वो क्या फील होगा। तो इसलिए इस चीज का सुधार होना चाहिए,
0: कुछ चीजें और इनकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। एक बार लेज़ली अब मैं आपके पास आती हूँ, देखिए कुल मिलाकर सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में हम हिट कैसे हो सकते हैं, और इसीलिए ये पेपराजी कल्चर जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्या इसके पीछे की सोच रहती है? देखिए अगर देखा जाए तो रिस्क में तो जो तस्वीर ले रहा है पेपराजी वो भी रिस्क में है, और जहां तक मर्यादा की बात है वो तो यहां पर बात हो ही रही है कि किसी की निजता का हमें ख्याल रखना चाहिए, अस्पताल जा रहा है तो ध्यान रखे, कोई फ्यूनरल पर जा रहा है तो तस्वीरें कम से कम नहीं खींचनी चाहिए, इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या सोच रहती है इसके पीछे?
5: थैंक यू मैम, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, माय नेम इज कॉम। मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मैटर अभी आया है नजर में, जया बच्चन मैम काफी बार ये मैटर बोल चुकी है, पेपरेजी को कई बार जया बच्चन मैम ने कहा है कि क्यों आप मुझे ये सब सवाल पूछते हो, ये जगह है, बट वो ट्रोल्ड हुई, तो उनको देखते हुए बहुत सारे सेलिब्रिटीज थोड़े डर के मारे पेपरेजी को बोलना बंद कर दिए कि आप उल्लंघन कर रहे हो, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि उनको डर था कि वैसे ट्रोल होंगे जैसे जया बच्चन मैम को ट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग हंसते हैं कि वो ऐसे बोल रही थी, बट अभी जब इतने सीनियर आर्टिस्ट इतना लेजेंडरी एक्टर बोल रहे हैं तो आई थिंक वो ड्रॉ ऑफ द लाइन हो गया, उन्होंने लक्ष्मण रेखा डाल दिया एंड अभी सब वो फॉलो करेंगे, उनको भी पता चल गया कि ऐसे सेंसिटिव जगह लाइक हॉस्पिटल के पास ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ये बात सही है कि एक्टर्स एंड पेपराजी, मीडिया एंड लाइक आर्टिस्ट, इन सबका एक जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट रिलेशनशिप है, वो ईच अदर के बगैर नहीं जी सकते, इसीलिए कभी कभी मीडिया हो या पेपराजी, आजकल के जो डिजिटल जर्नलिस्ट है वो कभी कभी मर्यादा उल्लंघन भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे वीडियो मिल जाए कुछ भी, आइदर अगर आर्टिस्ट गुस्सा भी हो रहा है, हीरो गुस्सा भी हो रहा है, वो भी कैप्चर कर दो, वो वायरल चला जाए,
0: नाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाली लाइन चलती है यहाँ
5: जी। अभी क्या हो रहा है कि लाइक्स एंड व्यूज मैटर्स, और कोई अगर कुछ भी पूछ लेता इज दिस द राइट थिंग, वो उस पे ही हीरो 10 बार जूम इन जूम आउट करेंगे, या आर्टिस्ट को आया गुस्सा, देखो उनका लाइक खून खोला ऐसे, तो यू नो पीपल एंजॉय, फिर ट्रोलिंग वहां पे नीचे शुरू हो जाती है, और कभी बाद में अगर वो आर्टिस्ट को कभी ट्रोल करना है तो वो लोग वही गुस्से वाला फोटो यूज कर लेते
0: हैं।
5: तो
0: रामकिशोर बारसा जी, मैं आपसे सवाल सीधा करना चाहूंगी, देखिये बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारी सहयोगी सना भी बता रही थी, यहाँ पेपराजी को लेकर सवाल सलमान खान ने किया, उनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है तो मुझे यहाँ पे किसी भी मंच पर आपसे वो सवाल नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे देखना चाहिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। सर ये बताइए कि वो सेलिब्रिटीज जो खुद बुलाते हैं तमाम पेपराजी को, तमाम फोटोग्राफर्स को कि आइए अब हम जिम जा रहे हैं, अब हम फला रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या हम उस पार्टी में जा रहे हैं, क्या ये कहीं से इन लोगों को ज्यादा शय नहीं मिल जाती कि ठीक है जब वो लोग बुला रहे हैं तो हम कहीं भी किसी की भी तस्वीर ले सकते हैं और किसी भी जगह ले सकते हैं?
3: ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये ब्रांडिंग का प्रोसेस भी है, ये ब्रांडिंग का प्रोसेस भी है एक तरह से, सेल्फ प्रमोशनल जिसको कहा जाता है आज के जमाने में वो भी है। और सलमान के बारे में मैं एक बात कहूं आपको कि एक मैं बीबीसी हिंदी के लिए जब काम करता था तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, मैं मुंबई में था। सलमान एक ऐसे अभिनेता है जो अंदर से बहुत इमोशनल और सीधे और सच्चे हैं। कई लोग उनसे कहते हैं कि साहब उन्होंने ऐसा कहा ये किया तो उनको माफी मांगनी चाहिए। अभी प्रदीप जी मुझे मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने जो कुछ किया है अगर वो माफी मांग लेते तो शायद प्रोपराइजर से उनको सीखना चाहिए, लाइक दिस। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि जो इस समय सोशल ब्रांडिंग का जो इस समय सिनेरियो चल रहा है उसमें सलमान हो या कोई दूसरे भी लोग हों वो इस काम को करते हैं। बट सलमान की जहां तक बात है, सलमान ने एक बार ये कहा, मैंने उनसे पूछा ये सवाल कि भाई आप इतने औखड़ जवाब क्यों देते हैं, आप बदतमीजी से क्यों लोगों से बात करते हैं, और इसका क्या मतलब, क्या सोच के आप सोचते हैं कि आप स्टार हैं इसलिए कुछ भी कह सकते हैं कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए राम साहब, सीधा सा मामला है, मैं स्टार हूं ठीक है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ है जिसे लोगों को टच नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मुझे एक चोट लगी है और मैं किसी को दिखाता हूं कि साहब देखिए मेरी चोट लगी है, तो वो चोट को देख सकता है लेकिन वो देखने तक सीमित रहे, अगर वो उसको टच करके दबाएगा और मुझे दर्द होगा तो मैं रिएक्ट करूंगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन सलमान जो है वो बहुत अलग लेवल और बहुत अलग सोच के इंसान भी
0: कह है। सकते हैं रामकिशोर जी की कुछ सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा नहीं है। शहजाद जी आप बताइए, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी गलत कहना गलत नहीं होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज खुद को फेमस करने के लिए व्यूज वगैरह के लिए भी पेपराजी को जानबूझ के बुलाते हैं।
3: पहले फायदा उठाने वाला ओरिजिनली एक सिस्टम है अभी जी जी है, लेकिन सलमान के मामले में ऐसा नहीं था।
0: ठीक है,
2: देखिए जो सेलिब्रिटीज पेपराजी को बुलाते हैं या जो उनके पेरोल जिन्होंने इनको पेरोल पे रखा है वो करते हैं तो ठीक है, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं वो एक अलग बात है, वो अपने आप को मशहूर करना चाह रहे हैं और एक ही रास्ता है पेपराजी को बुला के अपनी फोटोज खींचना ये वो। लेकिन पेपराजी जिस तरीके से उन खास करके जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बच्चियां हैं उनके जिस एंगल से फोटोज लेते हैं जिम के ये वो भी बहुत गलत है, वो भी बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सभ्यता का अपमान जो है उसका ख्याल रखना चाहिए और हर लड़की की एक रिस्पेक्ट होती है, वो आपको बुला रही है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, ठीक है आप पब्लिसिटी कीजिए कि भाई ये अभी रेंज रोवर से उतरी है या अभी एयरपोर्ट जा रही है या अभी जिम जा रही है, लेकिन एंगल्स जो है गलत एंगल से शूट करना ये करना ये शोभा नहीं देता मेरे ख्याल से।
0: मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेज़ली अब आपके पास आती हूँ, आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ लगाम लगेगी इस पर, क्योंकि अब सलमान खान ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि एक स्पेस होती है, एक जगह होती है जहां आप किसी सेलिब्रिटी को कवर करते हैं या फिर वो आपको बुलाए तब आप उससे बातचीत करेंगे, अदरवाइज आप किसी की निजता में दखल नहीं दे सकते हैं।
5: मैम आई थिंक ये जो पेपरेजी है आगे जाके सीनियर आर्टिस्ट के साथ थोड़ा देख के हैंडल करेंगे, और ऐसे हॉस्पिटल जैसे जगह में तो सेंसिटिव जगह में दे वोंट बी अनरूली बिहेवियर ऐसे नहीं दिखाएंगे, बट जो यंगस्टर्स है जो नॉर्मल उनको बुलाते हैं और वो कल्चर चल रहा है, मैम ये बात बहुत सही है कि वो ना बस अपना फैंडम नहीं दिखा रहे हैं, क्रेज नहीं उनको स्टार्स का, उनको पैसे मिलते हैं मैम, लैक्स में पैसे मिलते हैं, अगर लैक्स में व्यूज आते हैं और लोगों का एंगेजमेंट स्ट्रांग होता है बढ़ता जाता है, लोग नीचे कमेंट्स में ना हंसी मजाक कर रहे हैं स्टार्स का, उन्होंने अगर थोड़ा सा यहाँ वहां का गुस्से में वीडियोस फोटोज अच्छा से एडिट करके डाल दिया तो उसमें उनको लाखों का इनकम होता है पर मंथ, तो ये एक्चुअली उनका सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो नॉर्मल जॉब्स 9 to 5 नहीं कर पा रहे, घर से अभी जॉब्स कर रहे हैं, तो वो प्रिफर करते हैं कि वो पेपराजी की तरह अपना फोन पकड़े, उनका जीरो इन्वेस्टमेंट होता है और उनका लाखों में इनकम होता है, सो दे विल नॉट गिव up and actually world is like India mein itne sare artists hai, they have lot of people jinse wo paise kamate jayenge।
0: चलिए वक्त अभी इतना ही, सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड सितारों ने सीधा कह दिया कि उनकी प्राइवेसी में नो एंट्री, जिसका सम्मान सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आपके हिमाचल।

0: teaching and learning is evolving. A master's degree in education technology and instructional design at WGU puts you at the forefront of that change. Learn more at wgu.edu.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
4: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
5: Join SRMISC गाजियाबाद कैंपस विजिट srmup.in
6: मौसम विभाग की ओर से दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी का अलर्ट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेंगी हवाएं विजिबिलिटी पर पड़ेगा असर भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम लोगों से सतर्क रहने की अपील गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे लोग हिमाचल का मनाली सैलानियों से गुलजार प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग बॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म समुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान

हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नए युग का आगाज कर दिया है। आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में जानी तो जाती है अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए, लेकिन समूचा यूरोप उन्हें आयरन लेडी मानता है। दरअसल मेलोनी का व्यक्तित्व संवेदना और फौलाद का अनोखा कॉम्बो है। डिप्लोमेसी को लेकर भी मेलोनी की सोच और समझ गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हालिया मेलोनी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

0: सूत्रपात हुआ है। 15 मई को 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में 20 मई को जब इटली पहुंचे तो इटली और भारत का 8 दशक पुराना रिश्ता अचानक ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दरअसल साल 2000 के बाद किसी भी भारतीय पीएम का इटली का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक गिफ्ट पैक दिया। आप कह सकते हैं कि किसी एक देश के पीएम द्वारा किसी दूसरे देश के पीएम को दिया जाने वाला ये शायद सबसे सस्ता गिफ्ट था, लेकिन इस सस्ते गिफ्ट को मेलोनी ने जिस तरह से ग्लैमराइज किया उससे भारत और इटली के बीच के प्रगाढ़ होते संबंधों की मुनादी पूरी दुनिया में हो गई। मेलोनी ने मेलोडी टॉफी के गिफ्ट पैक को लेकर पीएम मोदी के साथ मात्र 11 सेकंड का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और महज 6 घंटे में ही मेलोडी डिप्लोमेसी के इस वीडियो को करीब 11 करोड़ व्यूज मिल गए।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Melody.
0: आपको बता दें कि मोदी मेलोनी और मेलोडी के सोशल मीडिया इम्पैक्ट का अपना एक खास पसे मंजर है, पृष्ठभूमि है। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये लफ्ज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। यूरोप की आयरन लेडी मेलोनी का ह्यूमर किस लेवल का है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मोदी और मेलोनी पिछले 3.5 वर्षों में अलग अलग सम्मेलनों में कुल 7 बार मिल चुके हैं, लेकिन बीते 20 मई को इटली की राजधानी रोम में हुई मुलाकात डिप्लोमेसी के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी के इटली पहुंचने से लेकर वतन वापसी के लिए टेक ऑफ करने तक मेलोनी ने मोदी के साथ बिताए एक एक पल को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। सबसे पहले मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत किया। उसके बाद एक ही कार में बैठकर दोनों नेता रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। खास बात यह है कि कोलोसियम रोम का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के गौरवशाली कालखंड में बनाया गया था। प्राचीन रोम में इस स्टेडियम में जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित की जाती थी। साफ है कि 2000 साल से इसका वजूद बरकरार है जिसकी वजह से इसे रोमन साम्राज्य की ताकत और इंजीनियरिंग के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसी स्टेडियम की अलग अलग लोकेशन से मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कमाल ये है कि दुनिया मोदी मेलोनी की इन तस्वीरों में उलझी हुई थी उसी दौरान इटली और भारत के रिश्तों का सबसे मजबूत दस्तावेज तैयार हो रहा था। पीएम मोदी के दौरे के आखिर में जब दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब दुनिया को पता चला कि इन लाइटर मोड वाली तस्वीरों के पीछे कूटनीति की कितनी गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मेलोनी ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन यूरो से बढ़ाकर साल 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, एयरोस्पेस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधार्थियों और ट्रेंड प्रोफेशनल्स के इटली में जाकर काम करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक पहल तैयार करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खास बात यह है कि कूटनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही मेलोनी के मन में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गहरा सम्मान है।
1: As we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our central old cultures develop a dialogue and make them more and more connected.
0: मेलोनी वैश्विक मंचों पर बेशक अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ बहुत गहरी है। सबसे खास यह है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का वे तहे दिल से सम्मान करती हैं। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिंदी की एक मशहूर कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है का स्टाइलिश इस्तेमाल किया।
1: Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying, Parishram hi safalta ki kunji hai.
0: भारतीय संस्कृति के साथ अपने लगाव को मेलोनी समय समय पर प्रकट करती रही हैं। पिछले महीने 24 अप्रैल को मेलोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक सेल्फी शेयर की जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का झुमका पहने नजर आई। फॉर्मल आउटफिट में झुमका पहने मेलोनी बिल्कुल भारतीय नारी की तरह नजर आ रही थी। जून 2024 में इटली में आयोजित G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारतीय संस्कृति के प्रति मेलोनी के लगाव की झलक देखने को मिली थी। G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत सनातनी अंदाज में नमस्ते करते हुए किया था। बतौर मेजबान भारतीय प्रतिनिधियों का नमस्ते के साथ स्वागत तो कूटनीतिक मेजबानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेलोनी पिछले साल जब यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका के दौरे पर गईं, तो वहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए ही मिलीं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मिलने की मेलोनी की तस्वीरें भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी।
2: राजनीति मेलोनी को विरासत में नहीं मिली, न ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सियासी गलियारे में आसानी से एंट्री मिल जाती। इतना ही नहीं, मेलोनी जब एक साल की थी तो उनके पिता ने दो बेटियों और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। मेलोनी को बचपन बेहद मुश्किलों भरा मिला। पेट भरने के लिए इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेहद कम उम्र से छोटे मोटे काम करने पड़े। यहाँ तक कि इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर की भी नौकरी की। बेहद दिलचस्प है एक बार टेंडर से पीएम बनने तक का ये सफर।

0: लहरों के साथ मिलकर नौका पार करने का हुनर तो हर आमो खास के भीतर होता है, लेकिन इतिहास के अनमोल पन्नों पर रोशनाई की चमक उन्हीं की रंग लाती है जो धारा के विपरीत तैरने का दम रखते हैं। जीवन की दुर्धर्ष धाराओं को चीर कर कामयाबी के अलभ्य किनारे तक पहुंचने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री। जॉर्जिया को अगर यूरोप की आयरन लेडी कहा जाता है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी पूरे विश्व की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अजस्र स्रोत हैं। क्योंकि इस महिला ने हालात से लड़कर तमाम बाधाओं को परास्त कर संघर्ष के रथ पर सवार होकर इटली के सर्वोच्च पद का सफर तय किया है। पहली बार 2021 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने एक जगह लिखा है,
1: मेरा कभी ये मानना नहीं रहा कि एक महिला को केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। राजनीति किसी जेंडर विशेष की अमानत तो नहीं, बल्कि सभी के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अगर मेरी जैसी किसी महिला को कहा जा रहा था कि संतान की हसरत है तो एक तरफ हो जाओ, तो कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली गर्भवती युवती के लिए क्या उम्मीदें रखी जाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे व्यवधान नहीं है, बल्कि व्यवधान को पार करने में हमारी मदद करते हैं।
0: काबिले गौर है कि अपनी आत्मकथा में महिलाओं के अधिकारों का मुखर समर्थन करने वाली मेलोनी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित होने के करीब एक साल बाद ही इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का मेलोनी का सफर दुश्वारियों और कठिनाइयों से लड़ने की अनूठी दास्तान है। कभी वैश्विक सभ्यता के केंद्र बिंदु रहे रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई जॉर्जिया मेलोनी के अपनी मां के गर्भ में आने के बाद से ही दुश्वारियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। दरअसल मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना उपन्यासकार। ये परिवार रोम के एक पॉश इलाके कैमिल्यूचिया में रहता था, लिहाजा आर्थिक तंगी तो नहीं थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के पहले से ही पिता फ्रांसिस्को और मां अन्ना के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने लिखा है,
1: जब मैं गर्भ में थी तो घर के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मां ने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया। इसके लिए वो हॉस्पिटल भी चली गई, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। मैं अपनी मां और उनके साहस की ऋणी हूं। अगर उन्होंने तब साहस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं इस दुनिया में आती ही नहीं।
0: काबिले गौर है कि मेलोनी के जन्म के बाद उनके माँ पिता के बीच पहले से ही खराब रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सेपरेशन की नौबत आ गई। मेलोनी बमुश्किल एक साल की थी तब साल 1978 में फ्रांसिस्को पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। मां अन्ना के कंधों पर अपना गुजारा करने के साथ ही एक साल की जॉर्जिया मेलोनी और 2.5 साल की एरियाना मेलोनी की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी। नॉवेल राइटर अन्ना कलमकारी से इतने पैसे कमा लेती थी कि दोनों बच्चियों की परवरिश ठीक से हो जाए। विधाता जब किसी को आसमानी मकाम अता करने वाला होता है तो पहले उसका कड़ा इम्तहान लेता है। जॉर्जिया जब 3 साल की हुई तो एक नामुराद घटना ने जिंदगी की दुश्वारियों में एक और बड़ी परेशानी का तड़का लगा दिया। वाकया साल 1980 का है। 3 साल की जॉर्जिया अपनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थी। दोनों की उम्र इतनी नादान थी कि व्यवहारिक जीवन में आने वाले खतरे का जरा भी इल्हाम नहीं था। दोनों बहनों ने एक ऐसी गलती कर दी कि घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी बहन एरियाना ने कहा था,
1: मैंने और जॉर्जिया ने लड़कपन वाले कौतूहल में लाइट नहीं जलाने का फैसला किया। लाइट के विकल्प के तौर पर हमने मोमबत्तियां भी जला ली। ना समझी ऐसी थी कि हम दोनों ने जलती हुई मोमबत्तियों को रजाई और खिलौनों से ढक दिया और पूरी बेफिक्री के साथ कार्टून देखने चले गए। उसके बाद तो पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
0: आग में घर का सारा सामान जल जाने के बाद मेलोनी की मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत नया सामान खरीद लें। लिहाजा वो दोनों बेटियों को लेकर रोम के गर्बाटेला स्थित अपने मायके शिफ्ट हो गईं। मायके में भी इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आराम से रह सकें, लिहाजा मेलोनी और उनकी बहन को लंबे समय तक फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। इतने संकट और संघर्ष के बीच बचपन बीता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जॉर्जिया के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इसीलिए मेलोनी की ग्रेजुएशन करने की हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से मेलोनी ने काफी कम उम्र से ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। कुछ समय उन्होंने सीडी बेची, यहाँ तक कि क्रैच में बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे नामचीन नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। साल 2013 में अपने संघर्षपूर्ण अतीत को भारी मन से याद करते हुए मेलोनी ने जो कहा था उसे सुनकर आपकी मानवीय संवेदना झंकृत हो जाएगी।
1: मैंने जीवन का ककहरा संसद में आकर नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है।
0: दरअसल जॉर्जिया मेलोनी अपने शुरुआती दिनों से ही मानवीय मूल्यों और इटली की गौरवशाली परंपरा की पैरोकार रही हैं। उनकी विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रवादी भावना से लबरेज रही है। वामपंथी विचारधारा की पुरजोर मुखालिफत उनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। शायद यही वजह है कि महज 15 साल की उम्र में इटली की उस एमएसआई पार्टी से जुड़ गईं, जिसे इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थकों ने 26 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी को मुसोलिनी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं रहा। हालांकि 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी के राजनीति में कदम रखने के पीछे एक ऐसी दर्दनाक घटना का हाथ था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। हुआ ये कि 19 जुलाई 1992 को प्रमुख इतावली मजिस्ट्रेट पाओलो बोर्सेलिनो को माफियाओं ने उनके 5 सुरक्षा कर्मियों समेत एक विस्फोट में उड़ा दिया, क्योंकि पाओलो बोर्सेलिनो माफियाओं के खिलाफ मामलों की सख्ती से सुनवाई कर रहे थे। इस घटना के बाद 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली की संसद में अपने पहले भाषण में 25 अक्टूबर 2022 को उस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा था,
1: मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमिलियो नरसंहार के बाद अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इस नरसंहार में माफियाओं ने जस्टिस पाओलो बोर्सेलिनो को उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसी समय मैंने तय कर लिया कि खामोश रहकर सब कुछ सहन करते रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है।
0: 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम झंझावातों और संघर्षों को पार करते हुए आखिरकार 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया अगर अगले 3 महीने तक पीएम बनी रही तो 1948 के बाद इटली की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बनने का तगमा भी उन्हें हासिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इटली में 1948 के बाद से अब तक 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी एक सरकार की औसत उम्र महज 16 महीने रही है, जबकि मेलोनी पिछले 43 महीनों से लगातार अपने देश की सेवा कर रही है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: देश के तमाम इलाकों में तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन कल से इसमें और इजाफा हो सकता है, क्योंकि कल से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा गर्मी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है ही। इसके साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि नौतपा है, नौतपा क्या होता है और ये किस तरह फायदेमंद भी है। इस बार खासतौर से नौतपा की अवधि काफी अहम रहने वाली है, आखिर क्यों, यह जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
12: इन दिनों गर्मी लगातार परवान चढ़ रही है। दिल्ली समेत उत्तर, मध्य और पश्चिम और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में पारा लगातार चढ़ रहा है। वैसे तो मई के महीने में ज्येष्ठ की शुरुआत के साथ ही उत्तर और मध्य भारत में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, लेकिन मौसम और ज्योतिषों दोनों के लिहाज से साल का वो सबसे कठिन समय अब शुरू होने जा रहा है, जिसे नौतपा कहा जाता है। नौतपा वे 9 दिन होते हैं जब साल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से नौतपा की शुरुआत होती है। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का नक्षत्र माना गया है, जो शीतलता का प्रतीक है। माना जाता है कि रोहिणी में प्रवेश करने पर सूर्य उसके ठंडे प्रभाव को सोख लेते हैं, जिससे तेज गर्मी पड़ती है। इन 9 दिनों में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी कम मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके कारण धरती का तापमान अचानक बहुत बढ़ जाता है और पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों और दूसरे प्राणियों को हीट वेव का असर झेलना पड़ता है। इस बार नौतपा की अवधि 25 मई से 2 जून तक है। इस दौरान मौसम में खास बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि नौतपा में कई राज्यों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों में तेज गर्मी का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार नौतपा की अवधि एक और मायने में खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष की माने तो इसके साथ दुर्लभ संयोग भी बनने जा रहे हैं। 27 साल में पहली बार नौतपा के 9 दिनों में 2 मंगलवार पड़ेंगे। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है। इस वजह से माना जा रहा है कि नौतपा के दौरान हीट वेव और बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, नौतपा में सूर्य, मंगल, शुक्र, राहु और चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन होगा। ग्रहों के गोचर असर सभी राशियों पर अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। नौतपा के 9 दिनों में भले ही गर्मी कितनी भी तेज क्यों न पड़े, लेकिन माना जाता है कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। माना जाता है कि नौतपा की प्रचंड गर्मी मिट्टी के अंदर छिपे हानिकारक कीड़ों, टिड्डियों के अंडों और खरपतवार को नष्ट कर देती है, जिससे मॉनसून में अच्छी फसल हो सकती है। ये भी माना जाता है कि नौतपा में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, मॉनसून में उतनी ही अच्छी बारिश भी हो सकती है। 9 दिनों तक तेज गर्मी से भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर निम्न दबाव का सिस्टम बनने में मदद मिलती है। ये सिस्टम मॉनसून की हवाओं को और ज्यादा ताकतवर बनाता है। हालांकि प्रकृति में आ रहे बदलावों और जलवायु परिवर्तन का असर दिखने की वजह से नौतपा का इस बार कितना असर होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन गर्मी पड़ रही है तो इससे बचाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, ताकि सेहत पर बुरा असर ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
14: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop Check fan on this station. Up. Ready to find your flow?
15: It's your boy,
5: Just
15: Jay-Z.
5: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
18: Sage University, transforming your passion into profession.
11: कल गंगा दशहरा के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग स्नान ध्यान और पूजन से बनेंगे भक्तों के काम। मान्यता है कि इसी शुभ मुहूर्त में स्वर्ग से धरती पर उतरी थी माँ गंगा। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी का अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, विजिबिलिटी पर भी पड़ेगा असर। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे लोग, हिमाचल का मनाली सैलानी से गुजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंडे सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना, वनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। बॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म में सम्मुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार, हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा, अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का ऐलान।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।

अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहां एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे, वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवी वेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्सेस फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है। उसमें होता बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
0: AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ऐसे रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम AESA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: AESA दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है, जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है, और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है, पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेन पार्ट रहा है, और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है, तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो है वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMCA में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएनसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से एमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्र टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल्स हैं वो भी लग सकती हैं, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनामिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना, जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिनकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर के हैं, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार करने का, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
2: स्ट्रेट अवे ये देखें कि दुनिया में किसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो US उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टूडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन्स हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रों की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। रणक्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
2: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
1: Smartless.
3: Hey, guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
1: Marketplace.
4: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
1: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडई कनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडई कनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल बेहद खुशनुमा है। ऐसे में सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान हुआ भव्य काइट शो यहाँ आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगे आसमान में देखने को मिली। इस शो का आयोजन यहाँ पर मनावनूर गांव में स्थित शिप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अगली खबर खेल जगत से है। भारतीय एथलेटिक्स में आज एक नया इतिहास रच दिया गया है। पंजाब के फर्राटा धावक गुरिंदर वीर सिंह अब भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। जी हां, उन्होंने 100 मीटर की रेस में वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय नहीं कर सका। गुरिंदर वीर ने महज 10.09 सेकंड, जी हां 10.09 सेकंड का समय निकालकर ना सिर्फ रेस जीती बल्कि भारतीय नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 100 मीटर के ट्रैक पर इस रफ्तार ने ट्रैक को मानो आग लगा दी। गुरिंदर वीर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। धावक गुरिंदर वीर ने इतिहास दर्ज दिया है। 100 मीटर रेस में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और देश का फ्लाइंग मास्टर का खिताब अब उनके नाम हो गया है।
7: What a performance this is!
8: मैं हमेशा बोलता हूँ भी लास्ट मिनट पे मेंटली गेम ज़्यादा रहती है फिजिकली से। जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा। तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया। हाँ, ट्रेनिंग बहुत बहुत अच्छे से चल रही थी। हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीज़ें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया, जो वीकनेस थी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की अपने जितने भी हद तक मैं उसको कम कर सकता हूँ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: Good news today is really good. In this, there are news stories that are

0: चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: कल गंगा दशहरा के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग स्नान ध्यान और पूजन से बनेंगे भक्तों के काम। मान्यता है इसी शुभ मुहूर्त में स्वर्ग से धरती पर उतरी थी माँ गंगा। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे लोग, हिमाचल का मनाली सैलानियों से गुलजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना, वनमास मेले में आस्था के साथ स्थान संस्कृति के रंग। बॉलीवुड के एलियन एक्शन फिल्म में सम्मुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार, हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा, अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक कर रहे मनाली का रुख, यहाँ की ठंडी वादियों और सुहाने मौसम का जमकर आनंद ले रहे टूरिस्ट। मनाली में सैलानी हिमाचली पारंपरिक वेशभूषा पहनकर करा रहे हैं फोटोशूट, स्थानीय संस्कृति और पहनावे को लेकर पर्यटकों में देखा जा रहा खासा उत्साह। हिडिंबा देवी मंदिर और आसपास के इलाकों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, लोग देवदार के जंगलों के बीच यादगार तस्वीरें कैद कर रहे हैं। प्राकृतिक वादियों के बीच सैर का आनंद उठा ले रहे हैं पर्यटक, कई सैलानी पारंपरिक ड्रेस में रील और वीडियो भी बना रहे हैं। मनाली के पर्यटन स्थलों पर भी इन दिनों बढ़ गई है रौनक, ठंडी हवाएं, खूबसूरत नजारे और हिमाचली संस्कृति पर्यटकों को कर रही है खास आकर्षित। अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में पुरुषोत्तम मास के दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, वनमास मेले में दिखा आस्था और परंपरा का संगम। इस मेले भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की, धार्मिक अनुष्ठानों से गूंजा उठा। वनमास मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला, पुरुषोत्तम मास के अवसर पर दूर दूर से पहुंचे भक्त। धार्मिक आस्था का केंद्र बने मार्तंड सूर्य मंदिर में भक्तों ने पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। परंपरा और आस्था के प्रतीक वनवास मेले में पूरे दिन दर्शन और पूजा का सिलसिला जारी रहा। भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के बीच मंदिर परिसर में उत्सव जैसा माहौल। चार धाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। शनिवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 96,116 भक्तों ने किए दर्शन। पिछले महीने 19 अप्रैल को शुरू हुई थी यात्रा, अब तक 20,76,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। बद्रीनाथ में बीते दो दिनों में ही 60,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 5,56,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन पूजन। केदारनाथ धाम में अब तक 8,11,923 भक्त कर चुके हैं दर्शन। गंगोत्री में 3,52,162 और यमुनोत्री धाम में 3,56,031 तीर्थयात्री अब तक पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में पहले दिन 6,605 श्रद्धालु ने किए दर्शन। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठी पूरी लोकपाल घाटी। बांदा में 48 डिग्री गर्मी से बचने के लिए युवक ने बाइक पर बनाया ग्रीन शेड, बांस और पेड़ पौधों से तैयार जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भीषण गर्मी में बुंदेलखंड का देसी जुगाड़ बना चर्चा का विषय, बाइक पर सुंदर छत देख यूर्स बोले टैलेंट हो तो ऐसा। बांदा में लू से बचने के लिए युवक ने बना दिया चलता फिरता ग्रीन शेड, रेड अलर्ट के बीच वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। हापुड़ के पशु बाजार में 31,00,000 के भैंसे ने सबका ध्यान खींचा। वीआईपी ठाट वाले इस भैंसे को रोज दूध, देसी घी और ड्राई फ्रूट खिलाए जाते हैं। बकरीद से पहले हापुड़ के पशु बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 21,00,000 तक बोली लगवा चुका है भैंसा, बाजार में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी, लोगों को धूप से बचने की सलाह, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। बदायू में भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा, घर से निकलना हुआ मुश्किल। कटिहार में मौसम में जबरदस्त बदलाव, आंधी तूफान से मची भारी तबाही, कोई हताहत नहीं। बारिश के चलते कटिहार रेलवे स्टेशन बना तालाब, शेड से झरने की तरह गिरता नजर आया पानी। दिल्ली में कल की मामूली राहत के बाद फिर से गर्म हुआ दिन, दोपहर में कड़ी धूप के बीच घर से निकलना मुश्किल। दिल्ली की तपती गर्मी ने खुले में काम करने वालों की बढ़ाई मुश्किलें, रिक्शा चालकों और स्टेशन पर कुलियों को काम करने में आ रही परेशानी। यूपी के कई जिलों में रिकॉर्ड बनाने में जुटी गर्मी, राजधानी लखनऊ में भी तापमान पहुंचा 45 डिग्री के पास। हीट वेव से के संबंध में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा राहत बचाव को लेकर रहे सतर्क। लखनऊ में लोगों को गर्मी से बचाने की शानदार पहल, रेड सिग्नल पर लगाए गए ग्रीन शेड, कूलिंग वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था। तपस्या संगीत नृत्य कला केंद्र की ओर से दिल्ली रविंद्र भवन रविंद्र उत्सव 2026 का भव्य आयोजन, रविंद्र संगीत और कथक नृत्य ने मोहा सबका मन, बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से कला संस्कृति संरक्षण का दिया संदेश। छात्रों ने गुरु लीली भट्टाचार्य जी सुब्रत दास के निर्देशन में दी नृत्य की शानदार प्रस्तुति, द्रौपदी प्रकृति नृत्य वाटिका बनी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण, लाइव संगीत और कथक संग गुरुदेव की रचनाओं का किया सुंदर मंचन। पीएम मोदी ने दो नन्हे बच्चों के साथ अपनी तस्वीर की साझा, तस्वीरों में बच्चों संग उनकी खास बॉन्डिंग और स्नेह भरा अंदाज देखने को मिला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम रविवार दोपहर कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पहुंची, फैंस ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। गग्गल एयरपोर्ट पर आरसीबी खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी, 26 मई को धर्मशाला में होने वाले क्वालीफायर मुकाबले में आरसीबी का गुजरात टाइटंस से होगा सामना। चमोली में कंचनगंगा के ऊपर टूटा ग्लेशियर, पानी की तरह बहते हुए दिखी बर्फ, ग्लेशियर पिघलने से नहीं हुआ कोई नुकसान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इम्फाल में कोकोमी संगठन ने निकाली युवा बाइक रैली, सेफ मणिपुर का दिया संदेश। चेन्नई में सफाई कर्मचारियों और पुलिस ने पेश की मिसाल, पब्लिक टॉयलेट में मिले बच्चे की बचाई जान, महिला सफाई कर्मचारियों को लावारिस हालत में मिली थी बच्चे, इंक्यूबेटर में की सहायता से शिशु को ले जाया गया अस्पताल। यूपी में बिजली कटौती को लेकर मचे हंगामे के बीच सीएम योगी का बड़ा एक्शन, गांव से लेकर शहर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। दिल्ली में विदेश मंत्री अजय शंकर के साथ संयुक्त वार्ता में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो, कहा जल्द ही हॉर्मुज पर अच्छी खबर मिल सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत और रणनीतिक बताया, ये भारत के वैश्विक अहमियत को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पीएम मोदी को न्योता, व्हाइट हाउस में मुलाकात की संभावना। नागपुर में गोल्डन लॉजिस्टिक्स पार्क का शुभारंभ, समारोह में सीएम फडणवीस भी हुए शामिल। भागलपुर के लोगों के लिए गुड न्यूज, विक्रमशिला सेतु पर सीमा सड़क संगठन का कमाल, महज 20 दिन में 34 मीटर लंबा वैली ब्रिज किया तैयार। वैली ब्रिज निर्माण में 100 टन मरीज स्टील का हुआ इस्तेमाल, 7 जून से पहले हल्के वाहनों के लिए खोलने की तैयारी। एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह का कमाल, 100 मीटर की दौड़ 10.9 सेकंड में पूरा कर रचा इतिहास, नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में पहली बार 100 मीटर रेस में 10.10 सेकंड का मार्क हुआ क्रैक, गुरिंदर वीर की अब नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत ने सोशल मीडिया पर वायरल एआई डीफेक वीडियो मामले में साइबर शिकायत में दर्ज कराई, कहा वायरल वीडियो पूरी तरह फेक है। कुबाड़ा में ऐतिहासिक टिटवाल वॉर मेमोरियल पर मनाया गया टिटवाल डे, सेना के अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि। टिटवाल डे 2026 के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह ने पेश की उद्यमिता की मिसाल, मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर कर रहे कमाई। 1 जुलाई के उत्पाद के तहत लगाई गई मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट, लोगों को मिल रहा है रोजगार। तमिलनाडु के थूथुकुडी में जलीय परिंदों की बहार, सैलानियों के लिए माहौल हुआ शानदार। तमिलनाडु के कोडई कनाल में दिखे समर फेस्टिवल की धूम, भव्य काइट शो बना आकर्षण का केंद्र। समर फेस्टिवल में शामिल होने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का जमकर लिया मजा। आसमान में रंग बिरंगी और अलग अलग कलर आकृतियों वाली पतंगों ने मोहा लोगों का मन, काइट शो में कार्टून कैरेक्टर वाली विशाल पतंग बनी आकर्षण का केंद्र। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस रंगीन नजारे को कैमरे में कैद करता नजर आया, शीप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन पर हुआ आयोजन। मशहूर हिल स्टेशन में प्राकृतिक खूबसूरती के बीच हुआ फेस्टिवल ने बढ़ाया पर्यटकों का उत्साह, ठंडी हवाओं और रंगीन पतंगों के बीच उत्सव में रंग में रंगा पूरा इलाका। दुरंधर 2 ने 66वें दिन भी दिखाया दम, 1800 करोड़ के क्लब से चंद कदम दूर, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1799 करोड़ 61 लाख पहुंचा। अक्षय की भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी, फिल्म ने 37 दिन में दुनिया भर में 289 करोड़ 4 लाख का किया बिजनेस। रितेश देशमुख के राजा शिवाजी ने 23वें दिन 1 करोड़ 37 लाख की कमाई की, कुल कलेक्शन 111 करोड़ 47 लाख के पार पहुंचा। 17वें दिन माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 ने भी लगाई छलांग, ग्रॉस कलेक्शन 31 करोड़ 69 लाख पहुंचा। पति पत्नी और वो दो ने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर दिखाई मामूली बढ़त, फिल्म ने 46 करोड़ 27 लाख का कारोबार किया। अनन्या पांडे लक्ष्य लालवानी की चांद मेरा दिल को मिल सक रहा अच्छा रिस्पांस, फिल्म ने 2 दिन में 8 करोड़ 81 लाख की कमाई की। खत्म हुआ इंतजार, 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी जन नायकन, आखिरी बार बड़े पर्दे पर दिखेंगे एक्टर और सीएम विजय। हमने का नाम नहीं ले रहा डॉन 3 पर रणवीर सिंह का विवाद, प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने फॉइस में दर्ज कराई शिकायत। छावा में रणदीप हुड्डा ने ठुकराया था औरंगजेब का रोल, बोले उस समय बहुत चल रही थी हिंदू मुस्लिम की बात, इसलिए किया था मना। राजा शिवाजी में 10 साल छोटे रितेश की मां बनने पर भाग्यश्री ने तोड़ी चुप्पी, कहा जिसके बारे में बचपन में कहानियां सुनी हो उसे ना कहने का सवाल ही नहीं। एक्शन कॉमेडी के बाद अक्षय नए जॉनर में रखने जा रहे हैं कदम, अब एलियन से भिड़ेंगे, समुख से करेंगे हॉलीवुड स्टाइल हॉरर साइंस फिक्शन एंट्री। रणबीर कपूर की रामायण पार्ट वन की बदल सकती है रिलीज डेट, दावा फिल्म इस साल दिवाली से पहले एक हफ्ते पहले 30 अक्टूबर को हो सकती है। 40 फिल्मों के बाद एक्टर डेविड धवन का बॉलीवुड से संन्यास, निर्माता निर्देशक करण जौहर हुए इमोशनल, कहा आप हमेशा नंबर वन। अमीषा पटेल ने शेयर की ऋतिक के साथ कहोना प्यार है शूटिंग की दर्द की तस्वीरें, कहा बॉलीवुड में को स्टार्स के बीच ऐसे असली रिश्ते नहीं देखने को मिलते। अपने ऑरा वर्ल्ड टूर में शानदार गीतों से लोग बिखेर रहे सिंगर दिलजीत दोसांझ, न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कॉन्सर्ट में उमड़े फैंस। रामचरण की पेडी का नया सॉन्ग हेलो हेलो रिलीज, रामचरण के साथ जानवी कपूर और श्रुति हसन ने लगाया डांस का जबरदस्त तड़का। स्पोर्ट्स ड्रामा पेडी का भोपाल में भव्य प्रमोशन, रामचरण जानवी को देख एक्साइटेड हुए फैंस, फिल्म 4 जून को होगी रिलीज। रामचरण जानवी के साथ साथ देवेंदु शर्मा रवि किशन समेत सभी स्टारकास्ट पहुंचे, जानवी का नजर आया बेहद खूबसूरत लुक। भोपाल में सिंगर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान का शानदार लाइव कॉन्सर्ट, फिल्म पेडी के गानों की भव्य प्रस्तुति से बांधा समा। बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान ने पेडी के चार्ट बक्सर जाने चिकरी चिकरी को भी गाया, सॉन्ग संगीतकार एआर रहमान ने किया है तैयार। रामचरण ने गेंदबाज बुमराह को फुटबॉलर बोलने पर हाथ जोड़कर मांगी माफी। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मलयालम दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 3 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार। दृश्यम 3 ने राजा शिवाजी चांद मेरा दिल समेत कई फिल्मों का बिगाड़ा खेल, तीसरे दिन 13 करोड़ 70 लाख का किया बिजनेस। दूसरे वीकेंड भी सूर्य त्रिशा के एक्शन थ्रिलर करुप्पू की शानदार कमाई, 9 दिन में दुनिया भर में 217 करोड़ 74 लाख का किया कारोबार। करुप्पू ने कमाई से 9 दिन में ही निकाला बजट, सूर्य ने 10 साल बाद दी पहली सक्सेसफुल फिल्म, 2026 की सबसे बड़ी तमिल फिल्म बनी। टियागो डोरा ने न्यूजीलैंड के रेगलन डबल एसएल इवेंट में सीजन का पहला परफेक्ट 10 स्कोर किया, शानदार रोटेशन और दमदार मूव से उन्होंने सेमीफाइनल में बनाई जगह। टेरेसा मूरे ने महिलाओं के लिए सेमीफाइनल में सीजन का सबसे बड़ा 19 हिट टोटल बनाया, उनकी बैकहैंड सर्फिंग ने मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा कर दिया। न्यूजीलैंड के मनुदे में पहली बार चैंपियनशिप टूर प्रतियोगिता आयोजित हुई, 3 से 5 फुट ऊंची लहरों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जागोडोरा ने अमेरिकी सर्फर कोल हॉशमैन को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की, आखिरी मिनट में आए परफेक्ट 10 ने मुकाबले का रुख बदल दिया। टेरेसा मूरे ने अब जीत के बाद अपनी 1 साल की बेटी की ओर देखकर मनाया जश्न, उनके लिए इवेंट का 4th शानदार प्रदर्शन रहा। चीन के साइबेरियन टाइगर पार्क में खुशखबरी, अप्रैल से अब तक 30 से ज्यादा शावकों का जन्म। जन्म के बाद नन्हे टाइगर क्यूब्स को खास इनक्यूबेटर में रखा जा रहा है, जू कीपर्स 24 घंटे कर रहे हैं देखभाल। 40 दिन के होने पर शावकों ने धूप और एक्सरसाइज के लिए बाहर लाया जाता है, इससे उनकी ग्रोथ तेजी होती है और रिफ्लेक्स होते हैं बेहतर। दारू से की जाती है साइबेरियन टाइगर शावकों की पहचान, हर टाइगर की स्ट्रिप्स इंसानों के फिंगरप्रिंट जैसी होती है अलग। हर 4 से 6 घंटे में शावक को पिलाया जा रहा है दूध, कोई शावक ना रहे भूखा, इसके लिए कीपर्स लगातार करते हैं निगरानी। किंग चार्ल्स ने इंग्लैंड के वॉरिक शायर में नाटक द टेम्पेस्ट का देखा शो, कलाकारों से की बैक स्टेज मुलाकात। रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ किंग चार्ल्स का पुराना रिश्ता, 1991 से कंपनी के अध्यक्ष के तौर पर किया काम, साल 2024 से निभा रहे हैं संरक्षक की भूमिका। ग्लोरी इन गिजा मुकाबले में अलेक्जेंड्रो उसिक ने 11वें राउंड में रिको वरेवन को नॉकआउट कर दिया, आखिरी सेकंड में आया अपरकट ने दुनिया के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक होने से मुकाबला बचा लिया। पूर्व किकबॉक्सर रिको वेरहोवेन ने शुरुआत से ही उसिक को कड़ी टक्कर देकर सबको चौंका दिया, कई स्कोर कार्ड्स में 37 साल के डच फाइटर मुकाबले में आगे चल रहे थे। जीत के बाद उसिक ने यूक्रेन में जारी बमबारी का जिक्र करते हुए भावुक बेटी को समर्पित की जीत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडई कनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडई कनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल बेहद खुशनुमा है, ऐसे में सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान हुआ भव्य काइट शो यहाँ आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगे आसमान में देखने को मिली। इस शो का आयोजन यहाँ पर मनावनूर गांव में स्थित शिप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
10: You're listening to CNBC.
11: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
12: Keep it on smooth jazz.
13: This is Roots Reggae.
14: Exclusively on TuneIn.
15: This is classic hip-hop.
16: Exclusively on TuneIn.
9: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
2: पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: Good news today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: गंगा दशहरे के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग, कल शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान और पूजन से बनेंगे भक्तों के काम, स्वर्ग से मां गंगा के धरती पर आगमन का पर्व। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों का इलाज हो का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सावधान रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे लोग, हिमाचल का मनाली सैलानियों से गुलजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, सूर्य और बुध ये दो ग्रह ऐसे हैं जिन्हें अक्सर एजुकेशन यानी शिक्षा के साथ जोड़ करके देखा जाता है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे आखिरकार वो कौन से ग्रह हैं जो आखिरकार आपको शिक्षा का वरदान देते हैं, और सूर्य और बुध कैसे आपको शिक्षा का वरदान देंगे। आइए पंडित जी से जानते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: शिक्षा और प्रतियोगिता में, किसी भी कंपटीशन में, एजुकेशन में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपने आहार को शुद्ध करिए। आप क्या खाते हैं इसको शुद्ध बनाइए, नियमित रूप से पूजा उपासना करिए, थोड़ा ध्यान करिए, तो शिक्षा के मामले में जीवन में सुधार होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 25 मई 2026 यानी कि दिन सोमवार का पंचांग आखिर क्या कहता है।
1: दिनांक 25 मई 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 9:07 तक, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि सूर्य और बुध जिन्हें अक्सर शिक्षा से जोड़ करके देखा जाता है, क्या उनका वाकई में से कुछ संबंध है पंडित जी?
1: जी देखिए, आम जो धारणा है लोगों की वो ये है कि बृहस्पति लोगों को एजुकेटेड बनाता है। लोग ये मानते हैं कि बृहस्पति जो है वो आपको पढ़ने लिखने में सहायता करता है। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का अधिपति है और ज्ञान का एजुकेशन से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। बिना एजुकेशन के भी आप परम ज्ञानी हो सकते हैं। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो सूर्य और बुध का एजुकेशन से, शिक्षा से क्या संबंध है वो समझते हैं। देखिए, जो काल पुरुष की कुंडली है, जो बेसिक कुंडली बनती है, उसमें पांचवें स्थान का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। आपने सुना होगा ना कि भाई दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? हनुमान जी। और उनको किससे शिक्षा मिली? सूर्य से। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। तो यानी सूर्य जो है वो मुख्यतः शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है, और कुंडली में ये शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है, आपके एजुकेशन की सिचुएशन को बताता है। सूर्य सबसे बड़ी बात जो बताता है वो ये बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। भाई बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग मौज मजे में पढ़ते हैं, कुछ लोग पिताजी माताजी पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ते हैं, और कुछ लोग सीरियसली पढ़ते हैं। तो आप कितने गंभीर हैं शिक्षा के लिए ये सूर्य बताता है, और सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाता है। बहुत सारे लोग शिक्षा के मामले में एक साथ 5 तरह की पढ़ाई करते हैं और 5 में बढ़िया परफॉर्म करते हैं, यानी उनकी जो एडॉप्ट करने की, ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बड़ी अच्छी है। तो सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाता है। बुध जो है वो शिक्षा की दिशा बताता है, डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन। आप किस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे ये बुध की स्थिति से पता चलता है। आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, ह्यूमैनिटी में जाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यानी क्या डायरेक्शन होगा आपकी पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई की दिशा दशा क्या होगी ये बुध बताता है। तो मोटे तौर से प्राइमा फेसी आप कुंडली देख करके सूर्य बुध को देखिए, एक मिनट में आप जान जाएंगे कि आदमी की शिक्षा के प्रति सिचुएशन क्या है और आदमी पढ़ना चाहता है या नहीं और क्या पढ़ना चाहता है।
0: तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है।
1: मेष राशि, आर्थिक स्थिति में धन के मामले में सुधार दिखाई दे रहा है, करियर में कुछ बदलाव होगा, सर्दी जुखाम हो सकता है उसको लेकर थोड़ा सतर्क रहें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि शिक्षा में बाधाएं कब उत्पन्न होती हैं?
1: देखिए, हर व्यक्ति आसानी से पढ़ ले, आराम से पढ़ ले, ऐसा जरूरी नहीं है। और बहुत बार लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा में रुकावट आती है, बाधाएं आती हैं। तो शिक्षा में बाधाएं कब उत्पन्न होती हैं? सूर्योदय के बाद अगर आप देर तक सोते हैं, सूर्य उगते हैं सुबह 5:30-6 बजे, आप सो के उठते हैं 10-11 बजे, तो ये विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो सूर्योदय के बाद देर तक सोने से जो मेधा है, जो ब्रेन है, वो उतना शार्प नहीं होता, शिक्षा में बाधा आती है। अगर आप अंधेरे घर में रहते हैं या अंधेरे कमरे में रहते हैं या ज्यादातर आपके पास अंधकार रहता है तो ये निगेटिव वाइब्रेशन को मजबूत करता है और शिक्षा में बाधा आती है। आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, खासतौर से पिता का सम्मान नहीं करते, तो निसंदेह मानकर चलिए आपकी शिक्षा में मुश्किलें जरूर आएंगी। लेट कर अगर आप लिखते पढ़ते हैं तो ये आंखों के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो तो है ही, लेकिन ऐसा करने पर भी शिक्षा के मामले में एजुकेशन के मामले में बाधा आती है। ज्यादा पेट भरकर अगर आप खाते हैं तो आलस्य बढ़ता है, शरीर की सारी ऊर्जा खाना पचाने में खर्च होगी। तो ज्यादा पेट भरकर अगर आप खाएंगे तो शिक्षा में बाधा आएगी। देखिए, आपका खान पान बड़ा महत्वपूर्ण है आपके मन के लिए, आपके विचारों के लिए और आपकी शिक्षा के लिए। खान पान में अगर आप सावधानी नहीं रखते तो भी आपकी शिक्षा में बाधा आएगी। जो बच्चे उल्टा सीधा खान पान रखते हैं, मांस आदि का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, फास्ट फूड या बाहर के भोजन पे ज्यादा निर्भर करते हैं, उन बच्चों की मना स्थिति स्थिर नहीं होती और ऐसे बच्चों की शिक्षा में बाधा की संभावना प्रबल होती है।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, धन की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न छाया शर्मा ने हमें लिखा है और छाया हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अप्रैल 1990, जन्म का समय सुबह के 8:55, जन्म स्थान है आगरा। छाया कह रही हैं कि 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी और अब वो शादी ब्रेक हो चुकी है, क्या आगे मेरी दूसरी शादी होगी और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। छाया, आपकी कुंडली के हिसाब से जो अभी का वक्त चल रहा है उसमें आप अपने करियर पे फोकस करिए, क्योंकि करियर में सफलता की संभावनाएं आपके लिए इस समय बढ़िया दिखाई दे रही हैं। अप्रैल 2027 के बाद आप सेकेंड मैरिज की कोशिश करिएगा। 2027 में आपका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के आगे बेहतर रहेगा। आगरा से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा आपको विवाह के बाद, ऐसी संभावना भी कुंडली में बन रही है। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः पीला पुखराज धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न देवानंद जी ने हमें लिखा है और देवानंद जी हमें मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 दिसंबर 1975, जन्म का समय सुबह के 6:35, जन्म का स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं मुंबई से। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के गांव में एक मुकदमा चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आपसी सुलह समझौते से हल हो जाए, लेकिन वो मामला हल नहीं हो रहा है और इसी चक्कर में मैं मकान बनवा नहीं पा रहा हूं। तो ये मामला कब तक हल होगा, क्या उपाय करना चाहिए? देवानंद जी, सबसे पहले सब्र करना चाहिए। अभी तो देखिए ये मामला कोर्ट से निपटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस साल के आखिरी में या अगले साल की शुरुआत में, जैसा आप चाहते हैं, बातचीत से, आपसी सुलह समझौते से ये मामला हल हो जाएगा। उसमें कोई बहुत चिंता की बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आने वाला समय आपका अच्छा दिख रहा है। कुंडली के हिसाब से मैं आपको कहूंगा कि आपको दो उपाय करने चाहिए ताकि ये मामला हल हो जाए और आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकें। एक तो रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। दूसरा, हर मंगलवार को निर्धनों में हलवा पूड़ी या गुड़, इसका दान करिए। अगर आप ऐसा निरंतर करें अगले 6-8 महीने तक तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
0: तो आखिरकार कब शिक्षा में सफलता की स्थिति बन जाती है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: कुंडली के कुछ योग ऐसे होते हैं कि आदमी थोड़ा सा प्रयास करता है, बढ़िया एजुकेशन पाता है, और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि नौकरी कर लिए, जीवन में आगे बढ़ गए, फिर भी पढ़ाई वो लगातार जारी रखते हैं। शिक्षा में सफलता कब मिलती है, क्या होते हैं योग, उस पर भी एक नजर डालते हैं। जो लोग सुबह के समय जल्दी उठने की आदत डालते हैं, देखिए मजबूरी है आपकी तो कुछ नहीं कह सकते कि भाई नाइट शिफ्ट करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद आप सुबह नहीं उठते हैं तो अच्छा नहीं करते। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका एजुकेशन वाला पार्ट बेहतर होता है। साफ सुथरे तरीके से अगर आप रहते हैं, गंदगी नहीं रखते, तो आपकी तरंगे, आपके वाइब्रेशन बेहतर होते हैं और ये मुश्किलें कम हो जाती हैं। सूर्य की रोशनी का अगर आप लाभ उठाते हैं, अर्थात आप रोज सुबह उठ के नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं या ऐसे जगह पे रहते हैं जहां सूर्य की रोशनी आती हो, तो आपको लाभ होता है। एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में फायदा होता है। अपने पिता और गुरुजनों का अगर आप सम्मान करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करता है और उनके आशीर्वाद से भी आपको शिक्षा के मामले में सफलता मिलती है। खान पान अपना शुद्ध रखते हैं, सात्विक रखते हैं, कोशिश करते हैं कि फास्ट फूड आदि से बचा जाए तो लाभ होगा। हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, खाना पवित्र रखते हैं, नियमित रूप से पूजा उपासना करते हैं, तो इससे कुंडली में और आपके ग्रहों में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है और इस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपको पढ़ने में सहूलियत होती है और शिक्षा के मामले आपके बेहतर हो जाते हैं।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो अगर शिक्षा में सफलता पानी है उसके लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: तो हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी ना हो या स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन रही हों कि शिक्षा में आपको दिक्कतें हो रही हों, परेशानियां आ रही हों, तो शिक्षा में सफलता के लिए कौन से उपाय किए जाएं? प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करिए और अगर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। शिक्षा प्राप्त करने में ज्यादा समस्या आए या ज्यादा बाधा आए तो गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पढ़ने के लिए लकड़ी की मेज या लकड़ी की कुर्सी रखें तो ज्यादा उत्तम होगा, क्योंकि लकड़ी जो है वो सूर्य से संबंध रखती है और लकड़ी की मेज कुर्सी का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको फायदा ज्यादा होगा। ऐसा करने से आप ज्यादा बेहतर पढ़ लिख पाएंगे। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो इससे आपको लाभ होगा। इससे आप शिक्षा में ज्यादा बेहतर तरक्की, ज्यादा बेहतर प्रगति कर पाएंगे। रोज सुबह अपने पिताजी के चरण स्पर्श जरूर करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से शिक्षा और ज्ञान के मामले में आपको लाभ होगा। शिक्षा के लिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, आपका खान पान। जो आजकल बच्चे, छोटे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ते लिखते नहीं, बात नहीं सुनते, आप गौर करके देखिए उनका खान पान ज्यादातर बाहर का या उल्टा सीधा ही होगा। तो खान पान पहले सुधारना आवश्यक है, और दूसरे नंबर पे वो बचपन से कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालें, इतना भी अगर करें तो बहुत अच्छा है। अगर बचपन से बच्चों को थोड़ी पूजा साधना सिखाई जाए और उनके खान पान को रेगुलेट किया जाए तो नॉर्मली शिक्षा के मामले में दिक्कतें नहीं होंगी।
0: तो चलिए, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवाद हो सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: आज का तीसरा प्रश्न गौरव जी ने हमें लिखा है, और गौरव जी हमें मेल लिखते हैं नई दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 28 जुलाई 1993। जन्म का समय सुबह के 9:15। जन्म स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। गौरव कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गौरव, आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ

0: ले रहे हैं
1: जी। आज का अंतिम प्रश्न गजेंद्र सिंह रावत ने हमें लिखा है और गजेंद्र जी हमें हरिद्वार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 मार्च 1969। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4 बजे और जन्म का स्थान है पौड़ी उत्तराखंड। गजेंद्र जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और कुछ न कुछ समस्याएं निरंतर मेरे साथ लगी रहती हैं। तो क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो जाए? गजेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल और केवल अपनी हड्डियों और नसों का ध्यान देना है और बेवजह की चिंताएं करना बंद करिए। इतनी बड़ी कोई समस्या आपकी कुंडली में है नहीं जितनी चिंता आप कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य अभी बेहतर होने लगेगा। जुलाई 2026 के बाद से स्वास्थ्य के हालात आपके थोड़े बेहतर हैं और आने वाले समय में और भी बेहतर होंगे। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आप बिल्कुल ठीक बने रहेंगे।
0: पंडित जी, बृहस्पति यानी जो जुपिटर है उसे ज्ञान का ग्रह माना जाता है, तो क्या इसे भी हम शिक्षा से जोड़कर देख सकते हैं? क्या उसे बलवान बनाने से भी एक व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है?
1: जी, देखिए, बुध का मतलब है एजुकेशन, जुपिटर का मतलब है ज्ञान। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो, आपने खूब पढ़ाई की हो, एजुकेशन बहुत अच्छा हो, लेकिन आप ज्ञान नहीं है आपके पास, पढ़ने के बावजूद भी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो। तो अगर ज्ञान चाहिए जीवन में, शिक्षा चाहिए तो मरकरी यानी बुध, और ज्ञान चाहिए तो बृहस्पति, दोनों चाहिए कि शिक्षित भी हो ज्ञानी भी हो, दोनों बैलेंस बना रहे, तब आपको अपनी शिक्षा में बाकी चीजों के अलावा बृहस्पति को बलवान करना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका, जो अचूक तरीका है कि बृहस्पति भी बलवान हो जाए, ज्ञान भी मिल जाए, शिक्षा भी मिल जाए, तो रोज सुबह 1 लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाइए, जल में चुटकी भर हल्दी मिलाइएगा। और बृहस्पति के जो नियंत्रक देवता हैं वो हैं भगवान शिव। तो अगर आपको ज्ञान चाहिए, किसी भी उम्र के हों आप, मैं नहीं कहता कि बच्चों की बात है, आप किसी भी उम्र के हैं, कोई ज्ञान हासिल करना चाहते हैं या ज्ञान को अपने अंदर संजोना चाहते हैं, तो आप भगवान शिव की जितनी पूजा करेंगे, उनकी जितनी प्रार्थना करेंगे, ज्ञान पाना और ज्ञान को स्टोर करना आपके लिए आसान होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन 25 मई को है, आप सभी को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 25 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति ठीक बनी रहेगी, विवाह और संतान के मामले हल हो सकते हैं, लेकिन इस साल स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का अगर आप जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और अब पंडित जी से जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
1: लोगों का ऐसा कहना है कि घर में महाभारत की पुस्तक नहीं रखनी चाहिए, घर में महाभारत की किताब रखोगे तो महाभारत होगी। तो क्या महाभारत की पुस्तक घर में ना रखें? देखिए, महाभारत एक बहुमूल्य आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। इसको घर में रखकर अवश्य पढ़ना चाहिए।

0: और ये ग्रंथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की सफलता जीवन में देता है।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 25 मई 2026 यानी कि दिन सोमवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 25 मई 2026 दिन सोमवार शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 25 मई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जानते हैं कि आखिर आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करेंगे। आज की गुडलक राशि है वृषभ राशि। जीवन को बेहतर बनाने के लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और साथ ही साथ शिव मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। ऐसा करने से जीवन बेहतर होगा।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आप बड़ी मेहनत से साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या उपाय करें। किसी भी स्थिति में दोनों समय भले आप बीमार हो अपने गुरु से या ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि साधना में एक स्टेज ऐसी आती है जब भक्त से कुछ नहीं हो सकता, वहां पर भगवान की जरूरत जबरदस्त है। तो दोनों समय अपने गुरु या ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने आहार और व्यवहार पर ध्यान बनाए रखें और सत्संग करें, महान संत महापुरुषों की बातें सुनें, उनके साथ बैठें, अन्यथा सत्संग वाली पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ें। सत्संग से, शुद्ध आहार से आपका मन पवित्र होगा, आप आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे।
1: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जयंती के साथ।

वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत ने उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे। वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK-1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK-2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवी वेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है। उसमें होता बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
0: AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ASA रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम ASA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: ASA दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है। पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेन पार्ट रहा है और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो हैं वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMCA में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्रा टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल है वो भी लग सकती है, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनामिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना, जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिसकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर के हैं, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत तक जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार करने का, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
2: ये देखें कि दुनिया में किसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो यूएस उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टुडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रों की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
5: After multiple assassination attempts, they can't even get...
6: They're reliable.
7: Always when I need them.
4: To live sports action.
8: One-hand jam by LeBron on the break.
9: That's another three, Steph Curry.
4: And your favorite music.
10: Well, the dawn begins to crack.
4: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: और अगली खबर खेल जगत से है। भारतीय एथलेटिक्स में आज एक नया इतिहास रच दिया गया है। पंजाब के फर्राटा धावक गुरिंदर वीर सिंह अब भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। जी हाँ, उन्होंने 100 मीटर की रेस में वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय नहीं कर सका। गुरिंदर वीर ने महज 10.09 सेकेंड, जी हाँ 10.09 सेकंड का समय निकालकर ना सिर्फ रेस जीती बल्कि भारतीय नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 100 मीटर के ट्रैक पर इस रफ्तार ने ट्रैक को मानो आग लगा दी। गुरिंदर वीर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। धावक गुरिंदर वीर ने इतिहास दर्ज दिया है। 100 मीटर रेस में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और देश का फ्लाइंग मास्टर का खिताब अब उनके नाम हो गया।
6: What a performance this is!
7: मैं हमेशा बोलता हूँ भी लास्ट मिनट पे मेंटली गेम ज़्यादा रहती है फिजिकली से, जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा, तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीज़ें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया, जो वीकनेस थी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, अपने जितने भी हद तक मैं उसको कम कर सकता हूँ।
11: और आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडई कनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडई कनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल बेहद खुशनुमा है, ऐसे में सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान हुआ भव्य काइट शो यहाँ आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगे आसमान में देखने को मिली। इस शो का आयोजन यहां पर मनावनूर गांव में स्थित शिप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग विदेश के दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें, तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो कैमरा उठाइए और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
13: Thank God I get to wait.
12: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आप

0: भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश। हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम। लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं लोग। हिमाचल का मनाली सैलानी से गुलजार। प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मारतंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना। बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। बॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म में समुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार। हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा। अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच भी मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हां, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये खबर बिहार के सासाराम में 18 मई को एक ट्रेन में लगी आग का वीडियो है। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई का ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सासाराम से पटना जा रही ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का ये वीडियो है और वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है रिपोर्ट देखिए।
3: आग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वो खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सासाराम से चलने वाली ट्रेन में आग लगी है, बहुत ही भयानक, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वायरल वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगातार वायरल किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है एक ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे का ये वीडियो है जहां एक ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और जांच के दौरान दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। वीडियो में एक शख्स ने कैमरा पकड़ा हुआ है और उसके पीछे एक शख्स ने माइक भी पकड़ा हुआ है। ऐसे में हम ये किसी शूटिंग के दौरान का वीडियो, हमें ऐसा लगा कि ये हो सकता है, हमें संदेह हुआ।

0: 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। जब आग लगी थी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था, जबकि वायरल वीडियो में यात्री नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल जो आया वो ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी शूटिंग के वीडियो को नया एंगल देकर लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 9 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो गोधरा फिल्म की शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स का है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने YouTube पर फिल्म के ट्रेलर को सर्च किया। हमें ट्रेलर एक आधिकारिक YouTube चैनल पर मिला। ट्रेलर 25 जून 2024 को शेयर किया गया था। वीडियो में 19 सेकंड पर वायरल वीडियो वाली महिला को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई थी। जब आग लगी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि सासाराम ट्रेन हादसे के नाम पर वायरल वीडियो किसी असली घटना का नहीं है। असल में वायरल वीडियो साल 2024 में रिलीज हुई गोधरा फिल्म का है। उस फिल्म के एक सीन को गलत दावे के साथ सासाराम स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ महिलाओं को रोते हुए और गुहार लगाते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। वीडियो उसी कार्रवाई का है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: सोशल मीडिया पर बुलडोजर कार्रवाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाओं को रोते हुए देखा जा सकता है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। ये वीडियो उसी कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, योगी जी के आशीर्वाद से शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर पश्चिम बंगाल में सफाई अभियान शुरू किया। बाबा योगी जी ने सबको बिगाड़ रखा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक बुलडोजर को घरों को तोड़ते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं बच्चों को रोते हुए भी इसमें देखा जा रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है उसका वीडियो बता रहे हैं, और ये वीडियो उसी कार्रवाई का है ये भी कहा जा रहा है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगा तार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था। तो टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इसे देखने से यह साफ हो गया कि अतिक्रमण को हटाने से यह वीडियो जुड़ा हुआ है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल का है यह जानना भी जरूरी था। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों के ड्रेस के कलर पर गया। ये जवान नीली वर्दी में नजर आ रहे थे। पश्चिम बंगाल की पुलिस नीली वर्दी नहीं पहनती। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये निकल कर आया कि अगर ये वीडियो सच्चा है तो ये सवाल निकल कर आता है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई का ये वीडियो कब का है और कहां का है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच गलतफहमी, लोगों के बीच अफवाह फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है।
1: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी YouTube चैनल पर मिला। वीडियो को 14 मई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के अनुसार वीडियो बांग्लादेश के जेसोर का है। वहां अतिक्रमण हटाया गया था। इस अभियान के तहत करीब 600 घरों को तोड़ा गया था। पड़ताल के दौरान हमें वायरल वीडियो इसी जानकारी के साथ कुछ बांग्लादेशी यूट्यूब चैनल्स पर 14 मई 2026 को अपलोड किया हुआ मिला। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट पर भी मिली। इस रिपोर्ट को 12 मई 2026 को बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जेसोर में 400 से ज्यादा अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया था। इनमें अनाधिकृत घर, दुकानें, कारखाने और राजनीतिक कार्यालय शामिल थे। यह कार्रवाई बांग्लादेश की राष्ट्रीय आवास प्राधिकरण ने की थी। साफ है अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। वीडियो का बंगाल से कोई संबंध नहीं है। असल में ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां अतिक्रमण को हटाया गया था। उसी घटना के वीडियो को अब पश्चिम बंगाल से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिये।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया। अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक की टीम ने ऐसे कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इस कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग बस में बैठा कर लोगों को ले जा रहे हैं और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का है। वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की और सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा गया और सुना गया। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी लगी, ये बांग्ला नहीं थी। इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे हैं, इस पर भी जो शब्द लिखे हुए जो दिख रहे हैं वो बांग्ला नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर मिलती, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये आया कि अगर दावा सच्चा है, सच है, तो हाल फिलहाल में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी अब तक क्यों नहीं मिली। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। तो आइए देखते हैं हमारी टीम ने क्या सच खंगाल कर निकाला है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है, कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है, आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Turn It Up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
5: रात 9 बजे
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
6: आप मैजिक में यकीन करते हैं? अक्सर लोग इसे महज हाथ की सफाई मानकर भूल जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नए वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए। मशहूर फ्रांसीसी जादूगर जेवियर मार्टिमर ने एक ऐसा हैरतअंगेज मैजिक ट्रिक दिखाया है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए हैं। वीडियो में जेवियर मार्टिमर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आम लोगों की तरह खरीदारी कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स उनके पास पहुंचता है और हैरान होकर पूछता है, क्या आप जेवियर हैं? आप मैजिक करते हैं ना? जब जेवियर हाँ कहते हैं तो शख्स उन्हें लाइव कोई जादू दिखाने की चुनौती देता है। इसके बाद जेवियर ने जो किया उसने न सिर्फ उस शख्स को बल्कि पूरे मॉल को सन्न कर दिया। जेवियर अपनी शॉपिंग ट्रॉली को तेजी से धक्का देते हुए दौड़ते हैं। अगले ही पल जैसे ही ट्रॉली की रफ्तार पकड़ती है, जेवियर के पैर जमीन छोड़ देते हैं और वो सुपरमैन की तरह हवा में तैरने लगते हैं। ये दृश्य देख मॉल में मौजूद लोग दंग रह जाते हैं और तुरंत जेब से फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। जब हैरान परेशान युवक चिल्लाता है कि ये शख्स ऐसा कैसे कर पा रहा है, तब हवा में उड़ते उड़ते जेवियर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये मेरा मैजिक ट्रिक है, क्या मेरे साथ शॉपिंग करोगे? महिलाएं अपनी हिम्मत के दम पर कुछ भी कर सकती हैं, ये दुनिया जानती है। अब दुनिया के सामने महिलाओं ने एक और कारनामा कर दिखाया है। ITBP की महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इस टीम ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई साउथ पोल मार्ग से होते हुए पूरी की। ये चढ़ाई 21 मई 2026 को सुबह 6:52 पर शुरू हुई थी। ITBP की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो और फोटो पर देशवासी को गर्व महसूस करा रहे हैं। इस पर महिलाएं चोटी पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराती दिख रही हैं। उनके चेहरे पर कमाल कर लेने की खुशी साफ नजर आ रही है। बेंगलुरु के न जाने कितने वीडियो आपने देखे होंगे, कभी ट्रैफिक का तो कभी IT सेक्टर में जॉब का। मगर इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी वो खास है। ये खास इसीलिए है क्योंकि इसमें किसी का दिल खुश हो गया है। फिर इस दिल खुश होने का वीडियो लोगों को पसंद भी खूब आ रहा है। वीडियो के शुरू में बताया जाता है कि एक फूल मांगा था सिर्फ, इस वक्त सामने ढेर फूल मांगा था सिर्फ, इस वक्त सामने फूल का टेम्पो दिखाई देता है जिसमें ढेरों फूल रखे होते हैं। वीडियो पर लाइन लिखी होती है कि टेम्पो वाले भैया ने मेरा पूरा हफ्ता बना दिया। फिर आगे बात बढ़ती है और सामने वैष्णवी ढेर सारे फूल बुके की तरह पकड़े दिखती है। फिर बताया जाता है कि उसने मांगा एक था लेकिन वो कितने सारे दे गया, वो भी फ्री। उनकी मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही। नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन को लोटपोट कर दिया।
7: मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते हैं।
6: जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन को लोटपोट कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपील की थी। PM ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तोतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
7: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा, आप टेंशन मत लो,
6: इसके बाद वो हंसते हुए जो वजह बताती है उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं, वो लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं।

0: हम आपके साथ हैं।
1: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी मां को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी मां के साथ अस्पताल आया हुआ है। मां उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वो अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वो अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी वीडियो छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है।
2: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
0: मुझे तो उससे भी ज्यादा याद आएगी।
1: वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी, तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड के इस क्लिप में दादा पोती के बीच की एक छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच का एक प्यारा और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसे चिंता भरी स्थिति को पति ने अपने मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है।
3: एक बार जवान हिला के पूरे खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है।
1: वीडियो में सबसे खास बात तो ये है कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगाती है मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नज़ारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी जलीय जीव को इंसानों के साथ दिमागी खेल खेलते और जीतते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलोटल के साथ टिक टैक टू खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्हा एक्सोलोटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती है, एक्सोलोटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता है। महिला भी अपने पालतू दोस्त के इशारे को समझ रही थी और जहां वो चेहरा टिकाता वहां वो जीरो बना देती। देखते ही देखते नन्हे एक्सोलोटल खिलाड़ी ने महिला को बुरी तरह हरा दिया। ये तेजी से वायरल हो रहा है, उसे देखकर लोग हैरान के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहा है। ये नजारा देखकर कई यूजर्स का माथा घूम गया। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया। फिर क्या, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture. Hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
7: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Employers don't hire diplomas, they hire skills. At WGU School of Technology, you'll earn both. With a degree backed by industry certifications that prove your job ready. Learn more at wgu.edu.
4: इसके ऊपर उसके गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: गंगा दशहरे के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग, शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान और पूजन से बनेंगे भक्तों के काम। मान्यता है कि आज के दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी मां गंगा। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं लोग, हिमाचल का मनाली सैलानी से गुलजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना, बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। बॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म में समुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार, हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा, अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे। वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवीवेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है उसमें। होता बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर। और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती
0: है। AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ASA रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम ASA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है। पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेल पार्ट रहा है और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो हैं वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMCA में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्रा टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल्स हैं वो भी लग सकती हैं, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनामिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटीरियल जिसकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस हैं, दैट मींस जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर के हैं, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार करने का, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
2: ये देखें कि दुनिया में किसके पास सेल टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो यूएस उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टूडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन हमारे को अगले 4-5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरान का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है, और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रों की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। रण क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध, और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और अगली खबर खेल जगत से है। भारतीय एथलेटिक्स में आज एक नया इतिहास रच दिया गया है। पंजाब के फर्राटा धावक गुरिंदर वीर सिंह अब भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। जी हाँ, उन्होंने 100 मीटर की रेस में वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय नहीं कर सका। गुरिंदर वीर ने महज 10.09 सेकंड, जी हाँ, 10.09 सेकंड का समय निकालकर ना सिर्फ रेस जीती बल्कि भारतीय नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 100 मीटर के ट्रैक पर इस रफ्तार ने ट्रैक को मानो आग लगा दी। गुरिंदर वीर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। धावक गुरिंदर वीर ने इतिहास दर्ज दिया है। 100 मीटर रेस में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और देश का फ्लाइंग मास्टर का खिताब अब उनके नाम हो गया।
6: What a performance this is!
7: मैं हमेशा बोलता हूँ भी लास्ट मिनट पे मेंटली गेम ज़्यादा रहती है फिजिकली से। जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा। तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी। हाँ, ट्रेनिंग किया, बहुत चीज़ें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया, जो वीकनेस थी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, अपने जितने भी हद तक मैं उसको कम कर सकता हूं।
5: और आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडई कनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडई कनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल बेहद खुशनुमा है। ऐसे में सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान हुआ भव्य काइट शो यहाँ आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगे आसमान में देखने को मिली। इस शो का आयोजन यहाँ पर मनावनूर गांव में स्थित शिप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग विदेश के दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो कैमरा उठाइए और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें। हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: गंगा दशहरे के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग, शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान और पूजन से बनेंगे भक्तों के काम। मान्यता है कि आज के दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी मां गंगा।

0: पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना। बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। हॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म में सम्मुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार, हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा। अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चल।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच भी मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हां, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये खबर बिहार के सासाराम में 18 मई को एक ट्रेन में लगी आग का वीडियो है। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई का ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सासाराम से पटना जा रही ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का ये वीडियो है और वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है रिपोर्ट देखिए।
3: आग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वो खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सासाराम से चलने वाली ट्रेन में आग लगी है, बहुत ही भयानक, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वायरल वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगातार वायरल किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है एक ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे का ये वीडियो है जहां एक ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और जांच के दौरान दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। वीडियो में एक शख्स ने कैमरा पकड़ा हुआ है और उसके पीछे एक शख्स ने माइक भी पकड़ा हुआ है। ऐसे में हम ये किसी शूटिंग के दौरान का वीडियो, हमें ऐसा लगा कि ये हो सकता है, हमें संदेह हुआ। 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। जब आग लगी थी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था, जबकि वायरल वीडियो में यात्री नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल जो आया वो ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक

0: जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई? और दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी शूटिंग के वीडियो को नया एंगल देकर लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा? तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 9 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो गोधरा फिल्म की शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स का है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने YouTube पर फिल्म के ट्रेलर को सर्च किया। हमें ट्रेलर एक आधिकारिक YouTube चैनल पर मिला। ट्रेलर 25 जून 2024 को शेयर किया गया था। वीडियो में 19 सेकंड पर वायरल वीडियो वाली महिला को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में आग लग गई थी। हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई थी। जब आग लगी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि सासाराम ट्रेन हादसे के नाम पर वायरल वीडियो किसी असली घटना का नहीं है। असल में वायरल वीडियो साल 2024 में रिलीज हुई गोधरा फिल्म का है। उस फिल्म के एक सीन को गलत दावे के साथ सासाराम स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ महिलाओं को रोते हुए और गुहार लगाते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। वीडियो उसी कार्रवाई का है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: सोशल मीडिया पर बुलडोजर कार्रवाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाओं को रोते हुए देखा जा सकता है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। ये वीडियो उसी कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, योगी जी के आशीर्वाद से शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर पश्चिम बंगाल में सफाई अभियान शुरू किया। बाबा योगी जी ने सबको बिगाड़ रखा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक बुलडोजर को घरों को तोड़ते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं बच्चों को रोते हुए भी इसमें देखा जा रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है उसका वीडियो बता रहे हैं और ये वीडियो उसी कार्रवाई का है ये भी कहा जा रहा है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार तार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था। तो टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इसे देखने से यह साफ हो गया कि अतिक्रमण को हटाने से यह वीडियो जुड़ा हुआ है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल का है यह जानना भी जरूरी था। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों के ड्रेस के कलर पर गया। ये जवान नीली वर्दी में नजर आ रहे थे। पश्चिम बंगाल की पुलिस नीली वर्दी नहीं पहनती। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये निकल कर आया कि अगर ये वीडियो सच्चा है तो ये सवाल निकल कर आता है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई का ये वीडियो कब का है और कहां का है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच गलतफहमी, लोगों के बीच अफवाह फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है।
1: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 14 मई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के अनुसार वीडियो बांग्लादेश के जैसोर का है, वहां अतिक्रमण हटाया गया था। इस अभियान के तहत करीब 600 घरों को तोड़ा गया था। पड़ताल के दौरान हमें वायरल वीडियो इसी जानकारी के साथ कुछ बांग्लादेशी यूट्यूब चैनल्स पर 14 मई 2026 को अपलोड किया हुआ मिला। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट पर भी मिली। इस रिपोर्ट को 12 मई 2026 को बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जैसोर में 400 से ज्यादा अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया था। इनमें अनाधिकृत घर, दुकानें, कारखाने और राजनीतिक कार्यालय शामिल थे। यह कार्रवाई बांग्लादेश की राष्ट्रीय आवास प्राधिकरण ने की थी। साफ है, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। वीडियो का बंगाल से कोई संबंध नहीं है। असल में ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां अतिक्रमण को हटाया गया था। उसी घटना के वीडियो को अब पश्चिम बंगाल से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिये।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठा कर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया, अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक की टीम ने ऐसे कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इस कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग बस में बैठा कर लोगों को ले जा रहे हैं और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का है। वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की और सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा गया और सुना गया। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी लगी, ये बांग्ला नहीं थी। इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे हैं, इस पर भी जो शब्द लिखे हुए जो दिख रहे हैं वो बांग्ला नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर मिलती, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये आया कि अगर दावा सच्चा है, सच है, तो हाल फिलहाल में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी अब तक क्यों नहीं मिली? और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? तो आइए देखते हैं हमारी टीम ने क्या सच खंगाल कर निकाला है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: आप मैजिक में यकीन करते हैं? अक्सर लोग इसे महज हाथ की सफाई मानकर भूल जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नए वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए। मशहूर फ्रांसीसी जादूगर जेवियर मार्टिमर ने एक ऐसा हैरतअंगेज मैजिक ट्रिक दिखाया है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए हैं। वीडियो में जेवियर मार्टिमर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आम लोगों की तरह खरीदारी कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स उनके पास पहुंचता है और हैरान होकर पूछता है, क्या आप जेवियर हैं? आप मैजिक करते हैं ना? जब जेवियर हाँ कहते हैं तो शख्स उन्हें लाइव कोई जादू दिखाने की चुनौती देता है। इसके बाद जेवियर ने जो किया उसने न सिर्फ उस शख्स को बल्कि पूरे मॉल को सन्न कर दिया। जेवियर अपनी शॉपिंग ट्रॉली को तेजी से धक्का देते हुए दौड़ते हैं। अगले ही पल जैसे ही ट्रॉली की रफ्तार पकड़ती है, जेवियर के पैर जमीन छोड़ देते हैं और वो सुपरमैन की तरह हवा में तैरने लगते हैं। ये दृश्य देख मॉल में मौजूद लोग दंग रह जाते हैं और तुरंत जेब से फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। जब हैरान परेशान युवक चिल्लाता है कि ये शख्स ऐसा कैसे कर पा रहा है, तब हवा में उड़ते उड़ते जेवियर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये मेरा मैजिक ट्रिक है, क्या मेरे साथ शॉपिंग करोगे? महिलाएं अपनी हिम्मत के दम पर कुछ भी कर सकती हैं, ये दुनिया जानती है। अब दुनिया के सामने महिलाओं ने एक और कारनामा कर दिखाया है। आईटीबीपी की महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इस टीम ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई साउथ पोल मार्ग से होते हुए पूरी की। ये चढ़ाई 21 मई 2026 को सुबह 6:52 पर शुरू हुई थी। आईटीबीपी की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो और फोटो पर देशवासी को गर्व महसूस करा रहे हैं। इस पर महिलाएं चोटी पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराती दिख रही हैं। उनके चेहरे पर कमाल कर लेने की खुशी साफ नजर आ रही है। बेंगलुरु के न जाने कितने वीडियो आपने देखे होंगे, कभी ट्रैफिक का तो कभी आईटी सेक्टर में जॉब का। मगर इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी वो खास है। ये खास इसीलिए है क्योंकि इसमें किसी का दिल खुश हो गया है। फिर इस दिल खुश होने का वीडियो लोगों को पसंद भी खूब आ रहा है। वीडियो के शुरू में बताया जाता है कि एक फूल मांगा था सिर्फ। इस वक्त सामने फूल का टेम्पो दिखाई देता है जिसमें ढेरों फूल रखे होते हैं। वीडियो पर लाइन लिखी होती है कि टेम्पो वाले भैया ने मेरा पूरा हफ्ता बना दिया। फिर आगे बात बढ़ती है और सामने वैष्णवी ढेर सारे फूल बुके की तरह पकड़े दिखती है। फिर बताया जाता है कि उसने मांगा एक था लेकिन वो कितने सारे दे गया, वो भी फ्री। उनकी मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही। नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन को लोटपोट कर दिया।
6: मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते।
5: जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन्स को लोटपोट कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपील की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तोतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
6: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा या आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ।
5: इसके बाद वो हंसते हुए जो वजह बताती है उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं, वो लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं।

0: इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है। माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वो अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वो अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी वीडियो छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है।
1: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
2: मुझे तो उससे भी ज्यादा याद आएगी।
0: वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी, तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड के इस क्लिप में दादा पोती के बीच की एक छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच का एक प्यारा और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चिंता भरी स्थिति को पति ने अपने मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है।
3: एक बार जवान हिला के पूरे खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है।
0: वीडियो में सबसे खास बात तो ये है कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगाती है मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नज़ारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी जलीय जीव को इंसानों के साथ दिमागी खेल खेलते और जीतते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलोटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्हा एक्सोलोटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती है, एक्सोलोटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता है। महिला भी अपने पालतू दोस्त के इशारे को समझ रही थी और जहां वो चेहरा टिकाता वहां वो जीरो बना देती। देखते ही देखते नन्हे एक्सोलोटल खिलाड़ी ने महिला को बुरी तरह हरा दिया। ये तेजी से वायरल हो रहा है, उसे देखकर लोग हैरान के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहा है। ये नजारा देखकर कई यूजर्स का माथा घूम गया। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया। फिर क्या, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
7: Jack, come home. It's supper time.
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
8: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
6: Jack FM, playing what we want.
9: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: परख कर
11: न्यूज़ की खबर
4: नहीं है कम।
12: कन्नड़ दशहरे के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान और भोजन से बनेंगे भक्तों के काम। मान्यता है कि आज के दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी मां गंगा। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश। हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम। लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं लोग। हिमाचल का मनाली सैलानी से गुलजार। प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना। बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। बॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म में सम्मुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार। हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा। अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।

अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे, वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK-1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK-2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवी वेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है। उसमें होता बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
0: AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ऐसे रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम AESA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: AESA दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है, पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेन पार्ट रहा है और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो हैं वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMCA में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्रा टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल है वो भी लग सकती है, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनेमिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना, जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: सेल्फ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है सेल्फ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिनकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर क्या है, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत पर जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार करने का, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
2: स्ट्रेट अवे ये देखें कि दुनिया में किसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो US उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टूडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन्स हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रो की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: अच्छी खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और अगली खबर खेल जगत से है। भारतीय एथलेटिक्स में आज एक नया इतिहास रच दिया गया है। पंजाब के फर्राटा धावक गुरिंदर वीर सिंह अब भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। जी हां, उन्होंने 100 मीटर की रेस में वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय नहीं कर सका। गुरिंदर वीर ने महज 10.09 सेकेंड, जी हां, 10.09 सेकंड का समय निकालकर ना सिर्फ रेस जीती बल्कि भारतीय नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 100 मीटर के ट्रैक पर इस रफ्तार ने ट्रैक को मानो आग लगा दी। गुरिंदर वीर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। धावक गुरिंदर वीर ने इतिहास दर्ज दिया है। 100 मीटर रेस में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और देश का फ्लाइंग मास्टर का खिताब अब उनके नाम हो गया है।
7: What a performance this is!
8: मैं हमेशा बोलता हूँ भी लास्ट मिनट पे मेंटली गेम ज़्यादा रहती है फिजिकली से। जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा। तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी। हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीज़ें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया, जो वीकनेस थी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की अपने जितने भी हद तक मैं उसको कम कर सकता हूं।
6: और आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडई कनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडई कनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल बेहद खुशनुमा है। ऐसे में सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान हुआ भव्य काइट शो यहाँ आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगे आसमान में देखने को मिली। इस शो का आयोजन यहाँ पर मनावनूर गांव में स्थित शिप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग विदेश के दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो कैमरा उठाइए और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें। हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: Looking for more sports analysis between games? Tune in has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post game analysis, or good old fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
10: It's college football time. College basketball feels
9: Pardon
10: like
9: my take.
10: The Rams catching the Commanders.
9: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: गंगा दशहरे के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान और भोजन से बनेंगे भक्तों के काम। मान्यता है कि आज के दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी माँ गंगा। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश। हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं लोग। हिमाचल का मनाली सैलानी से गुलजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान

0: का हिस्सा, अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच भी मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हां, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये खबर बिहार के सासाराम में 18 मई को एक ट्रेन में लगी आग का वीडियो है। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई का ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सासाराम से पटना जा रही ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का ये वीडियो है और वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है रिपोर्ट देखिए।
3: आग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वो खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सासाराम से चलने वाली ट्रेन में आग लगी है, बहुत ही भयानक, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वायरल वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगातार वायरल किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है एक एक ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे का ये वीडियो है जहां एक ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और जांच के दौरान दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। वीडियो में एक शख्स ने कैमरा पकड़ा हुआ है और उसके पीछे एक शख्स ने माइक भी पकड़ा हुआ है। ऐसे में हम ये किसी शूटिंग के दौरान का वीडियो, हमें ऐसा लगा कि ये हो सकता है, हमें संदेह हुआ। 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। जब आग लगी थी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था, जबकि वायरल वीडियो में यात्री नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल जो आया वो ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी शूटिंग के वीडियो को नया एंगल देकर लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी, दावे की सच्चाई

0: निकालने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 9 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो गोधरा फिल्म की शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स का है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने यूट्यूब पर फिल्म के ट्रेलर को सर्च किया। हमें ट्रेलर एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। ट्रेलर 25 जून 2024 को शेयर किया गया था। वीडियो में 19 सेकंड पर वायरल वीडियो वाली महिला को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में आग लग गई थी। हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई थी। जब आग लगी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि सासाराम ट्रेन हादसे के नाम पर वायरल वीडियो किसी असली घटना का नहीं है। असल में वायरल वीडियो साल 2024 में रिलीज हुई गोधरा फिल्म का है। उस फिल्म के एक सीन को गलत दावे के साथ सासाराम स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ महिलाओं को रोते हुए और गुहार लगाते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। वीडियो उसी कार्रवाई का है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: सोशल मीडिया पर बुलडोजर कार्रवाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाओं को रोते हुए देखा जा सकता है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। ये वीडियो उसी कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, योगी जी के आशीर्वाद से शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर पश्चिम बंगाल में सफाई अभियान शुरू किया। बाबा योगी जी ने सबको बिगाड़ रखा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक बुलडोजर को घरों को तोड़ते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं बच्चों को रोते हुए भी इसमें देखा जा रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है उसका वीडियो बता रहे हैं और ये वीडियो उसी कार्रवाई का है ये भी कहा जा रहा है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था। तो टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इसे देखने से यह साफ हो गया कि अतिक्रमण को हटाने से यह वीडियो जुड़ा हुआ है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल का है यह जानना भी जरूरी था। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों के ड्रेस के कलर पर गया। ये जवान नीली वर्दी में नजर आ रहे थे। पश्चिम बंगाल की पुलिस नीली वर्दी नहीं पहनती। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये निकल कर आया कि अगर ये वीडियो सच्चा है तो ये सवाल निकल कर आता है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई का ये वीडियो कब का है और कहां का है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच गलतफहमी, लोगों के बीच अफवाह फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है।
0: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 14 मई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के अनुसार वीडियो बांग्लादेश के जैसोर का है। वहां अतिक्रमण हटाया गया था। इस अभियान के तहत करीब 600 घरों को तोड़ा गया था। पड़ताल के दौरान हमें वायरल वीडियो इसी जानकारी के साथ कुछ बांग्लादेशी यूट्यूब चैनल्स पर 14 मई 2026 को अपलोड किया हुआ मिला। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट पर भी मिली। इस रिपोर्ट को 12 मई 2026 को बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जैसोर में 400 से ज्यादा अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया था। इनमें अनाधिकृत घर, दुकानें, कारखाने और राजनीतिक कार्यालय शामिल थे। यह कार्रवाई बांग्लादेश की राष्ट्रीय आवास प्राधिकरण ने की थी। साफ है अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। वीडियो का बंगाल से कोई संबंध नहीं है, असल में ये वीडियो बांग्लादेश का है जहां अतिक्रमण को हटाया गया था। उसी घटना के वीडियो को अब पश्चिम बंगाल से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिये।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठा कर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया, अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक की टीम ने ऐसे कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इस कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग बस में बैठा कर लोगों को ले जा रहे हैं और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का है। वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की और सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा गया और सुना गया। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी लगी, ये बांग्ला नहीं थी। इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे हैं, इस पर भी जो शब्द लिखे हुए जो दिख रहे हैं वो बांग्ला नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर मिलती, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये आया कि अगर दावा सच्चा है, सच है, तो हाल फिलहाल में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी अब तक क्यों नहीं मिली? और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? तो आइए देखते हैं हमारी टीम ने क्या सच खंगाल कर निकाला है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
6: आप मैजिक में यकीन करते हैं? अक्सर लोग इसे महज हाथ की सफाई मानकर भूल जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नए वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए। मशहूर फ्रांसीसी जादूगर जेवियर मार्टिमर ने एक ऐसा हैरतअंगेज मैजिक ट्रिक दिखाया है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए हैं। वीडियो में जेवियर मार्टिमर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आम लोगों की तरह खरीदारी कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स उनके पास पहुंचता है और हैरान होकर पूछता है, क्या आप जेवियर हैं? आप मैजिक करते हैं ना? जब जेवियर हाँ कहते हैं तो शख्स उन्हें लाइव कोई जादू दिखाने की चुनौती देता है। इसके बाद जेवियर ने जो किया उसने न सिर्फ उस शख्स को बल्कि पूरे मॉल को सन्न कर दिया। जेवियर अपनी शॉपिंग ट्रॉली को तेजी से धक्का देते हुए दौड़ते हैं। अगले ही पल जैसे ही ट्रॉली की रफ्तार पकड़ती है, जेवियर के पैर जमीन छोड़ देते हैं और वो सुपरमैन की तरह हवा में तैरने लगते हैं। ये दृश्य देख मॉल में मौजूद लोग दंग रह जाते हैं और तुरंत जेब से फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। जब हैरान परेशान युवक चिल्लाता है कि ये शख्स ऐसा कैसे कर पा रहा है, तब हवा में उड़ते उड़ते जेवियर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये मेरा मैजिक ट्रिक है, क्या मेरे साथ शॉपिंग करोगे? महिलाएं अपनी हिम्मत के दम पर कुछ भी कर सकती हैं, ये दुनिया जानती है। अब दुनिया के सामने महिलाओं ने एक और कारनामा कर दिखाया है। आईटीबीपी की महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इस टीम ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई साउथ पोल मार्ग से होते हुए पूरी की। ये चढ़ाई 21 मई 2026 को सुबह 6:52 पर शुरू हुई थी। आईटीबीपी की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो और फोटो पर देशवासी को गर्व महसूस करा रहे हैं। इस पर महिलाएं चोटी पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराती दिख रही हैं। उनके चेहरे पर कमाल कर लेने की खुशी साफ नजर आ रही है। बेंगलुरु के न जाने कितने वीडियो आपने देखे होंगे, कभी ट्रैफिक का तो कभी आईटी सेक्टर में जॉब का। मगर इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी वो खास है। ये खास इसीलिए है क्योंकि इसमें किसी का दिल खुश हो गया है। फिर इस दिल खुश होने का वीडियो लोगों को पसंद भी खूब आ रहा है। वीडियो के शुरू में बताया जाता है कि एक फूल मांगा था सिर्फ। इस वक्त सामने फूल का टेम्पो दिखाई देता है जिसमें ढेरों फूल रखे होते हैं। वीडियो पर लाइन लिखी होती है कि टेम्पो वाले भैया ने मेरा पूरा हफ्ता बना दिया। फिर आगे बात बढ़ती है और सामने वैष्णवी ढेर सारे फूल बुके की तरह पकड़े दिखती है। फिर बताया जाता है कि उसने मांगा एक था लेकिन वो कितने सारे दे गया, वो भी फ्री। उनकी मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही। नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन को लोटपोट कर दिया।
7: मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते हैं।
6: जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन को लोटपोट कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपील की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तोतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
7: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा, या आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ।
6: इसके बाद वो हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं, वो लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं।
7: मोदी जी, आप टेंशन

0: हम आपके साथ हैं।
1: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है। माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वो अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वो अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी वीडियो छाई हुई है, जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है।
2: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
0: मुझे तो उससे भी ज्यादा याद आएगी।
1: वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी, तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड के इस क्लिप में दादा पोती के बीच की ये छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच का एक प्यारा और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चिंता भरी स्थिति को पति ने अपने मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है।
3: एक बार जवान हिला के पूरे खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है।
1: वीडियो में सबसे खास बात तो ये है कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगाती है मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नज़ारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी जलीय जीव को इंसानों के साथ दिमागी खेल खेलते और जीतते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलोटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्हा एक्सोलोटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती है, एक्सोलोटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता है। महिला भी अपने पालतू दोस्त के इशारे को समझ रही थी और जहां वो चेहरा टिकाता वहां वो जीरो बना देती। देखते ही देखते नन्हे एक्सोलोटल खिलाड़ी ने महिला को बुरी तरह हरा दिया। ये तेजी से वायरल हो रहा है, उसे देखकर लोग हैरान के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं। वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहा है। ये नजारा देखकर कई यूजर्स का माथा घूम गया। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया। फिर क्या, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर कर रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
6: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: देखिए मेरे यानी नवजोत,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: गंगा दशहरे के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग, शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान और भोजन से बनेंगे भक्तों के काम। मान्यता है कि आज के दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी मां गंगा। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं लोग, हिमाचल का मनाली सैलानी से गुलजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंडेय सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना, बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। बॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म में सम्मुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार, हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा, अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे, वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK-1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK-2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवी वेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्सेस फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है। उसमें होता बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
0: AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ऐसे रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम AESA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: AESA दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है। पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेन पार्ट रहा है और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो हैं वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMCA में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्रा टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल्स हैं वो भी लग सकती हैं, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनामिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना, जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिनकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर क्या है, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
2: स्ट्रेट अवे ये देखें कि दुनिया में किसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो US उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टूडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन्स हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रो की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: अच्छी खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और अगली खबर खेल जगत से है। भारतीय एथलेटिक्स में आज एक नया इतिहास रच दिया गया है। पंजाब के फर्राटा धावक गुरिंदर वीर सिंह अब भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। जी हाँ, उन्होंने 100 मीटर की रेस में वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय नहीं कर सका। गुरिंदर वीर ने महज 10.09 सेकेंड, जी हाँ, 10.09 सेकंड का समय निकालकर ना सिर्फ रेस जीती बल्कि भारतीय नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 100 मीटर के ट्रैक पर इस रफ्तार ने ट्रैक को मानो आग लगा दी। गुरिंदर वीर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। धावक गुरिंदर वीर ने इतिहास दर्ज दिया है। 100 मीटर रेस में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और देश का फ्लाइंग मास्टर का खिताब अब उनके नाम हो गया।
6: What a performance this is!
7: मैं हमेशा बोलता हूँ भी लास्ट मिनट पे मेंटली गेम ज्यादा रहती है फिजिकली से। जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा। तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी। हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीजें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया, जो वीकनेस थी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की अपने जितने भी हद तक मैं उसको कम कर सकता हूं।
5: और आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडई कनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडई कनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल बेहद खुशनुमा है। ऐसे में सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान हुआ भव्य काइट शो यहाँ आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगे आसमान में देखने को मिली। इस शो का आयोजन यहाँ पर मनावनूर गांव में स्थित शिप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: गंगा दशहरे के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग, शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान और भोजन से बनेंगे भक्तों के काम। मान्यता है कि आज के दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी माँ गंगा। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं लोग। हिमाचल का मनाली सैलानी से गुलजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना। बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। बॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म में सम्मुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार, हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा। अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
9: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच भी मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बता

0: दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हाँ, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये खबर बिहार के सासाराम में 18 मई को एक ट्रेन में लगी आग का वीडियो है। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई का ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सासाराम से पटना जा रही ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का ये वीडियो है। और वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है रिपोर्ट देखिए।
2: आग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वो खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सासाराम से चलने वाली ट्रेन में आग लगी है, बहुत ही भयानक, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वायरल वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगातार वायरल किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है एक एक ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है। वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे का ये वीडियो है, जहां एक ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और जांच के दौरान दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसी कई चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। वीडियो में एक शख्स ने कैमरा पकड़ा हुआ है और उसके पीछे एक शख्स ने माइक भी पकड़ा हुआ है। ऐसे में हम ये किसी शूटिंग के दौरान का वीडियो, हमें ऐसा लगा कि ये हो सकता है, हमें संदेह हुआ। 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई थी। जब आग लगी थी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था, जबकि वायरल वीडियो में यात्री नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल जो आया वो ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई। और दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी शूटिंग के वीडियो को नया एंगल देकर लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। वीडियो को 9 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वीडियो गोधरा फिल्म की शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स का है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने यूट्यूब पर फिल्म के ट्रेलर को सर्च किया। हमें ट्रेलर एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। ट्रेलर 25 जून 2024 को शेयर किया गया था। वीडियो में 19 सेकंड पर वायरल वीडियो वाली महिला को देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 18 मई 2026 को बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में आग लग गई थी। हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई थी। जब आग लगी उस दौरान ट्रेन खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि सासाराम ट्रेन हादसे के नाम पर वायरल वीडियो किसी असली घटना का नहीं है। असल में वायरल वीडियो साल

0: 2024 में रिलीज हुई गोधरा फिल्म का है। उस फिल्म के एक सीन को गलत दावे के साथ सासाराम स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ महिलाओं को रोते हुए और गुहार लगाते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। वीडियो उसी कार्रवाई का है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: सोशल मीडिया पर बुलडोजर कार्रवाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाओं को रोते हुए देखा जा सकता है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। ये वीडियो उसी कार्रवाई का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, योगी जी के आशीर्वाद से शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर पश्चिम बंगाल में सफाई अभियान शुरू किया। बाबा योगी जी ने सबको बिगाड़ रखा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक बुलडोजर को घरों को तोड़ते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान कुछ महिलाएं बच्चों को रोते हुए भी इसमें देखा जा रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है उसका वीडियो बता रहे हैं, और ये वीडियो उसी कार्रवाई का है ये भी कहा जा रहा है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था। तो टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इसे देखने से यह साफ हो गया कि अतिक्रमण को हटाने से यह वीडियो जुड़ा हुआ है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल का है यह जानना भी जरूरी था। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों के ड्रेस के कलर पर गया। ये जवान नीली वर्दी में नजर आ रहे थे। पश्चिम बंगाल की पुलिस नीली वर्दी नहीं पहनती। ऐसे में हमें वीडियो की सत्यता पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। और सबसे पहला सवाल ये निकल कर आया कि अगर ये वीडियो सच्चा है तो ये सवाल निकल कर आता है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई का ये वीडियो कब का है और कहां का है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच गलतफहमी, लोगों के बीच अफवाह फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है।
0: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 14 मई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के अनुसार वीडियो बांग्लादेश के जैसोर का है। वहां अतिक्रमण हटाया गया था। इस अभियान के तहत करीब 600 घरों को तोड़ा गया था। पड़ताल के दौरान हमें वायरल वीडियो इसी जानकारी के साथ कुछ बांग्लादेशी यूट्यूब चैनल्स पर 14 मई 2026 को अपलोड किया हुआ मिला। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट पर भी मिली। इस रिपोर्ट को 12 मई 2026 को बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जैसोर में 400 से ज्यादा अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया था। इनमें अनाधिकृत घर, दुकानें, कारखाने और राजनीतिक कार्यालय शामिल थे। यह कार्रवाई बांग्लादेश की राष्ट्रीय आवास प्राधिकरण ने की थी। साफ है अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। वीडियो का बंगाल से कोई संबंध नहीं है। असल में ये वीडियो बांग्लादेश का है जहां अतिक्रमण को हटाया गया था। उसी घटना के वीडियो को अब पश्चिम बंगाल से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है। शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिये।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठा कर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया, अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक की टीम ने ऐसे कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इस कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग बस में बैठा कर लोगों को ले जा रहे हैं और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का है। वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की और सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा गया और सुना गया। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी लगी, ये बांग्ला नहीं थी। इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे हैं, इस पर भी जो शब्द लिखे हुए जो दिख रहे हैं वो बांग्ला नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर मिलती, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये आया कि अगर दावा सच्चा है, सच है, तो हाल फिलहाल में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी अब तक क्यों नहीं मिली? और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? तो आइए देखते हैं हमारी टीम ने क्या सच खंगाल कर निकाला है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: आप मैजिक में यकीन करते हैं? अक्सर लोग इसे महज हाथ की सफाई मानकर भूल जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नए वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए। मशहूर फ्रांसीसी जादूगर जेवियर मार्टिमर ने एक ऐसा हैरतअंगेज मैजिक ट्रिक दिखाया है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए हैं। वीडियो में जेवियर मार्टिमर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आम लोगों की तरह खरीदारी कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स उनके पास पहुंचता है और हैरान होकर पूछता है, क्या आप जेवियर हैं? आप मैजिक करते हैं ना? जब जेवियर हाँ कहते हैं तो शख्स उन्हें लाइव कोई जादू दिखाने की चुनौती देता है। इसके बाद जेवियर ने जो किया, उसने न सिर्फ उस शख्स को बल्कि पूरे मॉल को सन्न कर दिया। जेवियर अपनी शॉपिंग ट्रॉली को तेजी से धक्का देते हुए दौड़ते हैं। अगले ही पल जैसे ही ट्रॉली की रफ्तार पकड़ती है, जेवियर के पैर जमीन छोड़ देते हैं और वो सुपरमैन की तरह हवा में तैरने लगते हैं। ये दृश्य देख मॉल में मौजूद लोग दंग रह जाते हैं और तुरंत जेब से फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। जब हैरान परेशान युवक चिल्लाता है कि ये शख्स ऐसा कैसे कर पा रहा है, तब हवा में उड़ते उड़ते जेवियर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये मेरा मैजिक ट्रिक है, क्या मेरे साथ शॉपिंग करोगे? महिलाएं अपनी हिम्मत के दम पर कुछ भी कर सकती हैं, ये दुनिया जानती है। अब दुनिया के सामने महिलाओं ने एक और कारनामा कर दिखाया है। आईटीबीपी की महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इस टीम ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई साउथ पोल मार्ग से होते हुए पूरी की। ये चढ़ाई 21 मई 2026 को सुबह 6:52 पर शुरू हुई थी। आईटीबीपी की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो और फोटो पर देशवासी को गर्व महसूस करा रहे हैं। इस पर महिलाएं चोटी पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराती दिख रही हैं। उनके चेहरे पर कमाल कर लेने की खुशी साफ नजर आ रही है। बेंगलुरु के न जाने कितने वीडियो आपने देखे होंगे, कभी ट्रैफिक का तो कभी आईटी सेक्टर में जॉब का। मगर इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी वो खास है। ये खास इसीलिए है क्योंकि इसमें किसी का दिल खुश हो गया है, फिर इस दिल खुश होने का वीडियो लोगों को पसंद भी खूब आ रहा है। वीडियो के शुरू में बताया जाता है कि एक फूल मांगा था सिर्फ। इस वक्त सामने फूल का टेम्पो दिखाई देता है जिसमें ढेरों फूल रखे होते हैं। वीडियो पर लाइन लिखी होती है कि टेम्पो वाले भैया ने मेरा पूरा हफ्ता बना दिया। फिर आगे बात बढ़ती है और सामने वैष्णवी ढेर सारे फूल बुके की तरह पकड़े दिखती है। फिर बताया जाता है कि उसने मांगा एक था लेकिन वो कितने सारे दे गया, वो भी फ्री। उनकी मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही। नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन को लोटपोट कर दिया।
6: मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते हैं।
5: जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजन को लोटपोट कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपील की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तोतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
6: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा, या आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ।
5: इसके बाद वो हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं, वो लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं।
6: मोदी जी, आप टेंशन मत लो।

0: हम आपके साथ हैं।
1: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है। माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वो अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वो अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी वीडियो छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है।
2: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
0: मुझे तो उससे भी ज्यादा याद आएगी।
1: वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी, तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड के इस क्लिप में दादा पोती के बीच की एक छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच का एक प्यारा और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चिंता भरी स्थिति को पति ने अपने मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है।
3: एक बार जवान हिला के पूरे खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है।
1: वीडियो में सबसे खास बात तो ये है कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगाती है मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
5: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
6: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: गंगा दशहरे के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग, शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान और पूजन से बनेंगे भक्तों के काम। मान्यता है कि आज के दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी मां गंगा। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश। हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम। लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं लोग। हिमाचल का मनाली सैलानी से गुलजार। प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाथ के मारतंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना। बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। हॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म में सम्मुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार। हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा। अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे, वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवीवेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। डीएसआई में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही डीएसआई में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है। उसमें होता है बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
0: एएमसी की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। एएमसीए के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम एएसए रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम एएसए रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: एएमसीए का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। एएमसीए में

0: पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है। पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
1: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेल पार्ट रहा है, और एमका में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है, तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है, प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है, प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो है वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMC में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस NG को AMC में अटैच किया जा सकता है।
1: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से एमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्र टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल है वो भी लग सकती है, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनेमिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
1: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिनकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर क्या है, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत तब जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार कर लेगा जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35, जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
1: स्ट्रेट अवे ये देखें कि दुनिया में किसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो US उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टुडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन हमारे को अगले 4-5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है, और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्जे भारत में ही

0: बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रों की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। रणक्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: कौन सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
4: और अगली खबर खेल जगत से है। भारतीय एथलेटिक्स में आज एक नया इतिहास रच दिया गया है। पंजाब के फर्राटा धावक गुरिंदर वीर सिंह अब भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। जी हाँ, उन्होंने 100 मीटर की रेस में वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय नहीं कर सका। गुरिंदर वीर ने महज 10.09 सेकेंड, जी हाँ 10.09 सेकेंड का समय निकालकर ना सिर्फ रेस जीती बल्कि भारतीय नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 100 मीटर के ट्रैक पर इस रफ्तार ने ट्रैक को मानो आग लगा दी। गुरिंदर वीर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। धावक गुरिंदर वीर ने इतिहास दर्ज दिया है। 100 मीटर रेस में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और देश का फ्लाइंग मास्टर का खिताब अब उनके नाम हो गया।
5: What a performance this is!
6: मैं हमेशा बोलता हूँ भी लास्ट मिनट पे मेंटली गेम ज्यादा रहती है फिजिकली से। जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा, तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया। हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी। हाँ, ट्रेनिंग किया, बहुत चीजें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया, जो वीकनेस थी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की अपने जितने भी हद तक मैं उसको कम कर सकता हूं।
4: और आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोडई कनाल में समर फेस्टिवल के रंग। कोडई कनाल तमिलनाडु का जाना माना हिल स्टेशन है। यहाँ पर इन दिनों मौसम और माहौल बेहद खुशनुमा है। ऐसे में सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर शानदार समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान हुआ भव्य काइट शो यहाँ आकर्षण का केंद्र रहा। इस शो के दौरान कार्टून कैरेक्टरों सहित अलग अलग रंगों और आकृतियों की रंग बिरंगी पतंगे आसमान में देखने को मिली। इस शो का आयोजन यहाँ पर मनावनूर गांव में स्थित शिप एंड रैबिट वूल रिसर्च स्टेशन के पास किया गया, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पतंगबाजी का मजा लेने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: सा ग्रह आपकी शिक्षा को बेहतर बना देता है? कौन सा ग्रह आपके मन को एकाग्र कर देता है? और कौन सा ग्रह आपको ज्ञानी बनाता है? आपकी शिक्षा और ज्ञान से किन ग्रहों का है संबंध और इसको बेहतर करने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: गंगा दशहरे के मौके पर बन रहे दुर्लभ संयोग, शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान और पूजन से बनेंगे भक्तों के काम। मान्यता है कि आज के दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी माँ गंगा। भीषण गर्मी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज का हो पर्याप्त इंतजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं लोग, हिमाचल का मनाली सैलानी से गुलजार, प्राकृतिक वादियों के बीच सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे सैलानी। पुरुषोत्तम मास के दौरान अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, भगवान से सुख समृद्धि के लिए कामना, बनमास मेले में आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति के रंग। हॉलीवुड की एलियन एक्शन फिल्म में सम्मुख में नजर आएंगे अभिनेता अक्षय कुमार, हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा, अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़,
4: हॉलीवुड कलाकार भी होंगे फिल्म का हिस्सा, अगले साल तक पैन इंडिया रिलीज का प्लान।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
8: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और फैक्ट चेक में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच भी मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हां, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये खबर बिहार के सासाराम में 18 मई को एक ट्रेन में लगी आग का वीडियो है। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई का ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
8: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सासाराम से पटना जा रही ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए है, वे खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का ये वीडियो है और वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है रिपोर्ट देखिए।
9: आग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में आग लगी हुई है और महिला गोद में बच्चे को लिए हुए है, वो खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये सासाराम रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सासाराम से चलने वाली ट्रेन में आग लगी है, बहुत ही भयानक, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। वायरल वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगातार वायरल किया जा रहा है।
8: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है एक ट्रेन में आग